मीडियम में 188.32 मीटर अर्थात 1593 किलोहर्ट्ज पर। साथ ही डीटीएच के ऑडियो चैनल न्यूज ऑन यार ऐप और वेव्स ओटीटी एप्लीकेशन पर यह आकाशवाणी भोपाल है। आज रविवार है, शक संबत 1948 आषाढ़ मास की 14वीं तिथि, तदनुसार 5 जुलाई सन 2026। इस समय स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 5:56 हो चुके हैं। अब आज की प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है। आपका दिन मंगलमय हो।

0: कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत डिजाइन इन इंडिया और मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़ रहा है। गुजरात के सानंद में देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में चिप पैकेजिंग के वाणिज्यिक उत्पादन का शुभारंभ करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सानंद संयंत्र में प्रत्येक वर्ष 20 करोड़ चिप तैयार होगी। उन्होंने कहा कि ये विकास भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति का अगला कदम है, जिसने देश को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बना दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया।
2: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्रबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज से 10 जुलाई तक कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान की सरकारी यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे इन देशों के विदेश मंत्रियों और नेताओं से मुलाकात करेंगे। इस यात्रा का उद्देश्य इन देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना और क्षेत्रीय घटनाक्रमों तथा पारस्परिक हित के मुद्दों पर विचार विमर्श करना है। डॉक्टर जयशंकर 13 जुलाई को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के वर्ष 2028-29 कार्यकाल के लिए भारत का अभियान शुरू करेंगे। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि इथेनॉल कोई नई अवधारणा नहीं है और इसका उपयोग एक सदी से अधिक समय से हो रहा है। राजस्थान में एक सभा को संबोधित करते हुए श्री पुरी ने कहा कि सरकार अपने जैव ईंधन मिश्रण कार्यक्रम की रचनात्मक आलोचना का स्वागत करती है। उन्होंने आश्वस्त किया कि सरकार सुझावों के अनुसार आवश्यक सुधार करेगी। श्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि भारत में इथेनॉल मिश्रण का विचार सर्वप्रथम पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान शुरू हुआ था। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होगा और 13 अगस्त तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 20 जुलाई से संसद का मानसून सत्र बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री रिजिजू ने कहा कि सत्र में राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक बहस, चर्चा और निर्णय लेने पर ध्यान किया जाएगा। पूर्वी अमेरिका में भीषण लू चल रही है, इससे बिजली आपूर्ति पर भारी दबाव पड़ रहा है और फीफा विश्व कप मैचों की तैयारियों में बाधा आ रही है। अमेरिका के सबसे अधिक आबादी वाले शहर न्यूयॉर्क में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक होने की आशंका है, जबकि पूर्वोत्तर राज्यों और मध्य अटलांटिक तट पर भी लू की चेतावनी जारी कर दी गई है। अमेरिका के मौसम विभाग ने बताया है कि स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान रिकॉर्ड तोड़ तापमान का भी पूर्वानुमान होगा। पुरुष क्रिकेट में इंग्लैंड ने कल मैनचेस्टर में 5 मैचों की टी20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला के दूसरे मैच में भारत को 4 विकेट से हरा दिया। भारत ने बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 190 रन बनाए। वहीं जवाब में इंग्लैंड ने 19 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 191 रन बनाकर मैच जीत लिया। तीसरा मैच मंगलवार को नॉटिंगम में खेला जाएगा। इससे पहले वैभव सूर्यवंशी ने भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण करने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बनकर इतिहास रच दिया। वैभव ने 15 वर्ष और 99 दिन की उम्र में पदार्पण किया। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में आज लंदन के लॉर्ड्स में इंग्लैंड का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। दोनों टीमें अपराजित रहते हुए फाइनल में पहुंची हैं। ऑस्ट्रेलिया ने सेमीफाइनल में वेस्टइंडीज को हराया, जबकि एक अन्य सेमीफाइनल में इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। लंदन में विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में बेल्जियम की एलिस मर्टेंस ने कल महिला सिंगल्स के तीसरे दौर में कजाकिस्तान की एलेना रायबाकैना को हराकर अंतिम 16 में जगह पक्की कर ली है। एक अन्य मुकाबले में फिलीपींस की अलेक्जेंड्रा एला ने तीसरी वरीयता प्राप्त पोलैंड की ईगा स्वियाटेक को हराकर अंतिम 16 में प्रवेश किया। पुरुष सिंगल्स में दूसरी वरीयता प्राप्त जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने तीसरे दौर में अमेरिका के मार्कोस गिरोन को हराकर अगले दौर में प्रवेश किया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: ये आकाशवाणी भोपाल है, प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।
1: प्रातः बेला की आराधना वंदना।

हम सब एक ही भारत भूमि की संतान हैं, जिस तरह एक माँ के लिए अपनी सभी संतानें प्रिय होती हैं, उसी तरह अनेक नाम, जाति, धर्म और मान्यताओं की विविधता के बाद भी हमें अपनी मातृभूमि प्यारी है। आइए सबसे पहले नमन करें अपनी मातृभूमि को।

उस परम शक्ति की दृष्टि सदैव हम पर बनी रहती है, परंतु हम ही सांसारिकता के आकर्षण में उस परमात्मा की ओर देखने से वंचित होने लगते हैं जिसके द्वारा ये समस्त संसार रचा गया है। गृहस्थ अवस्था में भी हम ईश्वर के साथ जुड़े रहें, हमारा यही प्रयास परमात्मा को याद करने का सबसे आसान तरीका है।

भक्ति ईश्वर से साक्षात्कार करने का एक छोटा सा प्रयास है। प्रभु के नाम का स्मरण, उसका भजन, उसका गुणगान ईश्वर के प्रति हमारे प्रेम का प्रतीक हैं। आडंबरों से हमें अवश्य बचना चाहिए, परंतु हमारी भक्ति को अगर कोई आडंबर समझने का प्रयास करे तो इसकी चिंता भी हमें नहीं करनी चाहिए।

संसार में जीवन प्रत्येक प्राणी को प्राप्त हुआ है और सभी अपने तरीके से अपना जीवन काल संपन्न करते हैं, परंतु मानव जन्म प्राप्त करने पर मनुष्य का दायित्व है कि वह अपने जीवन काल का उपयोग मोक्ष और प्रभु प्राप्ति के लिए करने का प्रयास करे, ताकि जन्म जन्मांतर की यात्रा संपन्न कर वो परम शक्ति में समाहित हो सके।

प्रकृति की निरंतरता और उसके अपने नियम कभी अवरुद्ध नहीं होते, क्योंकि इनका संचालनकर्ता ईश्वर है। शाश्वत और सत्य का उदाहरण प्रकृति के अलावा भला क्या हो सकता है? इसीलिए कहा जाता है कि ईश्वर प्रकृति के

0: आज की वंदना में आपने समूह स्वर में देशभक्ति रचना के बाद शर्मा बंधु, अनूप जलोटा, पंडित भीमसेन जोशी और मौसमी नंदी के गाए भजन सुने। इसके साथ ही आज की वंदना संपन्न होती है।
1: अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम।

शिव जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए हिमाचल कन्या उमा की हजारों वर्ष की तपस्या पूरी हुई। उधर जब से सती ने शरीर त्याग किया था, तब से ही शिव के मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया था। पृथ्वी पर विचरण करते हुए कहीं वे मुनियों को ज्ञान का उपदेश देते, कहीं श्री राम के गुणों का वर्णन करते। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। तब स्वयं भगवान राम ने उन्हें पार्वती के जन्म की कथा सुनाई और उनसे आग्रह किया कि वे जाकर शैल कुमारी से विवाह करें। माता पिता गुरु और स्वामी की बात बिना विचारे ही शुभ समझकर माननी चाहिए, ऐसा मानकर शिव जी ने भगवान राम की आज्ञा मान ली और सप्तर्षियों को उमा के निर्णय की परीक्षा लेने हेतु भेजा। ऋषिगण ने कई प्रकार से नारद जी की दूसरों का घर उजाड़ने वाली आदत का वर्णन करके उमा को शिवजी से विमुख करने की चेष्टा की, किंतु वो अपने निश्चय पर अडिग थीं।

0: श्री रामचरितमानस गान का प्रसारण अभी आप सुन रहे थे। ये आकाशवाणी भोपाल है। लीजिए अब सुनिए चिंतन।
1: नमस्कार किसान भाइयों, आज की इस कृषि चर्चा में बरसात के मौसम में पशुओं की देखभाल कैसे करेंगे इस विषय में

बिना पूर्व सूचना के जब कोई महिला या पुरुष किसी कार्य के लिए, परामर्श अथवा भेंट के लिए घर आ जाता है, तब उसे अतिथि कहते हैं। लोक भाषा में इसे पाहुन या पाहुने कहा जाता है। अतः जिसके आने की कोई तिथि न हो, उसे अतिथि या पाहुन की संज्ञा दी गई है। अतिथि या पाहुन के आने का कोई न कोई लक्ष्य अवश्य होता है, भले ही वह गुप्त हो या प्रकट। कभी कभी प्रायः मिलने वाले परिचित भी जब बिना फोन के या बताए या मिलने की सूचना दिए बिना अचानक आ जाते हैं, तो वे पाहुने ही होते हैं। जो अल्पकालीन समय के लिए आते हैं, वे तो अतिथि कहलाते ही हैं, पर पाहुने शब्द का लोक में प्रचलित एक और अर्थ है। वह उन व्यक्तियों से संबंध रखता है जो घर में कोई उत्सव आदि में निमंत्रण देकर बुलाए जाते हैं। इनकी एक और संज्ञा है जिसमें इन्हें मेहमान कहा गया है। बाहर से आने वाला मेहमान और जिसके घर आता है वह मेजबान, ये दो शब्द प्रत्येक गृहस्थ के दैनंदिन जीवन में सुनने में आते हैं। मेहमान या पाहुन सोद्देश्य आए या निरुद्देश्य, मेजबान को उसकी आवश्यकता अनुसार सेवा तो करना ही होती है। मेजबान अपने पाहुन की इच्छा अनुसार सेवा करता है तो वह प्रसन्न होता है और सदा ही मेजबान की बड़ाई करता है। किंतु सेवा में कमी होने या मनवांछित प्राप्ति ना होने पर मेजबान को निंदा का पात्र अवश्य बनना पड़ता है। संस्कृत भाषा में मेजबान को आतिथेय कहते हैं। भारतीय पौराणिक और सांस्कृतिक परंपरा में अतिथि पूज्य व्यक्ति होता है। भारत में अतिथि धर्म और अतिथि यज्ञ की परंपरा स्थापित है। तैत्तरीय उपनिषद आतिथ्य व्यवहार पर बल देती हुई अतिथि देव कहकर अतिथि का महत्व प्रतिपादित करती है। ऐतरेय आरण्यक में कहा गया है कि केवल सज्जन ही अतिथि सम्मान के पात्र हैं। मार्कंडेय पुराण में देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, ऋषि यज्ञ के साथ ही अतिथि यज्ञ करने के लिए महारानी मदालसा अपने राजा पुत्र को उपदेश देते हुए प्रत्येक गृहस्थ को दैनंदिन जीवन में ये चार यज्ञ करने का उपदेश देती हैं। थकान से त्रस्त आए हुए अतिथि को इच्छा अनुसार खान पान देकर संतुष्ट करना चाहिए। अतिथि का गोत्र, जाति और ज्ञान पूछने की आज्ञा पुराण नहीं देते। गृहस्थ को प्रातः सायं अतिथि की प्रतीक्षा करने और आए हुए अतिथि या पाहुने को संतुष्ट करने से पुण्य प्राप्त होता है। मार्कंडेय पुराण में उल्लेख है कि यदि घर से अतिथि निराश होकर चला जाता है, उस मेजबान गृहस्थ को वह अपना पाप फल दे जाता है और उसका पुण्य ले जाता है। अतिथिर्यस्य भग्नाशो गृहात् प्रतिनिवर्तते सदत्वा दुष्कृतम तस्मै पुण्यमादाय गच्छति। यथा पुराणों और स्मृतियों में आगंतुक पाहुनों के संबंध में विस्तृत वर्णन पाए जाते हैं। जो निरंतर चलता है, ठहरता नहीं, उसे अतिथि कहते हैं। घर पर आया हुआ पहले से अज्ञात व्यक्ति ही प्रायः अतिथि कहलाता है। संस्कृत में इसके पर्याय आगंतुक, आवेशिक, गृहागत आदि प्रचलित हैं। भारतीय अस्मिता की पहचान ही अतिथि सेवा और मेहमान नवाजी और शरणागत की रक्षा

0: एवं अभयदान देने में मानी जाती है। भारतीयता का जीवन परोपकारिता में वास करता है। परोपकारी पुण्य अर्जित करता है और पुण्यवान मोक्ष को प्राप्त करता है। इसलिए भारतीय गृहस्थ जीवन में अतिथि को देवता मानकर उसकी तृप्ति करना पुण्य कर्म में सम्मिलित है। कहा भी गया है, आतिथ्यम सुरपूजितम प्रतिदिनम धन्यो गृहस्थ आश्रमः। अर्थात उस गृहस्थ का जीवन और उसका गृहस्थ आश्रम धन्य है जहां अतिथि की पूजा देवता के समान होती है।
1: अभी आप सुन रहे थे चिंतन, ये आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण है। लीजिए प्रस्तुत है कृषि चर्चा, विषय है बरसात के मौसम में पशुओं की देखभाल। वार्ताकार हैं डॉक्टर ज्योति जैन।
2: नमस्कार किसान भाइयों, आज की इस कृषि चर्चा में बरसात के मौसम में पशुओं की देखभाल कैसे करेंगे, इस विषय में आपसे कुछ जानकारी साझा करना चाहती हूँ। मैं सबसे पहले आप सभी से कहना चाहूँगी कि बरसात का मौसम शुरू होने से पहले ही अपनी गौशाला में सारी तैयारियां कर लीजिए। इसके लिए सबसे जरूरी है कि हमारी गौशाला या बाड़ा जो है सूखा हो, स्वच्छ हो और हवादार हो। तो गौशाला की जो छत है उसमें आप सबसे पहले सुनिश्चित करेंगे कि उसमें कोई लीक इत्यादि नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर उससे पानी अंदर आएगा तो गौशाला में गोबर और मूत्र की गंदगी भी होती है उसके साथ मिक्स होकर अमोनिया गैस पनपेगी और इससे कई बीमारियाँ जन्म लेगी। पशुओं की आंखों में जलन होगी, कोक्सीडियोसिस जैसी बीमारियां भी जन्म ले सकती हैं। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है कि गौशाला में जो ड्रेनेज है, जो नाली है, उनकी प्रॉपर क्लीनिंग होना चाहिए और गौशालाओं में थोड़ा सा ढाल करके रखें जिससे पानी की निकासी हो सके। और बारिश आने के पहले ही आप जो पशुओं को फीड देते हैं उसका भंडारण अच्छी तरह से कर लीजिए, क्योंकि अगर पशुओं को देने वाला फीड अगर गीला हो गया तो उसमें अनेक फंगस जन्म ले लेगी और उससे पशुओं को बहुत ही जानलेवा बीमारी जैसे कि एस्परजिलोसिस, एफ्लोटॉक्सिकोसिस वगैरह हो सकती है। इसके लिए जरूरी है आपका जो फीड है वो पूर्णतः सूखा हो। और इसके अलावा अगर आपकी गौशाला में गड्ढे वगैरह हैं और कहीं पानी भराया जाता है उसकी भी प्रॉपर व्यवस्था कर लें, उसमें कीटनाशक या कैरोसिन ऑयल वगैरह डालें। जो पानी की व्यवस्था है तो पानी की हौज में पूरी तरह अंदर और बाहर से आप चूना पुतवा दीजिए, और गौशालाओं में कहीं क्रैक्स या दरारें हैं तो उसको भी पुट्टी सीमेंट से भरवा दीजिए, क्योंकि इस मौसम में मच्छर, मक्खियाँ, टिक्स वगैरह जन्म लेते हैं जो कि पशुओं में अनेक बीमारियों को जन्म देते हैं, और बबेशिया, थाइलेरोसिस और इस तरह की कई गंभीर बीमारियाँ आपके पशुओं को हो सकती हैं। इसके अलावा मैं ये आपसे कहना चाहूँ कि बारिश के मौसम में हर तरफ हरी घास तो होती है और पशुओं को पसंद भी आती है। आप सिर्फ उनको हरा चारा नहीं देंगे, आप अगर 60% हरा चारा दे रहे हैं तो उसमें 40% आपको सूखा चारा भी मिक्स करना है, और हरे चारे को अच्छी तरह से साफ करके उसको कुट्टी करके ही खिलाएंगे। आपका जो दाना और चारा है उसका अनुपात भी समझ लीजिएगा, आपको सिर्फ दाना दाना या चारा चारा नहीं देना है, चारा जो रहेगा वो 2/3 दो तिहाई रहेगा और जो दाना रहेगा वो 1/3 भाग देना है। गायों के लिए आपको 300 ग्राम के हिसाब से पर लीटर के हिसाब से दाना देना है, 300 ग्राम तब देना है जब वो 1 लीटर दूध देती हो, और भैंसों को 400 ग्राम 1 लीटर दूध के हिसाब से देना है। इसके अलावा उन्हें 1 किलो जीवन यापन के लिए भी राशन जो दाना है वो देना है। और बारिश के मौसम में आप पशुओं की को कृमिनाशक दवाइयाँ जरूर दें डॉक्टर की सलाह से, और उनके ऊपर किल्ली, गोचड़ियाँ आदि ना पनपें, क्योंकि यह मौसम उनके लिए बहुत फेवरेबल होता है। इसलिए डॉक्टर की सलाह से जो भी दवाइयाँ हैं, मतलब जिससे जो कि कीटों का नाश करती हैं, जैसे कि एंटी टिक स्प्रे वगैरह आते हैं वो लगवाइए, और आपके गड्ढों में भी ये दवाइयाँ डलवाइए। साथ ही गौशाला में कड़वे नीम के पत्ते, तुलसी के पत्ते और तेज पत्ते का धुआं करेंगे। इसके अलावा इस मौसम में एक थनेला बीमारी होती है जो कि जानलेवा है और आपको बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक लॉस होगा, बहुत आर्थिक हानि

क्योंकि पशुओं का सारा जो बिजनेस है वो उनके उत्पादन पर ही टिका हुआ होता है। और एक बार थनेला, जिसे कि मेस्टाइटिस बीमारी भी कहते हैं, आपके पशुओं को हो गई तो वह प्रॉपर दूध उत्पादन में नहीं लौटेगा। इसलिए थनेला बीमारी से बचाव के लिए भी आपको गौशाला में साफ सफाई रखना है, और समय समय पर थनेला बीमारी का पता लगाने के लिए कैलिफोर्निया मेस्टाइटिस टेस्ट, स्ट्रिप कप टेस्ट या स्ट्रिप टेस्ट जो होते हैं, वो भी डॉक्टर की सलाह से आप कराते रहिएगा। और इस बीमारी में HS, BQ, बबेशियोसिस, FMD आदि बीमारियां बहुत तेजी से फैलती हैं, क्योंकि इस सभी बीमारियों के खिलाफ टीके

0: के लिए कैलिफोर्निया में स्टेटस टेस्ट, स्ट्रिप कप टेस्ट या स्ट्रिप टेस्ट जो होते हैं वो भी डॉक्टर की सलाह से आप कराते रहिएगा। और इस बीमारी में HS, BQ, बबेशियोसिस, FMD आदि बीमारियां बहुत तेज़ी से फैलती हैं, क्योंकि इस सभी बीमारियों के खिलाफ टीके हमारे विभाग द्वारा निशुल्क लगाए जाते हैं। अतः आप समय रहते प्री मानसून सीजन में इन बीमारियों का टीका लगवा लें। टीका लगवाने से आपके पशु को कोई बीमारी नहीं होती, यह महज एक भ्रांति मात्र है कि टीका लगवाएंगे तो दूध उत्पादन कम हो जाएगा, जबकि ऐसा नहीं है। अगर आप टीका लगवाएंगे तो आपके पशु कई बीमारियों से बचे रहेंगे, पशु स्वस्थ रहेगा तो जनधन भी स्वस्थ रहेगा। आज की चर्चा में बस इतना ही, नमस्कार।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कृषि चर्चा, ये आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण है और अब समय है अंतराल का।
2: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना, जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना, हर संकट का समाधान है भारतीय सेना, भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: अथ वार्ताः। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना ह्यः गुजरातस्य सानन्दक्षेत्रे सीजी सेमिसंस्थायाः अत्याधुनिकस्य ओसेट् सेमिकण्डक्टर् संयन्त्रस्य उद्घाटनं कृतम्। अत्रावसरे जनसभां सम्बोधयन् प्रधानमन्त्रिणा प्रतिपादितं यत् अयं विकासः भारतस्य प्रगाढ इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांतेः आगामी चरणमस्ति, येन देशः पूर्वमेव विश्वस्य द्वितीयः बृहत्तमः दूरभाष निर्मातृत्वेन समेधितः। सः दृढविश्वासं प्रकटितवान् यत् सानन्दक्षेत्रं वैश्विक सेमीकंडक्टर केन्द्रत्वेन समेधिष्यते।
1: आज का ये कार्यक्रम इस बात का प्रमाण है कि भारत जो ठान लेता है वो करके दिखाता है। 5 साल पहले भारत ने संकल्प लिया था कि देश को सेमीकंडक्टर हब बनाएंगे। हम डिजाइन इन इंडिया, मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़े और आज देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में भी चीप पैकेजिंग का कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो रहा है।
0: तेन गदितं यत् सानन्दं प्रतिवर्षं 20 कोटि चिप्स निर्माणार्थं सज्जमस्ति। तेन 500 कोटि परिमितस्य लक्ष्यनिर्धारणार्थं शुभाशयाः अपि प्रकटिताः। अत्रावसरे केन्द्रीयमन्त्रिणा अश्विनीवैष्णवेन घोषितं यत् 26-2000तमवर्षान्तं यावत् भारते 5 सेमीकण्डक्टर संयन्त्राणि पूर्णतः क्रियाशीलानि भविष्यन्ति। प्रधानमन्त्रिणा जोधपुर विमानपत्तने नूतनस्य टर्मिनल भवनस्यापि उद्घाटनं कृतम्। तदनन्तरं सः बालोत्तरा मण्डलस्य पचपदरा क्षेत्रे देशस्य अत्याधुनिकं ग्रीनफील्ड रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स इत्येतत् राष्ट्राय समर्पितवान्। अत्रांतरे तेन जयपुर मेट्रो द्वितीय चरणस्य शिलान्यासोऽपि कृतः। अवसरेऽस्मिन् प्रधानमन्त्रिणा प्रोक्तं यत् पश्चिम एशिया क्षेत्रस्य संघर्षेण 21तमायाः शताब्द्याः महत्तमः ऊर्जा संकटः समुत्पन्नः, किन्तु भारतेन समयोचित निर्णयैः कूटनीत्या च एषः कालः सम्मुखीकृतः।
1: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
0: श्री मोदी राजस्थान सर्वकारस्य विभिन्न विभागेषु नवनियुक्तेभ्यः 45,000 युवभ्यः नियुक्तिपत्राणि अपि प्रायच्छत्। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमितशाहः सानन्दक्षेत्रे नूतन सीजी सेमी ओसेट् इत्यस्य उद्घाटनं प्राविधिक आत्मनिर्भरतायां भारतस्य अभिनव पदक्षेपः इत्युदीरितवान्। अस्य अत्याधुनिक संयन्त्रस्य उद्घाटनं प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना कृतम्। गृहमन्त्रिणा सामाजिकसञ्जालीयतन्त्रे स्वलेखे प्रकटितं यत् भारतस्य प्रौद्योगिकी महाशक्तित्वेन विकासयात्रायामेषः कश्चन नूतनः कीर्तिस्तम्भः अस्ति। विदेशमन्त्री डॉक्टर एस जयशंकरः अद्य प्रभृति अस्य मासस्य 10 दिनांकं यावत् कतार, बहरीन, कुवैत, ओमान देशानां आधिकारिक यात्रायां भविष्यति। स्वप्रवासकाले विदेशमन्त्री तत्तद्देशीयानां समकक्षनेतृभिः सह शीर्षनेतृत्वेन च सह मेलिष्यति। विदेशमन्त्रालयेन प्रोक्तं यत् अयं प्रवासः एतैः देशैः सह भारतस्य द्विपक्षीयसम्बन्धानां दृढीकरणे विशेषेण केन्द्रितः भविष्यति। संसदः वर्षाकालीनसत्रमस्य मासस्य 20 दिनांकात् अगस्तमासस्य 23-10 दिनांकं यावत् प्रचलिष्यति। संसदीयकार्यमन्त्री किरण रिजिजु सूचितवान् यत् राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः जुलाई मासस्य 20 दिनांकात् संसदः वर्षाकालीनसत्रस्य आह्वानाय सर्वकारस्य प्रस्तावं स्वीकृतवती। आईसीसी महिला 20-प्रति-20 विश्वचषके लंडन नगरस्य लॉर्ड्स क्रीडांगणे इंग्लैंड दलम अद्य अंत्यद्वंद्वे ऑस्ट्रेलिया दलम सम्मुखी करिष्यति। इयं प्रतिस्पर्धा तावत् भारतीय समयानुसारं रात्रौ 8 वादने समारप्स्यते। इति वार्ताः।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल राजस्थान के पचपदरा में 1,00,000

0: शत्रु मृत्यु की पुकार है। अंतराल का समय समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी भोपाल है। संस्कृत में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः जतिन शर्मा।

0: 5,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने जोधपुर हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन भी किया। श्री मोदी ने कहा कि जोधपुर हवाई अड्डे का नया टर्मिनल भवन मारवाड़ क्षेत्र में पर्यटन, व्यापार और रोजगार को बढ़ावा देगा। उन्होंने कहा कि जोधपुर से संशोधित उड़ान योजना शुरू होने से छोटे शहरों और दूर दराज के क्षेत्रों तक हवाई संपर्क बेहतर होगा। श्री मोदी ने कहा कि वर्तमान सरकार राष्ट्र प्रथम के दृष्टिकोण से काम कर रही है और हर क्षेत्र तथा हर नागरिक के विकास पर ध्यान केंद्रित कर रही है। इससे पहले श्री मोदी ने पचपदरा में देश की सबसे आधुनिक ग्रीनफील्ड रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल संयंत्र का लोकार्पण किया। उन्होंने जयपुर मेट्रो के दूसरे चरण की आधारशिला भी रखी। बाद में गुजरात के सांणंद में देश के तीसरे सेमीकंडक्टर संयंत्र की में चिप पैकेजिंग के वाणिज्यिक उत्पादन का शुभारंभ करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इस संयंत्र में प्रत्येक वर्ष 20 करोड़ चिप तैयार होंगी। उन्होंने कहा कि ये विकास भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति का अगला कदम है, जिसने देश को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बना दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया।
1: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी प्रबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज से 10 जुलाई तक कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान की सरकारी यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे इन देशों के विदेश मंत्रियों और नेताओं से मुलाकात करेंगे। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि एथेनॉल कोई नई अवधारणा नहीं है और इसका उपयोग एक सदी से अधिक समय से हो रहा है। राजस्थान में एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री पुरी ने कहा कि सरकार अपने जैव ईंधन मिश्रण कार्यक्रम की रचनात्मक आलोचना का स्वागत करती है। श्री पुरी ने कहा कि भारत में एथेनॉल मिश्रण का विचार सर्वप्रथम पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान शुरू हुआ था। कांग्रेस सरकार के दौरान 10 राज्यों में 5% एथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, लेकिन केवल 1.4% मिश्रण ही हासिल किया जा सका। सरकार ने मूल्य स्थिरीकरण बफर के लिए प्याज के खरीद मूल्य में 13% की वृद्धि की है। प्याज की कीमत अब 1,875 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़कर 2,125 रुपए प्रति क्विंटल हो गई है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा कि संशोधित मूल्य से किसानों को लाभ मिलेगा और बफर खरीद प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होगा और 13 अगस्त तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 20 जुलाई से संसद का मॉनसून सत्र बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। पूर्वी अमेरिका में भीषण लू चल रही है, इससे बिजली आपूर्ति पर भारी दबाव पड़ रहा है और फीफा विश्व कप मैचों की तैयारियों में बाधा आ रही है। अमेरिका के सबसे अधिक आबादी वाले शहर न्यूयॉर्क में तापमान 46 डिग्री सेल्सियस से अधिक होने की आशंका है, जबकि पूर्वोत्तर राज्यों और मध्य अटलांटिक तट पर भी लू की चेतावनी जारी की गई है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में फ्रांस ने अंतिम 16 के मैच में पैराग्वे को 1-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। अब क्वार्टर फाइनल में फ्रांस का सामना मोरक्को से होगा। इससे पहले ह्यूस्टन में मोरक्को ने कनाडा पर 3-0 से शानदार जीत हासिल कर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। इंग्लैंड ने कल मैनचेस्टर में 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला के दूसरे मैच में भारत को 4 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये आकाशवाणी भोपाल है। आइए श्रोताओं, अब हम आपको बता दें आज की सभाओं में प्रसारित होने वाले कुछ खास कार्यक्रमों के बारे में। अब से कुछ ही देर बाद यानी 7:20 पर आप सुनेगा कार्यक्रम नमस्कार भोपाल। इसमें आज आप सुनेंगे

खयात नाम शास्त्रीय गायिका पद्मश्री डॉक्टर अश्विनी भिड़े देशपांडे से एक मुलाकात। इसके अलावा 5 जुलाई को क्षेत्रीय प्राकृतिक संग्रहालय में होने वाले सारस महोत्सव की जानकारी भोपाल बर्ड्स के समन्वयक मोहम्मद खालिद से। ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद प्रारंभ हुए विद्यालयों में बच्चों के मानसिक और शैक्षणिक विकास के संदर्भ में काउंसलर और प्राचार्य डॉक्टर अमिता मिश्रा से चर्चा।

सुबह 8:30 बजे कार्यक्रम सुरमई सवेरा 9:15 पर लोक संगीत के कार्यक्रम में आज आप सुनिएगा बुंदेल सिंह लोधी के गाए बुंदेली लोकगीत। 9:30 पर कार्यक्रम सिंधियत जी सुरहाण और 10 बजे जिले की चिट्ठी। 10:05 पर सामुदायिक गान शिक्षण पाठ, इसमें आज आप सुनिएगा उड़िया गीत। 10:30 पर फिल्म संगीत और 11 बजे फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुनें।

9:15 पर आप सुनिएगा लोक संगीत के कार्यक्रम में आज बुंदेल सिंह लोधी के गाए बुंदेली लोकगीत। दोपहर 12:30 पर कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत धारावाहिक हंसना मना है का चौथा भाग। दोपहर 1:00 महिला कार्यक्रम, योगदान होगा आकाशवाणी शिवपुरी का। 1:30 पर लोक संगीत और 1:45 पर सुगम संगीत, योगदान होगा आकाशवाणी शिवपुरी का। 2:30 पर बच्चों का कार्यक्रम, प्रस्तुति आकाशवाणी भोपाल की। 5:02 पर युवा साथी सुनेंगे युवावाणी कार्यक्रम, योगदान होगा आकाशवाणी शिवपुरी का। शाम 5:33 और शाम 6:00 आप सुनिएगा फिल्म संगीत।

शाम 7:30 पर ICC महिला T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 के अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के मध्य लंदन में खेले जा रहे महिला T20 क्रिकेट मैच का फाइनल मैच आंखों देखा हाल ये प्रसारण आकाशवाणी की दिल्ली से किया जाएगा। श्रोताओं, कुछ खास कार्यक्रम हम आपको पुनः बता देते हैं। अब से कुछ ही देर बाद यानी 7:20 पर आप सुनिएगा कार्यक्रम नमस्कार भोपाल। 9:15 पर लोक संगीत के कार्यक्रम में आज आप सुनिएगा बुंदेल सिंह लोधी के गाए बुंदेली लोकगीत। 12:30 पर कार्यक्रम संग्रहालय के अंतर्गत धारावाहिक हंसना मनाए का चौथा भाग। दोपहर 1:00 महिला कार्यक्रम योगदान होगा आकाशवाणी शिवपुरी का। इसके बाद 1:30 पर आप सुनिएगा लोक संगीत और 1:45 पर सुगम संगीत योगदान होगा आकाशवाणी शिवपुरी का। आज शाम 7:30 ICC महिला T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 के अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के मध्य लंदन में खेले जा रहे महिला T20 क्रिकेट का फाइनल मैच का आंखों देखा हाल ये प्रसारण आकाशवाणी की दिल्ली केंद्र से किया जाएगा। श्रोताओं, ये थे आज की सभाओं में प्रसारित होने वाले कुछ खास कार्यक्रम। ये आकाशवाणी भोपाल है।

0: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सानंद में सेमीकंडक्टर संयोजन और जांच केंद्र का उद्घाटन किया, कहा यह भारत की जबरदस्त इलेक्ट्रॉनिक क्रांति का अगला कदम। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज शिवपुरी में 2,500 करोड़ की लागत वाले अत्याधुनिक रक्षा संयंत्र का शिलान्यास करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा देश का रक्षा निर्यात 38,000 करोड़ रुपये के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा और प्रदेश में मूसलाधार बारिश से कई जिलों में जनजीवन प्रभावित। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल गुजरात के सानंद में अत्याधुनिक सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमी कंडक्टर संयोजन और जांच केंद्र का उद्घाटन किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री श्री मोदी ने विशाल सभा को संबोधित करते हुए कहा कि ये विकास भारत की जबरदस्त इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति का अगला कदम है, जिसने देश को पहले ही दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बना दिया है। प्रधानमंत्री ने इसे विकसित भारत की रूपरेखा और मेक इन इंडिया का दूसरा कदम बताया।
1: मुझे बताया गया है यहाँ से हर साल 20 करोड़ चिप्स निकलेगी और मुझे बताया गया आप सभी यहीं नहीं रुकने वाले हैं। आपने हर साल 500 करोड़ चिप्स का लक्ष्य रखा है, यानी हर दिन 1.5 करोड़ से ज्यादा। मेरा पक्का विश्वास है कि आप उसे बहुत जल्द हासिल करके रहेंगे।
0: केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस वर्ष के अंत तक भारत में 5 सेमीकंडक्टर संयंत्र चालू हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि सानंद संयंत्र में निर्मित चिप्स का उपयोग कारों, स्कूटरों और कई तरह के औद्योगिक कार्यों में किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस केंद्र में निर्मित चिप्स जापान, अमरीका और यूरोप भेजी जाएंगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज शिवपुरी में अडानी समूह द्वारा स्थापित किए जा रहे लगभग 2,500 करोड़ रुपये की लागत वाले अत्याधुनिक रक्षा संयंत्र का शिलान्यास करेंगे। इस परियोजना से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया अभियान के औद्योगिक विकास के विजन को नई गति मिलने की आशा है। केंद्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी इस अवसर पर मौजूद रहेंगे। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि रक्षा क्षेत्र के संयंत्र से इस इलाके में विकास को गति मिलेगी।
2: पुरी में डिफेंस रक्षा क्षेत्र का संयंत्र प्रोपेलेंट गैस और अनेक उपकरणों का 3,000 करोड़ का भूमि पूजन किया जा रहा है। ये एक अपने आप में एक इतिहास रचा जा रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की डिफेंस कॉरिडोर के साथ शिवपुरी को जोड़ा जा रहा है। एक नया इतिहास औद्योगिकरण की सूर्य की किरण के रूप में अब स्थापित होने जा रहा है। इस रक्षा के संयंत्र से हमारे देश के रक्षा करने वाले वीर जवानों को नई टेक्नोलॉजी के अस्त्र शस्त्र मिलेंगे।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि देश का रक्षा निर्यात 38,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। नई दिल्ली में एक निजी कार्यक्रम में श्री सिंह ने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 में ये 1,78,000 करोड़ रुपए से अधिक रहा, जो कि 2014-15 की तुलना में लगभग 3 गुना अधिक है। उन्होंने कहा कि वृद्धि रक्षा विनिर्माण और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण प्रगति और मेक इन इंडिया रक्षा प्लेटफॉर्म पर बढ़ते वैश्विक विश्वास को रेखांकित करती है।
3: आज हमारा डिफेंस प्रोडक्शन मोर देन 1,78,000 करोड़ पहुंच चुका है। 7-8 साल 9 साल पहले तक हमारा यह डिफेंस प्रोडक्शन अप्रॉक्सिमेटली 46,000 करोड़ था। डिफेंस एक्सपोर्ट भी रिकॉर्ड 38,000 करोड़ रुपए से ऊपर पहुंच गया है। और मैं आपको बतलाना चाहूंगा 2013 और 14 में यह केवल 686 करोड़ था, जो आज यह बढ़कर 57 टाइम्स बढ़ चुका है।
0: मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कल इंदौर में कहा कि बूथ लेवल अधिकारी चुनाव आयोग के आधार स्तंभ होते हैं। उन्होंने इंदौर, उज्जैन, देवास, धार और खंडवा जिले के 1,500 से अधिक बूथ लेवल अधिकारियों के साथ सीधे संवाद में कहा कि मध्य प्रदेश में चुनाव कर्मियों और बीएलओ ने मिलकर एसआईआर का काम बहुत अच्छा किया है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त आज ओंकारेश्वर और महेश्वर के धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण करेंगे। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
4: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या newsonair

0: आईआर ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
1: समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने मादक पदार्थों की मांग में कमी लाने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना शुरू की है। ये एक व्यापक ढांचा है जिसका उद्देश्य रोकथाम, जागरूकता पैदा करना, क्षमता निर्माण, उपचार, पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण है। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने कहा कि इन पहलों का उद्देश्य जागरूकता, उपचार, पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण के माध्यम से मादक पदार्थों के दुरुपयोग को रोकना है। उन्होंने मादक पदार्थों के दुरुपयोग से निपटने के लिए केंद्र, राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, संबंधित मंत्रालयों, नागरिक समाज और जनता से सामूहिक तथा समन्वित कार्रवाई का आह्वान किया। स्कूल शिक्षा विभाग ने 5017 नवनियुक्त शिक्षकों के नियुक्ति आदेश जारी कर दिए हैं। इनमें माध्यमिक शिक्षकों के 4067 एवं प्राथमिक शिक्षकों के 950 पदों को नियुक्ति प्रदान की गई है। विभाग द्वारा ये नियुक्ति आदेश 3 और 4 जुलाई को जारी किए गए हैं। स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने सभी चयनित अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने सभी नवनियुक्त शिक्षकों से अपेक्षा की है कि वे अपने दायित्वों का निष्ठा, ईमानदारी और संवेदनशीलता के साथ निर्वहन करते हुए शिक्षा के क्षेत्र में सकारात्मक परिवर्तन लाने का कार्य करेंगे। मुख्यमंत्री दिव्यांगजन शिक्षा प्रोत्साहन योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 31 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। सामाजिक न्याय दिव्यांगजन मंत्री श्री नारायण सिंह कुशवाहा ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश सरकार दिव्यांगजनों को शिक्षा, तकनीकी और गतिशीलता से जोड़ने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री दिव्यांगजन शिक्षा प्रोत्साहन योजना दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षा के मार्ग को सरल और सुलभ बनाएगी। उन्होंने पात्र विद्यार्थियों से समय सीमा के भीतर आवेदन करने तथा जिलाधिकारियों को योजना का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। अब रुख करते हैं मौसम का। प्रदेश में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से कई जिलों में जनजीवन प्रभावित हो गया है। नदियां और नाले उफान पर हैं जिससे कई गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कई जिलों में भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। बड़वानी और खरगोन जिले सबसे अधिक प्रभावित रह सकते हैं जहाँ पर रेड अलर्ट घोषित किया गया है। मौसम विभाग ने इंदौर और जबलपुर संभाग के जिलों में अति भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं देवास, सीहोर सहित 13 जिलों में भारी बारिश होने का अनुमान है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने मैहर जिले के रामनगर ब्लॉक में रीवा बाणसागर और सीधी बाणसागर मल्टीविलेज जल प्रदाय योजना के कार्यों का जमीनी निरीक्षण किया। जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने इंदौर के सावेर में 27 करोड़ की लागत से बनने वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और कॉलेज भवन के निर्माण का निरीक्षण किया। वहीं इंदौर में कल युवा संगम रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। डिंडौरी के बरगांव में आज सुबह 10 बजे से विद्यार्थियों के लिए एक विशेष कैरियर गाइडेंस कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। खंडवा के ओंकारेश्वर के प्रसिद्ध ममलेश्वर मंदिर में विकास कार्यों की तैयारी तेज हो गई है। मंदिर प्रबंधन समिति का गठन किया गया है। आगरमालवा के सुसनेर में सेफ क्लिक 2.0 अभियान के तहत विद्यार्थियों ने नुक्कड़ नाटक के जरिए लोगों को साइबर अपराधों से बचने के तौर तरीके सिखाए। और झाबुआ कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक में आयुष्मान भारत, सिकल सेल और टीबी उन्मूलन के लक्ष्य तय समय में पूरे करने के निर्देश दिए गए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांणंद में सेमीकंडक्टर संयोजन और जांच केंद्र का उद्घाटन किया। कहा, यह भारत की जबरदस्त इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति का अगला कदम। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज शिवपुरी में 2500 करोड़ की लागत वाले अत्याधुनिक रक्षा संयंत्र का शिलान्यास करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, देश का रक्षा निर्यात 38,000 करोड़ रुपये के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा और प्रदेश में मूसलाधार बारिश से कई जिलों में जनजीवन प्रभावित। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: ये आकाशवाणी भोपाल है, प्रस्तुत है कार्यक्रम नमस्कार भोपाल।
2: नमस्कार, रेडियो सेट पर नमस्कार भोपाल ट्यून के तमाम श्रोताओं का स्वागत है। कार्यक्रम में आज आपके साथ हूं मैं संतोष फिलिपोस।

बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम नमस्कार भोपाल में। आज बात करते हैं पर्यावरण की, हरियाली की। धरती की बस यही पुकार, पेड़ लगाओ बारंबार। धरती पर हरियाली हो, जीवन में खुशहाली हो। पेड़ धरती की शान है, जीवन की मुस्कान है। जागरूकता के विभिन्न प्रयासों और चलाए जा रहे वृक्षारोपण अभियान के कारण पेड़ों को बचाने की मुहिम को एक बल मिला है। लेकिन जिस गति से पेड़ पौधे कट रहे हैं, उस अनुपात में वृक्षारोपण और पेड़ों का संरक्षण हम नहीं कर पाए हैं। इस दिशा में विभिन्न पर्यावरणविद अपने अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि धरा पर पेड़ पौधे भरपूर होंगे तो जीवन भी सुगम होगा और मौसम भी हमारे जीवन के अनुकूल होगा। और मौसम प्यारा हो तो इस प्रकृति की छटा को देखकर मन कुछ इस तरह गुनगुना उठता है।

कार्यक्रम का पहला नगमा हमने लिया फिल्म मधुमती से। मुकेश की आवाज शैलेंद्र ने लिखा और सुरों से सजाया सलील चौधरी ने। आप सुन रहे हैं नमस्कार भोपाल संतोष फिलिपोस के साथ।

0: आपने ट्यून किया आकाशवाणी का लोकप्रिय कार्यक्रम नमस्कार भोपाल। समय हुआ है 7:24, क्या कुछ खास होगा नमस्कार भोपाल में हम आपको बताएंगे। आगे बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए नमस्कार भोपाल। लेते एक छोटा सा अंतराल।
1: नमस्कार, मैं हूं अनूप जलोटा और आप सुन रहे हैं बहुत ही लोकप्रिय कार्यक्रम नमस्कार भोपाल।
0: और आज के नमस्कार भोपाल में क्या कुछ खास है हम आपको बता दें। नमस्कार भोपाल में आज हमने मशहूर शास्त्रीय गायिका पद्मश्री डॉक्टर अश्विनी भिड़े देशपांडे से की है एक मुलाकात।

0: और हम बातचीत करेंगे आज प्रारंभ होने वाले सारस फेस्टिवल की, और इसकी जानकारी हमने हासिल की है भोपाल बर्ड्स के मोहम्मद खालिक से। ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद जो विद्यालय प्रारंभ हुए हैं उसमें बच्चों के मानसिक और शैक्षणिक विकास के संदर्भ में हमने बातचीत की है काउंसलर और प्राचार्य श्रीमती अमिता मिश्रा से। इसके अलावा नमस्कार भोपाल में गीत संगीत और जानकारियां। फिलहाल नजर डालते हैं अखबारों में, देखते हैं किन खबरों को अखबारों ने अपनी सुर्खियां बनाया है। एक अखबार शीर्षक के साथ लिखता है कि पायरेटेड कंटेंट वाले ग्रुप चैनल टेलीग्राम से हटेंगे, केंद्र की सख्ती, 15 दिन में नहीं हटाए तो होगी कार्रवाई। और कुछ अखबारों ने संसद के मानसून सत्र के प्रारंभ होने की खबर को अपनी सुर्खियां बनाया है। एक अखबार लिखता है 20 जुलाई से शुरू होगा संसद का मानसून सत्र। अखबार आगे लिखता है कि संसद का आगामी मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होकर 13 अगस्त तक चलेगा। केंद्र सरकार की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दोनों सदनों की बैठक बुलाने को आधिकारिक स्वीकृति दे दी है। और खेल जगत की एक उपलब्धि खबर को लगभग सभी अखबारों ने चित्र सहित प्रकाशित किया है। एक अखबार लिखता है 15 साल की उम्र में डेब्यू कर वैभव ने रचा इतिहास, पीछे छोटे सचिन तेंदुलकर और शेफाली वर्मा। भारत और इंग्लैंड के बीच T20 सीरीज के दूसरे मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी को भी मौका मिला है। शनिवार 4 जुलाई को मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड में आयोजित मुकाबले में वैभव ने मैदान पर उतरते ही इतिहास रच दिया। और मध्य प्रदेश में पुलिस भर्ती बोर्ड के गठन की खबर को लगभग कुछ अखबारों ने अपनी सुर्खियां बनाया है। मुख्यमंत्री ने दी हरी झंडी। और बड़े तालाब के लिए अथॉरिटी बनाने की तैयारी, अतिक्रमण पर तहसीलदार जुर्माना लगा सकेंगे। डिजिटल मैपिंग से तय होगा वेटलैंड का 50 मीटर बफर जोन। और अंत में मौसम पर नजर डालते हैं। बंगाल की खाड़ी में बने लो प्रेशर एरिया और सक्रिय मानसून टर्फ के कारण प्रदेश में बारिश का दौर जारी है। शनिवार को भी भोपाल समेत प्रदेश के कई जिलों में जोरदार बारिश हुई। और इसी के साथ सुर्खियों का ये क्रम यही समेटते हैं। बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए नमस्कार भोपाल। लेते हैं एक अंतराल।
1: नमस्कार, मैं हूं कुणाल गांजावाला और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का कार्यक्रम नमस्कार भोपाल।

श्रोताओं, जैसे कि हमने आपको बताया कि हम आज बातचीत करेंगे ख्यातनाम शास्त्रीय गायिका पद्मश्री डॉक्टर अश्विनी भिड़े देशपांडे से, जो हाल ही में भारत भवन के कार्यक्रम गायन पर्व के सिलसिले में राजधानी भोपाल आई थी। आइए सुनते हैं।

0: नमस्ते, मैं हूँ अश्विनी भिड़े देशपांडे और आप मुझे सुन रहे हैं नमस्कार भोपाल कार्यक्रम में।
1: डॉक्टर अश्विनी भिड़े, नमस्कार भोपाल में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
0: नमस्ते।
1: शास्त्रीय संगीत से आप लंबे वर्षों से जुड़ी हैं, जयपुर के अतरौली घराने से जुड़ी हैं। जानना चाहेंगे आपके सांगीतिक सफर के बारे में।
0: जी, अन्य सभी बच्चों की तरह मैं जब से स्कूल में जाना शुरू किया तो मेरे घर में संगीत था। संगीत प्रेमी परिवार में मेरा जन्म हुआ और घर में सभी लोग, जॉइंट फैमिली में मैं पली बढ़ी, तो माता पिता से लेके दादा दादी और दो बुआ मेरी, सरला भिड़े, मुक्ता भिड़े, तो सब लोग म्यूजिक से लगाव रखते थे और सबकी अपनी रोज की जिसको रियाज कहते हैं वो चलता रहता था। तो इस माहौल में मैं बड़ी हुई और जब से समझ पकड़ी तब से मेरी शिक्षा, सांगीतिक शिक्षा शुरू हुई पंडित नारायण राव दातार के पास। तो उनके पास मैंने काफी लंबे समय तक शिक्षा पाई, उनके साथ मैंने संगीत विशारद पूरा किया। लेकिन जो संगीत की दुनिया में जो घरानेदार गायकी के नाम से जाना जाता है, स्टाइलाइज्ड गायकी की शिक्षा, वो मैंने अपनी माँ श्रीमती माणिक भिड़े से ली और उसके बाद वही मेरी माँ ही मुझे मेरे घराने के अन्य एक बुजुर्ग, मेरे तीसरे गुरुजी पंडित रत्नाकर पाई जी मिलने के लिए लेकर गई। फिर उनके पास मेरी एडवांस ट्रेनिंग हुई म्यूजिक की।
1: एक और खास बात आपसे जुड़ी हुई, आप शास्त्रीय संगीत में तो आपने योगदान दिया है, लेखन से भी जुड़ी हैं, तो किस तरह से रिलेट करते हैं गायन और लेखन को, किस तरह से आपके मन में आएगी इसके साथ मेरा जुड़ाव इसमें भी है?
0: ये कहना मुश्किल है क्योंकि मेरा आई थिंक ये बचपन से ही अच्छा लगता है साहित्य, अच्छा साहित्य, और जैसे पोइट्री हो या फिर मेरे पास हमेशा किताब पढ़ी रहती है तो कुछ पढ़ना और फिर बाद में जब लिखना। अपनी बंदिशों की लिखाई मैंने सबसे पहले शुरू की, पर मुझे आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरी एक्सप्रेशन का ही, सेल्फ एक्सप्रेशन का ही और एक तरीका है। जैसे संगीत होता है कि अपने स्वयं का प्रकटीकरण, उसी हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि लेखन में भी मैं वो समाधान पाती हूँ जो संगीत से मुझे मिलता है।
1: आकाशवाणी जो है, शास्त्रीय संगीत हो चाहे लोग जो परंपराएं उसको आगे बढ़ाने का काम करते हैं, किस तरह से देखते हैं आप? इतने सालों से आपने योगदान दिया शास्त्रीय संगीत से जुड़े हुए, आकाशवाणी की भूमिका को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे?
0: वेल, एक जमाने में तो आकाशवाणी ही था और कुछ था भी नहीं। माने मेरी माँ के कालखंड की अगर हम बात करें तो उनके लिए सिर्फ गाना सुनने का साधन एक ही था और वो था रेडियो, आकाशवाणी, ऑल इंडिया रेडियो। तो जब मैं बड़ी हो रही थी तो कैसेट का उदय हुआ था, फिर सीडी आई, फिर अब तो इजीली अवेलेबल हो गया है यूट्यूब और इंटरनेट और डाउनलोड्स के माध्यम से। आप दुनिया में कहीं भी कुछ भी, अगर कहीं भी म्यूजिक बनाया जा रहा है तो उसको आप सुन सकते हैं, उसको डाउनलोड करके अपने पास रख के बार बार दोहरा के सुन सकते हैं। लेकिन कभी ये था नहीं, पहले के ज़माने में सिर्फ और सिर्फ आकाशवाणी ने लोगों की, मैं कहूँगी कि उनकी जो अभिरुचि है उसको बढ़ाने का, उसको संपन्न करने का बहुत बड़ा योगदान आकाशवाणी ने दिया है।
1: बात करते हैं वर्तमान में शास्त्रीय संगीत की, जो कलेवर है या जो बड़ी परिवर्तन हुआ, इसमें थोड़ा एक मिश्रण भी हुआ और नए जो हमारे सीखने वाले विद्यार्थी हैं उनको लेकर क्या परिवर्तन देखते हैं आप?
0: देखिए, परिवर्तन होना बहुत स्वाभाविक भी है, जरूरी भी है, क्योंकि मैं समझती हूँ कि अगर हमारे जीवन शैलियों में भी तो परिवर्तन आ गया है ना, तो उस हिसाब से अगर हम हमारी कला को नहीं बदलेंगे तो फिर आज, अगर आज के समय पर 100 साल या 200 साल पुराना संगीत मैं सुनाना

0: शुरू करूं, तो वो असमय होगा। मुझे बदलते समय के साथ बदलना ही चाहिए, और सिर्फ मुझे ही नहीं, हर एक कलाकार की यह ज़रूरत है। क्योंकि मैं मानती हूँ कि संगीत या और कोई भी कला जिसका प्रदर्शन जो है वो उसके लाइफ एक्सपीरियंस से बहुत जुड़ा हुआ है, बहुत क्लोजली रिलेटेड है, तो उन अनुभवों का ही चित्रण और उनका ही रिफ्लेक्शन आपके कला में आता है। तो जब कला जीवन ही बदल गया है तो कला में उसका रिफ्लेक्शन बदलेगा ही।
1: पद्मश्री डॉक्टर अश्विनी भिड़े देशपांडे, जो ऐसे शास्त्रीय गायिका जिनके अनेक फैन हैं, आप अनेक हजारों लोगों के मेंटर हैं, लेकिन हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपको किसने सबसे ज्यादा प्रभावित किया, शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र हो या फिल्म संगीत का क्षेत्र हो?
0: देखिए, आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट टू हैव बीन बॉर्न इन अ टाइम वेन ऐसे ऐसे दिग्गज मुझे देखने को मिले, सुनने को मिले। मतलब आई वॉज बॉर्न इन अ टाइम वेन देवर एक्टिव, जिनका नाम मैं लेना चाहूँगी तो मेरी सबसे पहले मेरी दादा गुरु श्रीमती किशोरी आमोणकर जी, और उनकी माँ श्रीमती मोगूबाई जी, और मेरे घराने के अन्य बहुत सारे नाम मैं ले सकती हूँ, लेकिन ये भी ज़रूरी है कहना कि लता दीदी या फिर रविशंकर जी, ऐसे ऐसे दिग्गजों को मैंने सामने से देखा, उनकी कला को प्रदर्शित होते हुए सुना। भीमसेन जी है, जसराज जी है, कुमार जी हैं बहुत बड़े, तो ये सारे जिसको हम मैं कहना चाहूँगी कि गोल्डन एरा को मैंने देखा है, और इसके लिए मैं खुद को बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ।
1: पद्मश्री जैसा गौरवपूर्ण सम्मान आपको हासिल हुआ, अब कितनी और अधिक चुनौती और जिम्मेदारी आप समझती हैं कि शास्त्रीय संगीत में आपकी और अधिक बढ़ जाती है?
0: मेरा जो क्षेत्र है संगीत और वोकल कंठ संगीत का जो क्षेत्र है, वो मुझे आए दिन नए नए चैलेंजेस और नए नए जिसको कहना चाहिए सौंदर्य स्थल दिखाता रहता है, तो उनको पाना, उनको पाने की कोशिश करना, ये इसी में मेरा आनंद समाया हुआ है, न कि पुरस्कार और अवार्ड्स और इनके।
1: तो जो नए हमारे विद्यार्थी शास्त्रीय संगीत से जुड़ रहे हैं, संगीत सीखना चाहते हैं, शास्त्रीय संगीत से जुड़ना चाहते हैं, तो उनको क्या कहना चाहेंगे संक्षिप्त में आप?
0: बस इतना ही मैं कहूंगी कि जब मैंने सीखना शुरू किया तो मेरे घर वालों ने कभी मुझे ये नहीं कहा कि इसको आप सीख लो क्योंकि आप इसका करियर बना सकते हो, ये नहीं कहा कभी उन्होंने। हालांकि सभी लोग म्यूजिक के क्षेत्र से जुड़े हुए थे और मन ही मन में चाहते भी होंगे कि अपनी घर की बेटी संगीत में कुछ कर पाए, लेकिन किसी ने मुझे मेरे ऊपर ये दबाव नहीं डाला कि आप इसी को चुनो। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि जो करना चाहते हैं म्यूजिक के क्षेत्र में, वो इसी मानसिकता से करें कि इसमें मुझे आनंद पाने का प्रयास करना है, न कि कोई गोल चढ़ने का या कोई सम्मान प्राप्त करने का, ये मुझे गोल नहीं रखना है।
1: हजारों आपकी रचनाएं पसंदीदा होगी, हम चाहेंगे एक लाइन अरे श्रोताओं को जरूर सुना दें।
0: मैं एक लाइन सुना के मेरी संतुष्टि नहीं होने वाली,
1: जी
0: लेकिन आज जब से आई हूँ भोपाल, सुबह से बारिश चल
1: बारिश
0: रही
1: के
0: है
1: लिए,
0: लगातार, तो इसके लिए मैं दो लाइनें गा रही हूँ आपके
1: जी
0: लिए।
1: जी
0: सो मेघ मल्हार एक राग है,

0: हम बातचीत कर रहे थे ख्यातनाम शास्त्रीय गायिका पद्मश्री डॉक्टर अश्विनी भिड़े से उनके सांगीतिक सफर के बारे में।
1: मैं हूं पंडित यशपाल शास्त्रीय गायक, आप सुन रहे हैं नमस्कार भोपाल।

श्रेया घोषाल की आवाज़ में आप सुन रहे हैं फिल्म कबीर सिंह का ये नगमा। इरशाद कामी ने लिखा और सुरों से सजाया अमान मलिक ने। आप सुन रहे हैं नमस्कार भोपाल संतोष फिलिपोस के साथ।

0: श्रोताओं, क्षेत्रीय प्राकृतिक संग्रहालय में आज सारस महोत्सव होने जा रहा है और इस महोत्सव की जानकारी हमने हासिल की भोपाल भट्ट के समन्वयक मोहम्मद खालिक से।
1: इसकी सोच ये है कि जो सारस पक्षी है वो एक संकटग्रस्त प्रजाति है और लगभग एक दशक से जो है सारस क्रेन को लेके भोपाल के भोजताल में काम चल रहा है उनके संरक्षण का, और जिससे उनकी जो है संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है। तो किस तरीके से भोपाल की जनता को बताया जाए कि सारस पक्षी क्या है, उसका संरक्षण कैसे करना है और इस संकटग्रस्त जो प्रजाति है उसको किस तरीके से बचाया जा सके, इसको लेकर पिछले 2 सालों से जो है हम लोग सारस फेस्टिवल आयोजित करते हैं लगभग मानसून के ही समय, क्योंकि इस समय बहुत अच्छा आपको देखने को भी मिलते हैं सारस क्रेन हर जगह, वो नृत्य भी करते हैं जो एक आकर्षण रहता है सभी के लिए, और जो है उनको बचाने का प्रयास भी कैसे करें। तो वो सभी तरीके के यंग लोग हैं या फोटोग्राफर्स हैं या जो हैं बच्चे हैं पढ़ने जाने वाले कॉलेज के बच्चे हैं, सब एक संयुक्त प्रयास कैसे करें कि सारस को भोपाल में बचाया जा सके।
0: नेशनल म्यूजियम सेंटर में आप जो सारस फेस्टिवल आयोजित कर रहे हैं इसमें क्या कुछ खास होगा, किस तरह से श्रोता जुड़ सकेंगे और सारस को संरक्षित करने की दिशा में जागरूक हो सकेंगे?
1: जी देखिए, जो इस साल जो है हमने कोशिश करी है कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेजेस के बच्चे जो हैं आ सकें उसमें, क्योंकि क्या है कि जो यंग जनरेशन है वो अगर किसी चीज़ को देखती है समझती है तो उसका भी इम्पेक्ट बहुत बड़ा होता है। तो कॉलेज के बच्चे तो आएंगे ही, साथ साथ आम जनता जो है, जो हमारा फोटो एग्जीबिशन है उसमें, तो उसको आके देख सकती है। उसमें जो है लगभग पूरे देश के लगभग 25 फोटोग्राफर्स के जो हैं चित्र डिस्प्ले किए गए हैं सारस क्रेन के, तो वो आके देख सकते हैं। और दूसरा वहाँ पे सेल्फी पॉइंट है जहाँ पे सारस रखे गए हैं, तो मतलब कृत्रिम सारस जो हैं, सारस की स्टैचू हैं, ऐसे सेल्फी पॉइंट्स भी हैं, लोग आके फोटोग्राफ भी वहाँ पे खींच सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे आकर्षण हैं, साथ साथ में नुक्कड़ नाटक भी उस दिन होगा और दूसरी गतिविधियाँ भी होंगी जिसको जो है वो लोग आके देख सकते हैं।
0: ये सारस जो पक्षी है उसको संरक्षित करने की दिशा में आप लोग एक महत्वपूर्ण प्रयास कर रहे हैं, क्यों जरूरी है, किस तरह से पर्यावरण के लिए सारस का एक महत्वपूर्ण योगदान है?
1: बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि जैसे मान के चलिए कि खेतों में जब सारस आते हैं तो जो कीड़े खाते हैं या जो दूसरे तरीके के घोंगी हैं, सिप्पियाँ हैं, सांप हैं, चूहे हैं आदि, इन सब चीज़ों को तो खाते ही हैं। साथ में क्या है कि ये जो है मिट्टी की उर्वरक क्षमता को भी बढ़ाते हैं, क्योंकि मिट्टी भी खोदते रहते हैं, ये मिट्टी भी निकालते हैं, और उससे क्या है खेतों में उर्वरक क्षमता तो बढ़ती है, साथ साथ में चूहे आदि को भी ये लोग पेस्ट कंट्रोल करते रहते हैं। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है वो जो सारस क्रेन निभा रहे हैं हमारे लिए।
0: जैसे कि आप लोग खालिक जी प्रयास कर रहे हैं सारस के प्रति लोगों को जागरूक कर रहे हैं, किस तरह के परिणाम सामने आ रहे हैं? अभी सारस की यदि हम स्थिति देखें तो क्या सुधार आया है?
1: देखिए बहुत अच्छी सुधार है, जैसे हम देखते थे कि लगभग 12 से 24 जो है सारस पक्षी दिखते थे भोज वेटलैंड में पिछले 12 साल पहले, जो हमने संख्या देखी 2019-20 में वो 300 थी, तो हम

0: खुद ही देख के उसको बहुत खुश हुए कि लगभग 300 संख्या यहाँ बढ़ गई। और आज जो भी आता है मतलब दुनिया और देश के कोने कोने से लोग सारस की फ़ोटो खींचने भोज वेटलैंड में आते हैं। तो हम देख रहे हैं कि इसकी संख्या भी निरंतर बढ़ रही है, और ये भी देख पा रहे हैं हम कि इनके वयस्क भी दिख रहे हैं, मतलब ये कहीं ना कहीं अपना प्रजनन भी कर रहे हैं, इनके बच्चे भी हो रहे हैं, तो काफ़ी अच्छी संख्या है। और ये पूरा प्रयास जो है वो आसपास के रहने वाले ग्रामीणों ने भी किया है, क्योंकि कम्युनिटी के साथ हमने एक मुहिम चलाई थी सारस मित्र, जिसके आज ये सफल परिणाम देखने को मिल रहे हैं। और इसी को सेलिब्रेट करने के लिए पिछले 2 साल से भोपाल बर्ड्स और क्षेत्रीय प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय, VNS इंस्टीट्यूट, ये सब मिलके एक कार्यक्रम करते हैं, जिसका हमने नाम जो है वो भोपाल सारस फेस्टिवल दिया है।
1: सारस पक्षी के संरक्षण की दिशा में खासतौर पर चुनौतियाँ क्या आ रही हैं, किस तरह से चुनौतियाँ हैं जो हमें बहुत मजबूर करती हैं कि हमें संरक्षण करना चाहिए?
0: देखिए, जैसे ही वो संकटग्रस्त प्रजाति तो है ही है, और बहुत सारी चुनौतियां हैं जिसको अभी केवल भोपाल या मध्य प्रदेश में नहीं, अगर सारस के संरक्षण की बात करी जाए तो पूरे भारत में है। तो वो चुनौतियां कई तरीके की हैं, जैसे हमको शिकार पे कंट्रोल करना पड़ेगा, और जो बढ़ती मानव आबादी है तो उनके हैबिटेट ख़त्म हो रहे हैं, उसको हमको देखना पड़ेगा। साथ साथ में हम देख रहे हैं कि जो विंड मिल्स लगा रहे हैं या इलेक्ट्रिक के वायर्स हैं ऊंचे, उनको देखना पड़ेगा, क्योंकि वो काफ़ी बड़ा पक्षी है, तो कहीं ना कहीं उनकी जान को उससे भी खतरा होता है। तो ये सब, और दूसरी बात, जो हम पेस्टिसाइड डाल रहे हैं खेतों में, इंसेक्टिसाइड डाल रहे हैं, क्योंकि ये खेतों में ही रहते हैं, वहीं प्रजनन करते हैं, तो इस तरीके की बहुत सारी चीज़ों को हमको देखना पड़ेगा, जिससे हम जो है वो सारस का संरक्षण कर सकें।
1: तो आज चूंकि आप लोग 5 जुलाई को सारस फेस्टिवल मना रहे हैं, तो जो हमारे श्रोता सुन रहे हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे कि लोग जुड़े भी और इस दिशा में जागरूक हों?
0: जी, जैसे एक हम तो एक की स्पीसी का उत्सव मना रहे हैं, मगर ये इसलिए है कि आम जनता को पता चल सके कि सारस क्या है, भोपाल में उसकी स्थिति क्या है, या पूरे इंडिया में उसकी स्थिति क्या है। तो इस तरीके के लोग जागरूक हों और जुड़ें, क्योंकि केवल सारस नहीं, हम देख रहे हैं कि आज आम पक्षी, गौरैया नहीं है, कौवे नहीं दिख रहे हैं, तो ऐसे करके कल भविष्य में ऐसा ना हो कि सभी पक्षी संकटग्रस्त हो जाएं। तो इसके लिए हमको आज से ही जागरूक होना पड़ेगा, और हमको एकजुट होकर इनके संरक्षण के प्रयास करने पड़ेंगे।
1: राजधानी में होने वाले सारस फेस्टिवल की जानकारी हमें दे रहे थे भोपाल बर्ड्स के मोहम्मद कलीक, और उम्मीद है कि आप लोग भी अधिक से अधिक संख्या में इस मुहिम में जुड़ेंगे।
2: नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, मैं हूं बिनाज मसानी, और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्कार भोपाल।

मासूम फिल्म का ये नगमा है, भूपेंद्र और सुरेश वाटकर की आवाजें। लिखा है गुलजार ने और सुनो से सजाया आर डी बर्मन ने। आप सुन रहे हैं नमस्कार भोपाल।

0: ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद विद्यालय प्रारंभ हो गए हैं और बच्चों के मानसिक और शैक्षणिक विकास में किस तरह से हम अपनी भूमिका निभा सकते हैं, हमने बातचीत की काउंसलर और प्राचार्य श्रीमती डॉक्टर अमिता मिश्रा से।
1: पहले दो दो तीन तीन महीने की छुट्टियां बच्चों को दी जाती थी, अब वो छुट्टियां कम होके एक महीना हो गई है। उसमें भी हॉलिडे होमवर्क बच्चों को दे दिया जाता है, तो बच्चे पढ़ाई से दूर हो ही नहीं पाते, और जब तक उनको रिलैक्स होने का टाइम मिलता है तब तक स्कूल दोबारा शुरू हो जाते हैं। तो बच्चों के अंदर थोड़ा टेंशन का माहौल तो रहता है कि क्योंकि अब CBSE का जो करिकुलम है वो भी काफ़ी स्ट्रिक्ट हो गया है, तो और बहुत सारी नई नए कोर्सेज भी आ रहे हैं जिनमें बच्चों को स्किल डेवलपमेंट के हैं, बाकी सारे हैं, तो बच्चों को रिलैक्सेशन का टाइम तो बिल्कुल भी नहीं मिल पाता। लेकिन उसके साथ ये होता है कि जो घर में रहकर बच्चा थोड़ा आराम से उठ रहा है, सो रहा है, खा रहा है, पी रहा है, उसमें जरूर थोड़ा ब्रेक लगता है स्कूल आने के कारण, बट इन ऑल बच्चों में एक उत्साह देखा जाता है क्योंकि उन्हें भी लगता है कि अभी बिल्कुल बिना बेमतलब वाली जिंदगी जी रहे थे, अब थोड़ा सा लाइफ को एक उनको एक डायमेंशन मिल जाता है कि सुबह जल्दी उठना है, दोस्त मिलेंगे उनसे मिलना है, टीचर्स मिलेंगे हंसेंगे बोलेंगे, क्योंकि आजकल के माँ बाप की भी जिंदगी बहुत यू नो बिजी है, तो उसमें क्या होता है कि पेरेंट्स भी अगर बच्चों की गर्मियों की छुट्टियां हैं तो पेरेंट्स भी उनको समय नहीं दे पाते, तो माता पिता जब दोनों घर से बाहर निकल जाते हैं नौकरी के लिए तो बच्चे घर में अकेले रह जाते हैं, या फिर बहुत लिमिटेड टाइम के लिए हॉलीडेज पे एक हफ्ता या 10 दिन के लिए जाते हैं और फिर वापस अपने बैक टू रूटीन आ जाते हैं, बट बच्चे को तो महीना भर घर में रहना है। तो मुझे ऐसा लगता है क्योंकि हमने देखा भी है बच्चों को कि स्कूल आते बच्चे बहुत खुश दिखते हैं, उत्साह दिखता है उनके अंदर।
2: लेकिन कौन कौन से ऐसे सावधानी बरतना चाहिए पेरेंट्स को, खासतौर पर ट्रांसपोर्टेशन को लेकर और बच्चों में किसी तरह का पढ़ाई को लेकर तनाव न हो, किस तरह से आप उनको सलाह देना चाहेंगे?
1: पेरेंट्स को अपने बच्चों को थोड़ा ज्यादा समय और अंडरस्टैंडिंग देनी चाहिए। मैं एक काउंसलर भी हूँ तो मुझे आजकल ऐसा लगता है कि माता पिता को अपने बच्चों को थोड़ा ज्यादा समय देना चाहिए जिससे आप बच्चों को बेहतर समझ पाए। हर उम्र के बच्चे हैं, उनकी अलग अलग नीड्स होती हैं और माता पिता क्योंकि समय नहीं दे पाते, माता पिता बाहर काम कर रहे हैं, वो थके हारे घर में आते हैं, उनके पास समय नहीं है बच्चों से बात करने के लिए, तो फिर बच्चा बेचारा थोड़ा अकेला फील करता है इस चीज को लेकर। दूसरा, कभी कभी जो प्राइवेट गाड़ियां हैं उनका भी आजकल क्योंकि स्कूल्स का भी एक लिमिटेड एरिया है जहां तक वो अप्रोच कर सकते हैं, तो जैसे इंटरनल एरियाज हैं जहां पर बड़ी बड़ी बसें नहीं जा सकती तो वहां पर वैन्स वगैरह जाती हैं, तो उसमें पेरेंट्स को थोड़ा रखना देखना चाहिए कि ना कुछ जैसे एरिया जहां पर अप्रोचेबल है वहां तक बच्चों को पहुंचा दें, क्योंकि गाड़ियां बहुत भर के आती हैं। एक छोटी सी वैन में जिसमें 6 सीटर या 7 सीटर या 8 सीटर 9 सीटर की व्यवस्था है उसमें 15-15 बच्चे भर के आते हैं। बच्चे तो ठीक है, साथ में उनके इतने भारी भारी बस्ते भी होते हैं, तो आप मानिए कि एक व्यक्ति की जगह वो 2 व्यक्ति हो जाते हैं, तो 15 की जगह वो 30 लोग हो जाते हैं। तो पेरेंट्स को थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए कि आप जब भी अपने बच्चों को भेजें तो जो ऑथराइज्ड जो स्कूल का ट्रांसपोर्टेशन है उसी से बच्चों को स्कूल भेजा जाए, और प्राइवेट वैन भी अगर आप करते हैं तो आप जो भी उनका ओनर है आप उससे बात करें कि आप इतने बच्चों से ज्यादा नहीं बैठाएंगे गाड़ी में।
2: अब धीरे धीरे उनका करिकुलम चालू होगा पढ़ाई का, तो किस तरह से आप हमारे पेरेंट्स को टिप देना चाहेंगे कि वो बच्चों के साथ एक ऐसा माहौल बनाए कि वो पढ़ाई को तनाव में न ले बल्कि एक जज्बे के साथ आगे बढ़े?
1: देखिए, पढ़ाई जो है वो बच्चों के लाइफ का एक छोटा हिस्सा है, वो जिंदगी नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि हमेशा बच्चों से सिर्फ पढ़ाई के बारे में बात करते रहने से बच्चे के अंदर पढ़ाई को लेकर थोड़ा एफिनिटी डेवलप होता है, तो बच्चा उससे दूर भागता है। वो ये एक्चुअली ह्यूमन बिहेवियर है कि हम जिस चीज को लेकर ज्यादा जिद करते हैं, ज्यादा थोपा थापी करते हैं ना, उससे व्यक्ति दूर हटता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि पढ़ाई के साथ साथ अगर हम बच्चे को एक अच्छा इंसान, एक अच्छा व्यक्ति बनाने में कोशिश करें, और इनफैक्ट क्योंकि ये जो सीख है ये माता पिता से ही शुरू होती है क्योंकि वही बच्चे का पहला घर है, तो बच्चे हमेशा पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई ना करते हुए हम एक अच्छे संस्कारी बच्चे बनाने की कोशिश अगर करते हैं तो मुझे लगता है माता पिता के लिए बहुत जरूरी है। वो क्वालिटी टाइम बच्चों को दीजिए। पेरेंट्स थके हारे घर में आते हैं, फिर अपने फोन कॉल्स में लग जाते हैं, फिर टीवी में लग जाते हैं, उनकी खुद की लाइफ है, वो उसे एंजॉय करना चाहते हैं अपने दोस्तों के साथ, लेकिन बच्चा इस चीज में नेगलेक्ट होता है। और मुझे लगता है कि आजकल बीइंग अ काउंसलर में देख रही हूं कि आजकल बच्चों के अंदर जो ये एक्टिविटीज बढ़ रही हैं, डिप्रेशन बढ़ रहा है, ये सब सिर्फ इसी कारण है क्योंकि उनके ऊपर घर से पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। स्कूल एक ऐसी जगह है जहां पर पढ़ाई के अलावा और कुछ भी नहीं होता, वहां पर मोबाइल्स अलाउड नहीं होते, वहां पर और कोई रिक्रिएशन की जगह नहीं होती कि आप मोबाइल चला लो कि आप टीवी देख लो। ठीक है, दैट इज अ पार्ट ऑफ करिकुलम, अब हो गया है स्मार्ट क्लासेस वगैरह, बट वहां पर भी टीचर्स प्रेजेंट रहते हैं, तो स्कूल का इन सब चीजों में योगदान कम है। मतलब ये जो डिप्रेशन हो रहा है, सुसाइड हो रहा है।

0: है, इनमें योगदान, इसमें एक्चुअली फैमिली एटमॉस्फेयर बहुत बहुत कंट्रीब्यूट करता है।
1: बच्चों के मानसिक और शैक्षणिक विकास के बारे में हम बातचीत कर रहे थे काउंसलर और प्राचार्य डॉक्टर अमिता मिश्रा से।
2: मैं हूं इला अरुण और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का कार्यक्रम नमस्कार भोपाल।

फिल्म का नाम है जांबाज। मनहर और साधना सरगम की आवाज में आप सुन रहे हैं ये नगमा। इंदीवर ने लिखा और सुरों से सजाया कल्याण चारण जी ने। आप सुन रहे हैं नमस्कार भोपाल, संतोष फिलिपोस के साथ।

और इसी नगमे के साथ आज का नमस्कार भोपाल कार्यक्रम समाप्त करने की इजाजत दीजिए संतोष फिल्पोस को। फिर मुलाकात होगी एक नई प्रस्तुति के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नमस्कार भोपाल। ये आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण है। समाचार प्रभात आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरी और तीसरी श्रेणी के शहरों में हवाई यात्रा को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना विकसित उड़ान का अगला चरण शुरू किया। सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने और कीमतों पर नियंत्रण के लिए प्याज का खरीद मूल्य 13% बढ़ाकर 2,125 रुपए प्रति क्विंटल किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा से पहले ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने प्रमुख आर्थिक साझेदार के रूप में भारत की सराहना की। देश के अधिकांश हिस्सों में अगले कुछ दिन तक वर्षा जारी रहने का अनुमान और फ्रांस और मोरक्को फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरे और तीसरे श्रेणी के शहरों तथा

0: दराज के क्षेत्रों में हवाई यात्रा को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना विकसित उड़ान का अगला चरण शुरू किया है। श्री मोदी ने कल राजस्थान के जोधपुर हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल भवन का भी उद्घाटन करते हुए कहा कि भारत के नागर विमानन ढांचे और क्षेत्रीय संपर्क को बढ़ावा मिला है।
1: उड़ान योजना के नए चरण की भी शुरुआत हुई है। इसके तहत छोटे छोटे शहरों और दूर दराज के क्षेत्रों को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। साथ ही अब जयपुर में मेट्रो का विस्तार भी होने जा रहा है।
0: इस अवसर पर नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा कि विकसित उड़ान योजना के शुरू होने से भारत के क्षेत्रीय संपर्क का अगला अध्याय शुरू होगा। श्री नायडू ने कहा कि 28,840 करोड़ रुपए से अधिक के बजट के साथ शुरू की गई ये योजना दूसरे और तीसरे श्रेणी के शहरों में हवाई संपर्क मजबूत करेगी। जोधपुर हवाई अड्डे पर श्री नायडू ने कहा कि इस विश्व स्तरीय सुविधा से मारवाड़ क्षेत्र में हवाई संपर्क मजबूत होगा और साथ ही राजस्थान में पर्यटन, व्यापार और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।
2: और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सोच है, जहाँ पे भी सिविल एविएशन का विस्तार होगा उसका प्रभाव सिर्फ यात्रियों पे नहीं पर उसके पूरे शहर के इकोनॉमी पे, के वहाँ पे बिजनेस पे, विद्यार्थियों पे, हर क्षेत्र के वर्ग को, हर नागरिक को उसका इम्पैक्ट रहता है। उसका ही प्रभाव आज देश भर में हमें देखने को मिल रहा है।
0: बाद में प्रधानमंत्री ने गुजरात के साणंद में देश के तीसरे सेमीकंडक्टर संयंत्र में चिप पैकेजिंग के वाणिज्यिक उत्पादन का शुभारंभ करते हुए कहा कि संयंत्र में प्रत्येक वर्ष 20 करोड़ चिप तैयार होंगी। उन्होंने कहा कि ये विकास भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति का अगला कदम है, जिसने दुनिया को देश का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बना दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया है।
1: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
0: श्री मोदी ने कहा कि देश को सेमीकंडक्टर हब बनाने का सपना अब साकार हो रहा है।
1: 5 साल पहले भारत ने संकल्प लिया था कि देश को सेमीकंडक्टर हब बनाएंगे। हम डिजाइन इन इंडिया, मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़े और आज देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में भी चिप पैकेजिंग का कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो रहा है।
0: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि एथेनॉल कोई नई अवधारणा नहीं है और इसका उपयोग एक सदी से अधिक समय से हो रहा है। राजस्थान में कल श्री पुरी ने कहा कि सरकार अपने जैव ईंधन मिश्रण कार्यक्रम की रचनात्मक आलोचना का स्वागत करती है। उन्होंने कहा कि सरकार सुझावों के अनुसार आवश्यक सुधार करेगी। श्री पुरी ने कहा कि भारत में एथेनॉल मिश्रण का विचार सबसे पहले पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान शुरू हुआ था।
3: एथेनॉल का काम ना हमने इन्वेंट किया, 100 साल से इस पे काम हो रहा है। भारत में अगर आ जाए तो इस पे पहली योजना बनाई थी कांग्रेस की सरकार ने, मैं बात कर रहा हूँ 2006 से लेकर 2008, और हमारा एक टारगेट था कि 5% हमें बायोफ्यूल ब्लेंडिंग करनी है 10 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी में, कर नहीं पाए, वो दूसरी बात है। 1.4% पे हमारी गाड़ी रुक गई।
0: ऑटोमोबाइल उद्योग के विशेषज्ञों ने कहा है कि एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को एक सुनियोजित, चरणबद्ध और वैज्ञानिक रूप से संचालित प्रक्रिया के जरिए लागू किया गया है। नई दिल्ली में इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की प्रबंध निदेशक वर्तिका शुक्ला ने कहा कि एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम 2018 में संरचित चर्चा और हितधारकों के परामर्श के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में रखा गया था। टोयोटा किर्लोस्कर मोटर्स के कार्यकारी उपाध्यक्ष विक्रम गुलाटी ने कहा कि एथेनॉल एक स्वच्छ ईंधन है, ये अच्छी परिचालन क्षमता और तेज गति प्रदान करता है। सरकार ने कीमतों पर नियंत्रण के लिए बफर प्याज के खरीद मूल्य में 13% की वृद्धि की है। प्याज की कीमत अब 1,875 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़कर 2,125 रुपए प्रति क्विंटल हो गई है। हमारे संवाददाता ने उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के हवाले से कहा है कि संशोधित मूल्य से किसानों को लाभ मिलेगा और बफर खरीद प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा।
4: सरकार के मूल्य स्थिरीकरण बफर के लिए भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड और

0: भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड के माध्यम से प्याज की खरीद जारी है। कृषि और किसान कल्याण विभाग के वर्ष 2025-26 के दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार प्याज का उत्पादन 307 लाख मीट्रिक टन से अधिक होने का अनुमान है। मंत्रालय ने कहा कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में वर्तमान स्टॉक पर्याप्त है और फिलहाल प्याज के भंडार में कोई कमी नहीं है। अखिल भारतीय औसत खुदरा मूल्य 31 रुपए प्रति किलोग्राम है। प्याज का निर्यात भी सामान्य है। इस वर्ष जून में लगभग 1,50,000 मीट्रिक टन प्याज का निर्यात हुआ है। दीपेंद्र कुमार के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मॉनसून सत्र बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। श्री रिजिजू ने कहा कि सत्र में राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक चर्चा और निर्णय लेने पर ध्यान दिया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्रबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आगामी ऑस्ट्रेलिया यात्रा से पहले भारत को एक महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदार बताया है। श्री अल्बनीज ने कहा कि हमारे संबंध व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर आधारित हैं तथा गहरे आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों से समर्थित हैं। उन्होंने कहा कि व्यापार, रक्षा, सुरक्षा और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग दोनों देशों के लिए लाभकारी साबित हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के संबंध पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हैं और ये साझेदारी हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देती है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान की सरकारी यात्रा पर आज रवाना होंगे। इस दौरान वे इन देशों के विदेश मंत्रियों और शीर्ष नेताओं से मुलाकात करेंगे। यात्रा का उद्देश्य इन देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना और क्षेत्रीय घटनाक्रमों तथा आपसी हित के मुद्दों पर विचार विमर्श करना है। डॉक्टर जयशंकर 13 जुलाई को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के वर्ष 2028-29 कार्यकाल के लिए भारत का अभियान शुरू करेंगे। हमारी विशेष श्रृंखला प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ के अंतर्गत आज हम वृक्षारोपण और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में काम कर रहे देवेंद्र सूरा के साथ परिचर्चा प्रस्तुत करेंगे।
2: मातृ शक्ति ने वहाँ के जो भी सम्मानित या जितने प्रिंसिपल सभी ने भागीदारी दिखाई। अब भाई बेटी के नाम के आगे ऊपर लिखना है माता का नाम। आज पूरी सड़क है जो बेटियों ने वृक्षारोपण किया था, आज पूरे बड़े वृक्ष है, ठंडी सड़क है, बड़ा गर्व महसूस करता हूँ। साथ में रखो थैला, क्यों करे हम राष्ट्र को मेला। ये कार्य तो अभी शुरू हुआ है और अंतिम सांस तक इस अभियान को मतलब एक बड़ी खुशी से और समर्पित भाव से चलता रहेगा।
3: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
1: ये परिचर्चा आकाशवाणी एफएम गोल्ड और 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आज सवेरे 10:30 बजे से प्रसारित की जाएगी। जम्मू कश्मीर के तीर्थयात्री एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत गुजरात की 6 दिन की सोमनाथ स्वाभिमान यात्रा सफलतापूर्वक पूरी कर जम्मू तवी वापस पहुंच गए हैं। जम्मू कश्मीर प्रशासन के कला, संस्कृति और भाषा अकादमी के सहयोग से आयोजित इस यात्रा के दौरान तीर्थयात्रियों ने श्री सोमनाथ महादेव मंदिर और गुजरात के कई अन्य धार्मिक, ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक स्थलों का दौरा किया। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिन तक देश के अधिकांश हिस्सों में तेज वर्षा जारी रहने की संभावना व्यक्त की है। आज गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया गया है। छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, कर्नाटक, तेलंगाना और विदर्भ में भी मूसलाधार वर्षा हो सकती है। महाराष्ट्र के तटीय जिलों में मूसलाधार वर्षा जारी है। लगातार बारिश के साथ साथ ज्वार भाटे की स्थिति के कारण मुंबई और ठाणे क्षेत्र में अधिकारियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। बृहन मुंबई महानगर पालिका ने कहा है कि नागरिक जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए लगभग 10,000 कर्मचारी तैनात किए गए हैं।

0: वेनेजुएला की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष जॉर्ज रॉड्रिक्स ने कहा है कि लगातार दो भूकंप से मृतकों की संख्या 2,954 हो गई है और 16,000 से अधिक लोग घायल हुए हैं। उन्होंने कहा कि लगभग 16,000 लोग बेघर हो गए हैं। फ्रांस और मोरक्को फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। फ्रांस ने अंतिम 16 के मैच में पैराग्वे को 1-0 से हराकर अंतिम 8 में जगह बनाई। अब क्वार्टर फाइनल में फ्रांस का सामना मोरक्को से होगा। इससे पहले ह्यूस्टन में मोरक्को ने कनाडा को हराकर अंतिम 8 में प्रवेश किया। कैंसस सिटी में कल कोलंबिया ने घाना को हराकर अंतिम 16 में प्रवेश किया। प्री क्वार्टर फाइनल में कोलंबिया का सामना स्विट्जरलैंड से होगा। मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना भी अंतिम 16 में पहुंच गया है। अर्जेंटीना का अगला मुकाबला मिस्र से होगा। मैनचेस्टर में कल इंग्लैंड ने दूसरे T20 क्रिकेट मैच में भारत की 4 विकेट से हरा दिया है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 190 रन बनाए। जवाब में इंग्लैंड ने 19 ओवर में ही 6 विकेट के नुकसान पर 191 रन बनाकर मैच जीत लिया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
1: धन्यवाद मुकेश। राजस्थान और गुजरात में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान के अनुसार मोदी बोले, पश्चिम एशिया की जंग के दौरान आम लोगों पर कम से कम बोझ डाला गया, सही नीतियों से संकट टला, भारत चौथी बड़ी तेल शोधन क्षमता वाला देश बना, 40 देशों से भारत ने तेल का आयात किया। वहीं दैनिक भास्कर ने ग्राउंड रिपोर्ट में दिया है, ईरान ने होर्मुज से दुनिया का क्रूड ऑयल रोका लेकिन अब खाने के तेल को तरस रहा, ईरान अमेरिका से जंग तो जीता लेकिन घरेलू मोर्चे पर चुनौतियों ने। जनसत्ता की सुर्खी है, राम मंदिर न्यास की बैठक सोमवार को, विशेष जांच दल की रिपोर्ट के साथ इस्तीफों पर चर्चा होने की संभावना। देशबंधु की सुर्खी है, 20 से शुरू होगा मॉनसून सत्र, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सत्र बुलाने की दी मंजूरी, जनहित से जुड़े मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगेगा विपक्ष। अमर उजाला ने पाकिस्तान बेनकाब शीर्षक से दिया है, 23 घोषित आतंकियों में हाफिज का करीबी, राम मंदिर था निशाने पर, भारत में आतंकी हमलों तस्करी और घुसपैठ में शामिल है दहशतगर्द, टूटेगा आतंक का वित्तीय नेटवर्क, हर आतंकी मॉड्यूल को करेंगे नेस्तनाबूद। दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है, उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत याचिकाएं खारिज। पंजाब केसरी ने ई रिक्शा पर साइबर अटैक शीर्षक से संपादकीय में लिखा है कि ऐप में बैटरी का वोल्टेज, करंट, तापमान, चार्जिंग स्टेटस और बैटरी हेल्थ जैसी जानकारी देखी जा सकती है। साथ ही कुछ कंपेटेबल बैटरियों में इसमें कंट्रोल फीचर भी मौजूद है, यानी बैटरी को ऑन या ऑफ करने की सुविधा। आरोप यही है कि कुछ लोग इसी कंट्रोल फीचर का गलत फायदा उठा रहे थे, ऐप पर अब प्रतिबंध लगाया जा चुका है।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरी और तीसरी श्रेणी के शहरों में हवाई यात्रा को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना का अगला चरण विकसित उड़ान शुरू किया। सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने और कीमतों पर नियंत्रण के लिए प्याज का खरीद मूल्य 13% बढ़ाकर 2,125 रुपए प्रति क्विंटल किया। प्रधानमंत्री मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा से पहले ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने प्रमुख आर्थिक साझेदार के रूप में भारत की सराहना की। देश के अधिकांश हिस्सों में अगले कुछ दिन तक बारिश जारी रहने का अनुमान। और फ्रांस और मोरक्को फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सायरा मुज्तबा। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्चेस नेक्स्ट फेज ऑफ रीजनल एयर कनेक्टिविटी स्कीम विकसित उड़ान टू गिव फिलिप टू एयर ट्रैवल इन टियर 2 एंड टियर 3 सिटीज। Government hikes onion procurement price for price stabilization buffer by 13% to 2,125 rupees per quintal to boost farmer income. IMD says monsoon rains will continue to lash large parts of the country over the next few days. Australian Prime Minister Anthony Albanese hails India as key economic partner ahead of Prime Minister Modi's visit. And in football, France and Morocco enter quarterfinals of FIFA World Cup. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi launched the next phase of regional air

सुनसान सड़कों पर जब पानी की बूंदें नाचने लगें और हवा में वो मिट्टी की सोंधी सी खुशबू घुल जाए, तो समझो मौसम ने दिल की बात सुन ली है।

नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं आपकी दोस्त और इस भीगे भीगे सफर का हम सफर सरिता। स्वागत है आप सभी के इस पसंदीदा कार्यक्रम सुरमई सवेरा में।

बाहर खिड़की के पार देखिए, आसमान ने आज काले बादलों का कंबल ओढ़ लिया है। ऐसे में दिल भला कहाँ मानने वाला है। दिल चाहता है कि बस एक हाथ में गर्मा गर्म चाय का कुल्हड़ हो और दूसरे हाथ में पकौड़े और कानों में कोई सुरीला सा नगमा। तो चलिए इस खूबसूरत बारिश का स्वागत करते हैं इस सदाबहार गाने के साथ।

0: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: श्रोताओं, कार्यक्रम में पुनः स्वागत है। अभी आप सुन रहे थे वो खूबसूरत नगमा जिसने यकीनन आपको पुरानी यादों की गलियों में घुमा दिया होगा। सच कहूँ ना, ये बारिश बड़ी अजीब है। पानी आसमान से बरसता है लेकिन भीगती ये आंखें और पुरानी यादें हैं। किसी की पहली मोहब्बत, किसी का वो कागज़ की कश्ती बनाना, तो किसी का छतरी होने के बावजूद भी जान पर जानबूझकर बीत जाना। तभी तो किसी शायर ने खूब लिखा है, मौसम बारिश की बूंदों में झलकती है तस्वीर उनकी और हम उनसे मिलने की चाह में अक्सर भीग जाते हैं। क्या बात है, वैसे इस मौसम में सिर्फ यादें ही नहीं आती बल्कि घर की रसोई से वो प्याज के पकौड़ों की खुशबू आती है ना, उफ, वो तो सीधे रूह को छूती है। तो श्रोताओं, आज आप यहाँ क्या बन रहा है जी, ज़रूर बताइएगा और साथ में सुनिए ये बहुत खूबसूरत सा गीत।

0: खो गया इंतजाम।
1: किसका?
0: गुड्डी की फीस का।
1: दिखा। 20,000 का लोन तुरंत? पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही ले और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम, पगार एडवांस में भेजिए।
2: आरबीआई कहता है,
3: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
4: सो योर प्लेस और माइन।
5: उसके पहले ये बताओ, तुम्हारे पास कॉन्डोम है?
4: कॉन्डोम? लेकिन हम तो
5: क्या हुआ, ओरिएंटेशन चाहे जो भी हो, असुरक्षित यौन संबंध से एचआईवी एड्स और बाकी यौन संक्रमणों का खतरा हर स्थिति में बराबर ही रहता है, खासकर जब एक से ज्यादा व्यक्तियों के साथ यौन संबंध कर रहे हो।
4: अरे तुम जानते हो मैं वैसा नहीं हूँ, लेकिन हाँ सुरक्षा इम्पोर्टेंट है, ये बात मैं समझ गया हूँ।
3: आप भी ये बात याद रखें, संयम, वफादारी और कॉन्डम अपनाएं।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुरमई सबीरा। लीजिए अब सुनिए एक कार्यक्रम संबंधी सूचना। डॉक्टर प्रेक्षा द्विवेदी, गठिया रोग विशेषज्ञ एवं अर्थराइटिस और रूमेटोलॉजिस्ट, क्लिनिक शाहपुरा भोपाल द्वारा अनुबंधित सजीव फोन इन कार्यक्रम का प्रसारण 5 जुलाई 2026 दिन रविवार सुबह 11 बजे से 12 बजे के बीच विविध भारती भोपाल से किया जाएगा। इस प्रायोजित सजीव फोन इन कार्यक्रम का विषय है गठिया को जानिए, स्वस्थ जीवन अपनाइए। इस विषय के संबंध में श्रोता अपनी जिज्ञासा के समाधान हेतु दिनांक 5 जुलाई 2026 दिन रविवार सुबह 11 बजे से 12 बजे के बीच इन फ़ोन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर हैं 2660901 एवं 2660902। भोपाल का एसटीडी कोड है 0755। दिन भर समय एक बार पुनः सुन लें, 5 जुलाई 2026 दिन रविवार सुबह 11 बजे से 12 बजे के बीच हमारे फ़ोन नंबर है 2660901 एवं 2660902। भोपाल का एसटीडी कोड है 0755।

5 सूचना समाप्त हुई। ये आकाशवाणी भोपाल है और आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम सुरमई सबेरा। श्रोताओं, कार्यक्रम में हम वापस आते हैं और मैं आपके साथ हूँ आपकी दोस्त सरिता। श्रोताओं, जैसा कि बारिश में जहाँ एक तरफ रोमांस है, वहीं दूसरी तरफ वो सड़कों पर होने वाला छपाक भी है। जब कोई गाड़ी पास से गुजरती है तो आपको मुफ्त में मड बाथ दे जाती है, तो इन बातों का ध्यान रखना है। लेकिन चलिए इन छोटी मोटी दिक्कतों को छोड़ते हैं और मौसम का लुत्फ उठाते हैं। और देखो, किसी शायर ने लिखा है,

वहीं दूसरी तरफ वो सड़कों पर होने वाला छपाक भी है। जब कोई गाड़ी पास से गुजरती है तो आपको मुफ्त में मड बाथ दे जाती है। तो इन बातों का ध्यान रखना है, लेकिन चलिए इन छोटी मोटी दिक्कतों को छोड़ते हैं और मौसम का लुत्फ उठाते हैं। और देखो, किसी शायर ने लिखा है, अजीब कश्मकश है इस भीगे मौसम की दोस्तों, चाय पीते हैं तो पकौड़ों की याद आती है और पकौड़े खाते हैं तो कमबख्त इस वजन की याद आती है। श्रोता, ये तो थी छोटी सी बात आपको हंसाने की, लेकिन वजन को आज छुट्टी के दिन छुट्टी दे दीजिए। आज कैलोरी काउंट मत करिए, आज सिर्फ खुशियाँ काउंट करिए। तो चलिए इसी मस्ती के मूड में कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आपको सुनाते हैं ये प्यारा सा गीत।

श्रोताओं, कार्यक्रम सुरमई सवेरा को कुछ समय के लिए यहाँ पर विराम देते हैं। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल, और अब सुनते हैं इस घंटे की खास खबरें।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल गुजरात के सांणंद में अत्याधुनिक सीजी सेमी आउटसोर्स सेमीकंडक्टर संयोजन और जांच केंद्र का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने इसे विकसित भारत की रूपरेखा और मेक इन इंडिया का दूसरा कदम बताया। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस वर्ष के अंत तक भारत में 5 सेमीकंडक्टर संयंत्र चालू हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस केंद्र में निर्मित चिप्स जापान, अमरीका और यूरोप भेजी जाएंगी। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने मादक पदार्थों की मांग में कमी लाने के लिए राष्ट्रीय कार्ययोजना शुरू की है। यह एक व्यापक ढांचा है जिसका उद्देश्य रोकथाम, जागरूकता पैदा करना, क्षमता निर्माण, उपचार, पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण है। मुख्यमंत्री दिव्यांगजन शिक्षा प्रोत्साहन योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 31 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। मुख्यमंत्री दिव्यांगजन शिक्षा प्रोत्साहन योजना दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षा के मार्ग को सरल और सुलभ बनाएगी। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कल मैहर जिले के रामनगर ब्लॉक में रीवा बाणसागर और सीधी बाणसागर मल्टी विलेज जल प्रदाय योजना के कार्यों का जमीनी निरीक्षण किया। प्रदेश में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से कई जिलों में जनजीवन प्रभावित है। नदियां और नाले उफान पर हैं जिससे कई गांवों में जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। और भोपाल के मध्य प्रदेश जनजाति संग्रहालय में जनजाति चित्रकार सुनीता परमार की चित्रों की प्रदर्शनी का संयोजन किया गया है। यह प्रदर्शनी 30 जुलाई तक जारी रहेगी। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुरमई सवेरा, ये आकाशवाणी भोपाल है। लीजिए सुनिए कार्यक्रम संबंधी एक सूचना। डॉक्टर प्रेक्षित विधि गठिया रोग विशेषज्ञ एवं अर्थराइटिस और रूमेटोलॉजी क्लिनिक शाहपुरा भोपाल द्वारा अनुबंधित सजीव फोन इन कार्यक्रम का प्रसारण 5 जुलाई 2026 दिन रविवार सुबह 11 बजे से 12 बजे के बीच विविध भारती भोपाल से किया जाएगा। इस प्रायोजित सजीव फोन इन कार्यक्रम का विषय है गठिया को जानिए, स्वस्थ जीवन अपनाइए। इस विषय के संबंध में श्रोता अपनी जिज्ञासा के समाधान हेतु दिनांक 5 जुलाई 2026 दिन रविवार सुबह 11 बजे से 12 बजे के बीच इन फ़ोन नंबरों पर कॉल कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर हैं 2660901, 2660902, भोपाल का एसटीडी कोड है 0755। दिन व समय एक बार पुनः सुन ली, दिनांक 5 जुलाई 2026 दिन रविवार सुबह 11 बजे से 12 बजे के बीच हमारे फ़ोन नंबर हैं 2660901 एवं 2660902, भोपाल का एसटीडी कोड है 0755। सूचना समाप्त हुई। ये आकाशवाणी भोपाल है और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुरमई सवेरा। श्रोताओं, बरसात की बूंदों में जो सुकून छुपा है वो दुनिया के किसी ऐशोआराम में नहीं। भीग लो आज खुद को भुला कर है दोस्त, क्योंकि ये लम्हे फिर आए ना आए।

श्रोताओं, क्या समा बंधा है, लेकिन वक्त की सुइयां रुकती नहीं हैं। और अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, पर जाते जाते इतना ही कहूँगी कि काम की भागदौड़ तो चलती रहेगी, मुश्किलें भी आती जाती रहेंगी, लेकिन ये जो कुदरत ने आज खूबसूरत सा तोहफा दिया है ना, इसे खुलकर जी लीजिए। खिड़की खोलिए, दो बूंदे चेहरे पर महसूस कीजिए और मुस्कुराइए। अपना ख्याल रखिएगा, भीगने के बाद अदरक वाली चाय पीना मत भूलिएगा, ताकि जुकाम से दूर रहें। मैं हूँ आपकी दोस्त सरिता, मिलती हूँ अगले कार्यक्रम में। तब तक सुनते रहिए आकाशवाणी भोपाल, और जाते जाते सुनिए ये बहुत प्यारा सा गीत।

इसी गीत के साथ फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम सुरमई सबेरा यहीं पर संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण है। लीजिए सुनिए आज लोक संगीत के कार्यक्रम में बुंदेल सिंह लोधी के गाए बुंदेली लोकगीत।

लोक संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे बुंदेल सिंह लोधी के गाए बुंदेली लोकगीत। ये आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सिंधियत जी सुरहाण।

साथियों जय झूलेलाल। सिंधियत जी सुरहाण में तवा सबनी के मां मनोज सोनी पंजवाणी पारा सिक भरी नमस्ते। साथियों मीहन जी मुंद हली रही आहे ऐं मौको आहे गुरु पूर्णिमा जो। असां सभु कोशिश कयूं त हिकु हिकु वण पंहिंजे गुरुनि जे नाले ते ज़रूरु लॻायूं, छो जे वृक्षारोपण अॼु जे समय जी ख़ासि ज़रूरत आहे। पर्यावरण संतुलित रखणु, हवा खे शुद्ध करणु, जल संरक्षण ऐं जलवायु जे परिवर्तन खे घटाइण लाइ वण तमामु ज़रूरी आहिनि। वृक्षारोपण सां मिटीअ जो कटाव घटिजंदो आहे, जंहिंसां जैव विविधता खे वाधारो मिलंदो आहे। वण लॻाइणु हिकु ज़रूरी कमु आहे। इहो पर्यावरण ऐं मानव जीवन ॿिन्ही जे लाइ महत्वपूर्ण आहे। असांखे वधीक में वधीक वण लॻाइणु घुरिजनि ऐं उन्हनि जी देखभाल बि करणु घुरिजे, जीअं असां हिकु स्वस्थ ऐं ख़ुशहाल भविष्य सुनिश्चित करे सघूं। साथियों असां

ॾिसूं था त अॼुकल्ह घणेई संस्थाऊं इन बारे में कम बि करे रहियूं आहिनि, जीअं त घणेई आयोजन हलाईंदा आहिनि, हिकु वणु माउ जे नाले ते, हिकु वणु देश जे नाले ते, हिकु वणु समाज जे नाले ते। इहा तमामु सुहिणी ॻाल्हि आहे त अॼु जी पीढ़ी वण लॻाइण जे प्रति जागरूक आहे, ऐं इहो निश्चित रूप सां असांजे सुठे भविष्य जी पहल आहे। इन सां असांखे भविष्य में बि सुठी जलवायु, सुठो पाणी ऐं सुठो पर्यावरण मिली सघंदो। इहा हिकु सुठी पहल आहे अॼु जे युवा पीढ़ीअ जे पारां। असां बि इन आयोजन जो हिकु हिसो ठहूं। रुगो इन्हनि कार्यक्रमनि खे ॾिसी करे ख़ुशि न थियूं, बल्कि कोशिशि कयूं त असां बि इन में पूरी पूरी भागीदारी वठी सघूं ऐं वण लॻाइण में पंहिंजो सहयोग ॾेई सघूं।

0: सां जुड़ियल समस्याऊं ऐं पूरे विश्व में इन जे प्रति जागरूकता आणण आहे। इहो आयोजन सन 1999 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जी गवर्निंग काउंसलिंग पारां शुरू कयो वियो हो। जनसंख्या वृद्धि अॼु जे समय जी हिकु वॾी चुनौती आहे। अॼु जी वार्ता जो विषय बि इन सां ई जुड़ियल आहे, जनसंख्या वृद्धिअ जे करे चुनौतियूं ऐं उन्हनि जो समाधान। अॼु असां सां गॾु वार्ताकार आहिनि भेण किरण वाधवानी जी। अचो त ॿुधूं था इन्हनि खां अॼु जी वार्ता ते ॼाण।
1: साथियूं, सभ खां पहिरीं मां किरण वाधवानी तव्हांखे सिक ऐं प्यार भरियो जय झूलेलाल थी चवां। अॼु जो असांजो विषय आहे जनसंख्या वृद्धि चुनौतियूं ऐं समाधान। त अचो त असीं हिन वार्ता खे ॿुधूं। जनसंख्या हर देश जी प्रगतिअ जो संकेत ॾींदी आहे, पर जेकॾहिं इहा ई जनसंख्या नियंत्रण खां ॿाहिरि थी वेंदी आहे त देश जे विकास जे लाइ हिकु गंभीर समस्या थी वेंदी आहे। भारत जहिड़े विकासशील देश लाइ जनसंख्या वृद्धि हिकु जटिल ऐं बहुआयामी चुनौती ठही वई आहे। भारत जे विश्व जो ॿियों सभिनि खां वधीक जनसंख्या वारो देश आहे ऐं इहो अनुमान आहे त ईंदड़नि सालनि में भारत चीन खे बि पुठियां छॾींदो। त इन्हीअ करे इहो ॾाढो ज़रूरी आहे त असां जनसंख्या वृद्धिअ खां थींदड़ समस्याउनि खां बचणु असांजे लाइ उत्तम आहे। जनसंख्या वृद्धिअ खे पूरीअ तरह रोकणु सवलो त संभव आहे ई कोन, पर जनसंख्या खे नियंत्रण ऐं संतुलित करणु ज़रूरु संभव आहे। इन जे लाइ ज़रूरी आहे त सरकार, समाज ऐं समाज जो रहंदड़ हर माण्हू पंहिंजी भूमिका ज़िमेदारीअ सां निभाए। इहो हर माण्हूअ जो फ़र्ज़ु आहे। जेसी ताईं शिक्षा, स्वास्थ्य ऐं जागरूकता खे बढ़ावो न ॾिनो वेंदो, तेसी ताईं जनसंख्या वृद्धिअ खे रोकणु मुश्किल ई न पर नामुमकिन बि आहे। असांखे इहो सम्झणु घुर्जे, नंढो परिवार सुखी परिवार नारो जेको आहे सिर्फ़ हिकु स्लोगन ई कोन्हे, बल्कि हिकु विकसित समाज जी आधारशिला पिणु आहे। जेकॾहिं असीं हाणे इहो निर्णय न वठंदासीं त सुभाणे हिकु सुरक्षित, संतुलित ऐं विकसित भारत जी कल्पना साकार न थी सघंदी आहे। चुनौतियूं ऐं समाधान। जनसंख्या वृद्धि हिकु ॾाढी वॾी जटिल समस्या आहे, जंहिंजा घणेई कारण बि आहिनि ऐं परिणाम बि आहिनि। उन्हीअ जे समाधाननि जे लाइ शिक्षा ऐं स्वास्थ्य सेवाउनि में सुधार ऐं लैंगिक समानता जहिड़ा कम ज़रूरी आहिनि। जीअं त स्वास्थ्य सेवाउनि में वाधारो करणु, वधंदड़ जनसंख्या जे करे ग़रीबी बि वधंदी आहे ऐं ग़रीबी वधण सां बेरोज़गारी पिणु वधंदी आहे। इहा ग़रीबी ख़ासि करे विकसित देशनि ते ई पंहिंजो असर छॾींदी आहे। स्वास्थ्य सेवाउनि जी गुणवत्ता में कमी ऐं गिरावट बि अची सघे थी ऐं इन जा स्वास्थ्य जी सेवाउनि ते दॿाउ बि पवंदा आहिनि। शिक्षा जी गुणवत्ता में कमी। जीअं जीअं जनसंख्या वधे थी, तीअं तीअं शिक्षा जी प्रणाली ते बि उन जो घणेई असर पवे थो। जनसंख्या अगरि वधंदी त सभिनि खे सुठी शिक्षा ॾियणु ॾुखियो थींदो ऐं शिक्षा जी गुणवत्ता बि घटि बि। जागरूकता जी बि कमी। जनसंख्या वृद्धिअ जे ख़तरनि ऐं उन्हनि जे समाधाननि जे बारे में जागरूकता जो प्रचार ऐं प्रसार पिणु सुठे रूप में असांखे करणु घुरिजे ऐं उन्हनि उपायनि खे लागू करे जनसंख्या वृद्धिअ जी चुनौतियुनि जो समाधान करणु पिणु सरल थी वेंदो ऐं हिकु बहितर ऐं उज्जवल भविष्य पिणु ठाहे सघिजे थो। हाणे असां समाधाननि जे बारे में चर्चा कंदासीं। परिवार नियोजन। समाज में परिवार नियोजन जो कार्य

कार्यक्रम जेको आहे उनखे बढ़ावो ॾियणु घुरिजे। नंढनि परिवारनि में रहण जी हिदायत पिणु सभिनि खे ॾियणु घुरिजे। गांवनि ऐं शहरनि में परिवार नियोजन जा कैंप पिणु लॻाया वञनि। इहो ॾाढो सुठो तरीक़ो आहे। कैंपनि जे ज़रिए सभु लाभ वठंदा ऐं जनसंख्या वृद्धिअ खे पिणु कंट्रोल में कयो वेंदो। महिला शिक्षा ते ज़ोर, ख़ासि करे युवा महिलाउनि ऐं महिलाउनि जी शिक्षा ते ज़ोर ॾिनो वञे, मतिलबु छोकिरियुनि जी शिक्षा ते इहो पाठ पढ़ाइणु घुरिजे। ऐं महिलाऊं अगरि वधीक मां वधीक शिक्षित हूंदियूं त प्रजनन जी दर में बि कमी थी सघे थी ऐं जनसंख्या जे वाधारे ते कंट्रोल बि करे सघिजे थो। महिला शिक्षा जो ॾाढो रोल जनसंख्या वृद्धिअ में अदा थींदो आहे। आर्थिक अवसर, महिलाउनि खे जीवन यापन लाइ आर्थिक अवसर पिण प्रदान करणु घुरिजनि ऐं हुननि खे पंहिंजे जीवन ते नियंत्रण रखण जी मदद बि करणु घुरिजे। इन सां बि जनसंख्या वृद्धिअ ते कमी थी सघे थी। स्वास्थ्य सेवाउनि खे बहितर करणु, अगरि स्वास्थ्य जी सेवाउनि में बहितर कबो त परिवार नियोजन सां गॾोगॾु मात्र एवं शिशु दर बि घटिबी। अगरि उन्हनि खे सुठियूं सेवाऊं ॾिनियूं वेंदियूं ऐं उन्हनि खे प्रेरित कयो वञिबो त उन जो लाभ बि असांखे मिली सघिबो। लैंगिक समानता, महिलाउनि खे सशक्त ठाहिणु घुरिजे ऐं महिलाउनि खे सामाजिक ऐं आर्थिक मसलनि में फ़ैसिला वठण जी छूट बि ॾिनी वञे। हू वधीक सम्झी सघंदियूं इन सां, अगरि हू पंहिंजा फ़ैसिला सामाजिक ऐं आर्थिक स्तर ते पाण खणंदियूं त लैंगिक समानता ते ज़ोर पवंदो ऐं जनसंख्या जी दर पिणु घटिबी। पर्यावरण अनुकूल शहरी नियोजन, साफ़ पाणी ऐं किफ़ायती दर ते आवास मुहैया करणु घुरिजे। हुननि खे सभु सुविधाऊं हुजनि त इन जनसंख्या ते वृद्धिअ खे असां रोके सघजूं था। दीर्घकालिक विकास लाइ टिकाऊ योजनाऊं ऐं समाधान में निवेश करणु घुरिजे। टिकाऊ ऐं बुनियादी ढांचे में अगरि असां निवेश कंदासीं त ॾाढो ज़रूरी थींदो ऐं जनसंख्या वृद्धिअ खे रोकण में असांखे पिणु सवलाई थींदी। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग वठणु घुरिजे। संयुक्त राष्ट्र संघ जहिड़नि वैश्विक मंचनि जे माध्यमनि सां सतत विकास ॾे ध्यानु ॾियणु घुरिजे ऐं उन्हनि जे लक्षणनि ते पहुचण जी कोशिश बि असांखे पिणु करणु घुरिजे। आर्थिक विकास ॾे बि ध्यानु ॾियणु घुरिजे। शिक्षा ऐं कौशल विकास ते सभिनीनि जो ध्यानु केंद्रित करणु घुरिजे ऐं आर्थिक रूप सां सभिनि खे सशक्त ठाहिणु घुरिजे, तब असांजी इहा समस्या हल थी वेंदी। शिक्षा खे प्राथमिकता ॾिजे, अगरि शिक्षा खे प्राथमिकता ॾिनी वेंदी तब असांखे इन्हनि समस्याउनि खां मुक्ति मिली सघंदी। जो शिक्षित माण्हू आहे उहो सही निर्णय वठी सघंदो आहे। जनसंख्या वृद्धिअ जूं चुनौतियूं, हाणे असीं चुनौतियुनि खे ॿुधूं था। वधंदड़ जनसंख्या जे करे रोटी पाणी ऐं ऊर्जा सां गॾोगॾु अटे अझे ऐं लटे जी समस्या पिणु खड़ी थी वेंदी आहे, जंहिं करे जीवन यापन करण में जे संसाधन खे उन्हनि कमियुनि जो सामनो पिणु करणो पवंदो आहे। पर्यावरण जो प्रदूषण, असीं सभु ॼाणूं था जनसंख्या जे वाधारे करे पर्यावरण बि प्रदूषित थींदो आहे। जेतिरा वधीक माण्हू ऐं जेतिरी वधीक जनसंख्या हूंदी ओतिरो ई वधीक कचिरो ऐं गंदगी बि हूंदी, पर्यावरण बि प्रदूषित थींदो ऐं ॾाढी गंदगी बि थींदी ऐं इन्हीअ चुनौतीअ जो बि असांखे ई सामनो करणो पवंदो। हाणे असीं पहुचूं था इन जे निष्कर्ष ते, त निष्कर्ष छा थो निकिरे।
जनसंख्या वृद्धि एक ॾाढी वॾी जटिल सामाजिक

0: आर्थिक समस्या आहे, जंहिंजो समाधान सिर्फ़ु कानूननि सां ई न थींदो बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य ऐं जागरूकता जे सामूहिक प्रयासनि सां ई संभव थी सघे थो। यदि संभव हूंदे प्रभावी कम न कया विया त प्राकृतिक संसाधननि जी कमी ऐं जीवन स्तर में गिरावट जहिड़ियूं गंभीर स्थितियूं पैदा थियण में देर न लॻंदी, जंहिंजो सिधो असर असांजे मथां थींदो आहे। जय झूलेलाल।
1: जनसंख्या वृद्धि चुनौतियूं ऐं समाधान, अॼु जी इहा वार्ता हुई। वार्ता पेश करे रहिया हुया भेण किरन वाधवानी जी। तमामु सुहिणी ऐं सवले अखरनि में ॼाण जनसंख्या वृद्धि जे प्रति। हाणे अचो साथियूं, ॿुधूं था ही गीत।

0: हीउ गीत गायो हो कमला केसवाणी ऐं संगीत हो सी अर्जुन जो।
1: साथियों हिन गीत खां पोइ जेका ॼाण आहे सा आहे अल्पसंख्यकनि जे लाइ सरकारी योजनाउनि जे बारे में। अल्पसंख्यकनि जे लाइ भारत सरकार घणेई योजनाऊं हलाए रही आहे, जीअं त पीएम विकास योजना जेका जुड़ियल आहे कौशल ऐं उद्यमता सां, प्री व पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति पढ़ण वारे ॿारनि जे लाइ मैट्रिक करण जे लाइ छात्रवृत्ति सां जुड़ियल आहे हीअ सरकारी योजना, ऐं ऋण योजनाऊं याने जेके लोन थो मिले कर्ज़ो थी ॾिए सरकार उन्हनि सां जेका जुड़ियल योजना आहे सा आहे NMDFC। इन तरीक़े सां घणेई योजनाऊं सरकार पारां अल्पसंख्यकनि जे उधार जे लाइ, जीवन में सुधार जे लाइ, शिक्षा ऐं रोज़गार खे वधाइण जे लाइ हली रहियूं आहिनि। अल्पसंख्यक वर्ग पंहिंजा ज़रूरी दस्तावेज़ जमा करे संबंधित कार्यालय मां इन्हनि योजनाउनि जो फ़ाइदो खणी रहिया आहिनि ऐं अॻिते बि खणी सघनि था। साथियों सरकारी योजनाउनि सां ई हिकु जुड़ियल ॿी नंढड़ी ॼाण आहे जंहिंजो नालो आहे विकसित भारत गारंटी फॉर रोज़गार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण VBG RAM। दरअसल दोस्तों जेका मनरेगा नाले सां सरकारी योजना आहे उन जी ही जॻह ते 1 जुलाई 2026 खां वठी इन VBG RAM योजना स्थान वरितो आहे। इन में मज़दूरनि जे लाइ साल में 125 ॾींहनि जी मज़दूरीअ जी गारंटी ॾिनी वेंदी आहे। साथियो इन सरकारी योजनाउनि जी ॼाण खां पोइ अचो त ॿुधूं था हिकिड़ो ई मज़ाकिया ॿारनि जो गीत।

साथियों ही गीत गायो भगवंती नावाणी ए साथियों ए इन गीत से गडु ही अज जे कार्यक्रम जो समय भी पूरो थी रहयो आहे। इजाजत दियो पहेंजे रेडियो साथी मनोज सोनी पंजवाणी के वरी मिलंदा से सब जो भलो।

0: अभी आप सुन रहे थे सिंधी कार्यक्रम सिंधियत जी सुरहाण। ये आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण है। लीजिए प्रस्तुत है बुरहानपुर जिले की चिट्ठी। आलेख है गणेश कुमार बाविस्कर का। वाचन स्वर है अभिषेक कटियार के।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है बुरहानपुर जिले की चिट्ठी। आलेख गणेश कुमार बाविस्कर का है। वाचन स्वर है अभिषेक कटियार का। बुरहानपुर में ताप्ती नदी ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। लगातार मूसलाधार बारिश से नदी उफान पर है और राजघाट के 3 शिव मंदिर पूरी तरह जलमग्न हो गए हैं। बढ़ते जलस्तर ने प्रशासन की चिंताएं बढ़ा दी हैं। SDRF की टीमें घाटों पर तैनात हैं, जबकि नदी किनारे रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी गई है। ताप्ती के तेज बहाव को देखते हुए गुजरात के सूरत प्रशासन को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है। बुरहानपुर में साइबर ठगों की चाल नाकाम करने के लिए पुलिस का सेफ क्लिक 2.0 अभियान तेज हो गया है। बीते दिनों शाही जामा मस्जिद परिसर में मुस्लिम समाज के बीच पुलिस ने डिजिटल अरेस्ट, फर्जी कॉल, OTP, UPI और KYC फ्रॉड के नए हथकंडों के प्रति सावधान किया। पैम्फलेट बांटे गए और साइबर शपथ दिलाई गई और चेतावनी दी गई कि अनजान लिंक पर एक क्लिक से बैंक खाता खाली हो सकता है। किसी भी साइबर ठगी की स्थिति में तुरंत 1930 पर शिकायत करने की अपील की गई। बुरहानपुर रेलवे स्टेशन शुक्रवार को पूरी तरह से भक्तिमय रंग में रंगा दिखाई दिया, जब 191 वरिष्ठ श्रद्धालुओं का जत्था जय माता दी के गगनभेदी जयघोष के बीच वैष्णो देवी धाम के लिए रवाना हुआ। विधायक अर्चना चिटनिस और महापौर माधुरी पटेल ने श्रद्धालुओं को पुष्पमाला पहनाकर ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत 3 से 8 जुलाई तक चलने वाली इस यात्रा में भोजन, आवास, चिकित्सा और सुरक्षा की सभी व्यवस्थाएं जिला प्रशासन ने सुनिश्चित की हैं। बुरहानपुर पहुंचे निमाड़ रेंज के DIG सिद्धार्थ बहुगुणा ने बीते दिनों समीक्षा बैठक में लंबित मामलों, महिला अपराध, साइबर फ्रॉड, संपत्ति अपराध और कानून व्यवस्था पर सख्त निर्देश दिए। त्योहारों के दौरान बेहतर पुलिसिंग पर बुरहानपुर पुलिस की सराहना की। बैठक में थाना प्रभारियों को ई विवेचना के लिए टैबलेट वितरित किए गए, जिससे जाँच प्रक्रिया पूरी तरह से डिजिटल होगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मुख्यमंत्री जनकल्याण संबल योजना के तहत बुरहानपुर जिले के 163 हितग्राही परिवारों को बड़ी राहत प्रदान की। सिंगल क्लिक के जरिए बीते दिनों 3,46,00,000 रुपए की अनुग्रह सहायता राशि सीधे DBT से बैंक खातों में भेजी गई, जिसमें सामान्य मृत्यु के 153 और दुर्घटना मृत्यु

0: के 10 प्रकरण शामिल हैं। जिला मुख्यालय के NIC कक्ष में कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देखा गया, जहां जनप्रतिनिधि, अधिकारी और हितग्राही मौजूद रहे। बुरहानपुर के ग्रामीण इलाकों में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण जरूरतमंद परिवारों को सपनों के पंख दे रही है। पात्र हितग्राहियों को 1.20 लाख रुपए की सहायता और मनरेगा के तहत 90 दिन की मजदूरी मिल रही है, जिससे पक्के मकानों का निर्माण तेजी से हो रहा है। जिले की समीक्षा बैठक में बीते दिनों स्वास्थ्य सेवाओं की हकीकत पर अधिकारियों से जवाब तलब किया गया। PM किसान सम्मान निधि, EKYC, आधार अपडेट और फार्मर रजिस्ट्री की धीमी प्रगति पर नाराजगी जताते हुए काम में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। वहीं PWD के सड़क निर्माण कार्यों की समीक्षा करते हुए कहा गया कि तय समय सीमा में सभी निर्माण कार्य हर हाल में पूरे किए जाएं। बुरहानपुर जिले में वट सावित्री पूर्णिमा के अवसर पर बीते दिनों सुहागिन महिलाओं ने पूरी श्रद्धा, भक्ति और उत्साह के साथ व्रत रखा। शाहपुर में महिलाएं पारंपरिक श्रृंगार कर बरगद के पेड़ के नीचे पहुंची और विधि विधान से वट पूजन कर पति की बरगद जैसी लंबी उम्र और सुख समृद्धि की कामना की। पूजा के बाद महिलाओं ने एक दूसरे को हल्दी कुमकुम लगाकर अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद दिया। इस दौरान भक्ति परंपरा और सुहाग का अनुपम संगम देखने को मिला। बुरहानपुर में भाजपा के संस्थापक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी संस्मरण पखवाड़े के तहत स्वामी परमानंद गोविंद जी वाला ऑडिटोरियम में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन बीते दिनों किया गया, जिसमें प्रदेश उपाध्यक्ष सुरेंद्र शर्मा ने डॉ. मुखर्जी के राष्ट्रवादी विचारों, शिक्षा, योगदान और राष्ट्रहित में उनके संघर्ष पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल, विधायक अर्चना चिटनिस, विधायक मंजू दादू, जिलाध्यक्ष डॉ. मनोज माने सहित जनप्रतिनिधि, पदाधिकारी और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। बीते दिनों कृषि विभाग की समीक्षा बैठक में विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की गई। इस मौके पर सांसद श्री ज्ञानेश्वर पाटिल ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अधिक से अधिक किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए जागरूक किया जाए। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जिले में कृषि चौपालों का आयोजन कर खेती की आधुनिक व प्राकृतिक तकनीकों की जानकारी दी जाएगी। इसके साथ ही उन्नत बीजों की थैलियों की आकर्षक ब्रांडिंग और व्यापक प्रचार प्रसार पर जोर दिया गया। बैठक में DAP, बीज, उर्वरक उपलब्धता और कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा भी की गई। बुरहानपुर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: अभी आप सुन रहे थे बुरहानपुर जिले की चिट्ठी। ये आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण है।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
1: ये आकाशवाणी भोपाल है। प्रस्तुत है सामुदायिक गान शिक्षण पाठ। इसमें आज आप सुनेंगे उड़िया गीत। रचना है KC पनिग्रही की।
4: बच्चों, आज मैं तुम्हें एक उड़िया गाना सिखाऊंगा। सीखोगे ना?
5: हाँ।
4: ये गाना एक भजन है जिसे श्री कालिंदी चरण पाणिग्रही ने लिखा है। किसने लिखा है?
5: श्री
4: कालिंदी चरण पाणिग्रही ने। अब इसे लिख लो।
6: क्यों नाम धरी,
5: क्यों नाम धरी,
6: डाकिबी तुमको,
5: डाकिबी तुमको,
6: तुमे जे सर्वनाम, क्यों नाम धरी,
5: क्यों नाम धरी,
6: डाकिबी तुमको,
5: डाकिबी तुमको,
6: तुमे जे सर्वनाम,
5: तुमे जे सर्वनाम।
4: यह हुआ ध्रुपद। अब पहला अंतरा लिख लो।
6: आलोक तुमको,
5: आलोक तुमको,
6: नपारे देखाई,
5: नपारे देखाई,
6: तुमे जे देखाओ ताहारे,
5: तुमे जे देखाओ ताहारे,
6: आलोक तुमको,
5: आलोक तुमको,
6: नपारे देखाई,
5: नपारे देखाई,
6: तुमे जे देखाओ ताहारे,
5: तुमे जे देखाओ ताहारे,
6: तुमे जे बेढ़ी चो,
5: तुमे जे बेढ़ी चो,
6: कोटी विश्वर,
5: कोटी
6: विश्वर, सबुरी भीतरे बाहरे,
5: सबुरी भीतरे बाहरे,
6: तुमे जे बेढ़ी चा,

0: अब हम गाना सीखेंगे।
1: इनम धरी डाकिबी तुमको 1 2 3 4

0: तुमने गाना सीख लिया, इसे अब तुम सब मिलकर गाओ देखें।
1: 1 2 3 4

0: तो अब यह गाना तो आपने सीख लिया, इसे याद रखना, भूलना नहीं। यह गाना तुम भी गाओ, अपने भाई बहनों से गवाओ तथा स्कूल में भी गाओ। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे सामुदायिक गान शिक्षण पाठ। इसमें आज आपने सुना उड़िया गीत, रचना थी केसी पनिग्रही की। ये आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण है।
2: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।

ये आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण है। अब समय है अंतराल का।

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: ಸ್ವಯಂ ಹಿ ಕಟ್ಪಡೆ
1: ಭಾರತೀಯ ಸೇನಾ.
2: अंतराल का समय समाप्त हुआ. ये आकाशवाणी भोपाल है. लीजिए प्रस्तुत है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम फिल्म संगीत. फिल्म संगीत के कार्यक्रम में हम आपको सुनवाते हैं पहला गीत फिल्म बॉम्बे से. स्वर है चित्रा के, गीत लिखा है महबूब ने और संगीत है ए आर रहमान का.

अनुराधा पुटवाल की आवाज़ में लीजिए सुनिए आशिकी फिल्म का गीत। ये शब्द रचना है समीर की और संगीत है नदीम श्रवण का।

सोनू निगम और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ में अब हम आपको सुनवाते हैं फिल्म दिल से का ये गीत, जिसकी रचना की है गुलजार ने और

कार्यक्रम की अंतिम पेशकश फिल्म बाजीगर से, स्वर आशा भोसले और विनोद राठौर के। ये गीत लिखा है जफर गोरखपुरी ने और संगीत है अनु मलिक का।

0: ये आकाशवाणी भोपाल है, लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज शिवपुरी में अदानी समूह द्वारा स्थापित किए जा रहे लगभग 2500 करोड़ रुपए की लागत वाले अत्याधुनिक रक्षा संयंत्र का शिलान्यास करेंगे। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि इस रक्षा संयंत्र से विकास को गति मिलेगी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने राजस्थान में कल इथेनॉल मामले में कहा कि सरकार अपने जैव ईंधन मिश्रण कार्यक्रम की रचनात्मक आलोचना का स्वागत करती है और सुझावों के अनुसार आवश्यक सुधार करेगी। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने कहा है कि मंत्रालय ने मादक पदार्थों की मांग में कमी लाने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना शुरू की है। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होगा और 13 अगस्त तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सत्र में राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक बहस, चर्चा और निर्णय लेने पर ध्यान दिया जाएगा। प्रख्यात लोक कलाकार और पंडवानी गायिका तीजनबाई का आज तड़के रायपुर में निधन हो गया। महान लोक गायिका ने पंडवानी को विश्व मंच पर प्रतिष्ठा दिलाई। उन्हें 1987 में पद्मश्री, 2003 में पद्म भूषण और 2019 में देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। भोपाल के भारत भवन में गायन पर्व का आयोजन किया जा रहा है। इस पर्व में आज शाम 7 बजे से मंजरी असनारे और ऋषि मिश्र की जुगलबंदी देखने को मिलेगी। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कई जिलों में भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

ये आकाशवाणी भोपाल है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कृपया हमारे कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। प्रस्तुत है फोन इन कार्यक्रम, फोन करें, गीत सुनें।

0: दिल से निकली है जो बात वो गानों में ढल जाती है, और जब जुड़ते हैं आप और हम तो महफिल खुद ब खुद बन जाती है। श्रोताओं नमस्कार, इस सुरीले सफर की हम सफर हूँ मैं आकांक्षा आपके साथ। स्वागत है आप सभी का अपने मनपसंद कार्यक्रम फोन करें गीत सुने में। श्रोताओं संगीत वो जादुई डोर है जो सीधे दिल को छूती है। कभी कोई धुन हमारे चेहरे पर मुस्कान ले आती है, तो कभी कोई पुराना नगमा पुरानी यादों के गलियारों में ले जाता है। लेकिन ये सफर तब तक अधूरा है जब तक इसमें आपकी पसंद और आपकी आवाज शामिल ना हो। सुर हमारे, आवाज आपकी और बातें दिल की। जी हाँ, तो फोन उठाइए, हमारा फोन नंबर है 2660902 और भोपाल का STD कोड है 0755। तो अपने कॉल्स का सिलसिला शुरू कीजिए, हम हैं आपके साथ आपसे बात करने के लिए। आइए मिलते हैं हमारे पहले श्रोता से। हेलो,
1: जी दीदी नमस्कार।
0: नमस्ते। कार्यक्रम फोन करें गीत सुने में आपका स्वागत है। हमारी बात किन से हो रही है?
1: सेवड़ा जिला दतिया मध्य प्रदेश से लोकेंद्र गुर्जर से।
0: लोकेंद्र जी, कैसे हैं आप?
1: जी दीदी बढ़िया है।
0: मौसम कैसा है वहाँ?
1: मौसम दीदी कल बारिश हुई थी सुबह के टाइम 10 बजे पे, तो अच्छी बारिश हुई थी।
0: जी
1: और अभी उमस थी, तो बारिश से जो कि उमस थी तो गर्मियों से राहत मिली है, और थोड़ी बारिश हुई थी, बादल छाए हैं। हो
0: जी
1: सकती है कि बारिश हो सकती है, माने ज़्यादा उमस भी है, तो बस हम तो यही आशा करेंगे मैम कि पानी बरस जाए, अपनी खेती बाड़ी का एक कार्यक्रम है वो चालू हो जाए।
0: जी बहुत ज़रूरी है खेती के लिए, हम सभी के लिए पानी का होना। आपका दिन कैसा चल रहा है अभी?
1: बिल्कुल बढ़िया चल रहा है दीदी, अपन कृषक हूँ तो खेती बाड़ी से जुड़ा हूँ, तो खेती बाड़ी का काम चल रहा है, धान की खेती की तैयारी चल रही है दीदी, और बस धान लगने वाली है दीदी, 8-10 दिन बाद फिर धान लगेगी।
0: आज कौन सा गीत सुनना चाहते हैं आप?
1: आज दीदी फिल्म का नाम है सिंदूर, उसका एक गीत है नाम।

0: सारे भूल जाने लगे, वक्त बे वक्त तुम याद आने लगे।
1: इस गीत से जुड़ी कोई याद है, कोई बात है?
0: नहीं दीदी, क्या है दीदी, 19 के जो गीत है
1: जी
0: मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, जैसे शब्बीर कुमार हुए, मोहम्मद अजीज हुए,
1: जी
0: तो इनके गीत बहुत अच्छे लगते।
1: बहुत आपकी पसंद बहुत अच्छी है। वैसे ये गीत मोहम्मद अजीज और लता मंगेशकर जी ने गाया है। लीजिए सुनिए तो अपनी पसंद का ये गीत।
0: जी
1: नमस्ते।
0: धन्यवाद।

0: नमस्कार, कार्यक्रम फोन करें गीत सुने में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कौन जुड़े हैं, क्या हम जान सकते हैं?
1: मेरा नाम है पूरन वर्मा और मैं आपसे बात कर रहा हूँ राजस्थान गांव का नाम अंतरल बुगला।
0: पूरन जी, वहाँ मौसम कैसा है राजस्थान में?
1: बस मैडम बढ़िया है, यहाँ मौसम बादल छा रहे और रात को बारिश हुई थी मैडम थोड़ी बहुत, खेतों में वो बिजाई चालू हो गई है।
0: क्या करते हैं आप?
1: जी मैडम हम खेती बाड़ी करते हैं, कल खेतों में भी बिजाई हो गई, खेतों में बुआया खेतों में वो करा दिया, खेतों में नाश पड़ दिया मैडम बाजरा।
0: अच्छा, अन्नदाता हैं आप हमारे। अपना
1: जी
0: ध्यान
1: मैडम
0: रखिएगा, फसलों का ध्यान रखिएगा। और आज बताइए आप क्या सुनना चाहते हैं?
1: फिल्म का नाम है घरवाली और बारवाली और उसमें एक गाना गाने के बोले तारा रा रा रा रा ऐसा कुछ गाना है।
0: तो लीजिए सुनिए अपनी पसंद का ये गीत।

0: संगीत से जुड़े आपके मनपसंद फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने में आपका बहुत बहुत स्वागत है। किन से
1: हेलो
0: हमारी
1: मैम,
0: बात हो
1: मैं
0: रही है?
1: काव्या बात कर रही हूँ। काव्या?
0: काव्या, कहाँ से बोल रही हैं आप?
1: मैं सतना जिले से बात कर रही हूँ।
0: सतना से। काव्या, क्या करती हैं आप?
1: मैं स्टडी करती हूँ।
0: आवाज लग रही है आपकी कि आप स्टूडेंट हैं। क्या
1: जी,
0: पढ़ती हैं, कौन सी क्लास में पढ़ती हैं या कॉलेज में पढ़ती हैं?
1: मेरा इस साल 12th है
0: अरे, बोर्ड एग्जाम जी, तो कैसी तैयारी चल रही है आपकी?
1: मैम। तैयारी तो सही है, बस मैंने आज फर्स्ट बारी कॉल किया है।
0: कॉल किया है उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका कॉल भी लग गया तो आपको तो खुशी बहुत हो रही होगी।
1: बहुत खुशी हो रही है। आप कौन बात कर रही हैं?
0: मैं आकांक्षा बोल रही हूँ। आज क्या सुनना चाहती हैं आप?
1: मूवी का नाम है गब्बर इज बैक।
0: गब्बर इज बैक जी, इस फिल्म का कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: तेरी मेरी कहानी, बारिशों का पानी।
0: तो बारिश के मौसम के लिए ये गीत सुनना चाहती हैं या इस गीत से जुड़ी कोई आपकी याद है?
1: बरसात का मौसम आ गया इसलिए।
0: ये गीत आपको पसंद है? ठीक है। काव्या जी, किस सब्जेक्ट से आप 12th कर रही हैं? क्या लिया है आपने?
1: मैं बायो।
0: बायोलॉजी, साइंस लिया है आपने। डॉक्टर बनेंगी?
1: जी
0: ठीक है, तो आपके आगे भविष्य के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छे से मेहनत कीजिएगा और आपकी मेहनत ज़रूर रंग लाएगी, ये हमारा विश्वास है।
1: थैंक
0: आपने
1: यू मैम।
0: आपने फ़ोन किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लीजिए, सुनिए अपनी पसंद का ये गीत।

0: हेलो।
1: नमस्कार, फोन करें गीत सुने कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
0: नमस्कार मैडम।
1: नमस्ते, कौन बोल रहा है, अपना परिचय दीजिए।
0: ओम प्रकाश प्रजापत बोल रहा हूँ मैडम।
1: ओम प्रकाश प्रजापति जी, कहाँ से बात हो रही है आपसे हमारी?
0: जिला खरगोन, तहसील भगवानपुरा, ग्राम पंचायत दुलकोट से बात कर रहा हूँ।
1: खरगोन, मध्य प्रदेश
0: जी मैडम।
1: जी, कैसे हैं आप?
0: बढ़िया है मैडम। पानी, बारिश हो रही है, आज रात भर भी हो गई है और अभी भी बारिश चल रही है हमारे यहाँ पे।
1: बारिश का आनंद ले रहे हैं?
0: जी मैडम, अभी घर पे ही है।
1: अच्छा, आज क्या सुनना पसंद करेंगे आप?
0: गाना सुना दिए जी, ब्लैक मेल फिल्म का, पल पल दिल के पास।
1: ठीक है, लीजिए तो अपनी पसंद पर सुनिए फिल्म ब्लैकमेल का ये गीत। नमस्ते।
0: जी मैडम।

0: हेलो, नमस्कार।
1: कालीचरण यादव, ग्राम संदलपुरात्री से। जी
0: कालीचरण यादव जी,
1: जी
0: कार्यक्रम फोन करें गीत सुने में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप?
1: अच्छा मैडम, आप कौन बोल रही हैं?
0: मैं आकांक्षा बोल रही हूँ।
1: मेरे को गाना सुनना है।
0: गाना सुनने के लिए तो आपने फोन किया है, गाना तो हम
1: जी
0: आपको
1: जी
0: सुनवाएंगे ही, क्योंकि आज कार्यक्रम यही है। पहले आपसे बात तो कर लें हम।
1: हाँ, बात कर लो आप।
0: जी कैसे हैं आप?
1: अच्छी मैडम,
0: अच्छे हैं। कैसा समय बीत रहा है इस समय आपका?
1: समय बीत रहा, गर्मी बहुत पड़ रही है मैडम,
0: बारिश का मौसम है? बारिश नहीं हो रही है आपके यहाँ?
1: बारिश बहुत हो रही है ग्वालियर में, बहुत बारिश हो रही है।
0: अच्छा, तो मौसम तो सुहावना होगा ना कालीचरण जी।
1: गर्मी जाना पड़ रही है, मौसम मौसम ठंडक है पर गर्मी जाना है।
0: अच्छा, क्या करते हैं आप?
1: मैं घर पे पान की खेती करता हूँ, गाँव में रहता हूँ संदलपुर, गाँव आखिरी पास गाँव मैडम मेरा ग्वालियर पास में, पान
0: अच्छा,
1: की खेती करता हूँ, देसी पान होता हमारे गाँव में। जी,
0: तो पान के शौकीन लोगों को, लोगों तक अच्छे अच्छे पान भिजवाते हैं आप?
1: हाँ खिला दे पान उनको।
0: हाँ जी। अच्छा, आज पसंद बताएं अपनी, क्या सुनना चाहते हैं?
1: जीवन मृत्यु पिक्चर का गाना सुनवाना।

0: हेलो नमस्ते। कार्यक्रम फोन करें गीत सुने में आपका स्वागत है। किन से हमारी बात हो रही है?
1: हाँ जी, नमस्कार मैडम।
0: नमस्ते, कौन बोल रहे हैं?
1: मैडम जी, लोकेंद्र वर्मा बोल रहा हूँ, नानखेड़ा बस स्टैंड, उज्जैन, मध्य प्रदेश से। मैडम
0: लोकेंद्र जी,
1: जी, मैडम
0: उज्जैन से, कैसे हैं आप?
1: बस बिल्कुल मैडम जी, मस्त रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं और आकाशवाणी भोपाल से जुड़े हुए रहते हैं। और हम तो भोपाल आकाशवाणी को आज से नहीं, करीब 25-30 सालों से सुन रहे हैं मैडम।
0: तो बस हम चाहते हैं ये आपका साथ ऐसे ही बना रहे, आप यूं ही हमारे कार्यक्रमों को सुनते रहें।
1: जी मैडम जी, अब तो अच्छा लगता है, अब तो आकाशवाणी भोपाल DTH के माध्यम से भी सुन सकते हैं, मोबाइल ऐप के माध्यम से सुन सकते हैं। पहले हम रेडियो पर सुनते थे पुराने दौर में,
0: जी
1: अब रेडियो का धीरे धीरे जैसे कह चलन तो बहुत है, पर अब रेडियो पे कम सुनाई देते हैं। अब डिजिटल जो प्लेटफॉर्म आ गए हैं, ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म फेसबुक और व्हाट्सएप पे भी आपके प्रोग्राम की मतलब जो अपडेट मिलती रहती है फेसबुक पर हमें
0: जी
1: प्रोग्राम की।
0: डिजिटलाइजेशन होने के कारण देखिए कितना फायदा है कि दूर दूर के श्रोता हमसे जुड़ जाते हैं।
1: जी जी मैडम जी, और अच्छा लगता है, कार्यक्रम अच्छे लगते हैं आपके, फोन करें गीत सुने वह भी अच्छा लगता है, और ये फोन वाले प्रोग्राम हैं और जो भी परिचर्चा आती है सभी प्रोग्राम सुनते हैं, अच्छे लगते हैं मैडम।
0: आपका पसंदीदा कार्यक्रम कौन सा है लोकेंद्र जी?
1: मैडम जी, अधिकतर तो मैं फोन वाले प्रोग्राम सुनता हूँ, और एक बात, आपकी गीत हमारे वो अच्छा लगता है, क्योंकि उसमें विषय, अलग अलग विषय आते हैं ना,
0: जी,
1: उस पर परिचर्चा होती है, सभी श्रोता मित्रों की विचार विचार सुनने को
0: जानने को
1: मिलते
0: मिल
1: हैं,
0: जाते हैं। जी
1: जिसमें बात श्रोता मित्रों की रहती है और गीत आपके रहते हैं।
0: हाँ जी, तो मतलब आपको फोन इन प्रोग्राम ही ज़्यादा पसंद है।
1: जी जी मैडम जी, बिल्कुल।
0: जी तो आज आप क्या सुनना चाहते हैं बताइए।
1: ये गाना है मैडम जी, फिल्म का नाम है नसीब, ये नसीब गोविंदा वाली है।
0: अच्छा,
1: हाँ, इसमें गाना है शिकवा नहीं किसी से, किसी से गिला नहीं।
0: तो ये सैड सॉन्ग क्यों सुनना चाहते हैं, इसके पीछे की कोई वजह है?
1: मैडम जी, बहुत जगह मैंने ये गीत की चॉइस की है, पर मुझे कहीं गीत मिला नहीं, पर मैंने आज सोचा कि भोपाल आकाशवाणी पर फोन लगेगा तो यह गीत की चॉइस करूंगा मैं।
0: अच्छा,
1: और
0: इस
1: नहीं तो कुछ दोस्त भी हैं मेरे,
0: हाँ जी, नाम लीजिए उनका, बताइए।
1: राम राम बाबू मालवी जी हैं भोपाल से, प्रेम सिंह जी हैं और भगवान सिंह जी हैं और शारदा प्रसाद जी।
0: ठीक है, तो लीजिए सुनिए अपनी पसंद का ये गीत, और साथ ही आपके सभी दोस्त भी इस गीत का आनंद लेंगे।
1: जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: नमस्ते।

0: कार्यक्रम
1: हेलो।
0: फोन करें गीत सुने में आपका स्वागत है।
1: हाँ नमस्ते मैम,
0: नमस्ते,
1: हम बोल रहे हैं पंडित शिवनारायण तिवारी सागर से।
0: शिव नारायण तिवारी जी, नमस्कार, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप?
1: बहुत बढ़िया है, मौसम बढ़िया है।
0: हाँ जी, मौसम तो बहुत बढ़िया है, तो मौसम का आनंद कैसे ले रहे हैं आप?
1: अरे बहुत बूंदाबांदी होती है, कभी अच्छी हवा चलने लगती है, बादल गरजता है, बिजली चमकती है।
0: जी, ऐसे में कभी आपको काम पे तो निकलना ही पड़ता है, फिर आप क्या करते हैं?
1: बिल्कुल बिल्कुल जाना पड़ता है।
0: जी, आज आप क्या सुनना चाहते हैं?
1: आज सुनवाना आप बेताब फिल्म का बादल क्यों गरजता है।
0: मौसम से रिलेटेड गाना ही आज आप सुनना चाहते हैं?
1: जी
0: तो लीजिए, सुनिए अपनी पसंद का फिल्म बेताब का ये गीत।
1: जी
0: नमस्ते।

0: नमस्ते, कार्यक्रम फोन करें गीत सुने में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फोन के उस पार कौन है, हमारी किन से बात हो रही है, अपने बारे में बताइए।
1: हेलो, गुड मॉर्निंग मैम।
0: गुड मॉर्निंग,
1: मैं रानू गुप्ता बात कर रही हूँ देवास से।
0: रानू गुप्ता जी, आप नियमित श्रोता हैं हमारी, कैसी हैं
1: और
0: आप?
1: कैसे हैं आप?
0: हम ठीक हैं, आप कैसी हैं?
1: हम भी अच्छे हैं, और आपसे बात हो रही है तो और ज्यादा अच्छे, क्योंकि आप ना हमारी पसंदीदा अनाउंसर में से एक है।
0: ओ, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे यहाँ सभी अनाउंसर्स आपकी पसंदीदा हैं, क्योंकि आपकी सभी से बात होती है और बहुत अच्छी बात होती है। रानू जी, मौसम कैसा है वहाँ देवास
1: मौसम
0: में?
1: आज सुबह से यहाँ बारिश हो रही है।
0: अच्छा, तो बारिश के इस मौसम में कुछ खास कर रही हैं आप?
1: कुछ खास तो बस, शाम को एक शादी में जाना है इंदौर, तो
0: जी,
1: बस उसी की तैयारियों में लगी हुई हूँ।
0: शाम की शादी की तैयारी अभी सवेरे से?
1: आज मतलब जो मेरी भांजी है उनकी शादी तो हो चुकी है, बट रिसेप्शन है तो जाना है शाम को, बस उसी में लगी हुई हूँ।
0: ठीक है, आज कौन सा गीत सुनना चाहती हैं बताइए।
1: मूवी का नाम है खट्टा मीठा, और गाने के बोले आइला रे आइला, क्योंकि ये जून का महीना मुझे बड़ा खूबसूरत लगता है, मतलब एकदम हरियाली हरियाली छाती है।
0: हाँ, मौसम तो बहुत अच्छा है। ये गीत आपको क्यों पसंद है रानू जी?
1: थोड़ा डांस करने का मन कर रहा।
0: आहा, शाम को है भांजी का रिसेप्शन, उसकी तैयारी में डांस का मन कर रहा है आपका, हमें तो
1: जी,
0: यही
1: थैंक
0: लग रहा है। ठीक है
1: यू मैम।
0: रानू गुप्ता जी, आपने हमें फ़ोन किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो,
1: हेलो नमस्कार।
0: नमस्ते।
1: मैं तहसील चंदवा मध्य प्रदेश से देवीदास वाले बोल रहा हूँ। फोन करे जी सुने? हाँ
0: कैसे हैं आप?
1: बहुत बढ़िया हूँ मैडम जी। और यहाँ बहुत बारी मस्त बारिश हुई है, बढ़िया
0: जी
1: खतरनाक।
0: खतरनाक।
1: हाँ बहुत मजा आ गया।
0: चलिए ऐसे ही आनंद आप लीजिए इस मौसम का। आज कौन सा गीत सुनना चाहते हैं आप?
1: चलो सजना जहाँ तक घटा चले।
0: जी ये गीत है मेरे हमदम मेरे दोस्त फिल्म का।
1: हाँ मैडम जी बड़ो मेरे हमदम मेरे दोस्त।
0: जी बिल्कुल, ये गीत आप तक पहुंच रहा है बस कुछ ही देर में। नमस्ते। श्रोताओं, वक्त का पहिया चलता रहता है और खूबसूरत लम्हे यादों में बदलते रहते हैं। बातें तो दिल की खत्म नहीं हुई पर

घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि अब हम आपसे अनुमति लें। जी हाँ, वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। आज का ये सुरीला सफ़र और आपकी प्यारी प्यारी बातें और लाजवाब गानों की फरमाइशें, सच मानिए आज का दिन आप सबने बेहद ख़ास बना दिया है। ऐसे ही बने रहिए आकाशवाणी मध्य प्रदेश के साथ।

भूमि पूजन भी करेंगे। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने कहा है कि मंत्रालय ने मादक पदार्थों की मांग में कमी लाने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना शुरू की है। छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध पंडवानी गायिका और पद्म विभूषण से सम्मानित तीजन बाई का आज सुबह रायपुर के एम्स में निधन हो गया। वे लंबे समय से बीमार थीं और रायपुर के एम्स में उनका इलाज चल रहा था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीजन बाई के निधन पर दुख व्यक्त किया है। सरकार ने मूल्यों में स्थिरता के लिए प्याज की खरीद मूल्य में 13% की वृद्धि की है। प्याज की कीमत अब 1,875 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़कर 2,125 रुपये प्रति क्विंटल हो गई है। उपभोक्ता मंत्रालय ने कहा है कि संशोधित खरीद मूल्य से प्याज उत्पादक किसानों को बेहतर लाभ मिलेगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार आज ओंकारेश्वर और महेश्वर के धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों के दौरे पर हैं और प्रदेश में सेफ क्लिक 2.0 साइबर जागरूकता अभियान के अंतर्गत जीआरपी भोपाल द्वारा कल 5 किलोमीटर साइबर जागरूकता मैराथन का आयोजन कर नागरिकों को साइबर अपराधों से बचाव के संबंध में व्यापक रूप से जागरूक किया गया। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

0: अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने, प्रस्तुति थी आकांक्षा की, ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अब से कुछ देर बाद शिवपुरी में अडानी समूह द्वारा स्थापित किए जा रहे लगभग 2500 करोड़ रुपए की लागत के रक्षा संयंत्र का शिलान्यास करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव और केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया 211 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण और

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। दोपहर के 12 बजे हैं। लीजिए अब सुनिए आपकी फरमाइश। आपकी फरमाइश सुनने वाले सभी श्रोताओं को छाया पाठक का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, सबसे पहले आपको सुनवाते हैं इन श्रोताओं के पसंद का फिल्मी नगमा, जिसे हमने लिया आपकी कसम फिल्म से। आवाज़ें किशोर कुमार और लता मंगेशकर की हैं। आनंद बख्शी के बोलों को संगीतबद्ध किया राहुल देव बर्मन ने। सुनना चाहा है छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरेंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक वर्मा, झाविंद्र कुमार वर्मा। बेमेतरा से ये पत्र आया सुरेश सारथी, पूर्णिमा सारथी। मैंक रेडियो श्रोता संघ नवागढ़ कटई से नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, सीमा शारदा दामिनी वर्मा का। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

कार्यक्रम का अगला गीत सुना चाहा है बिलहरी बड़खेड़ा कटनी से संतोष सिंह ठाकुर, रामाधार दुबे, सुमेर पटेल, सुदामा सेन, बारेलाल बढ़ई, फेरन यादव, शेख मुनीर मंसूरी और ग्राम पहरूरा से ये पत्र आया राम कुमार लोधी और संजय पुरी का। इन श्रोताओं ने सुना चाहा है मनहर का गाया, निदा फाजली का लिखा, उषा खन्ना का संगीतबद्ध किया ये गाना, जिसे हमने लिया आप तो ऐसे ना थे फिल्म से।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप सुन रहे हैं आपकी फरमाइश कार्यक्रम का अगला गीत सुना चाहा है घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया प्रियंका पंचोलिया गुनगुन संप्रीत हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया ने इसी गीत की फरमाइश भेजी है सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा ऋतिक मल्होत्रा प्रतीक जयवीर सिंह ठाकुर अमनदीप अनिल शर्मा कालका से शुभचंद्र बजाज बिट्टा और साहिल ने इनकी पसंद है सागर फिल्म का गीत जिसे आवाज़ें दी किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने।

अभिनेत्री। लीजिए इस फिल्म का गीत सुनिए, लता मंगेशकर का गाया हुआ। मजरूह सुल्तानपुरी की शब्द रचना है, संगीत तैयार किया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। सुना चाहा गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभयनंद परमानंद पंकज प्रमोद रोहित और मोहित ने। नेपाल पैलेस सागर से ये पत्र आया है, तिलक राणा मीना राणा मोनिका नूपुर ऋषि।

लता मंगेशकर के आवाज़ में गाए मजरूह सुल्तानपुरी के इस गीत को लिखे हुए संगीतबद्ध किया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और फिल्म थी अभिनेत्री। इस गीत के साथ ही कार्यक्रम आपकी फरमाइश यहीं समाप्त करने की छाया पाठक को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण, वक्त है छोटे से अंतराल का।
1: सूचना हो, समाचार हो या हो सुरताल, सबकी पहली पसंद आकाशवाणी भू।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: दिल दे दिया है जान तुम्हें देंगे।
2: इतनी वफादारी, आजकल कौन सोचता है ये सब। जीने के हैं चार दिन तो जियो जी भर के।
3: तुम्हें पता नहीं है शायद, संक्रमित व्यक्ति के साथ असुरक्षित यौन संबंधों से एचआईवी एड्स और यौन संक्रमण का खतरा सबसे अधिक होता है। इसीलिए वफादारी बहुत जरूरी है और कंडोम का उपयोग भी स्वस्थ यौन व्यवहार के लिए जरूरी है। उससे एचआईवी एड्स के साथ ही यौन संक्रमणों और अनचाहे गर्भ से भी सुरक्षा मिलती है, समझे?
2: हाँ भाई समझा।
3: तो संयम, वफादारी और कंडोम अपनाओ, सुरक्षित यौन व्यवहार बनाएं। और हाँ, अधिक जानकारी के लिए अपने मोबाइल से 1097 डायल करें।
4: मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
5: कभी हंसाकर, कभी रुलाकर, कभी कहानी बनकर, तो कभी कविता बनकर, कभी कोई तराना तो कभी जिंदगी नामा, कभी खबरें हमारी जिंदगी में रंग भरे, मन की बात, जन जन की बात, 1936 से आकाशवाणी आपके।

0: रेनी सीजन को हम जरूर एंजॉय करें,
1: गर्मा गर्म पकौड़े खाएं,
0: लॉन्ग ड्राइव पर जाएं,
1: भीगते झूमते नाचे गाएं,
0: लेकिन बारिश के पानी को यूं ही बर्बाद न होने दें,
1: पानी की एक एक बूंद बचाएं।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
4: बरसात के सुहाने मौसम में जगह जगह गड्ढों में भरने लगता है गंदा पानी, कीचड़ गंदगी का फैल जाता है साम्राज्य, भिन भिन आती हैं मक्खियाँ, पनपने लगते हैं मच्छर, मौसमी बीमारियाँ देने लगती हैं दस्तक,
5: दिल करे हाय
6: हाय,
5: कोई ये बताए क्या होगा,
7: हमें कुछ नहीं होगा अगर

0: हम सभी अपने घर और आसपास सफाई रखें, गड्ढों में पानी न जमा होने दें, मच्छरदानी का प्रयोग करें, पानी की शुद्धता का ध्यान रखें, ताज़ा हल्का भोजन करें, खुले में रखें, कटे फल और खाद्य पदार्थ न खाएं
1: और
0: फिर लें आनंद इस मौसम का।
2: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
3: नमस्कार, मैं राजीव वर्मा स्वच्छता ही सेवा अभियान से जुड़ा हुआ हूँ और आप सभी से गुजारिश करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि आप भी इससे जुड़ें और अपने कार्यालय, घर, कॉलोनी, मोहल्लों को स्वच्छ रखें। धन्यवाद। जय हिंद।
4: पानी की हर बूंद है अनमोल,
5: बहने ना दें इसे बेमोल,
4: आओ मिलकर सच कर दें हम धरती माँ का सपना,
5: बूंद बूंद जल संरक्षण कर पहना दें हरियाली का गहना।
6: मीडियम वेव 188.32 मीटर्स पर यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है कार्यक्रम संग्रहालय से, जिसमें आज आप सुनेंगे धारावाहिक हंसना मना है, इसका भाग 4।

लीजिए दोस्तों, एक बार फिर इस नई कड़ी के साथ हाजिर है आपका अपना दोस्त रजनीकांत त्रिवेदी। एक ट्रेन की कहानी है जिसमें मैं सफर कर रहा था, वो किस स्पीड में चल रही है इसका अंदाज आपको आगे हो जाएगा। वो 20 की स्पीड में थी कि 15 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड में थी कि 50 की थी कि 100 की थी, इसका अंदाज़ ज़रा देखिए। चली जा रही है ट्रेन, गर्मी का मौसम है, पसीना पसीना हो रहे हैं हम। जो पंखे लगे थे वो सिर्फ दिखने भर के थे, वो चल नहीं रहा था, एक दो ज़रूर चल रहे थे। चली जा रही थी ट्रेन, अचानक वो ट्रेन रुक गई, थोड़ा सा जंगली एरिया आया। जब वो ट्रेन रुक गई तो मैंने पूछा कि यार अचानक क्या हो गया, ये ट्रेन रुक क्यों गई है, लगता कोई स्टेशन आया। तो एक दो लोगों ने कहा, नहीं नहीं नहीं साहब, स्टेशन नहीं आया है, क्या हुआ है, एक भैंस वो इंजन के आगे आगे आ गई है। तो हमने कहा, वो भैंस कट गई है क्या? कह नहीं साहब, कट नहीं गई है, वो खड़ी हो गई है। तो फिर क्या किया जाए? वो कह साहब, रेलवे के जो गार्ड हैं और दूसरे कर्मचारी हैं वो जा रहे हैं उस भैंस को आगे इससे भगा देंगे, फिर अपनी ट्रेन चलेगी। हमने कहा बहुत बढ़िया। दो चार मिनट ट्रेन रुकी रही, फिर गाड़ी चालू हो गई, चलती रही ट्रेन, चलती रही ट्रेन, चलती रही ट्रेन, चलती रही ट्रेन, अचानक फिर ट्रेन रुक गई। मैंने कहा, भैया अब क्या हुआ, कोई स्टेशन आया क्या, कोई स्टेशन आया क्या? तो लोगों ने कहा, नहीं साहब स्टेशन तो नहीं आया। तो हमने, फिर ये ट्रेन क्यों रुक गई? तो एक सज्जन बोलते हैं कि वो वाली भैंस जो पीछे आ गई थी ना, वही वाली फिर से आगे आ गई है। अब साहब हुआ क्या, हम लोग तो चले जा रहे थे, साम दाम दंड भेद, भाई सफ़र तो तय करना ही करना था, बहुत लंबा सफ़र था हमारा। चली जा रही ट्रेन, बड़ा मज़ा आया, गर्मी बहुत हो रही थी, अचानक वो ट्रेन एक स्टेशन पे रुक गई। हमने कहा चलो स्टेशन तो आया है, चाय वाय लेने लगा मैं, तो अचानक क्या देखता हूँ कि एक लड़का पंखे बेच रहा था, हाथ वाले पंखे जो हाथ से चलते हैं, वो वाले पंखे लेके आवाज़ लगा रहा था।

वाला पंखा। तो मैंने कहा भाई गर्मी तो मेरे को भी लग रही है, घंटे 4 घंटे का सफर है, पंखा ले लिया जाए। मैंने पंखे वाले को बुलाया, हमने भाई पंखे कितने कितने के, एक है 4 आने का, दूसरा है 8 आने का। हमने कहा भाई एक काम कर, 2-4 घंटे के लिए कौन पैसे ज्यादा खर्च करे, तू एक काम कर 4 आने वाला दे दे। तो उसने मुझे 4 आने वाला पंखा दे दिया। हम बड़े खुश कि चलो कुछ ठंडी ठंडी हवा आएगी। ट्रेन जब चलने को थी

0: उसके 2 मिनट पहले ही मैंने वो पंखा लिया और उसको हिलाने लगा। मैं हिलाता हूँ तो क्या देखता हूँ, आधा मिनट भी वो पंखा नहीं चला, उसके अंदर जितने भी मटेरियल लगा था पंखे का वो पूरा का पूरा जमीन में आ गया। हमने कहा अरे यार ये क्या हुआ, 25 पैसे खर्च किए और इसमें तो हवा ही नहीं निकल रही, ये तो टूट गया, 2 मिनट 1 मिनट में भी टूट गया। मैंने फौरन पंखे वाले को बुलाया, हमने पंखे वाले इधर आना भाई, इधर आइए, ये क्या दिया आपने, ये कैसा पंखा दिया आपने, मैंने जैसे ही इसको हिलाया है तो ये तो टूट गया। तो पंखे वाला बोलता है आपने कितने वाला पंखा लिया था, मैंने कहा भाई 4 आने वाला पंखा लिया था। आपने गलती की साहब, ये जो 4 आने वाला पंखा और 8 आने वाला पंखा है इसमें जरा सा फर्क है, ये जो 8 आने वाला पंखा मैं देता हूँ ना वो उसको ऐसे हाथ में पकड़ना पड़ता है और हाथ को ऐसे हिलाना पड़ता है तो हवा लगती है ना। हमने कहा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा, और ये 4 आने वाले की क्या खासियत है, इसकी खासियत ये है साहब इसको हाथ में ऐसा पकड़ना पड़ता है और अपना सिर को हिलाना पड़ता है बड़ी जोर जोर से। हमने ट्रेन आगे बढ़ी, बड़ा मज़ा आ रहा था साहब, सफ़र का अलग आनंद आ रहा था। अचानक जहाँ मैं बैठा था उसके ऊपर की तरफ एक दो लोग बैठे हुए थे, कुछ इस तरफ बैठे थे कुछ उस तरफ बैठे थे। एक बुज़ुर्ग जैसे एक नौजवान साथी से कुछ पूछते हैं, वो बुज़ुर्ग ने नौजवान से पूछा क्यों भाई कहाँ जा रहे हो, तो वो लड़का बोलता है वो बुज़ुर्ग से, कहले मैं तो साहब जबलपुर जा रहा हूँ। कहले अच्छा अच्छा जबलपुर, तो भाई मैं भी जा रहा हूँ। कहले अच्छा बाबू जी जबलपुर तो हम भी जा रहे हैं। कहले वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है भाई, जबलपुर में आप कहाँ रहते हैं। कहले जबलपुर में मैं तो वहाँ मतलब जो बड़ा फुहारा है, कमानिया गेट है, बड़ा फुहारा है, व्यापारी क्षेत्र है, बड़े अच्छे अच्छे लोग रहते हैं वहाँ पर, वहाँ रहता हूँ। तो बुज़ुर्ग नौजवान से बोलते कहले बहुत खूब बात है भाई, वाह वाह वहाँ तो हम भी रहते हैं। तो लड़का बोलता अच्छा बाबू जी कितनी अच्छी बात है, आप वहाँ पर कहाँ रहते हैं साहब। कहले वहाँ एक कृष्ण भगवान का मंदिर है उसके पास में रहता हूँ। तो लड़का बोलता कहले क्या बात है बाबू जी वहाँ तो हम भी रहते हैं, अच्छा कृष्ण भगवान के मंदिर के पास। बुजुर्ग बोलते हैं बहुत खूब बात है, वहाँ आप कहाँ रहते हैं। कि साहब कृष्ण भगवान के मंदिर के बिल्कुल बाजू से जो गली जाती है ना, जहाँ वकील साहब रहते हैं और एक कपड़े वाले भैया रहते हैं, एक किराने वाले भैया रहते हैं। हमने हाँ हाँ हाँ हाँ मैं वहीं रहता हूँ। फौरन बुजुर्ग बोलते कहले कितनी अच्छी बात है बेटा, देखो है जहाँ तुम रहते वहाँ हम रहते, जिस शहर में तुम रहते उसी शहर में हम रहते। तो बुजुर्ग ने बोला बेटा एक बात और बताओ, तुम्हारे मकान का नंबर क्या है। तो लड़का बोलता हमारे मकान का नंबर तो 115 है। तो बुजुर्ग बोलता कहले कितना इत्तेफाक, क्या बढ़िया बात है बेटा, है कहले मेरे मकान का भी नंबर 115 है। मेरा हो गया दिमाग खराब। हमने यार ये दोनों बुजुर्ग और ये नौजवान एक ही शहर में रहते हैं, एक ही महल्ले में रहते हैं, पूरा एरिया एक ही गली मकान, वो नंबर वही सब कुछ वही, लेकिन ये आपस में पहचानते नहीं कि ये कौन है और वो कौन है। मैंने अचानक सवाल किया किससे, बुजुर्ग से। हमने क्यों बुजुर्ग बार आप एक बात बताइए, आप दोनों एक ही शहर में रहते हैं, एक ही इलाके में रहते हैं, एक ही गली में रहते हैं, अरे एक ये तो छोड़िए आप एक ही मकान में रहते हैं और उसके बाद आप लोग आपस में पहचानते नहीं कि ये कौन है वो कौन है। तो बुजुर्ग को कुछ बोले, वो लड़का ऊपर से कूदा मेरे सामने और मुझसे बोलता है आप चुप रहिए, हम लोग बाप बेटे हैं, हम लोग बोर हो रहे थे इसलिए मनोरंजन कर रहे हैं। और अब एक और हंसोड़, विनय जैन, जब देखो तब दांत निपोरी इनकी आदत है, फिकर नहीं करते किसी को पसंद आए या ना आए। देखिए तो क्या कहते हैं ये,
1: हंसी की एक फुलझड़ी प्रस्तुत कर रहा हूँ कि साहब कॉलेज की एक लड़की अपने प्रिंसिपल साहब के पास पहुंची और बोली
2: सर।
1: क्या बात है
2: सर, कॉलेज के सभी लड़के मेरे को ना बुआजी कह के चिढ़ाते हैं, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता सर।
1: रुक जाओ बेटा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, रमेश आप खड़े हो जाइए, आप इनको बुआ जी बोलते हैं।
3: नो सर, मैं इनको बुआ जी नहीं बोलता।
1: बैठ जाइए, सुरेश आप खड़े हो जाइए, आप जरूर इनको बुआ जी बोलते होंगे। बोले माफा भगवान की कसम खा के कह रहा है, हम तो बोला ही नहीं सकते। बोले भैया भगवान ने तुम्हारा मुंह दिया है, कैसे नहीं बोल सकते, कैसे नहीं बोल सकते। बोले माँ साहब ऐसे नहीं बोल सकते, काहे कि सारा कॉलेज तो हमें फूफा जी कहता है।
3: एक ऐसे साहब जिन्हें बोलने में बहुत परेशानी महसूस हुआ करती थी, बहुत सारी बातें अटक अटक कर बोला करते थे। तो जैसे ही साहब प्लेटफॉर्म पर खड़े हुए अखबार पढ़ रहे थे और एक सज्जन अपना बहुत सारा सामान लेके प्लेटफॉर्म में एंट्री हुए, अब उनको क्या मालूम कि सामने वाले साहब अटक अटक के बोला कर

0: बड़ा हाथ में सामान वगैरह लिए हुए थे, एक हाथ में छाता था, एक हौलदार कंधे में था, एक संदूक दूसरे हाथ में था, एक बंदूक उस कंधे में थी, और पोजीशन वजन से बिल्कुल डाउन हुई जा रही थी। जैसे ही प्लेटफॉर्म में एंट्री हुए, उनने आना देखा, ताओ अटक के बोलने वाले साहब के पास पहुँच के फ़ौरन सवाल किया, क्यों भाई साहब, वो भोपाल जाने वाली राजकोट एक्सप्रेस कहाँ है, जल्दी बता दो, बहुत भजन है भाई। तो अटके लाल साहब, जिनका पूरा नाम अटक लाल झपट सिंह था, उन्होंने फौरन जवाब दिया, किसी और से पूछा होता तो बता दिया होता, अब तक भोपाल जाने वाली राजकोट एक्सप्रेस वो जा रही। साहब भी बड़े गुस्से में आ गए, अटकलाल झपट सिंह जी, और बस स्टैंड पहुंच गए। बोले साहब मैं बस से जाऊंगा। सारे लोग बस स्टैंड पहुंच गए। बस जैसे ही चली, सौभाग्य कहिए या दुर्भाग्य, एक सज्जन बस में और चढ़े, और वो भी बोलने में अटकते थे, और बैठे कहाँ, वो अटकने वाले सज्जन के बाजू ही में। जैसे ही बस चली, जो नए सज्जन थे, उन्होंने पुराने सज्जन से सवाल किया,
1: क्यों भाई साहब, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है सीता, और तुम्हारा नाम क्या है?
2: मेरा नाम भी घसीटा है, मगर उतना नहीं जितना तुमने घसीटा।
0: अपनी श्रीमती जी को लेकर साड़ी की दुकान में पहुंचे, काउंटर मैन से जाके क्या बोलते हैं,
1: क्यों भाई साहब, साड़ी है?
0: तो काउंटर मैन जवाब देता है, हाँ भाई साहब साड़ी है, मगर इतनी लंबी नहीं है। अपने चाचा जी की किताबों की दुकान में पहुंचते हैं। किताबों की दुकान चाचा जी की बुक्स एंड स्टेशनर्स के नाम से एक बाज़ार में खुली हुई थी, और चाचा जी की जैसी दुकान में जाते हैं तो चाचा जी से पहुंचते ही से चाचा जी भोजन करने के लिए जाने वाले रहते हैं, तो फौरन वो अपने भतीजे को बुलाते हैं और बोलते हैं कि अच्छा हुआ आप आ गए, हमारी दुकान में बैठो और हम खाना खाने जा रहे हैं, और भतीजे को बिठा देते हैं। तो साहब जैसे ही चाचा जी ने उनसे बोला कि देखो तुम अटक बेटा, तुम यहीं दुकान में बैठो और मैं खाना खा के आता हूँ, समझे, और ध्यान रखना ग्राहकी का जरा, ठीक है चाचा जी, आप बिल्कुल चिंता मत करो। जैसे ही चाचा जी गए, फौरन एक ग्राहक आया और इनसे पूछा, भैया वो संस्कृत की कुंजी देना। साहब ने फौरन कुंजी निकाल के सामने काउंटर पर रख दी, कितने की?
1: 7 रुपये, 75 पैसे।
0: क्या भाई साहब आप मजाक कर रहे हैं, इतनी बड़ी दुकान चलाते हैं, अभी थोड़ी देर पहले हमारा छोटा भाई 7 रुपये में लेके गया है, 2 घंटे बाद ऐसा बिल्कुल 75 पैसे रेट बढ़ गया, बिल्कुल गलत है ये तो।
1: तुम चुप रहो, वो लड़का 75 पैसे बोलने के पहले ही ले गया।
0: एक साहब बहुत ज़्यादा गप हाँकने के शौकीन थे, शिकार के तो शौकीन थे ही, अपने किसी ज़माने की बात लेकर बैठ गए, चार लोगों के बीच में अपना शिकार का वाकया सुनाने लगे।
3: बोले साहब हुआ यूं कि मैं गया जंगल और मैंने देखा कि एक शेर चला जा रहा है, अब मुझे आया गुस्सा तो मैंने निकाली अपनी बंदूक, जैसे निकाली बंदूक तो शेर ने बंदूक देखी तो एक छलांग लगाई, और शेर ने जैसी छलांग लगाई तो मैं घबरा गया, और जैसे मैं घबराया तो शेर ने मेरे को दिया पटक।
0: बोले फिर तो अचानक किसी ने उनको बताया, बोले साहब आपका टेलीफोन आया, कोई आपको फ़ोन पे याद कर रहा है। तो भाई साहब यहाँ गप सुनाते सुनाते वहाँ टेलीफोन पे किसी के साथ बात करने चले गए, आधा पौन घंटा कोई से टेलीफोन पे बात करते रहे, लौट के जैसे ही आए लोगों ने बोला हाँ साहब फिर आगे क्या हुआ? तो साहब तो वैसे ही गप्पी भूल चुके थे कि क्या सुना रहे थे। बोले साहब वो आप शेर का वाक्य सुना रहे थे कि गुस्से में, बोले हाँ फिर हम लोग तो साथ में घूमने गए और बहुत देर बगीचे में बैठे रहे, फिर एक साथ फिल्म देखी और नाश्ता वगैरह किया, वापस आके सो गए।
4: भाई वाह, लतीफे सुनाने में मकरंद बड़नेरकर का जवाब नहीं, यकीन नहीं आता ना, तो चले सुने इनको।
5: एक ट्रैफिक हवलदार सड़क पर खड़े ट्रैफिक का संचालन कर रहे थे, अचानक उन्होंने एक साइकिल वाले को आते हुए देखा

0: और डंडा फटकारते हुए बोले, अरे रुक रुक, बिना हेडलाइट और बिना घंटे की साइकिल चलाता है? साइकिल वाला बोला, हवलदार जी हट जाइए, इसमें ब्रेक भी नहीं है। एक क्लास के दौरान मास्टर जी पढ़ा रहे थे कि पढ़ाते पढ़ाते उनका ध्यान अचानक एक छात्र पर गया। सभी छात्र तो उनकी बात बड़े ध्यान से सुन रहे थे, लेकिन उस छात्र का ध्यान किसी और जगह लगा हुआ था। उस छात्र का नाम गया प्रसाद था, और छात्र जो था वो कमरे के एक कोने में बिल में एक चूहे को अंदर और बाहर आते हुए जाते हुए देख रहा था। बार बार चूहा अंदर आ रहा था, बाहर जा रहा था, और छात्र का ध्यान बिल्कुल उसी चूहे की ओर था। मास्टर जी परेशान हो गए, क्या बात है, कहीं और ध्यान दे रहा। मास्टर जी ने लगभग चीखते हुए कहा, अबे गया? लड़के ने कहा, नहीं मास्टर जी, अभी पूंछ बाकी है।
1: ध्यान रहे, आप सुन रहे हैं एक खास प्रोग्राम जिसका नाम है हंसना।

0: जन्मदिन आपने बहुत मनाए होंगे, खूब मनाए होंगे, बड़े प्यारे प्यारे मनाए होंगे, मगर हमारे दोस्त गोपाल तिवारी शामिल हुए एक खास जन्मदिन पर। सुनिए,
1: घटना गांव की है, और गांव की इसलिए क्योंकि भारत गांव का देश है, गांव में बसता है, और ये पटेल साहब हैं, सरपंच बन गए, पटेल इनकी उपाधि है। उन्होंने अपने बच्चे का जन्मदिन कैसे मनाया वो एक घटना मैं आपको सुना रहा हूं। के पटेल साहब ने पटेलन से पूछा,
2: अरे काय पटेलन?
1: हाँ बोलो।
2: वो अपने गुड्डा को जन्मदिन कब है?
3: गुड्डा को जन्मदिन समझ लो आप, बड़ी जीजी को लड़का छठ में भाव, और जी छोटी को भाव तेरह महीने के बाद चौथ को, और जी समझ लो पंचमी को है, तो जो समझ लो कि हर छठ के दूसरे दिन की बात है। अरे तुम यार हर छठ तीजा ना बताओ, तुम मतलब डेट बताओ ना। हाँ समझ लो, हम तुम्हारा बोला हुआ रहो जब होते से नौकरी को, और तुम गए, तुमने फिर कैंसिल करवा दई, उसके बाद पानी का बरसो रहो खूब कड़क के बिजली, फिर ओरा गिरे थे होते। अरे तुम यार खगलो नहीं यार, तो मतलब बताओगे ये हुआ कब है? डायरी देखो। अच्छा एक मिनट, देख रहे ला कर डायरी, डायरी वायरी उन्होंने देखी, और डायरी देख के बाद उन्होंने बताया कि ये कब हुआ। जे समझ लो कि तीज के दूज की बात, 22 तारीख को भाव, और आज है समझ लो 20 तारीख, कल छोड़ पा रहा हूँ जन्मदिन। हाँ तो कहने लगे ठीक है, अब वो पहले जैसा जन्मदिन नहीं हो। क्या मतलब पहले जैसा नहीं होगा? अरे पहले अपन वो चौक और वो सब नहीं कर लेते थे, मतलब बुला के आरती पूजा टीके चंदन, वो मतलब नहीं होगा। काय अब काय ना हुआ भाई, गुड्डा को तीसरा जन्मदिन वो काय ना हुआ? तो बोले अरे नहीं समझो तुम, अब हम बन गए सरपंच। हाँ बात वो तो बन गए, खूब वोट मिले, अब जी जो है गुड्डा जो है इसका जन्मदिन अपन शहर की स्टाइल में मनाएंगे, लोगों को लगे तो कि नहीं मतलब अपन सरपंच बन गए ना, मतलब थोड़ा कालर खड़ी हो जाए जरा, समझा करो बात को। अब साहब ये हुआ कि उसने कहा कि कैसे करेंगे? करना कुछ नहीं है, अब जैसा आप बोले वैसा करेंगे।
2: एक काम करेंगे, हम शहर से वो कैंडल वेंडल और केक वेक वो सब पूरा ले आएंगे, और तुम पूरे गांव में चर्चा बिल्कुल भजवा देना, समझ गए ना, और फिर उसके बाद जो है अपन बढ़िया सेलिब्रेट करेंगे।
1: बात डिसाइड हो गई, कंप्लीट हो गई कि ऐसा मनाना है। पटेल साहब शहर चले, और शहर से जैसे ही लौट के आए, और उन्होंने दरवाजा खटखटाया, जिस दिन गुड्डा का बर्थडे है उस दिन दरवाजा उन्होंने खटखटाया।
2: पटेलन, पटेलन
3: एक मिनट आ रहा है।
2: अरे क्या कर रहे, जल्दी खोलो यार दरवाजा।
3: एक मिनट आ रही है तुम, मतलब ऐसी जल्दी मचा।
2: अरे जल्दी खोलो, मतलब डेढ़ घंटा हो गया मतलब खड़े हो तुम, कहाँ जा रहे हो उधर?
3: अरे भाई मतलब अब रार की दाल चढ़ी है, उधर खिचड़ी चढ़ी, एक तरफ भी माता रानी की रानी भी बना रहे, अब एक आदमी के तो काम करे मतलब आ तुम खाली यहाँ चले आए।
1: अरे हाँ यार, वो कब हो के मतलब गाड़ी जो है हमारी खराब हो गई, तो ओके मतलब पीछे इंजन में काम निकल आओ, अब इंजन बनवाओ दो चक्का पंचर, चक्का बनवाओ दो फिर पीछे चक्का पंचर, जे माने पूरी नपोर 14 में मतलब पूरी दिक्कत हो गई, और धर माने लाओ करो सामान जो है तो छूट गो।
3: हाँ मैं मान लो, मैं तुम्हारे भरोसे कच्छू नहीं हो सके।
2: अरे नहीं मतलब ऐसी बात नहीं, हम कोशिश हमने पूरी की थी, सब सामान ले लिया था, वो वहीं वो गैरेज में छूट गया।
3: तुम्हारे भरोसे रहते जो चार चार ठैया लड़का बच्चा नहीं, तुम आ जाओ तुम तो अंदर, अब हमने सब व्यवस्था कर ली है।
1: अब साहब ये अंदर आए, और उन्होंने कहा अब ये बताओ कि अब वो कैसे मतलब करेंगे, अब फिर चौक बधाव वाला होगा?
3: नहीं ऐसा नहीं कहा, आप हमें कहीं से समझ रहे भाई, जब आप सरपंच तो हम भी तो कछुआ है, और ऐसा नहीं हम भी खूब पढ़े लिखे हैं।
1: अच्छा कहाँ पढ़ गए?

0: नहीं विप्रौढ़ शिक्षक चल रहे हो आजकल रेडियो में बता रहे, पढ़े पढ़ाए जीवन बनाए और एक नहीं एक दूनी दो चौके पांच छक्के आठ, अलग खूब बढ़िया पढ़े हमने, कोचिंग क्लास पढ़ी हमने।
1: कौन से पढ़ लाई?
0: पंडित जी की ललकच पढ़ी, पंडित जी की बहुत बढ़िया पढ़ा, तुमने पढ़ा दो हमें।
1: तो ठीक है, तुमने व्यवस्था क्या करी जो दिखाओ हमें?
0: केक बना लो।
1: केक बना लो? केक कहाँ से बना लो तुमने?
0: नहीं टीवी पे हमने बाकी रैप शीट देखी थी।
1: क्या देखी रही?
0: रैप?
1: अरे रैप शीट नहीं यार, वो तो तेल होता रैप शीट, रेसिपी, रेसिपी बोलते हैं। दो क्लास और पढ़ लेती बाबू की यहाँ, फालतू बात ना कर तुम बाबू की यहाँ, इतो दही दो सब अंदर कर लो बाबू खुद होते हैं तुम बिल्कुल एकदम। ठीक है भाई ठीक है, गुस्सा नहीं हो तुम, मतलब जो बताओ कहाँ केक कहाँ?
0: जी जी इधर हुआ, देखो टीवी में धरो टीवी।
1: अरे बहुत गजब, बहुत बढ़िया यार। एक बात बताओ तुम।
0: हाँ वो पूछो
1: जी। इतना बढ़िया केक तुमने बनाया कैसे? इतना बड़ा, इतना सुंदर, मतलब बनाया है, ऐसा लग रहा कम से कम 10 किलो से कम का नहीं होगा ये केक। कितना बढ़िया बनाया, कैसे बनाया गया, तुम्हें आइडिया कैसे आया?
0: नहीं कच्छू नहीं, टीवी में हमने रेप शीट देखी, हमने दिमाग लगाओ कि अब जो केक तो हमें बनाने न ओवन है न कच्छू, कैसे बनाए, तो हमने जुगाड़ करो। हम गए कहाँ बाजू में भी जो दुकान है ना किराना की, वो कहाँ गए हम कहीं, फिर हमने उसे कही हमने भैया 6-8 ठैया फैमलेस ब्रेडें दे दूँ।
1: कौन सी ब्रेड है?
0: फैमलेस ब्रेड। अरे फैमिली ब्रेड बोलते यार बड़ी वाली को। हाँ फिर तो बोले फिर हम ब्रेड लाए और ला के ब्रेडों की किनार हमने काट के माहे करी।
1: अच्छा मतलब फेंक दी?
0: हाँ मैं फेंक दी, अलग कर दी। फिर हमने ऐसी 4-6 ठैया ब्रेड धरी और गुड़ की बनाई चाशनी, तो गुड़ की चाशनी फिर ब्रेड फिर चाशनी फिर ब्रेड फिर चाशनी जो रेशो।
1: बहुत बढ़िया, फिर क्या करो?
0: फिर कच्छू नहीं, गुड़ की चाशनी माहौ डार के अपनो हरी रंग होली को बचो तो वो रंग 2-4 प्रकार के कलर और टेसू को रंग बना लो अच्छे रंग रोगन कर दो झगा झग के। फिर और क्या करो? नहीं दूध की मलाई बची तो आइसिंग कर दाई होगी बन गए धरो का। और सुनो ऐसी पन्नी की पंगड़िया बनाई हमने, और पंगड़िया बना के उसके अंदर भरी चाशनी में अपन थोड़ी सी मलाई मिला के और रंग मिला के अच्छे भरो, ऊपर से बांध के बढ़िया डिजाइनदार को नाम लिख दो हैप्पी बर्थडे टू यू गड्डा, और 3 लग दो 30 रो जरा 3 लिख दो और अपने सिग्नेचर मार दे बढ़िया केतैया। अच्छा एक बात बताओ पटेल।
1: हाँ पूछो।
0: अपने से मतलब कोई को जन्मदिन हो, शादी ब्याह हो, चाहे कोई आदमी दुनिया में नहीं रहे।
1: हाँ तो तुम्हारा कहवे को मतलब का कौन नहीं रहो?
0: नहीं वैसे नहीं पूछ रहे हम, दो आदमी को अपन जरूर बुलाते।
1: कौन?
0: एक तो वे पंडित जी।
1: हाँ तो वो तो ठीक है,
0: और दूसरा कौन? खवाजा।
1: अरे तुम यार, तुमको पता नहीं कब अकल आएगी।
0: क्यों कब ऐसे अकल आए?
1: भाई देखो ऐसा है कि ये जो कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं ये विदेश का है, वहां कहां पंडित जी और वहां कहां मतलब खवासन।
0: भाई ऐसा है कि देखो अब एक दिन का काम तो है नहीं, आज तुमने जो करवा लाओ कल भ्याने पर फिर दूसरो तुम फंक्शन करवा। उन्हें बोला तो कहें काए जन्मदिन में नहीं पूछो, अब कह रहे हैं कि आ जाओ हैं जज की भाई से फिर पूछो, मतलब पूरे काम है मतलब हमें मतलब है खोटे काम हम करवाएं हैं, और मतलब जो अच्छो काम मिलवे दिलवे को तो दूसरो, ऐसा नहीं हो सके भाई।
1: ठीक है तुम देखो एडजस्ट करना, पंडित जी को बुलाओ। पंडित साहब नमस्कार। पंडित जी प्रणाम, चरण छूते हैं। पंडित जी ये जो कार्यक्रम है आपको निमंत्रण दिया आप आए, बड़ी हर्ष की बात है, लेकिन इस कार्यक्रम में कोई पूजन नहीं होना है। असल में ये हम लोग इस बार पाश्चात्य संस्कृति से अपने बच्चे का जन्मदिन मना रहे हैं, आजकल शहरों में जैसा मनाया जाता है, तो आपसे क्षमा चाहेंगे। आप आए बड़ा अच्छा हुआ। आप एक काम करिए, नाश्ता करिए और ये छोटी सी दक्षिणा है रखिए और क्षमा करेंगे आप। अरे नहीं नहीं वो तो कोई बात नहीं, हम तो आपके घर के आदमी हैं, मतलब जब भी आप याद करें ऐसी कोई बात नहीं। पंडित जी ने साहब नाश्ता किया, दक्षिणा ली और चले। लेकिन जो खवासन होती है वो कुछ कुछ जगह पंडित जी से ज़्यादा प्रैक्टिकल दिमाग रखती है, और उसका प्रैक्टिकल दिमाग कैसे चला देखिए आपकी नज़र, कि उसने पटेलन को हैंडल किया। कैसे? देखो भाई ऐसो कि हमने खूब शहर में देखे हैंगे करवाए हैं और हमें ऐसी न बताओ, हमें सब समझ में आते ऐसा करवाने हैं। एक काम करो बलगुआ, हमने सबको दे दो और बलगुआ दे के बाद हमने जो जमा दे थी बिल सब कर दो। अच्छा फोटोग्राफर को बोलो कि नहीं बोलो? फोटोग्राफर को बुला के लाओ। एक लचर पचर फोटोग्राफर उनको भी बुलाया, वो भी बेचारे मतलब ऐसे समय के मारे थे, लचर पचर टाइप की मतलब काम उनका बड़ा ढीला ढाला सुस्त, अपने चले आ रहे हैं, अपना साइकिल भी उनकी ऐसी है खट्ट पट्ट घैटर वाली साइकिल। वो साहब आए कैमरा वैमरा लेके और फिर उसका गुड्डा का बर्थडे बनाना शुरू। केक रखा सेंटर में। हाँ अच्छा जय बताओ कि गुड्डा कौन सा जन्मदिन है? मतलब अब जी समझ लो कि पहलो जन्मदिन भाओ, तो जो दूसरे तीसरो है जे भाई देखो यहाँ से पहले जन्मदिन में दद्दा ने काम करो करो नहीं करो, दूसरे जन्मदिन में फिर आपने करो, और जो तीसरे फुआ को नेंग लगा फुआ को बुलाओ। अरे तुम।

0: कहाँ बुआ हुआ भाई, हम आए साहब चले, हम पूरा डायरेक्शन हमारे यहाँ छोड़े हैं, मतलब शहर में करवाए हम। फुआ को बोला, अब फुआ को बुलाया गया भाई, केक रखा गया, हाँ चलो जल्दी से। अच्छा ये काम तो करो, का बे गुड्डा को तीसरा जन्मदिन है, तीन ठैया कैंडल तो धर, तुम समझो का नहीं, अरे लफड़ा करवा, कहा होगा तो हमें तो कान में बताओ ना। अरे पटेल साहब भूल गया सामान, हमने जुगाड़ करके केक बनाओ और तुम अब मतलब कैंडल फैंडल के बीच का छू नहीं, जहाँ हम हैं तो गम नहीं। अब भाई हम व्यवस्था करवाए थे तुम्हें का, जब तुमने जुगाड़ से केक बना, हम कछू नहीं कर सके तुम्हारे आने, तुमने तो कर। अब भाई देखो, ए बेटा छुट्टू ते आओ,
1: हाँ आओ, तुम एक काम करो, तीन ठैया भपका ले आओ।

0: मतलब कैंडल फैंडल के बीच कछु नहीं, जहाँ हम हैं तो गम नहीं। अब भाई हम व्यवस्था करवाए थे तुम्हें का, जब तुमने जुगाड़ से केक बना हम कछु नहीं कर सके तुम्हारे लाने, तुमने तो कर। अब भाई देखो ए बेटा छुट्टू ते आओ।
1: हाँ वाओ, तुम एक काम करो तीन ठेंगे भपका ले आओ। अब साहब तीन भपके मंगवाए गए, वो मिट्टी के तेल के होते हैं, और उनको जलवाया गया कैंडल पे धर के, पटे जो खवासन है उनने पटेलन के यहाँ जलवाया। लेस होने हैं, लेस दो। अच्छा लड़का बच्चा जितने सब पीछे आ जाए। हाँ और अब ये तो बताओ कि जैसे ही सब जन केक कटे और सबको चिल्लाने हैप्पी बर्थडे टू यू गुड, अरे एक काम तो हम रह गई, पहले जैसे ही समझ लो कि हम तुमसे कहें गुड्डा, तुम पहले केक फूकियो का बेभप कन खो। हाओ पहले एक काम और करो। अब कहा तुम ये काम करके काम बढ़ा जा रहे हैं, जल्दी कर गए तुम बिल्कुल। नहीं तो डेढ़ घंटा हो गया भाई। पहले फूआ ऐसी आ, तुम ऐसे बाजू में खड़े हो जा, पहले केक की निछावर ऐसी गजा बता रहे केक की निछावर आज तक, देखो जो गांव काम है केक की निछावर करो जल्दी करो। उन्होंने केक की निछावर हमने आज तक सुनी नहीं, खुटिया के पैसे 2 रुपये दे दीजिए। अब दो में काम न चले 10 कोने का लूट है, केक की निछावर है ऐसे कम ना ले हम, केक की निछावर करो। केक की निछावर साफ हो गई, और केक की निछावर के बाद 10 रुपये ने, हाँ एक माहौर कटोरी ला, माहौर आहौर लगाया गुड्डा को, बाकायदा माहौर टिपकीप की लगाई, और उसके बाद में केक का कटने का आइटम शुरू हो रहा है। उसके पहले उन्होंने कहा अच्छा एक बात और, अब कहा है गो एक बात और देखो ये मैं नेंग के तुमने 10 रुपये निछावर के दे, निशानी भी तो दो। काहे की निशानी भाई? देखो अब गुड्डा को जन्मदिन हम याद रखें हैं, तो एक ठैया जो सूट गुड्डा को सलवार हो तुमने छोटे होगा हमारे टुकड़ा को दे दो। कहने लगे फिर कहा चलो दे और 5 कुरे गेहूं दे, हमने 5 कुरे गेहूं दे। और बोलो अब गुड्डा तुम एक काम करो, पहले जो भपकन को फूको। तो गुड्डा ने जैसे ही भपकों को फूका, बेटा गुड्डा ऐसे नहीं अच्छे से, अरे फूंक बे कह रहे थूको नहीं, अब सब खाचे ला हम बुझा दे रहे। उन्हें लाए खवासन ने और भपका बुझाए अलग करे, देखो बुझ गए। आप गुड्डा एक काम करो, चक्कू से चक्कू तो लाओ। ए बेटा ऐसे तुम, तुम्हारा नाम लपका?
0: अरे लपका ते लपक के जरा चक्कू लिया। बाऊ नहीं मिल रहा? अरे तो बाजू में देख बाऊ, उन कहा भी नहीं है, पड़ोस में देख ले
1: जी जी लो तुम्हारे थे चक्कू,
0: नहीं उन कहा भी नहीं मिलो। एक काम करो तुम तो हंसिया ले आओ। गांव का परिवेश हंसिया मंगवा लिया गया साहब, और हंसिए से केक कट रहा है एक नई बात है। और जैसे ही केक कटे तो उन्होंने कह दिया खवासन की सबको चिल्लाने हैप्पी बर्थडे टू यू गुड्डा, और न चिल्ला तो फिर केक न मिले, जो समझ लो हाँ टाफियाँ बांटे भी न मिले। तो साहब जैसे ही केक के लिए उसने गुड्डा ने हंसिया उठाया और बुआ ने पकड़ा, साथ में उनके मम्मी पापा पटेल साहब पटेलन पकड़े हैं, और उनने बोले हाँ चिल्लाओ।

0: रिजिजू ने कहा है कि सत्र में राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक बहस, चर्चा और निर्णय लेने पर ध्यान दिया जाएगा। श्री अमरनाथ यात्रा के लिए श्रद्धालुओं का चौथा जत्था आज सुबह जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच रवाना हुआ। यात्रा के पहले दो दिनों में 32,313 श्रद्धालुओं ने पवित्र गुफा मंदिर में दर्शन किए। सरकार ने मूल्यों में स्थिरता के लिए प्याज की खरीदी में 13% की वृद्धि की है। प्याज का खरीद मूल्य अब 1,875 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़कर 2,125 रुपये प्रति क्विंटल हो गया है। भोपाल के भारत भवन में एक गायन पर्व का आयोजन किया जा रहा है। इस पर्व में आज शाम 7 बजे से मंजरी, असनारे और ऋषि मिश्र की जुगलबंदी देखने को मिलेगी। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कई जिलों में भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है महिला कार्यक्रम। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुरी की प्रस्तुति है।

महिला सभा सुन रही सभी बहनों को आपकी कार्यक्रम सखी वंदना अग्रवाल का प्यार भरा नमस्कार। सखियों, आज कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर, सुनेंगे गीत संगीत और खाना खजाना में बनाएंगे बरसात स्पेशल पकौड़े। तो कार्यक्रम की शुरुआत में बात करते हैं उनकी जो हमारी धरती को हरा भरा बनाते हैं, वो हैं हमारे वृक्ष। पेड़ है तो जीवन है, पेड़ है तो भविष्य है, यह केवल एक नारा नहीं बल्कि आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। बढ़ते प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, जंगलों के अंधाधुंध कटाई और घटते हरित क्षेत्र ने पूरी दुनिया को पर्यावरण संकट के सामने खड़ा कर दिया है। ऐसे समय में 1 से 7 जुलाई तक मनाया जाने वाला वन महोत्सव हमें प्रकृति से जुड़ने और वृक्षारोपण का संकल्प लेने का अवसर देता है। सखियों, वन महोत्सव की शुरुआत वर्ष 1950 में हुई थी। इसका उद्देश्य देश भर में वृक्षारोपण को जन आंदोलन बनाना और लोगों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करना था। आज यह अभियान पूरे देश में बड़े उत्साह से मनाया जाता है। वृक्ष प्रकृति का एक अमूल्य उपहार हैं। वे हमें शुद्ध ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर वायु को स्वच्छ बनाते हैं और पृथ्वी के तापमान को संतुलित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पेड़ वर्षा चक्र को बनाए रखने, भूजल स्तर बढ़ाने, मिट्टी के कटाव को रोकने और जैव विविधता की रक्षा करने में भी सहायक होते हैं। सखियों, आज शहरों के विस्तार, औद्योगिकरण और विकास कार्यों के कारण बड़ी संख्या में पेड़ काटे जा रहे हैं। इसका परिणाम यह है कि गर्मी की तीव्रता बढ़ रही है, वर्षा का स्वरूप बदल रहा है। यदि हम समय रहते प्रकृति की रक्षा नहीं करेंगे तो आने वाली पीढ़ियों को इसका गंभीर परिणाम भुगतना पड़ेगा। वन महोत्सव हमें केवल पौधे लगाने की नहीं बल्कि उनकी देखभाल करने की भी सीख देता है। एक पौधा तभी वृक्ष बनता है जब उसे नियमित पानी, सुरक्षा और पर्याप्त देखभाल मिले। इसलिए पौधा लगाने के साथ साथ उसे जीवित रखना भी हमारी ही जिम्मेदारी है। हम सभी इस अभियान में अपना योगदान दे सकते हैं। अपने घर, विद्यालय, कार्यालय, खेत, पार्क या आसपास के खाली स्थान पर पौधे लगाएं। स्थानीय जलवायु के अनुकूल वृक्षों को प्राथमिकता दें। वर्षा ऋतु पौधारोपण के लिए सबसे उपयुक्त समय माना जाता है क्योंकि इस मौसम में पौधों के जीवित रहने की

संभावना अधिक होती है। तो सखियों, हर वर्ष कम से कम एक पेड़ हम अवश्य लगाएंगे और उसे बड़ा होने तक उसकी पूरी जिम्मेदारी निभाएंगे। यदि देश का प्रत्येक नागरिक ऐसा करे तो करोड़ों नए वृक्ष हमारी धरती को हरा भरा और खुशहाल बना सकते हैं।

सखियों, यह तो हम सबको पता है कि जल ही जीवन है। पृथ्वी का अधिकांश भाग जल से घिरा होने के बावजूद पीने योग्य मीठा जल बहुत सीमित है। बढ़ती जनसंख्या, अनियंत्रित जल उपयोग, भूजल का लगातार दोहन, प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन के कारण आज दुनिया के अनेक हिस्सों में जल संकट गहराता जा रहा है। ऐसे में जल संरक्षण केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं बल्कि प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। यदि हम जल बचाने को अपनी दैनिक आदत का हिस्सा बना लें तो आने वाली पीढ़ियों

के लिए भी पर्याप्त जल उपलब्ध रहेगा। जल के बिना जीवन की कल्पना असंभव है। मनुष्य, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, कृषि और उद्योग सभी जल पर निर्भर हैं। यदि जल स्रोत सूख गए तो जीवन का संतुलन बिगड़ जाएगा। इसलिए जल की प्रत्येक बूंद का महत्व समझना आवश्यक है। सखियों, जल संरक्षण की शुरुआत घर से ही की जा सकती है। ब्रश करते समय नल खुला न छोड़ें। स्नान के लिए आवश्यकता अनुसार पानी का उपयोग करें, यानी आप मग और बाल्टी का प्रयोग करें। शावर के उपयोग से बचें। कपड़े धोने के बाद बचे पानी से साफ सफाई कर लें। रसोई का पानी गमलों में डाल दें। वाटर प्यूरिफायर से निकलने वाले वेस्ट पानी को इकट्ठा करके कूलर में डाल लें। कपड़े धोने के लिए उपयोग कर लें। कहीं भी कोई नल लीक कर रहा हो तो उसे तुरंत ठीक कराएं। ये छोटी छोटी आदतें अपनाकर हम पानी की बचत कर सकते हैं। कृषि क्षेत्र में भी जल संरक्षण की बड़ी भूमिका है। ड्रिप सिंचाई और स्प्रिंकलर जैसे आधुनिक सिंचाई पद्धतियां अपनाकर कम पानी में अधिक सिंचाई की जा सकती है। बहनों, आज हमें यह समझना होगा कि जल बचाना केवल एक अभियान नहीं बल्कि जीवन जीने की आदत है। छोटी छोटी सावधानियां मिलकर बड़े परिवर्तन ला सकती हैं। यदि हम आज पानी की हर बूंद की रक्षा करेंगे तो कल हमारी आने वाली पीढ़ियां सुरक्षित और समृद्ध जीवन जी सकेंगी। तो जल संरक्षण को अपनी आदत बनाएं, हर बूंद बचाएं और जीवन बचाएं।

सखियों, अपनी चर्चा में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पर्यटन की। यात्रा केवल स्थानों की नहीं बल्कि अनुभवों, संस्कृतियों और जीवन को समझने की भी होती है। भारत प्राकृतिक और सांस्कृतिक विविधता से समृद्ध देश है। उत्तर में हिमालय की बर्फीली चोटियाँ, दक्षिण के समुद्र तट, पश्चिम का विशाल मरुस्थल, पूर्वोत्तर की हरी भरी घाटियाँ, प्राचीन मंदिर, ऐतिहासिक किले, राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य देश को पर्यटन की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध बनाते हैं। यही कारण है कि भारत में हर वर्ष देश विदेश से लाखों पर्यटक आते हैं। बहनों, हम बात कर रहे हैं पर्यटक स्थलों की। पर्यटन की दृष्टि से हमारी शिवपुरी काफी समृद्ध है। मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित शिवपुरी अपनी प्राकृतिक सुंदरता, ऐतिहासिक धरोहरों, धार्मिक आस्था और वन्य जीव संपदा के कारण प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थलों में गिना जाता है। यहाँ सबसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थल माधव राष्ट्रीय उद्यान है, जिसे माधव टाइगर रिजर्व के रूप में भी जाना जाता है। लगभग 350 वर्ग किलोमीटर में फैले इस उद्यान में हिरण, नीलगाय, स्यार और अनेक प्रकार के पक्षी पाए जाते हैं। मानसून और सर्दियों में इसकी प्राकृतिक सुंदरता देखते ही बनती है। हमारे यहाँ सफेद संगमरमर से निर्मित सिंधिया राजवंश की छत्रियाँ उत्कृष्ट वास्तुकला का अद्भुत उदाहरण है। इनके चारों ओर बने सुंदर उद्यान और शांत वातावरण पर्यटकों को विशेष रूप से आकर्षित करते हैं। सखियों, शिवपुरी में सांख सागर झील है। माधव राष्ट्रीय उद्यान के समीप स्थित यह झील शिवपुरी की पहचान है। यहाँ नौकायन, पक्षी दर्शन और सूर्यास्त का मनमोहक दृश्य देखने को मिलता है। अपने स्वच्छ और ठंडे जल के लिए प्रसिद्ध भदैया कुंड बरसों से पर्यटकों का पसंदीदा स्थल रहा है। वर्षा ऋतु में इसकी सुंदरता और बढ़ जाती है। ब्रिटिश काल में निर्मित एक ऐतिहासिक भवन, जिसे जॉर्ज कैसल के नाम से जाना जाता है, यह घने जंगलों के बीच स्थित है। यहाँ से आसपास के जंगलों का मनोरम दृश्य दिखाई देता है। सखियों, यहाँ पर तात्या टोपे स्मारक है। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के महान सेनानी तात्या टोपे की स्मृति में बना यह स्मारक देशभक्ति और इतिहास का महत्वपूर्ण प्रतीक है। धार्मिक महत्व रखने वाला एक स्थान बाणगंगा भी यहाँ है। यह स्थान स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं के बीच विशेष आस्था का केंद्र है। बहनों, शिवपुरी प्राकृतिक, ऐतिहासिक और धार्मिक पर्यटन का अनूठा संगम है। यहाँ आने वाला प्रत्येक पर्यटक हरियाली, झीलों, ऐतिहासिक स्मारकों और वन्य जीवों की सुंदर दुनिया का अनुभव करता है। यदि पर्यटन के साथ प्रकृति का आनंद लेना हो तो शिवपुरी मध्य प्रदेश के सबसे आकर्षक पर्यटन स्थलों में से एक है। आइए शिवपुरी के इस अमूल्य धरोहर को देखें, समझें और इसके संरक्षण में अपना योगदान दें।

सखियों, अपनी चर्चा में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी छोटी सी बगिया की। वहनु, बारिश की पहली फुहार के साथ ही चारों ओर हरियाली छा जाती है। पेड़ पौधे जैसे नई ऊर्जा से भर उठते हैं और प्रकृति का हर रंग पहले से अधिक निखर जाता है। मानसून का मौसम केवल मौसम का बदलाव नहीं, बल्कि प्रकृति से जुड़ने और अपनी बगिया को नया जीवन देने का सबसे उपयुक्त समय है। यदि आपके घर में छोटा सा आंगन, छत, बालकनी या कुछ गमले ही क्यों ना हो, आप एक सुंदर और हरी भरी बगिया तैयार कर सकती हैं। इस मौसम में मिट्टी में पर्याप्त नमी रहती है, इसलिए पौधों की जड़ें जल्दी विकसित होती हैं और उनकी बढ़वार भी अच्छी होती है। यही कारण है कि अधिकांश पौधे मानसून में आसानी से लग जाते हैं। इस मौसम में आप गुलाब, गुड़हल, मोगरा, सदाबहार, कनेर जैसे फूलों के पौधे लगा सकते हैं। इनकी सुगंध और रंग आपकी बगिया को महका देंगे। यदि आप औषधीय पौधों के शौकीन हैं, तो तुलसी, एलोवेरा, लेमन ग्रास, करी पत्ता लगा सकते हैं। सखियों, इस समय किचन गार्डन शुरू करने का भी सुनहरा अवसर है। टमाटर, मिर्च, लौकी, मेथी और धनिया जैसी सब्जियां घर पर आसानी से उगाई जा सकती हैं। घर में लगाई हुई ताजी सब्जियां न केवल स्वादिष्ट होती हैं, बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी अत्यंत लाभकारी होती है। हालांकि इस मौसम में पौधों की देखभाल भी उतनी ही आवश्यक है। गमलों में पानी जमा न होने दें, क्योंकि अधिक पानी से जड़ें गल सकती हैं। समय समय पर खरपतवार हटाएं, सूखी पत्तियां निकालें और जैविक खाद का उपयोग करें। यदि पौधों में कीट दिखाई दे,

तो नीम के तेल का छिड़काव करें, इससे पौधे स्वस्थ और सुरक्षित रहेंगे। बहनों, बागवानी केवल एक शौक नहीं बल्कि तनाव दूर करने का एक प्रभावी माध्यम है। पौधों के बीच बिताया गया समय मन को शांति देता है, सकारात्मक सोच विकसित करता है और परिवार के सदस्यों को प्रकृति के करीब लाता है। तो इस मानसून प्रकृति का आभार व्यक्त करें, अपने घर के किसी छोटे से कोने को हरियाली से सजाएं, पौधे लगाएं, उनकी देखभाल करें और अपनी बगिया को फूलों की खुशबू से महकाएं। सखियों, जैसे ही आसमान में काले बादल छाते हैं, ठंडी हवाएं चलती हैं और रिमझिम बारिश शुरू होती है, वैसे ही गर्मा गर्म पकौड़ों की याद हर किसी के मन में ताजा हो जाती है। इस याद को बनाए रखने के लिए आज हम खाना खजाना में लाए हैं मिक्स वेज पकौड़े की रेसिपी। तो नोट कीजिए सामग्री। हमें चाहिए 2 कप बेसन, 1 प्याज पतले स्लाइस में कटा हुआ, 1 आलू, 1-2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 2 बड़े चम्मच हरा धनिया बारीक कटा हुआ, 1 छोटा चम्मच अजवाइन, 1/2 छोटा चम्मच हल्दी, 1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला, स्वादानुसार नमक और साथ ही चाहिए तलने के लिए तेल। मिक्स वेज पकौड़े बनाने के लिए एक बड़े बर्तन में बेसन लें, उसमें हल्दी, लाल मिर्च, गरम मसाला, अजवाइन और नमक डालकर मिला लें। अब इसमें कटा हुआ प्याज, आलू, हरी मिर्च और हरा धनिया डाल दें। थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए गाढ़ा घोल तैयार कर लें। अब कढ़ाई में तेल गरम करें। अच्छी तरह गरम होने पर मिश्रण को हाथ या चम्मच की सहायता से छोटे छोटे भागों में तेल में डालें। मध्यम आंच पर पकौड़ों को सुनहरा और कुरकुरा होने तक तलें। अतिरिक्त तेल निकालने के लिए पकौड़ों को टिश्यू पेपर पर रखें। गर्मा गर्म पकौड़ों को हरी धनिया पुदीने की चटनी के साथ परोसें। साथ में अदरक इलायची वाली गर्म चाय हो तो बरसात का आनंद दोगुना हो जाता है। सखियों, पकौड़ों को अधिक कुरकुरा बनाने के लिए बेसन में आप 1-2 बड़े चम्मच चावल का आटा मिला सकती हैं। और इसी विधि से हम पालक, गोभी, बैगन, पनीर, हरी मिर्च के पकौड़े भी बना सकते हैं। तो इस बारिश के मौसम में आप यह पकौड़े बनाएं, खुद खाएं और सबको खिलाएं और वर्षा ऋतु का आनंद उठाएं। अब अपनी कार्यक्रम सखी वंदना को दे अनुमति। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे महिला कार्यक्रम। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुरी की प्रस्तुति था। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। वक्त है छोटी से अंतराल का।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनिए लोक संगीत। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुरी की प्रस्तुति है। पहले सुनते हैं रजनी अर्जरिया का गाया ये लोकगीत।

सायदा कुरैशी के गाए इस लोकगीत के साथ ही लोकगीत अब यहीं समाप्त होता है। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनिए सुगम संगीत। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुरी की प्रस्तुति है। पहले सुनते हैं अशोक कसैरा का गाए ये गजल।

0: अशोक कसेरा की गई इस गज़ल के साथ ही सुगम संगीत अब यहीं समाप्त होता है। आप सुन रहे थे आकाशवाणी शिवपुरी की प्रस्तुति, यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। वक्त है छोटे से अंतराल का।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: बरसात के सुहाने मौसम में जगह जगह गड्ढों में भरने लगता है गंदा पानी, कीचड़ गंदगी का फैल जाता है साम्राज्य, भिन भिन आती है मक्खियाँ, पनपने लगते हैं मच्छर, मौसमी बीमारियाँ देने लगती हैं दस्तक।
4: दिल करे हाए,
5: हाए।
4: कोई ये बताए क्या होगा।
6: हमें कुछ नहीं होगा अगर हम सभी अपने घर और आसपास सफाई रखें, गड्ढों में पानी न जमा होने दें, मच्छरदानी का प्रयोग करें, पानी की शुद्धता का ध्यान रखें, ताज़ा हल्का भोजन करें, खुले में रखें, कटे फल और खाद्य पदार्थ न खाएं,
3: और
6: फिर लें आनंद इस मौसम का।
7: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
8: नमस्कार, मैं राजीव वर्मा स्वच्छता ही सेवा अभियान से जुड़ा हुआ हूं और आप सभी से गुजारिश करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आप भी इससे जुड़ें और अपने कार्यालय, घर, कॉलोनी, मोहल्लों को स्वच्छ रखें। धन्यवाद। जय हिंद।
9: पानी की हर बूंद है अनमोल,
10: बहने ना दें इसे बेमोल,
9: आओ मिलकर सच कर दें हम धरती माँ का सपना,
10: बूंद बूंद जल संरक्षण कर पहना दें हरियाली का गहना।

मीडियम वेव 188.32 यानी 1593 किलो हर्ट्स और DTH के ऑडियो चैनल, साथ ही साथ न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार का गाया हुआ, जिसे लिखा आनंद बख्शी ने, धुन तैयार की RD बर्मन ने और फिल्म का नाम है अजनबी।

आनंद बख्शी का लिखा, एस टी बर्मन का संगीतबद्ध किया, लता मंगेशकर का गाया, ये फिल्म था का गीत था चुपके चुपके फिल्म से। इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत अब यहीं समाप्त होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। दोपहर के 2:10 होने को हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं नवनीत चौबे। केंद्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज शिवपुरी में अदानी समूह के लगभग 2500 करोड़ रुपए की लागत वाले अत्याधुनिक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का शिलान्यास करेंगे। यह परियोजना औद्योगिक विकास के विजन को नई गति प्रदान करेगी। परियोजना के माध्यम से क्षेत्र के छोटे एवं मध्यम उद्योगों को रक्षा उत्पादन की सप्लाई चेन से जुड़ने का अवसर मिलेगा।
1: डिफेंस रक्षा क्षेत्र का संयंत्र प्रोपेलेंट गैस और अनेक उपकरणों का 3000 करोड़ का भूमि पूजन किया जा रहा है। ये एक अपने आप में एक इतिहास रचा जा रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की डिफेंस कॉरिडोर के साथ शिवपुरी को जोड़ा जा रहा है। इस रक्षा के संयंत्र से हमारे देश के रक्षा करने वाले वीर जवानों को नई टेक्नोलॉजी के अस्त्र शस्त्र भी मिलेंगे।
0: अब से कुछ देर में शिवपुरी के स्थानीय पोलो ग्राउंड में आयोजित शिलान्यास कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जिले के 211 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल से शुरू होने वाली इंडोनेशिया यात्रा दोनों देशों के बीच मौजूदा संबंधों को मजबूती प्रदान करेगी और सहयोग के नए क्षेत्रों के द्वार खोलेगी। आज जकार्ता में आकाशवाणी को दिए एक साक्षात्कार में इंडोनेशिया में भारतीय राजदूत संदीप चक्रवर्ती ने कहा कि 6 से 8 जुलाई तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया यात्रा के दौरान भारत और इंडोनेशिया के बीच सहयोग के कई नए क्षेत्र खुलेंगे और इन दोनों देशों के बीच संबंधों में मजबूती और आर्थिक जुड़ाव में वृद्धि स्पष्ट रूप से दिखाई देगी। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आभार व्यक्त किया कि विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण 2025 1 जुलाई से सफलतापूर्वक लागू हो गया है। मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मिशन के अंतर्गत राज्यों के लिए 25,000 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी की। उन्होंने कहा कि इस अधिनियम के तहत अगले 5 सालों में 286,000 पंचायतों में 7.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश किया जाएगा।
2: मनरेगा को पूरे देश में लागू करने में 3 साल लगे थे, लेकिन मुझे आप सब पर गर्व है, 1 साल 2 साल नहीं, पहले दिन ही विकसित भारत जी राम जी योजना एक साथ पूरे देश में लागू हो गई। 100 दिन नहीं, अब 125 दिन रोजगार, 5 साल में 7.5 लाख करोड़ से ज्यादा की राशि 286,000 पंचायतों में ठीक से लग गई तो गांव संपूर्ण विकसित हो जाएंगे, समृद्ध और विकसित गांव का निर्माण हो जाएगा।
0: सरकार ने तरल प्राकृतिक गैस LNG की आपूर्ति से आपातकालीन पाबंदियां हटा ली है। यह निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष में युद्ध विराम के बाद होर्मुज जलडमरू मध्य से प्राकृतिक गैस की आपूर्ति फिर से शुरू होने के बाद लिया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि प्राकृतिक गैस आपूर्ति नियमन आदेश 2026 में संशोधन किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुप्रसिद्ध पंडवानी गायिका तीजनबाई के निधन पर दुख व्यक्त किया है। राष्ट्रपति मुर्मू ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि तीजनबाई ने महाभारत की कहानियों को अपनी सशक्त आवाज, रोबदार व्यक्तित्व तथा अद्भुत शैली की प्रस्तुति के साथ मंच पर जीवंत बनाया और उन्होंने छत्तीसगढ़ की समृद्ध पंडवानी परंपरा को भारत तथा विदेश में प्रतिष्ठा दिलाई। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अपने शानदार प्रदर्शनों के जरिए तीजनबाई ने छत्तीसगढ़ की लोक कला शैली के लिए वैश्विक पहचान अर्जित की। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। अब बात मौसम की। प्रदेश में मॉनसून पूरी तरह सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के कई हिस्सों में भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। भोपाल, इंदौर, उज्जैन और नर्मदापुरम संभाग में वर्षा का सबसे अधिक असर रहने का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार 9 जिलों में अति भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं उज्जैन, इंदौर सहित 20 जिलों में भारी बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। पन्ना टाइगर रिजर्व में बाघिन P652 ने 2 नन्हे शावकों को जन्म दिया है। दोनों नवजात शावकों की उम्र लगभग 10 दिन के आसपास हो गई है। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब दोपहर समाचार सुनेंगे दिल्ली से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। होर्मुज जलडमरू मध्य से तरल प्राकृतिक गैस की आपूर्ति फिर शुरू होने के बाद सरकार ने एलएनजी पर लगी आपातकालीन पाबंदियां हटाई। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम के तहत राज्यों को 25,000 करोड़ रुपए की सहायता जारी की। केंद्र सरकार ने मेटा को इंस्टाग्राम से बच्चों के शोषण से जुड़े विज्ञापन हटाने का आदेश देते हुए 7 दिन के भीतर जवाब मांगा। छत्तीसगढ़ की सुप्रसिद्ध पंडवानी गायिका तीजन बाई का निधन। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया। गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में आज शाम इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला। और अब समाचार विस्तार से। सरकार ने तरल प्राकृतिक गैस एलएनजी की आपूर्ति से आपातकालीन पाबंदियां हटा ली हैं। ये निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष में युद्ध विराम के बाद होर्मुज जलडमरू मध्य से प्राकृतिक गैस की आपूर्ति फिर शुरू होने के बाद किया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि प्राकृतिक गैस आपूर्ति नियमन आदेश 2026 में संशोधन किया गया है।
2: इस संशोधन के अंतर्गत उन विशेष आपातकालीन प्रावधानों को हटा दिया गया है जिनके अंतर्गत सरकार को देश में उत्पादित प्राकृतिक गैस और आयातित एलएनजी के आवंटन में प्राथमिकता देने की अनुमति थी। होर्मुज जलडमरू मध्य से एलएनजी की खेप में रुकावट आने के बाद इस साल मार्च में आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत ये आपातकालीन आदेश जारी किया गया था। इस बीच मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर उन खबरों को भ्रामक और गलत बताया है जिनमें ये दावा किया गया है कि भूटान ने भारत से E20 पेट्रोल आयात करने का प्रस्ताव दिया है। मंत्रालय ने कहा कि भूटान को E20 पेट्रोल निर्यात करने का कोई प्रस्ताव नहीं दिया गया है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
1: केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 1 जुलाई से विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण जी रामजी अधिनियम 2025 सफलतापूर्वक लागू होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। श्री सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मिशन के अंतर्गत राज्यों के लिए 25,000 करोड़ रुपए की मुख्य सहायता राशि जारी की। श्री चौहान ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्रियों के साथ वीबीजी रामजी योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा भी की। उन्होंने कहा कि आज जारी की गई पहली किस्त का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि राज्यों के पास पर्याप्त धनराशि हो ताकि मजदूरी का भुगतान 15 दिनों के भीतर किया जा सके। उन्होंने कहा कि मनरेगा को लागू होने में 3 साल से ज्यादा का समय लगा था जबकि विकसित भारत जी राम जी को पूरे देश में सिर्फ 1 दिन में लागू कर दिया गया।
3: मनरेगा को पूरे देश में लागू करने में 3 साल लगे थे लेकिन मुझे आप सब पर गर्व है 1 साल 2 साल नहीं पहले दिन ही विकसित भारत जी राम जी योजना एक साथ पूरे देश में लागू हो गई। 100 दिन नहीं अब 125 दिन रोजगार, 5 साल में 7.5 लाख करोड़ से ज्यादा की राशि 2,86,000 पंचायतों में ठीक से लग गई तो गांव संपूर्ण विकसित हो जाएंगे, समृद्ध और विकसित गांव का निर्माण हो जाएगा।
1: श्री चौहान ने कहा कि वीबीजी रामजी योजना के तहत मजदूरी दरों में औसतन लगभग 10% की वृद्धि की गई है। असम के गुवाहाटी में कल से 2 दिवसीय ब्रिक्स मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक शुरू होगी। गृह मंत्रालय ने कहा कि इस बैठक में ब्रिक्स के सदस्य देशों के मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के प्रमुख और वरिष्ठ अधिकारी विचार विमर्श करेंगे। इससे मादक पदार्थ नियंत्रण एजेंसियों के समूहों में संस्थागत निरंतरता को सशक्त बनाने और गहन परिचालन सहयोग को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी।

0: भारत की अध्यक्षता में कल से केरलम के कोच्चि में 2 दिवसीय ब्रिक्स महिला कार्य समूह की बैठक शुरू होगी। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने बताया कि ब्रिक्स देशों के अधिकारी महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास के क्षेत्रों सहित अन्य क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण से संबंधित मुख्य मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोबो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्रोबोबो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। विदेश मंत्रालय के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने कहा है कि प्रधानमंत्री के इंडोनेशिया दौरे में कूटनीतिक बैठकों के साथ साथ सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा।
1: प्रधानमंत्री का मुख्य कार्यक्रम जकार्ता में होगा। इसके अलावा वे योग्याकार्ता का भी दौरा करेंगे, जहां वे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल प्रम्बानन मंदिर परिसर जाएंगे। भारत और इंडोनेशिया इस ऐतिहासिक मंदिर परिसर के संरक्षण और संवर्धन के लिए मिलकर काम करने की योजना बना रहे हैं।
0: आकाशवाणी से विशेष बातचीत में इंडोनेशिया में भारतीय राजदूत संदीप चक्रवर्ती ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की इंडोनेशिया यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच संबंधों में मजबूती और आर्थिक जुड़ाव में वृद्धि स्पष्ट रूप से दिखाई देगी।
2: The significance is immense.
1: भारत और इंडोनेशिया का संबंध दो प्राचीन सभ्यताओं की मजबूत साझेदारी का प्रतीक है। दोनों देशों के रिश्ते सदियों पुराने हैं और आज भी कई क्षेत्रों में लगातार मजबूत हो रहे हैं। मेरा मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया यात्रा से दोनों देशों के बीच सहयोग के नए अवसर खुलेंगे। इससे द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे, साथ ही व्यापार, निवेश और आर्थिक साझेदारी को भी नई गति मिलेगी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा से पहले प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने भारत को एक महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदार बताया है। श्री अल्बनीज ने कहा कि हमारे संबंध व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर आधारित हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने सोशल मीडिया साइट इंस्टाग्राम पर शुल्क वाले विज्ञापनों में बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार सामग्री के प्रसार को लेकर मेटा को कड़ी चेतावनी जारी की है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार सरकार ने इंस्टाग्राम को ऐसी विषय वस्तु को बढ़ावा देने और इसकी पहुंच को सुगम बनाने वाले सभी विज्ञापनों और सामग्री को बंद करने का आदेश दिया है। एक रिपोर्ट।
3: इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मेटा से 7 दिनों के भीतर विस्तृत स्पष्टीकरण मांगा है। सरकार इस बात की समीक्षा कर रही है कि क्या प्लेटफॉर्म ने भारत की मध्यस्थ सुरक्षा दिशा निर्देशों का अनुपालन किया है। भारत में डिजिटल कानूनों के अंतर्गत अश्लील सामग्री और बाल यौन शोषण सामग्री का वितरण एक अपराध है। इससे पहले मंत्रालय ने उन रिपोर्टों का संज्ञान लिया था जिनमें कहा गया था कि इंस्टाग्राम पर कुछ आपत्तिजनक सामग्री प्रदर्शित की जा रही है जो बाल यौन शोषण को बढ़ावा देती है और अधिकारियों को मेटा से जवाब मांगने के निर्देश जारी किए थे। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह कल से जिनेवा में AI गवर्नेंस पर संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक संवाद में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। 2 दिवसीय वैश्विक AI संवाद में AI पर स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक पैनल की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी जो AI की क्षमताओं, उभरते अवसरों और जोखिमों का पहला स्वतंत्र वैज्ञानिक मूल्यांकन प्रदान करती है। भारत स्विट्जरलैंड के जिनेवा में उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति पर अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह के 9वें सत्र की अध्यक्षता करेगा। ये सत्र संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास संगठन द्वारा 6 से 8 जुलाई तक आयोजित किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध पंडवानी गायिका और पद्म विभूषण से सम्मानित तीजन बाई का निधन हो गया है। वे लंबे समय से बीमार थीं। रायपुर के एम्स में उनका इलाज चल रहा था। आज सुबह लगभग 3:15 बजे उन्होंने अंतिम सांस

0: डॉक्टर तीजन बाई का अंतिम संस्कार आज शाम उनके पैतृक गांव दुर्ग जिले के गनियारी में राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा।
1: दीने दीने वो मारे ढालते हैं जैसे पानी में घूरा ढेला।
2: तीजन बाई का जन्म 24 अप्रैल 1956 को छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के गनियारी गांव में एक साधारण परिवार में हुआ था। बचपन से ही उन्हें महाभारत की कथाएं सुनने और गाने का शौक था। सामाजिक विरोध और आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद उन्होंने अपने जुनून को नहीं छोड़ा। तीजन बाई ने अपनी सशक्त आवाज, प्रभावशाली अभिनय और अनोखी प्रस्तुति शैली से पंडवानी को देश ही नहीं बल्कि विदेशों तक नई पहचान दिलाई। महाभारत की कथाओं को मंच पर जीवंत करने की उनकी कला ने उन्हें भारतीय लोक संस्कृति की सबसे प्रतिष्ठित कलाकारों में शामिल किया।
3: दोनों जने मिलके सुनो कि मैं कुरुक्षेत्र मैदान में मैं भूल के शस्त्र नहीं चलाऊं।
4: अच्छा, जे जान पड़े तो ले गो, नहीं तो मोला छोड़ दे भैया, सेना ले ले चला। सावन में
2: विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुप्रसिद्ध पंडवानी गायिका तीजन बाई के निधन पर दुख व्यक्त किया है। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रामेन डेका और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने डॉ तीजन बाई के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच कल बातचीत हुई। रूस के राष्ट्रपति के सहयोगी यूरी उशाकोव ने क्रेमलिन में बताया कि श्री पुतिन ने राष्ट्रपति ट्रंप को अमेरिका के स्वतंत्रता दिवस की 250वीं वर्षगांठ पर बधाई दी। बातचीत के दौरान राष्ट्रपति पुतिन ने श्री ट्रंप को यूक्रेन युद्ध की स्थिति के बारे में जानकारी दी। अमेरिका ने कल राष्ट्रव्यापी समारोह के साथ अपनी स्वाधीनता की 250वीं वर्षगांठ मनाई। मौसम संबंधी बाधा के बाद वॉशिंगटन में आयोजित मुख्य कार्यक्रम नेशनल मॉल में शुरू हुआ। राष्ट्रपति ट्रंप ने राष्ट्र के इतिहास में इस वर्षगांठ को एक ऐतिहासिक क्षण बताया। मौसम विभाग ने आज गुजरात, कच्छ, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
5: मौसम विभाग ने अगले चार दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तरी अरब सागर, गुजरात, हरियाणा और पंजाब के बाकी हिस्सों और राजस्थान के कुछ और इलाकों में आगे बढ़ने की संभावना व्यक्त की है। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक और उत्तराखंड में तेज से बहुत तेज वर्षा का अनुमान जताया है। विभाग ने कहा है कि अगले 2-3 दिनों में दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब और चंडीगढ़ में छिटपुट बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने आज हिमाचल प्रदेश, झारखंड, केरलम, माहे, मराठवाड़, देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों, उत्तरी आंतरिक कर्नाटका और तेलंगाना में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। मौसम विभाग ने दिल्ली में आज बादल छाए रहने और मध्यम वर्षा का अनुमान जताया है। नितिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
0: महाराष्ट्र में तेज बारिश के कारण कई जगहों पर जल भराव हो गया है। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में आज शाम लॉर्ड्स में इंग्लैंड का मुकाबला होगा ऑस्ट्रेलिया से। दोनों टीमें अपराजित रहते हुए फाइनल में पहुंची हैं। ऑस्ट्रेलिया ने सेमीफाइनल में वेस्टइंडीज को हराया और इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। होर्मुज जलडमरू मध्य से तरल प्राकृतिक गैस की आपूर्ति फिर शुरू होने के बाद सरकार ने एलएनजी पर लगी आपातकालीन पाबंदियां हटाई। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम के तहत राज्यों को 25,000 करोड़ रुपए की सहायता जारी की। केंद्र सरकार ने मेटा को इंस्टाग्राम से बच्चों के शोषण से जुड़े विज्ञापन हटाने का आदेश देते हुए 7 दिन के भीतर जवाब मांगा। छत्तीसगढ़ की सुप्रसिद्ध पंडवानी गायिका तीजन बाई का निधन। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया। और आईसीसी

0: महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में आज शाम इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का होगा मुकाबला। और इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनिए बच्चों का कार्यक्रम बाल सभा। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति है।

0: बाल साथियों जय हिंद
1: जय हिंद।
0: अपने सभी बाल मित्रों का उनके अपने कार्यक्रम बाल सभा में स्वागत है। और मित्रों, आज मैं हूँ आपके साथ आपकी अर्चना दीदी। बाल साथियों, जब आप सुबह उठते हैं तो क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि आपको सबसे पहले क्या क्या दिखाई देता है? सुबह की ठंडी हवा, पेड़ों पर चहचहाते पक्षी, रंग बिरंगे फूल, हरियाली से ढकी हुई हमारी धरती, बादलों से घिरा आसमान और रिमझिम बरसती बारिश। कितना सुंदर लगता है ना ये सब। लेकिन आपने कभी सोचा है कि हमारी धरती इतनी सुंदर क्यों है? इसका एक बहुत बड़ा कारण है साथियों, पेड़ और वन। पेड़ हमें शुद्ध हवा देते हैं, फल फूल देते हैं, गर्मी से बचाते हैं और धरती को हरा भरा बनाए रखते हैं। कई पक्षियों और जानवरों का घर भी यही वन होते हैं। सच तो ये है कि पेड़ पौधे हमारे सच्चे मित्र हैं। वे बिना कुछ मांगे हमें बहुत कुछ देते हैं। और शायद इसी बात को याद दिलाने के लिए हर साल 1 जुलाई से 7 जुलाई तक वन महोत्सव सप्ताह मनाया जाता है। वन महोत्सव का मतलब केवल पौधे लगाना ही नहीं है, बल्कि पेड़ों से दोस्ती करना, प्रकृति से प्रेम करना और ये संकल्प लेना भी है कि हम अपने आसपास की हरियाली को बचाएंगे। तो बाल मित्रों, इस वन महोत्सव सप्ताह में हम सब भी एक छोटा सा संकल्प लें, एक पौधा लगाएंगे, उसकी देखभाल करेंगे और अपनी धरती को और भी हरा भरा बनाएंगे।
2: दीदी, अगर हम पौधे ही रोपते हैं तो हमारी प्रकृति कितनी अद्भुत लगेगी। मैं वाणी एक ऐसी ही कविता सुनाना चाहती हूँ। कितनी मनमोहक है ये प्रकृति, कितनी प्यारी है हमारी संस्कृति। ये हंसते खिलखिलाते सुंदर फूल लाते हैं, हर चेहरे पर बड़ी मुस्कान, सिर उठा के जीना सिखाते हैं। ये नीला आसमान, ये दूध सा सफेद चांद और टिमटिमाते तारे करते हैं रोशन इस अनुपम जग को। ये सारे ये गुनगुनाते भंवरे और रंगीन तितलियां खुशियों से भर देते हैं सबका चंचल मन। पेड़ों को मत काटो और रखो हरा भरा हर वन। पेड़ों से मिलती है शुद्ध वायु, जिससे होती है मानव की स्वस्थ आयु। बरखा रुकने पर आया सतरंगी इंद्रधनुष, कर देता है हर कोमल दिल को खुश। यह बहती नदियां सबकी प्यास बुझाती, कल कल कर ये मधुर गीत सुनाती। ये सब है ईश्वर की प्रिय अद्भुत और कीमती देन, जिससे करना है हमें सदा अटूट प्रेम।
0: तेजस्वी भी अपने मित्रों को कुछ सुनाना चाह रही है।
3: दीदी, मैं भी अपने मित्रों को एक कविता सुनाना चाहती हूँ। हमें काटो नहीं, हमें मिटाओ नहीं, हम तो दोस्त है तुम्हारे, दोस्त कभी जो भूलेगा नहीं। शुद्ध ऑक्सीजन देगा, शीतल छाया में सुखी नींद लाएगा। हमें काटो नहीं, हमें मिटाओ नहीं, आज को सवारो कल मजबूत रहेगा। दिन के उजाले पर हमें देखो, रात के शीतल छाया पर हमें महसूस करो, हमें दोस्त मानो। हम दोस्त है तुम्हारे, हमें काटो नहीं, हमें मिटाओ नहीं।
4: दीदी, मैं संजना, मैं अपने मित्रों को एक कविता सुनाना चाहती हूँ। नवयुग का होगा निर्माण, बनी रहे भारत की शान। वृक्ष हमारे कितने प्यारे, कितने सुंदर, कितने प्यारे। समृद्धि की यह है पहचान, नवयुग का होगा निर्माण, बनी रहे भारत की शान। कौन कहाँ है किसे खबर है, अंधकार से सबको डर है। प्रदूषण से मुक्त रहे सब, पर्यावरण से युक्त रहे सब। एक लक्ष्य हो यही हमारा, सदा रहे सब इसका ध्यान। नवयुग का होगा निर्माण, बनी रहे भारत की शान। जब हम विद्यालय में पढ़ते हैं, संग साथी रहते नहीं लड़ते, जीवन अपना सफल बनाते, पर वृक्ष लगाना भूल क्यों जाते। आओ मिलकर वृक्ष लगाएं, हरित क्रांति को खुशियां पाएं। नवयुग का होगा निर्माण, बनी रहे भारत की शान।

0: आपने बहुत अच्छी अच्छी कविताएं सुनाई हैं।
1: और साथियों, गीत संगीत सुनने में भी आपको मजा आता है ना?
2: हाँ दीदी।
1: चलिए तो साथ मिलकर सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: बाल मित्रों, आजकल बरसात का सुहाना मौसम है। बारिश की फुहारें, कागज की नाव और गर्मा गर्म पकौड़े सबको अच्छे लगते हैं ना?
1: हाँ दीदी।
0: लेकिन इसी मौसम में कुछ बीमारियां भी तेजी से फैलती हैं, जैसे सर्दी, जुकाम, बुखार, वायरल फीवर, पेट की गड़बड़ी, डेंगू और मलेरिया। साथियों, यदि इस मौसम में हम थोड़ी सावधानी रखते हैं, अपना ध्यान रखते हैं, तो हम बीमार होने से बच सकते हैं। बाल मित्रों, बारिश में भीगने के बाद तुरंत सूखे कपड़े पहने, हमेशा साफ और उबला हुआ या फिल्टर किया हुआ पानी ही आप पिए, बाहर का कटा या खुला हुआ भोजन खाने से बचें, खाने से पहले अपने हाथ साबुन से अवश्य धोएं, घर और घर के आसपास पानी बिल्कुल भी जमा ना होने दें, क्योंकि मित्रों इसमें मच्छर पनपते हैं और डेंगू मलेरिया जैसी बीमारी का कारण बनते हैं फिर वो। साथियों, पर्याप्त नींद लें, हरी सब्जी, फल और पौष्टिक भोजन खाएं, और यदि आपको उल्टी, बुखार, खांसी जैसे कुछ लगता है तो तुरंत अपने मम्मी पापा को बताएं और डॉक्टर से परामर्श लें। बाल मित्रों, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन निवास करता है, इसीलिए जितना आवश्यक पढ़ाई करना और खेलना है, उतना ही जरूरी है अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना। और अब हमारा कौन सा मित्र हमें क्या सुनाने वाला है?
2: दीदी, मेरा नाम मानसी है। बरसात का सुहाना मौसम है, इसीलिए मैं अपने मित्रों को ऐसी ही कविता सुनाना चाहती हूँ। देखो आए बादल छाए, इंद्रधनुष वर्षा संग लाए, गूंज रही कोयल की वाणी, कह रही धरती बरसो अब पानी। तुम्हें देखकर खिल उठी कलियां, चहकने लगी सूनी गलियां, मस्त मयूरों ने पंख फैलाए। देखो आए बादल छाए, झरने झर झर नदियां कल कल, सबके मन को हर ले पल पल, इंद्रधनुष ने दिए दर्शन, निर्जीवन में दिखे जीवन के लक्षण। कब से इस वर्षा को तरसे, अब तो ये घने बादल बरसे, प्रकृति का ये रूप सुहाना, सबके मन को भाए, देखो आए बादल छाए।
3: मेरा नाम कांची है और मैं अपने मित्र को एक कविता सुनाने जा रही हूँ। सुबह सुबह जब आंखें खुली, रिमझिम रिमझिम थी बरसात, उठकर बाहर जब देखा मैंने, दिखी मुझे हरी गीली घास। माँ ने जब आवाज लगाई तो मैं थोड़ा सा अलसाई, ठंडी हवा से मैं थराई, काश आज हो जाती छुट्टी तो घर में हो जाती मस्ती।
4: दीदी, मेरा नाम शुभांगी है और मैं अपने मित्रों को कुछ बातें बताना चाहती हूँ। जब हम अपने पर्यावरण को साफ रखने की बात करते हैं तो अक्सर सोचते हैं कि हमारे अकेले कुछ करने से क्या होगा, पर हम ये भूल जाते हैं कि हमारा एक छोटा सा कदम भी एक बड़ा बदलाव ला सकता है। अगर हम प्लास्टिक बैग्स की जगह पेपर बैग्स इस्तेमाल करेंगे तब भी कई सारे पेड़ काटने पड़ेंगे, इसलिए हमें क्लोथ बैग इस्तेमाल करने चाहिए। हम जितनी बार फ्रिज का दरवाजा खोलते हैं, फ्रिज की 30% तक कोल्ड एयर बाहर निकल जाती है और कमरे की वार्म एयर फ्रिज में चली जाती है, उससे वापस ठंडा होने में बिजली बर्बाद होती है। मित्रों, हमें अपने नोटबुक के दोनों तरफ लिखना चाहिए, प्रिंटर पेपर को भी दोनों तरफ इस्तेमाल करना चाहिए। मित्रों, हमें ब्रश करते समय या फिर साबुन से हाथ धोते समय पूरे वक्त नल खुला नहीं रखना चाहिए। इसी तरह हमें अपने पेरेंट्स को अपने कमरे और साथ ही पूरे घर में भी एनर्जी सेविंग लाइट बल्ब्स लगाने को कहें, साथ ही जब जरूरत ना हो तो उन्हें ऑफ रखना चाहिए। इससे आपके घर का लाइट का बिल भी कम आएगा। टोस्टर, टीवी जैसे उपकरणों को जब यूज नहीं कर रहे हो तब उन्हें अनप्लग कर देना चाहिए।
0: नन्हे साथियों, एक और गीत सुन लिया जाए?
1: हाँ दीदी।
0: तो चलिए साथ मिलकर सुनते हैं प्यारा सा गीत।

0: नन्हे साथियों, कहानियाँ सुनना तो आप सभी को पसंद आता है ना?
1: हाँ दीदी।
0: चलिए तो मैं आप सभी को एक कहानी सुनाती हूँ। एक बार एक जंगल में एक यात्री जा रहा था। रास्ते में उसे एक सोने का सिक्का मिला। वो सोचने लगा कि ये सिक्का मेरा तो है नहीं, अब मैं इसे लूँ या ना लूँ पता नहीं किसका ये सिक्का गिर गया होगा। ना तो मैं इसे रख सकता हूँ, लेकिन मैं इसे फेंक भी तो नहीं सकता हूँ क्योंकि ये सोने का है। यही सोचता हुआ वो यात्री जब आगे बढ़ा चला जा रहा था तो रास्ते में माला जपते हुए उसे एक साधु महाराज मिले। तब उसने सोचा क्यों ना इस सिक्के को साधु को दे दिया जाए। यात्री ने जब वो सिक्का साधु को दिया तो मित्रों पता है क्या हुआ? सोने के सिक्के को देखकर साधु ने आश्चर्य से कहा, भाई ये सिक्का हमारे जैसे साधुओं के लिए नहीं है, इसे तो तुम किसी गरीब को दे दो ताकि ये उसके किसी काम आ सके। साधु की ये बात मानकर यात्री आगे चला। उसने देखा कि किसी राजा की सेना चली जा रही है। इतनी बड़ी सेना को देखकर वो सोचने लगा कि जरूर कोई ना कोई बात है जो राजा अपनी सेना को लेकर जा रहा है। तभी उसने एक सैनिक से पूछा, भाई ये राजा इतनी बड़ी सेना लेकर कहाँ जा रहा है? तब किसी ने कहा, ये एक बहुत बड़ा राजा है जो पड़ोसी देश पर आक्रमण करके उसे लूटने जा रहा है। सैनिक की ये बात सुनकर कुछ देर के लिए तो वो युवक सोच में पड़ गया। फिर वो जो युवक यानी कि यात्री था राजा के रथ के करीब पहुंचा और सोने का सिक्का उनकी ओर बढ़ाकर कहा, महाराज इस सिक्के को आप रख लीजिए। राजा को भी आश्चर्य हुआ, मैं इतना बड़ा राजा हूँ, मैं इतने लोगों को बहुत कुछ बांटता हूँ और ये मुझे सोने का सिक्का दे रहा है। तब राजा ने पूछा, ये सिक्का तुम मुझे क्यों दे रहे हो? तो मित्रों उस यात्री ने कहा, महाराज एक साधु ने कहा था कि जो सबसे ज्यादा गरीब दिखे उसे ये सिक्का दे देना। तब राजा बोला गुस्से से, मैं राजा हूँ राजा, मैं तुम्हें गरीब लगता हूँ? तब वो यात्री बड़े शांत भाव से बोला, महाराज यदि आप अमीर होते तो दूसरे देश को लूटने के लिए इतनी बड़ी सेना लेकर तो नहीं जाते। यात्री की बात राजा को समझ में आ गई, उसे अपनी गलती का एहसास भी हो गया। तभी राजा ने यात्री को धन्यवाद दिया और अपनी सेना को वापस लौटने का आदेश दिया। मित्रों कैसी लगी ये कहानी?
1: बहुत अच्छी।
0: और इस कहानी से आपने क्या शिक्षा ली?
2: दीदी हमने इस कहानी से यह शिक्षा ली कि गरीबी या अमीरी पैसों से नहीं होती, अपनी सोच से होती है। हमें दूसरों के प्रति अच्छा सोचना चाहिए।
0: बिल्कुल सही कहा है।
3: दीदी मेरा नाम स्नेहल है। बरसात का मौसम है, मैं अपने मित्रों से बरसात से जुड़ी हुई कुछ पहेलियाँ बूझना चाहती हूँ।
0: तो साथियों आप तैयार हैं पहेलियाँ बूझने के लिए?
1: हाँ दीदी।
3: सारी धरती हरी बना दे, कर दे पानी पानी, ऋतु कौन सी बादल संग में, बोलो ऋतु सुहानी, बताओ बताओ।
0: कौन बताएगा?
4: दीदी मैं बताऊँ, वर्षा ऋतु।
3: सही जवाब, कांची ने सही जवाब दिया। दीदी एक और पहेली, कीचड़ पानी में वह रहता, फुदक जमी पर आता, टर टर बोले नाम बताओ, जंतु क्या कहलाता?
0: कौन बताएगा?
5: दीदी मेंढक।
0: नहीं सही जवाब है।
3: हाँ हाँ शुभी दीदी, सच्ची में सही जवाब है।
4: दीदी मैं भी अपने मित्रों से एक पहेली पूछना चाहती हूँ। दो अक्षर का नाम मगर, चलते रहना है काम, बड़े बड़े जीवों को इसकी गोद में मिला आराम, बताओ कौन बताएगा?
3: मैं बताऊंगी,
4: नदी। हाँ दीदी स्नेहल ने सही उत्तर बताया।
5: दीदी मैं भी अपने मित्रों से पहेलियाँ पूछना चाहती हूँ। चढ़े घटा घनघोर, भला तब कड़के चमक डराए, आंधी व बरसात साथ बोले कड़क कपाए, बोलो बोलो बताओ उत्तर।
4: दीदी मैं बताऊँ, बिजली।
5: हाँ दीदी कांची ने सही जवाब दिया। दीदी मैं अपने मित्रों से एक और पहेली पूछना चाहती हूँ। सबको जीवन देता जल, जल के दाता कौन, वृष्टि उनसे कहो धुआं से गरजे रहे ना मौन,
0: कांची।
4: दीदी पानी।
5: नहीं दीदी
0: स्नेहल।
3: बादल।
5: हाँ दीदी स्नेहल ने सही जवाब दिया।
3: एक पहेली मैं पूछती हूँ। रंग रंगीला मन को भाता, धनुष बड़ा आकार, अचरज नभ में धनुष दिखाता, बोलो

0: क्या विचार?
1: कौन बताएगा?
2: दीदी मैं बताऊं? दीदी इंद्रधनुष?
0: हाँ दीदी, सही जवाब दिया शुभी दीदी ने।
3: अपने मित्रों को एक चुटकुला सुनाना चाहती हूँ। डॉक्टर ने सलाह दी, बीमारियाँ बहुत बढ़ रही हैं, बच्चे को पानी पिलाने से पहले अच्छी तरह उबाल लें। बच्चे के पापा डॉक्टर से कहते हैं, ठीक है सर, पर उबालने से बच्चा मरेगा तो नहीं।
4: दीदी मैं भी अपने मित्र को एक चुटकुला सुनाना चाहती हूँ। बारिश के दिनों में एक लड़का छतरी लेकर बाहर गया। उसकी छतरी में एक बड़ा

0: से बच्चा मरेगा तो नहीं।
1: दीदी मैं भी अपने मित्र को एक चुटकुला सुनाना चाहती हूँ। बारिश के दिनों में एक लड़का छतरी लेकर बाहर गया। उसकी छतरी में एक बड़ा छेद था, पर एक दोस्त ने उससे पूछा, तेरी छतरी में छेद क्यों है? फिर उसका दोस्त बोला, अरे वो छेद तो मैंने ही किया है ताकि बारिश बंद होने पर मुझे पता चल जाए।
0: दीदी मैं अपने मित्र को एक और चुटकुला सुनाना चाहूंगी। एक बार रिंकू जंगल से होकर गुजर रहा था, तभी सामने पेड़ पर लटकते सांप को देखकर वह रुक गया और बोला, सिर्फ लटकने से कुछ नहीं होगा, मम्मी को बोलो हेल्थ ड्रिंक भी पिलाएं।
1: दीदी मैं एक और चुटकुला अपने मित्र को सुनाना चाहती हूँ। एक लड़की होटल में खाना खाने गई। खाने के बाद बिल का भुगतान किया, फिर अचानक वेटर के पास गई और बोली, ककड़ी के दो टुकड़े रोज आंखों पर रखा करो और रात को पानी में मेथी भिगोकर सुबह छान कर पिया करो। वेटर ने हैरान होकर पूछा, मैडम आप ये सब मुझे क्यों बता रही है? लड़की, मुझसे किसी ने कहा था कि बिल चुकाने के बाद वेटर को टिप जरूर देना।
2: बाल मित्रों आपने बहुत अच्छी कविताएं सुनाई, चुटकुले सुनाए, कहानी सुनाई, बहुत अच्छी पहेलियां बूझी। और साथियों आप भी अपनी कविताएं, कहानियां, रचनाएं अपने मित्रों को सुनाना चाहते हैं तो आकाशवाणी के भोपाल केंद्र आकर अपनी रिकॉर्डिंग करा सकते हैं। आप पत्रों द्वारा भी अपनी रचनाएं हम तक भेज सकते हैं। साथ ही आपको आज का कार्यक्रम कैसा लगा ये भी पत्रों में लिखकर आप हमें बता सकते हैं। पत्र लिखने का पता है, कार्यक्रम बाल सभा, द्वारा केंद्र निदेशक, आकाशवाणी, श्यामला हिल्स, भोपाल 462002। और अब वक्त है आपसे विदा लेने का। जय हिंद,
3: जय।

0: अभी बच्चे सुन रहे थे अपना कार्यक्रम बाल सभा। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति था। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आभार व्यक्त किया कि विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण 2025 1 जुलाई से सफलतापूर्वक लागू हो गया है। मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मिशन के अंतर्गत राज्यों के लिए 25,000 करोड़ रुपये की सहायता राशि जारी की। केंद्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज शिवपुरी में अदानी समूह के लगभग 2,500 करोड़ रुपए की लागत वाले अत्याधुनिक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का शिलान्यास कर रहे हैं। परियोजना के माध्यम से क्षेत्र के छोटे एवं मध्यम उद्योगों को रक्षा उत्पादन की सप्लाई चेन से जुड़ने का अवसर मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल से शुरू होने वाली इंडोनेशिया यात्रा दोनों देशों के बीच मौजूदा संबंधों को मजबूती प्रदान करेगी और सहयोग के नए क्षेत्रों के द्वार खोलेगी। सरकार ने तरल प्राकृतिक गैस LNG की आपूर्ति से आपातकालीन पाबंदियां हटा ली हैं। यह निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष में युद्ध विराम के बाद होर्मुज जलडमरू मध्य में प्राकृतिक गैस की आपूर्ति फिर शुरू होने के बाद लिया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुप्रसिद्ध पंडवानी गायिका तीजनबाई के निधन पर दुख व्यक्त किया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अपने शानदार प्रदर्शनों के जरिए तीजनबाई ने छत्तीसगढ़ की लोक कला शैली के लिए वैश्विक पहचान अर्जित की। और प्रदेश में मॉनसून पूरी तरह सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के कई हिस्सों में भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए सुनिए आज शाम की सभा में प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों का विवरण। शाम 5:02 पर युववाणी कार्यक्रम का प्रसारण होगा। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुरी की प्रस्तुति रहेगा। फिल्म संगीत का आनंद आप उठा सकते हैं शाम 5:33 और शाम 6:00। 7:21 से 7:30 पर सुनिएगा लोक संगीत। ICC महिला T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 के अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के मध्य लंदन में खेले जाने वाले महिला T20 क्रिकेट मैच का फाइनल मैच का आंखों देखा हाल हम आपको सुनवाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से शाम 7:30 से खेल की समाप्ति तक। ये थे आज शाम प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों का विवरण। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। इस समय दोपहर के 3:01 हुए हैं। अब मीडियम वेव पर हमारा ट्रांसमिशन कुछ देर के लिए बंद होता है। शाम 5:05 से आप हमारे कार्यक्रम पुनः मीडियम वेव 188.32 मीटर पर सुन सकेंगे। इस बीच कार्यक्रम DTH पर जारी है।

आप सुन रहे हैं डीटीएच भोपाल का प्रसारण। लीजिए सुनिए लोक संगीत। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुरी की प्रस्तुति है। पहले सुनते हैं रजनी अर्जरिया के गाए ये लोकगीत।

इसके साथ ही लोक संगीत अब यहीं समाप्त होता है। आप सुन रहे हैं डीटीएच का प्रसारण। लीजिए अब सुनिए सुगम संगीत, सुनते हैं अशोक केसरा की गाई ये गजल।

इसके साथ ही सुगम संगीत यहीं समाप्त होता है। आप सुन रहे हैं डीटीएच का प्रसारण। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत। पहले सुनवाते हैं हंसते जख्मों फिल्मों में मोहम्मद रफ़ी को। कैफी आज़मी के बोल हैं संगीत मदन मोहन का।

गई है तो। धड़कन फिल्म का ये गीत हम आपको सुनवा रहे हैं उदित नारायण, अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाज़ में। समीर के बोल संगीत नदीम श्रवण का है।

कार्यक्रम के अंत में आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर का गाया मेरे हमदम मेरे दोस्त फिल्म का गाना। संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है, गीत लिखा मजरू सुल्तानपुरी ने।

0: इस गाने के साथ ही फिल्म संगीत अब यहीं समाप्त होता है। ये आप सुन रहे हैं DTH का प्रसारण। लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज शिवपुरी में अदानी समूह के लगभग 2500 करोड़ रुपए की लागत वाले अत्याधुनिक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का शिलान्यास किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी उपस्थित रहे। इस परियोजना के माध्यम से क्षेत्र के छोटे एवं मध्यम उद्योगों को रक्षा उत्पादन की सप्लाई चेन से जुड़ने का अवसर मिलेगा। इंडोनेशिया में भारतीय राजदूत संदीप चक्रवर्ती ने कहा है कि 6 से 8 जुलाई तक होने वाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया यात्रा दोनों देशों के बीच मौजूदा संबंधों को मजबूती प्रदान करेगी और सहयोग के नए क्षेत्रों के द्वार खोलेगी। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण 2025 1 जुलाई से सफलतापूर्वक लागू होने पर आभार व्यक्त किया। श्री चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मिशन के अंतर्गत राज्यों के लिए 25,000 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी की। सरकार ने तरल प्राकृतिक गैस LNG की आपूर्ति से आपातकालीन पाबंदियां हटा ली है। यह निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष में युद्ध विराम के बाद होर्मुज जल डमरू मध्य से प्राकृतिक गैस की आपूर्ति फिर शुरू होने के बाद लिया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुप्रसिद्ध पंडवानी गायिका तीजनबाई के निधन पर दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अपने शानदार प्रदर्शनों के जरिए तीजनबाई ने छत्तीसगढ़ की लोक कला शैली के लिए वैश्विक पहचान अर्जित की। और मौसम विभाग ने आज 9 जिलों में अति भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं उज्जैन, इंदौर सहित 20 जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: आप सुन रहे हैं DTH का प्रसारण। लीजिए सुनिए कार्यक्रम सिंधिया जी सुरहाण।

साथियों, मींहं जी मुंद हली रही आहे ऐं मौक़ो आहे गुरु पूर्णिमा जो। असां सभु कोशिशि कयूं त हिकु हिकु वण पंहिंजे गुरुनि जे नाले ते ज़रूरु लॻायूं, छो जे वृक्षारोपण अॼु जे समय जी ख़ासि ज़रूरत आहे। पर्यावरण संतुलित रखणु, हवा खे शुद्ध करणु, जल संरक्षण ऐं जलवायु जे परिवर्तन खे घटाइण लाइ वण तमामु ज़रूरी आहिनि। वृक्षारोपण सां मिटीअ जो कटाव घटिजंदो आहे, जंहिं सां जैव विविधता खे वाधारो मिलंदो आहे। वण लॻाइणु हिकु ज़रूरी कमु आहे। इहो पर्यावरण ऐं मानव जीवन ॿिन्ही जे लाइ महत्वपूर्ण आहे। असांखे वधीक में वधीक वण लॻाइणु घुरिजनि ऐं उन्हनि जी देखभाल बि करणु घुरिजे, जीअं असां हिकु स्वस्थ ऐं खुशहाल भविष्य सुनिश्चित करे सघूं। साथियूं, असां ॾिसूं था त अॼुकल्ह घणेई संस्थाऊं इन बारे में कम बि करे रहियूं आहिनि, जीअं त घणेई आयोजन हलाईंदा आहिनि। हिकु वण माउ जे नाले ते, हिकु वण देश जे नाले ते, हिकु वण समाज जे नाले ते। इहा तमामु सुहिणी ॻाल्हि आहे त अॼु जी पीढ़ी वण लॻाइण जे प्रति जागरूक आहे, ऐं इहो निश्चित रूप सां असांजे सुठे भविष्य जी पहल आहे। इन सां असांखे भविष्य में बि सुठी जलवायु, सुठो पाणी ऐं सुठो पर्यावरण मिली सघंदो। इहा हिकु सुठी पहल आहे अॼु जे युवा पीढ़ीअ जे पारां। असां बि इन आयोजन जो हिकु हिसो ठहूं। रुगो इन्हनि कार्यक्रमनि खे ॾिसी करे ख़ुशि न थियूं, बल्कि कोशिशि कयूं त असां बि इन में पूरी पूरी भागीदारी वठी सघूं ऐं वण लॻाइण में पंहिंजो सहयोग ॾेई सघूं।

0: साथियों, ही गीत गायो हो महेश चंदर ऐं सरोज रामचंदानी। हाणे अॻियां वधंदासीं अॼु जी ॿी ॼाण पासे। विश्व जनसंख्या दिवस इहो हिकु अहिड़ो ॾींहुं या कार्यक्रम आहे जेको हर साल 11 जुलाई ते मल्हायो वेंदो आहे। इन जो मूल उद्देश्य जनसंख्या सां जुड़ियल समस्याऊं ऐं पूरे विश्व में इन जे प्रति जागरूकता आणणु आहे। इहो आयोजन सन 1999 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जी गवर्निंग काउंसलिंग पारां शुरू कयो वियो हो। जनसंख्या वृद्धि अॼु जे समय जी हिकु वॾी चुनौती आहे। अॼु जी वार्ता जो विषय बि इन सां ई जुड़ियल आहे, जनसंख्या वृद्धिअ जे करे चुनौतियूं ऐं उन्हनि जो समाधान। अॼु असां सां गॾु वार्ताकार आहिनि भेण किरण वाधवानी जी। अचो त ॿुधूं था इन्हनि खां अॼु जी वार्ता ते ॼाण।
1: साथियों, सभ खां पहिरीं मां किरण वाधवानी तव्हां खे सिक ऐं प्यार भरियो जय झूलेलाल थी चवां। अॼु जो असांजो विषय आहे जनसंख्या वृद्धि चुनौतियूं ऐं समाधान। त अचो त असीं हिन वार्ता खे ॿुधूं। जनसंख्या हर देश जी प्रगतिअ जो संकेत ॾींदी आहे, पर जेकॾहिं इहा ई जनसंख्या नियंत्रण खां ॿाहिरि थी वेंदी आहे त देश जे विकास जे लाइ हिकु गंभीर समस्या थी वेंदी आहे। भारत जहिड़े विकासशील देश लाइ जनसंख्या वृद्धि हिकु जटिल ऐं बहुआयामी चुनौती ठही वई आहे। भारत जे विश्व जो ॿियों सभिनि खां वधीक जनसंख्या वारो देश आहे ऐं इहो अनुमान आहे त ईंदड़नि सालनि में भारत चीन खे बि पुठियां छॾींदो। त इन्हीअ करे इहो ॾाढो ज़रूरी आहे त असां जनसंख्या वृद्धिअ खां थींदड़ समस्याउनि खां बचणु असांजे लाइ उत्तम आहे। जनसंख्या वृद्धिअ खे पूरीअ तरह रोकणु सवलो त संभव आहे ई कोन, पर जनसंख्या खे नियंत्रण ऐं संतुलित करणु ज़रूरु संभव आहे। इन जे लाइ ज़रूरी आहे त सरकार, समाज ऐं समाज जो रहंदड़ हर माण्हू पंहिंजी भूमिका ज़िमेदारीअ सां निभाए। इहो हर माण्हू जो फ़र्ज़ आहे। जेसीं ताईं शिक्षा, स्वास्थ्य ऐं जागरूकता खे बढ़ावो न ॾिनो वेंदो, तेसीं ताईं जनसंख्या वृद्धिअ खे रोकणु मुश्किल ई न पर नामुमकिन बि आहे। असांखे इहो सम्झणु घुर्जे, नंढो परिवार सुखी परिवार नारो जेको आहे सिर्फ़ हिकु स्लोगन ई कोन्हे, बल्कि हिकु विकसित समाज जी आधारशिला पिणु आहे। जेकॾहिं असीं हाणे इहो निर्णय न वठंदासीं त सुभाणे हिकु सुरक्षित, संतुलित ऐं विकसित भारत जी कल्पना साकार न थी सघंदी आहे। चुनौतियूं ऐं समाधान। जनसंख्या वृद्धि हिकु ॾाढी वॾी जटिल समस्या आहे, जंहिंजा घणेई कारण बि आहिनि ऐं परिणाम बि आहिनि। उन्हीअ जे समाधाननि जे लाइ शिक्षा ऐं स्वास्थ्य सेवाउनि में सुधार ऐं लैंगिक समानता जहिड़ा कम ज़रूरी आहिनि। जीअं त स्वास्थ्य सेवाउनि में वाधारो करणु, वधंदड़ जनसंख्या जे करे ग़रीबी बि वधंदी आहे ऐं ग़रीबी वधण सां बेरोज़गारी पिणु वधंदी आहे। इहा ग़रीबी ख़ासि करे विकसित देशनि ते ई पंहिंजो असरु छॾींदी आहे। स्वास्थ्य सेवाउनि जी गुणवत्ता में कमी ऐं गिरावट बि अची सघे थी ऐं इन जा स्वास्थ्य जी सेवाउनि ते दॿाउ बि पवंदा आहिनि। शिक्षा जी गुणवत्ता में कमी। जीअं जीअं जनसंख्या वधे थी, तीअं तीअं शिक्षा जी प्रणाली ते बि उन जो घणेई असरु पवे थो।

जनसंख्या अगरि वधंदी त सभिनि खे सुठी शिक्षा ॾियणु ॾुखियो थींदो ऐं शिक्षा जी गुणवत्ता बि घटि बि। जागरूकता जी बि कमी, जनसंख्या वृद्धिअ जे ख़तरनि ऐं उन्हनि जे समाधाननि जे बारे में जागरूकता जो प्रचार ऐं प्रसार पिणु सुठे रूप में असांखे करणु घुरिजे ऐं उन्हनि उपायनि खे लागू करे जनसंख्या वृद्धिअ जी चुनौतियुनि जो समाधान करणु पिणु सरल थी वेंदो ऐं हिकु बहितर ऐं उज्जवल भविष्य पिणु ठाहे सघिजे थो। हाणे असां समाधाननि जे बारे में चर्चा कंदासीं। परिवार नियोजन, समाज में परिवार नियोजन जो कार्यक्रम जेको आहे उनखे बढ़ावो ॾियणु घुरिजे। नंढनि परिवारनि में रहण जी हिदायत पिणु सभिनि खे ॾियणु घुरिजे। गांवनि ऐं शहरनि में परिवार नियोजन जा कैंप पिणु लॻाया वञनि। इहो ॾाढो सुठो तरीक़ो आहे, कैंपनि जे ज़रिए सभु लाभ वठंदा ऐं जनसंख्या वृद्धिअ खे पिणु कंट्रोल में कयो वेंदो। महिला शिक्षा ते ज़ोर, ख़ासि करे युवा महिलाउनि ऐं महिलाउनि जी शिक्षा ते ज़ोर ॾिनो वञे, मतिलबु छोकिरियुनि जी शिक्षा ते इहो पाठ पढ़ाइणु घुरिजे ऐं महिलाऊं अगरि वधीक मां वधीक शिक्षित हूंदियूं त प्रजनन जी दर में बि कमी थी सघे थी ऐं जनसंख्या जे वाधारे ते कंट्रोल बि करे सघिजे थो। महिला शिक्षा जो ॾाढो रोल जनसंख्या वृद्धिअ में अदा थींदो आहे। आर्थिक अवसर, महिलाउनि खे जीवन यापन लाइ आर्थिक अवसर पिणु प्रदान करणु घुरिजनि ऐं हुननि खे पंहिंजे जीवन ते नियंत्रण रखण जी मदद बि करणु घुरिजे। इन सां बि जनसंख्या वृद्धिअ ते कमी थी सघे थी। स्वास्थ्य सेवाउनि खे बहितर करणु, अगरि स्वास्थ्य जी सेवाउनि में बहितर कबो त परिवार नियोजन सां गॾोगॾु मात्र एवं शिशु दर बि घटिबी। अगरि उन्हनि खे सुठियूं सेवाऊं ॾिनियूं वेंदियूं ऐं उन्हनि खे प्रेरित कयो वञिबो त उन जो लाभ बि असांखे मिली सघिबो। लैंगिक समानता, महिलाउनि खे सशक्त ठाहिणु घुरिजे ऐं महिलाउनि खे सामाजिक ऐं आर्थिक मसलनि में फ़ैसिला वठण जी छूट बि ॾिनी वञे। हू वधीक सम्झी सघंदियूं इन सां, अगरि हू पंहिंजा फ़ैसिला सामाजिक ऐं आर्थिक स्तर ते पाण खणंदियूं त लैंगिक समानता ते ज़ोर पवंदो ऐं जनसंख्या जी दर पिणु घटिबी। पर्यावरण अनुकूल शहरी नियोजन, साफ़ पाणी ऐं किफ़ायती दर ते आवास मुहैया करणु घुरिजे। हुननि खे सभु सुविधाऊं हुजनि त इन जनसंख्या ते वृद्धिअ खे असां रोके सघजूं था। दीर्घकालिक विकास लाइ टिकाऊ योजनाऊं ऐं समाधान में निवेश करणु घुरिजे। टिकाऊ ऐं बुनियादी ढांचे में अगरि असां निवेश कंदासीं त ॾाढो ज़रूरी थींदो ऐं जनसंख्या वृद्धिअ खे रोकण में असांखे पिणु सवलाई थींदी। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग वठणु घुरिजे। संयुक्त राष्ट्र संघ जहिड़नि वैश्विक मंचनि जे माध्यमनि सां सतत विकास ॾे ध्यानु ॾियणु घुरिजे ऐं उन्हनि जे लक्षणनि ते पहुचण जी कोशिश बि असांखे पिणु करणु घुरिजे। आर्थिक विकास ॾे बि ध्यानु ॾियणु घुरिजे। शिक्षा ऐं कौशल विकास ते सभिनीनि जो ध्यानु केंद्रित करणु घुरिजे ऐं आर्थिक रूप सां सभिनि खे सशक्त ठाहिणु घुरिजे, तब असांजी इहा समस्या हल थी वेंदी। शिक्षा खे प्राथमिकता ॾिजे, अगरि शिक्षा खे प्राथमिकता ॾिनी वेंदी तब असांखे इन्हनि समस्याउनि खां मुक्ति मिली सघंदी। जो शिक्षित माण्हू आहे उहो सही निर्णय वठी सघंदो आहे। जनसंख्या वृद्धिअ जूं चुनौतियूं, हाणे असीं चुनौतियुनि खे ॿुधूं था। वधंदड़ जनसंख्या जे करे रोटी पाणी ऐं ऊर्जा सां गॾोगॾु अटे
अझे ए लटे जी समस्या।

0: शिक्षा पिण खड़ी थी वेंदी आहे, जंहिं करे जीवन यापन करण में जे संसाधन खे उन्हनि कमियुनि जो सामनो पिण करणो पवंदो आहे। पर्यावरण जो प्रदूषण, असीं सभु ॼाणूं था जनसंख्या जे वाधारे करे पर्यावरण बि प्रदूषित थींदो आहे। जेतिरा वधीक माण्हू ऐं जेतिरी वधीक जनसंख्या हूंदी, ओतिरो ई वधीक कचिरो ऐं गंदगी बि हूंदी, पर्यावरण बि प्रदूषित थींदो ऐं ॾाढी गंदगी बि थींदी, ऐं इन्हीअ चुनौतीअ जो बि असांखे ई सामनो करणो पवंदो। हाणे असीं पहुचूं था इन जे निष्कर्ष ते, त निष्कर्ष छा थो निकिरे। जनसंख्या वृद्धि हिकु ॾाढी वॾी जटिल सामाजिक ऐं आर्थिक समस्या आहे, जंहिंजो समाधान सिर्फ़ कानूननि सां ई न थींदो, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य ऐं जागरूकता जे सामूहिक प्रयासनि सां ई संभव थी सघे थो। यदि संभव हूंदे प्रभावी कम न कया विया, त प्राकृतिक संसाधननि जी कमी ऐं जीवन स्तर में गिरावट जहिड़ियूं गंभीर स्थितियूं पैदा थियण में देर न लॻंदी, जंहिंजो सिधो असर असांजे मथां थींदो आहे। जय झूलेलाल।
1: जनसंख्या वृद्धि चुनौतियूं ऐं समाधान, अॼु जी इहा वार्ता हुई। वार्ता पेश करे रहिया हुया भेण किरन वाधवानी जी। तमामु सुहिणी ऐं सवले अखरनि में ॼाण जनसंख्या वृद्धिअ जे प्रति। हाणे अचो साथियूं, ॿुधूं था हीउ गीत।

0: गीत गायो हो कमला केसवाणी ए संगीत हो सी अर्जुन जो।
1: साथियों इन गीत का पो जेका जाना है सा है अल्पसंख्यकन जे लाए सरकारी योजनाओं जे बारे में। अल्पसंख्यकन जे लाए भारत सरकार घणई योजनाओं हलाए रही आहे, जियत पीएम विकास योजना जेका जुड़ियल आए कौशल ए उद्यमता सा प्री व पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति पढ़ने वाले बारन जे लाए मैट्रिक करण जे लाए छात्रवृत्ति सा जुड़ियल आए ये सरकारी योजना ए ऋण योजनाओं यानि जेके लोन तो मिले कर्जो थी दे सरकार उन्हें जेका जुड़ियल योजना आए सा आए NMDFC। इन तरीके से घणई योजनाओं सरकार पारा अल्पसंख्यकन जे उद्धार जे लाए जीवन में सुधार जे लाए शिक्षा ए रोजगार के वधाण जे लाए हली रही आहिन। अल्पसंख्यक वर्ग पंहिंजा जरूरी दस्तावेज जमा करे संबंधित कार्यालय मां इन्हनि योजनाउनि जो फ़ाइदो खणी रहिया आहिनि ऐं अॻिते बि खणी सघनि था। साथियों सरकारी योजनाउनि सां ई हिकु जुड़ियल ॿी नंढड़ी ॼाण आहे जंहिंजो नालो आहे विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण VBG RAM जी। दरअसल दोस्तों जेका मनरेगा नाले सां सरकारी योजना ही उन जी ही जॻहि ते 1 जुलाई 2026 खां वठी इन VBG RAM जी योजना स्थान वरितो आहे। इन में मज़दूरनि जे लाइ साल में 125 ॾींहनि जी मज़दूरीअ जी गारंटी ॾिनी वेंदी आहे। साथियो इन सरकारी योजनाउनि जी ॼाण खां पोइ अचो त ॿुधूं था हिकिड़ो ई मज़ाकिया ॿारनि जो गीत।

साथियों, ही गीत गायो हो भगवंती नावाणी ए साथियुनि, ऐं हिन गीत सां गॾु ई अॼु जे कार्यक्रम जो समय बि पूरो थी रहियो आहे। इजाज़त ॾियो पंहिंजे रेडियो साथी मनोज सोनी पंजवाणीअ खे, वरी मिलंदासीं। सभ जो भलो।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सिंधिया जी सोरहाण। आप सुन रहे हैं डीटीएच का प्रसारण। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम संग्रहालय से, जिसमें आज आप सुनेंगे धारावाहिक हंसना मना है का भाग 4।

रजनीकांत त्रिवेदी। एक ट्रेन की कहानी है जिसमें मैं सफर कर रहा था। वो किस स्पीड में चल रही है इसका अंदाज आपको आगे हो जाएगा। वो 20 की स्पीड में थी कि 15 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड में थी कि 50 की थी कि 100 की थी, इसका अंदाज जरा देखिए। चली जा रही है ट्रेन, गर्मी का मौसम है, पसीना पसीना हो रहे हैं हम। जो पंखे लगे थे वो सिर्फ दिखने भर के थे, वो चल नहीं रहा था, एक दो जरूर चल रहे थे। चली जा रही थी ट्रेन, अचानक वो ट्रेन रुक गई। थोड़ा सा जंगली एरिया आया। जब वो ट्रेन रुक गई तो मैंने पूछा कि यार अचानक क्या हो गया, ये ट्रेन रुक क्यों गई है, लगता कोई स्टेशन आया। तो एक दो लोगों ने कहा, नहीं नहीं नहीं साहब, स्टेशन नहीं आया है, क्या हुआ है, एक भैंस वो इंजन के आगे आगे आ गई है। तो हमने कहा वो भैंस कट गई है क्या? कह नहीं साहब, कट नहीं गई है, वो खड़ी हो गई है। तो फिर क्या किया जाए? वो कह साहब रेलवे के जो गार्ड हैं और दूसरे कर्मचारी हैं वो जा रहे हैं उस भैंस को आगे इससे भगा देंगे, फिर अपनी ट्रेन चलेगी। हमने कहा बहुत बढ़िया। दो चार मिनट ट्रेन रुकी रही, फिर गाड़ी चालू हो गई। चलती रही ट्रेन, चलती रही ट्रेन, चलती रही ट्रेन, चलती रही ट्रेन, अचानक फिर ट्रेन रुक गई। मैंने कहा भैया अब क्या हुआ, कोई स्टेशन आया क्या, कोई स्टेशन आया क्या? तो लोगों ने कहा नहीं साहब, स्टेशन तो नहीं आया। तो हमने फिर ये ट्रेन क्यों रुक गई? तो एक सज्जन बोलते हैं कि ले वो वाली भैंस जो पीछे आ गई थी ना, वही वाली फिर से आगे आ गई है। अब साहब हुआ क्या, हम लोग तो चले जा रहे थे, साम दाम दंड भेद, भाई सफ़र तो तय करना ही करना था, बहुत लंबा सफ़र था हमारा। चली जा रही ट्रेन, बड़ा मज़ा आया, गर्मी बहुत हो रही थी, अचानक वो ट्रेन एक स्टेशन पे रुक गई। हमने कहा चलो स्टेशन तो आया है, चाय वाय लेने लगा मैं, तो अचानक क्या देखता हूँ कि एक लड़का पंखे बेच रहा था, हाथ वाले पंखे जो हाथ से चलते हैं, वो वाले पंखे लेके आवाज़ लगा रहा था।

लीजिए दोस्तों, एक बार फिर इस नई कड़ी के साथ हाजिर है आपका अपना दोस्त

काला पंखा। तो मैंने कहा भाई गर्मी तो मेरे को भी लग रही है, घंटे चार घंटे का सफर है, पंखा ले लिया जाए। मैंने पंखे वाले को बुलाया, हमने भाई पंखे कितने कितने के, एक है चार आने का, दूसरा है आठ आने का। हमने कहा भाई एक काम कर, दो चार घंटे के लिए कौन पैसे ज़्यादा खर्च करे, तू एक काम कर चार आने वाला दे दे। तो उसने मुझे चार आने वाला पंखा दे दिया। हम बड़े खुश कि चलो कुछ ठंडी ठंडी हवा आएगी। ट्रेन जब चलने को थी, बस उसके 2 मिनट पहले ही मैंने वो पंखा लिया और उसको हिलाने लगा। मैं हिलाता हूँ तो क्या देखता हूँ, आधा मिनट भी वो पंखा नहीं चला, उसके अंदर जितने भी मटेरियल लगा था पंखे का पूरा ज़मीन में आ गया। हमने कहा अरे यार ये क्या हुआ, 25 पैसे खर्च किए और इसमें तो हवा ही नहीं निकल रही, ये तो टूट गया, 2 मिनट 1 मिनट में भी टूट गया। मैंने फ़ौरन पंखे वाले को बुलाया, हमने पंखे वाले इधर आना भाई, इधर आइए, ये क्या दिया आपने, ये कैसा पंखा दिया आपने, मैंने जैसे ही इसको हिलाया है तो ये तो टूट गया। तो पंखे वाला बोलता है आपने कितने वाला पंखा लिया था, मैंने कहा भाई चार आने वाला पंखा लिया था। आपने गलती की साहब, ये जो चार आने वाला पंखा और आठ आने वाला पंखा है इसमें ज़रा सा फर्क है, ये जो आठ आने वाला पंखा मैं देता हूँ ना वो उसको ऐसे हाथ में पकड़ना पड़ता है और हाथ को ऐसे हिलाना पड़ता है तो हवा लगती है ना। हमने कहा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा, और ये चार आने वाले की क्या खासियत है, इसकी खासियत ये है साहब इसको हाथ में ऐसा पकड़ना पड़ता है और अपना सिर को हिलाना पड़ता है बड़ी जोर जोर से। हमने ट्रेन आगे बढ़ी, बड़ा मज़ा आ रहा था साहब, सफ़र का अलग आनंद आ रहा था। अचानक जहाँ मैं बैठा था उसके ऊपर की तरफ एक दो लोग बैठे हुए थे, कुछ इस तरफ बैठे थे कुछ उस तरफ बैठे थे। एक बुज़ुर्ग जैसे एक नौजवान साथी से कुछ पूछते हैं, वो बुज़ुर्ग ने नौजवान से पूछा क्यों भाई कहाँ जा रहे हो, तो लड़का बोलता है वो बुज़ुर्ग से कहले मैं तो साहब जबलपुर जा रहा हूँ। कहले अच्छा अच्छा जबलपुर, तो भाई मैं भी जा रहा हूँ। कहले अच्छा बाबू जी जबलपुर तो हम भी जा रहे हैं। कहले वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है भाई, जबलपुर में आप कहाँ रहते हैं। कहले जबलपुर में मैं तो वहाँ मतलब जो बड़ा फुहारा है, कमानिया गेट है, बड़ा फुहारा है, व्यापारी क्षेत्र है, बड़े अच्छे अच्छे लोग रहते हैं वहाँ पर, वहाँ रहता हूँ। तो बुज़ुर्ग नौजवान से बोलते कहले बहुत खूब बात है भाई, वाह वाह वहाँ तो हम भी रहते हैं। तो लड़का बोलता अच्छा बाबू जी कितनी अच्छी बात है, आप वहाँ पर कहाँ रहते हैं साहब। कहले वहाँ एक कृष्ण भगवान का मंदिर है उसके पास में रहता हूँ। तो लड़का बोलता कहले क्या बात है बाबू जी वहाँ तो हम भी रहते हैं, अच्छा कृष्ण भगवान के मंदिर के पास। बुजुर्ग बोलते हैं बहुत खूब बात है, वहाँ आप कहाँ रहते हैं। कि साहब कृष्ण भगवान के मंदिर के बिल्कुल बाजू से जो गली जाती है ना, जहाँ वकील साहब रहते हैं और एक कपड़े वाले भैया रहते हैं, एक किराने वाले भैया रहते हैं। हमने हाँ हाँ हाँ हाँ मैं वहीं रहता हूँ। फौरन बुजुर्ग बोलते कहले कितनी अच्छी बात है बेटा, देखो है जहाँ तुम रहते वहाँ हम रहते, जिस शहर में तुम रहते उसी शहर में हम रहते। तो बुजुर्ग ने बोला बेटा एक बात और बताओ, तुम्हारे मकान का नंबर क्या है?

0: तो लड़का बोलता हमारे मकान का नंबर तो 115 है। तो बुजुर्ग बोलता किले कितना इत्तेफाक, क्या बढ़िया बात है बेटा, किले मेरे मकान का भी नंबर 115 है, मेरा हो गया दिमाग खराब। हमने यार ये दोनों बुजुर्ग और ये नौजवान एक ही शहर में रहते हैं, एक ही महल्ले में रहते हैं, पूरा एरिया एक ही गली मकान, वो नंबर वही सब कुछ वही, लेकिन ये आपस में पहचानते नहीं कि ये कौन है और वो कौन है। मैंने अचानक सवाल किया, किससे? बुजुर्ग से। हमने क्यों बुजुर्ग बार, आप एक बात बताइए, आप दोनों एक ही शहर में रहते हैं, एक ही इलाके में रहते हैं, एक ही गली में रहते हैं, अरे एक ये तो छोड़िए, आप एक ही मकान में रहते हैं और उसके बाद आप लोग आपस में पहचानते नहीं कि ये कौन है वो कौन है। तो बुजुर्ग को कुछ बोले, वो लड़का ऊपर से कूदा मेरे सामने और मुझसे बोलता है आप चुप रहिए, हम लोग बाप बेटे हैं, हम लोग बोर हो रहे थे इसलिए मनोरंजन कर रहे हैं। और अब एक और हंसोड़, विनय जैन, जब देखो तब दांत निपोरी इनकी आदत है, फिक्र नहीं करते किसी को पसंद आए या ना आए। देखिए तो क्या कहते हैं ये।
1: हंसी की एक फुलझड़ी प्रस्तुत कर रहा हूँ कि साहब, कॉलेज की एक लड़की अपने प्रिंसिपल साहब के पास पहुंची और बोली,
2: सर।
1: क्या बात है?
2: सर, कॉलेज के सभी लड़के मेरे को ना बुआजी कह के चिढ़ाते हैं, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता सर।
1: रुक जाओ बेटा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। रमेश आप खड़े हो जाइए, आप इनको बुआ जी बोलते हैं?
3: नो सर, मैं इनको बुआ जी नहीं बोलता।
1: बैठ जाइए। सुरेश आप खड़े हो जाइए, आप जरूर इनको बुआ जी बोलते होंगे। भले माफा भगवान की कसम खा के कह रहा है, हम तो बोला ही नहीं सकते। भले भैया भगवान ने तुम्हारा मुंह दिया है, कैसे नहीं बोल सकते, कैसे नहीं बोल सकते? भले माँ साहब ऐसे नहीं बोल सकते, काहे कि सारा कॉलेज तो हमें फूफा जी कहता है।
3: एक ऐसे साहब जिन्हें बोलने में बहुत परेशानी महसूस हुआ करती थी, बहुत सारी बातें अटक अटक कर बोला करते थे। तो जैसे ही साहब प्लेटफॉर्म पर खड़े हुए अखबार पढ़ रहे थे और एक सज्जन अपना बहुत सारा सामान लेके प्लेटफॉर्म में एंट्री हुए, अब उनको क्या मालूम कि सामने वाले साहब अटक अटक के बोला करते हैं। बड़ा हाथ में सामान वगैरह लिए हुए थे, एक हाथ में छाता था, एक हौलदार कंधे में था, एक संदूक दूसरे हाथ में था, एक बंदूक उस कंधे में थी और पोजीशन वजन से बिल्कुल डाउन हुई जा रही थी। जैसे ही प्लेटफॉर्म में एंट्री हुए, उनने आना देखा ताओ अटक के बोलने वाले साहब के पास पहुँच के फ़ौरन सवाल किया, क्यों भाई साहब वो भोपाल जाने वाली राजकोट एक्सप्रेस कहाँ है, जल्दी बता दो, बहुत भजन है भाई। तो अटके लाल साहब, जिनका पूरा नाम अटक लाल झपट सिंह था, उन्होंने फौरन जवाब दिया,
4: किसी और से पूछा होता तो बता दिया होता, अब तक भोपाल जाने वाली राजकोट एक्सप्रेस वो जा रही।
3: साहब भी बड़े गुस्से में आ गए अटकलाल झपट सिंह जी और बस स्टैंड पहुंच गए। बोले साहब मैं बस से जाऊंगा। सारे लोग बस स्टैंड पहुंच गए। बस जैसे ही चली, सौभाग्य कहिए या दुर्भाग्य, एक सज्जन बस में और चढ़े और वो भी बोलने में अटकते थे और बैठे कहाँ, वो अटकने वाले सज्जन के बाजू ही में। जैसे ही बस चली, जो नए सज्जन थे उन्होंने पुराने सज्जन से सवाल किया,
5: क्यों भाई साहब आपका नाम क्या है? मेरा नाम है सीता, और तुम्हारा नाम क्या है?
6: मेरा नाम भी घसीटा है, मगर उतना नहीं जितना तुमने घसीटा।
3: अपनी श्रीमती जी को लेकर साड़ी की दुकान में पहुंचे, काउंटर मैन से जाके क्या बोलते हैं,
5: क्यों भाई साहब साड़ी है?
3: तो काउंटर मैन जवाब देता है, हाँ भाई साहब साड़ी है, मगर इतनी लंबी नहीं है। अब अपने चाचा जी की किताबों की दुकान में पहुंचते हैं। किताबों की दुकान चाचा जी की बुक्स एंड स्टेशनर्स के नाम से एक बाज़ार में खुली हुई थी, और चाचा जी की जैसी दुकान में जाते हैं तो चाचा जी से पहुंचते ही से चाचा जी भोजन

0: करने के लिए जाने वाले रहते हैं, तो फौरन वो अपने भतीजे को बुलाते हैं और बोलते हैं कि अच्छा हुआ आप आ गए, हमारी दुकान में बैठो और हम खाना खाने जा रहे हैं, और भतीजे को बिठा देते हैं। तो साहब जैसे ही चाचा जी ने उनसे बोला कि देखो तुम अटक बेटा, तुम यहीं दुकान में बैठो और मैं खाना खा के आता हूँ, समझे, और ध्यान रखना ग्राहकी का जरा। ठीक है चाचा जी, आप बिल्कुल चिंता मत करो। जैसे ही चाचा जी गए, फौरन एक ग्राहक आया और इनसे पूछा, भैया वो संस्कृत की कुंजी देना। साहब ने फौरन कुंजी निकाल के सामने काउंटर पर रख दी। कितने की?
1: 7 रुपये। 75 पैसे।
0: क्या भाई साहब आप मजाक कर रहे हैं, इतनी बड़ी दुकान चलाते हैं, अभी थोड़ी देर पहले हमारा छोटा भाई 7 रुपये में लेके गया है, 2 घंटे बाद ऐसा बिल्कुल 75 पैसे रेट बढ़ गया, बिल्कुल गलत है ये तो।
1: तुम चुप रहो, वो लड़का 75 पैसे बोलने के पहले ही ले गया।
0: एक साहब बहुत ज़्यादा गप हाँकने के शौकीन थे, शिकार के तो शौकीन थे ही, अपने किसी ज़माने की बात लेकर बैठ गए, चार लोगों के बीच में अपना शिकार का वाक्या सुनाने लगे।
2: बोले साहब हुआ यूं कि मैं गया जंगल और मैंने देखा कि एक शेर चला जा रहा है, अब मुझे आया गुस्सा तो मैंने निकाली अपनी बंदूक, जैसे निकाली बंदूक तो शेर ने बंदूक देखी तो एक छलांग लगाई, और शेर ने जैसी छलांग लगाई तो मैं घबरा गया, और जैसे मैं घबराया तो शेर ने मेरे को दिया पटक।
0: बोले फिर तो अचानक किसी ने उनको बताया, बोले साहब आपका टेलीफोन आया, कोई आपको फ़ोन पे याद कर रहा है। तो भाई साहब यहाँ गप सुनाते सुनाते वहाँ टेलीफोन पे किसी के साथ बात करने चले गए, आधा पौन घंटा कोई से टेलीफोन पे बात करते रहे, लौट के जैसे ही आए लोगों ने बोला हाँ साहब फिर आगे क्या हुआ, तो साहब तो वैसे ही गप्पी भूल चुके थे कि क्या सुना रहे थे। बोले साहब वो आप शेर का वाक्य सुना रहे थे कि गुस्से में, बोले हाँ फिर हम लोग तो साथ में घूमने गए और बहुत देर बगीचे में बैठे रहे, फिर एक साथ फिल्म देखी और नाश्ता वगैरह किया, वापस आके सो गए।
3: भाई वाह, लतीफे सुनाने में मकरंद बड़नेरकर का जवाब नहीं, यकीन नहीं आता ना, तो चले सुने इनको।
4: एक ट्रैफिक हवलदार सड़क पर खड़े ट्रैफिक का संचालन कर रहे थे, अचानक उन्होंने एक साइकिल वाले को आते हुए देखा और डंडा फटकारते हुए बोले, अरे रुक रुक, बिना हेडलाइट और बिना घंटे की साइकिल चलाता है। साइकिल वाला बोला, हवलदार जी हट जाइए, इसमें ब्रेक भी नहीं है। एक क्लास के दौरान मास्टर जी पढ़ा रहे थे कि पढ़ाते पढ़ाते उनका ध्यान अचानक एक छात्र पर गया, सभी छात्र तो उनकी बात बड़े ध्यान से सुन रहे थे, लेकिन उस छात्र का ध्यान किसी और जगह लगा हुआ था। उस छात्र का नाम गया प्रसाद था, और छात्र जो था वो कमरे के एक कोने में बिल में एक चूहे को अंदर और बाहर आते हुए जाते हुए देख रहा था, बार बार चूहा अंदर आ रहा था बाहर जा रहा था, और छात्र का ध्यान बिल्कुल उसी चूहे की ओर था। मास्टर जी परेशान हो गए, क्या बात है कहीं और ध्यान दे रहा, मास्टर जी ने लगभग चीखते हुए कहा, अबे गया। लड़के ने कहा, नहीं मास्टर जी अभी पूंछ बाकी है।
3: ध्यान रहे, आप सुन रहे हैं एक खास प्रोग्राम जिसका नाम है हंसना।

0: जन्मदिन आपने बहुत मनाए होंगे, खूब मनाए होंगे, बड़े प्यारे प्यारे मनाए होंगे, मगर हमारे दोस्त गोपाल तिवारी शामिल हुए एक खास जन्मदिन पर। सुनिए,
1: घटना गांव की है, और गांव की इसलिए क्योंकि भारत गांव का देश है, गांव में बसता है, और ये पटेल साहब हैं, सरपंच बन गए, पटेल इनकी उपाधि है। उन्होंने अपने बच्चे का जन्मदिन कैसे मनाया वो एक घटना मैं आपको सुना रहा हूं। के पटेल साहब ने पटेलन से पूछा,
2: अरे काय पटेलन?
1: हाँ बोलो।
2: वो अपने गुड्डा को जन्मदिन कब है?
3: गुड्डा को जन्मदिन समझ लो आप, बड़ी जीजी को लड़का छठ में भाव, और जी छोटी को भाव तेरहवीं के बाद चौथ को, और जी समझ लो पंचमी को है, तो जो समझ लो कि हर छठ के दूसरे दिन की बात है। अरे तुम यार हर छठ टीजा ना बताओ, तुम मतलब डेट बताओ ना। हाँ समझ लो, हम तुम्हारा बोला हुआ आ रहा जब से नौकरी को, और तुम गए, तुमने फिर कैंसिल करवा दई, उसके बाद पानी का बरसो रहो खूब कड़क के बिजली, फिर ओरा गिरे थे वो दिन। अरे तुम यार खगलो नहीं यार, तो मतलब बताओगे ये हुआ कब है? डायरी देखो। अच्छा एक मिनट, देख रहे ला कर्मधारी, डायरी वायरी उन्होंने देखी, और डायरी देख के

0: बाद उन्होंने बताया कि ये कब हुआ। जे समझ लो कि तीज के दूज की बात 22 तारीख को भवराज है, समझ लो 20 तारीख कल छोड़ पा रहा हूँ जन्मदिन। हाँ तो कहने लगे ठीक है, अब वो पहले जैसा जन्मदिन नहीं हो। क्या सा मतलब पहले जैसा नहीं होगा? अरे पहले अपन वो चौक और वो सब नहीं कर लेते रहे, मतलब बुला के आरती पूजा टीके चंदन, वो मतलब नहीं होगा। काय अब काय ना हुआ भाई, गुड्डा को तीसरा जन्मदिन वो काय ना हुआ? तो बोले अरे नहीं समझो तुम, अब हम बन गए सरपंच। हाँ बात वो तो बन गए, खूब वोट मिले। अब जी जो है गुड्डा जो है इसका जन्मदिन अपन शहर की स्टाइल में मनाएंगे, लोगों को लगे तो कि नहीं मतलब अपन सरपंच बन गए ना, मतलब थोड़ा कादर खड़ी हो जाए जरा, समझा करो बात को। अब साहब ये हुआ कि उसने कहा कि कैसे करेंगे? करना कुछ नहीं है, अब जैसा आप बोले वैसा करेंगे। एक काम करेंगे, हम शहर से वो कैंडल वेंडल और केक वेक वो सब पूरा ले आएंगे और तुम पूरे गांव में चर्चा बिल्कुल भजवा देना, समझ गए ना, और फिर उसके बाद जो है अपन बढ़िया सेलिब्रेट करेंगे। बात डिसाइड हो गई, कंप्लीट हो गई कि ऐसा मनाना है। पड़े साहब शहर चले और शहर से जैसे ही लौट के आए और उन्होंने दरवाजा खटखटाया, जिस दिन गुड्डा का बर्थडे है उस दिन दरवाजा उन्होंने खटखटाया। पटेलन पटेलन
1: एक मिनट आ रहा है।
0: अरे क्या कर रहे, जल्दी खोलो यार दरवाजा।
1: एक मिनट आ रही है, तुम मतलब ऐसी जल्दी मचा?
0: अरे जल्दी खोलो, मतलब डेढ़ घंटा हो गया हम मतलब खड़े हो, तुम कहाँ जा रहे हो अंदर?
1: अरे भाई मतलब अब रार की दाल चढ़ी है, उधर खिचड़ी चढ़ी, एक तरफ भी माता रानी की रानी भी बना रहे, अब एक आदमी के तो काम करे मतलब। हाँ तुम खाली यहाँ चले आए?
0: अरे हाँ यार वो कहो कि मतलब गाड़ी जो है हमारी खराब हो गई, तो ओके मतलब पीछे इंजन में काम निकल आओ, अब इंजन बनवाओ दो चका पंचर, चका बनवाओ दो फिर पीछे चका पंचर, जे माने पूरी नपोर 14 में मतलब पूरी दिक्कत हो गई, और धर माने लाओ करो सामान जो है तो छूट गो।
1: हाँ मैं मालूम है तुम्हारे भरोसे कच्छू नहीं हो सके।
0: अरे नहीं मतलब ऐसी बात नहीं, हम कोशिश हमने पूरी की थी, सब सामान ले लिया था, वो वहीं वो गैरेज में छूट गया।
1: तुम्हारे भरोसे रहते जो चार चार ठैया लड़का बच्चा नहीं, तुम आ जाओ तुम तो अंदर, अब हमने सब व्यवस्था कर ली है।
0: अब साहब ये अंदर आए और उन्होंने कहा अब ये बताओ कि अब वो कैसे मतलब करेंगे, अब फिर चौक बधाव वाला होगा?
1: नहीं ऐसा नहीं कहा, आप हमें कहीं से समझ रहे भाई, जब आप सरपंच तो हम भी तो कछु भाई, और ऐसा नहीं हम भी खूब पढ़े लिखे हैं।
0: अच्छे
1: कहाँ पढ़ गए? नहीं भी प्रौढ़ शिक्षक चल रहा हो आजकल, रेडियो में बता रहे पढ़े पढ़ाए जीवन बनाए, और एक नहीं एक दूनी दो चौके पाँच छक्के आठ, मतलब खूब बढ़िया पढ़े हमने, कोचिंग क्लास पढ़ी हमने।
0: कौन से पढ़ लाई?
1: पंडित जी की ललकच पढ़ी, पंडित जी की बहुत बढ़िया पढ़ा, तुमने पढ़ा दो हमें।
0: अरे ठीक है तुमने व्यवस्था क्या करी जो दिखाओ हमें।
1: केक बना लो।
0: केक बना लो? केक कहाँ से बना लो तुमने?
1: नहीं टीवी पे हमने बाकी रैप शीट देखी थी।
0: क्या देखी रही?
1: रैप।
0: अरे रैप शीट नहीं यार, वो तो तेल होता रैप शीट, रेसिपी रेसिपी बोलते हैं, दो क्लास और पढ़ लेती बाबू की यहाँ।
1: फालतू बात ना कर तुम बाबू की यहाँ, इतो दही दो सब अंदर कर लो, बाबू खुद हो जाए तुम बिल्कुल एकदम।
0: ठीक है भाई ठीक है, गुस्सा नहीं हो तुम, मतलब जो बताओ कहाँ केक कहाँ?
1: जी जी धरवा देखो टेबल में धरो टेबल।
0: अरे बहुत गजब बहुत बढ़िया यार, एक बात बता तुम।
1: हाँ वो पूछो
0: जी, इतना बढ़िया केक तुमने बनाया कैसे? इतना बड़ा इतना सुंदर मतलब बनाया है, ऐसा लग रहा कम से कम 10 किलो से कम का नहीं होगा ये केक, कितने बढ़िया बनाया, कैसे बनाया गया, तुम्हें आइडिया कैसे आया?
1: नहीं कछू नहीं, टीवी में हमने रेप शीट देखी, हमने दिमाग लगाओ कि अब जो केक तो हमें बनाने न वो बन है ना कच्छू कैसे बनाए, तो हमने जुगाड़ करो। हम गए कहाँ बाजू में भी जो दुकान है ना किराना की, वो कहाँ गए हम? कहीं फिर हमने उसे कही, हमने भैया 6-8 ठैया फैमिलीस ब्रेड दे दूँ।
0: कौन सी ब्रेड है?
1: फैमिलीस ब्रेड। अरे फैमिली ब्रेड बोलते यार बड़ी वाली को। हाँ फिर तो बोले फिर हम ब्रेड लाए और ला के ब्रेडों की किनार हमने काट के माहे करी।
0: अच्छा मतलब फेंक दी?
1: हाँ मैं फेंक दी, अलग कर दी। फिर हमने ऐसी 4-6 ठैया ब्रेड धरी और गुड़ की बनाई चाशनी, तो गुड़ की चाशनी फिर ब्रेड फिर चाशनी फिर ब्रेड फिर चाशनी जोर लगाओ।
0: बहुत बढ़िया, फिर क्या करो?
1: फिर कच्छु नहीं, गुड़ की चाशनी माहौ डार के अपनो हरी रंग होली को बचो तो वो रंग दो चार प्रकार के कलर और टेसी को रंग बना लो, अच्छी रंग रोगन कर दो झगा झगके। फिर और क्या करो? नहीं दूध की मलाई बची तो आइसिंग कर दाई होगी बन गए धरो का। और सुनो ऐसी पन्नी की पंगड़िया बनाई हमने, और पंगड़िया बना के उसके अंदर भरी चाशनी में अपन थोड़ी सी मलाई मिला के और रंग मिला के अच्छे भरो, ऊपर से बांध के बढ़िया डिजाइनदार को नाम लिख दो, हैप्पी बर्थडे टू यू गड्डा, और तीन लग दो तीसरे जरा तीन लिख दो, और अपना सिग्नेचर मार दे बढ़िया केतैया। अच्छा एक बात बताओ पटेल।
0: हाँ पूछो।
1: अपने से मतलब कोई को जन्मदिन हो, शादी ब्याह हो, चाहे कोई आदमी दुनिया में नहीं रहे।
0: हाँ तो तुम्हारा कहवे को मतलब कहा कौन नहीं रहो?
1: नहीं वैसे नहीं पूछ रहे हम, दो आदमी खपन जरूर बुलाते।
0: कौन?
1: एक तो वे पंडित जी

0: हाँ तो वो तो ठीक है, और दूसरा कौन? ख्वाजा। अरे तुम यार, तुमको पता नहीं कब अकल आएगी। क्यों कब हुआ ऐसे अकल आए? भाई देखो, ऐसा है कि ये जो कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं ये विदेश का है, वहां कहाँ पंडित जी और वहां कहाँ मतलब खवासन। भाई ऐसा है कि देखो, अब एक दिन का काम तो है नहीं, आज तुमने जो करवा लाओ कल भी आने पर, फिर दूसरे तुम फंक्शन करवा, उन्हें बोला दे के हैं काय जन्मदिन में नहीं पूछो, अब कह रहे हैं कि आ जाओ हैं जज की भाई से, फिर पूछो मतलब पूरे काम है मतलब हमें मतलब है खोटे काम हम करवाएं हैं, और मतलब जो अच्छो काम मिलवे दिलवे को तो दूसरों, ऐसा नहीं हो सके भाई। ठीक है, तुम देखो एडजस्ट करना, पंडित जी को बुलाओ। पंडित साहब नमस्कार। पंडित जी प्रणाम, चरण छूते हैं। पंडित जी, ये जो कार्यक्रम है आपको निमंत्रण दिया है, आप आए, बड़े हर्ष की बात है, लेकिन इस कार्यक्रम में कोई पूजन नहीं होना है। असल में ये हम लोग इस बार पाश्चात्य संस्कृति से अपने बच्चे का जन्मदिन मना रहे हैं, आजकल शहरों में जैसा मनाया जाता है, तो आपसे क्षमा चाहेंगे। आप आए, बड़ा अच्छा हुआ। आप एक काम करिए, नाश्ता करिए, और ये छोटी सी दक्षिणा है आप रखिए, और क्षमा करेंगे आप। अरे नहीं नहीं वो तो कोई बात नहीं, हम तो आपके घर के आदमी हैं, मतलब जब भी आप याद करें ऐसी कोई बात नहीं। पंडित जी ने साहब नाश्ता किया, दक्षिणा ली और चले। लेकिन जो खवासन होती है वो कुछ कुछ जगह पंडित जी से ज्यादा प्रैक्टिकल दिमाग रखती है, और उसका प्रैक्टिकल दिमाग कैसे चला देखिए आपकी नजर, कि उसने पटेलन को हैंडल किया। कैसे? देखो भाई, ऐसो कि हमने खूब शहर में देखे हैंगे, करवाए हैं, और हमें ऐसी ने बताओ, हमें सब समझ में आते ऐसा करवाने हैं। एक काम करो, बलगुआ हमने सबको दे दो, और बलगुआ दे के बाद हमने जो जमा दे थी बिल सब कर दो। अच्छा, फोटोग्राफर को बोलो कि नहीं बोलो? फोटोग्राफर को बोला के लाओ। एक लचर पचर फोटोग्राफर उनको भी बुलाया, वो भी बेचारे मतलब ऐसे समय के मारे थे, लचर पचर टाइप की, मतलब काम उनका बड़ा ढीला ढाला सुस्त, अपने चले आ रहे हैं, अपना साइकिल भी उनकी ऐसी है खट्ट पट्ट घैटर वाली साइकिल। वो साहब आए कैमरा वैमरा लेके, और फिर उसका गुड्डा का बर्थडे बनाना शुरू। केक रखा सेंटर में। हाँ अच्छा, जय बताओ कि गुड्डा कौन सा जन्मदिन है? मतलब अब जी समझ लो कि पहलो जन्मदिन भाओ, तो जो दूसरे तीसरो है जे। भाई देखो यहाँ से, पहले जन्मदिन में दद्दा ने काम करो, करो नहीं करो, दूसरे जन्मदिन में फिर आपने करो, और जो तीसरे फुआ को नेंग लगा, फुआ को बुलाओ। अरे तुम यार, उसमें कहाँ फुआ हुआ, हमारे साहब चले, हम पूरे डायरेक्शन हमारे यहाँ थोड़े हैं, मतलब शहर में करवाए हम। फुआ को बुलाओ। अब फुआ को बुलाया गया, भाई केक रखा गया। हाँ चलो जल्दी से, अच्छा ये काम तो करो, का बेक गुड्डा को तीसरा जन्मदिन है, तीन ठैया कैंडल तो धरो। तुम समझो कहा नहीं, और लफड़ा करवा, कहा होगा तो हमें तो कान में बताओ ना। अरे पटेल साहब भूल गया सामान, हमने जुगाड़ करके केक बनाओ, और तुम अब मतलब कैंडल फैंडल के बीच कच्छू नहीं, जहाँ हम हैं तो गम नहीं। अब भाई हम व्यवस्था करवाए थे तुम्हें, कहा जब तुमने जुगाड़ से केक बना, हम कछू नहीं कर सके तुम्हारे आने, तुमने तो कर। अब भाई देखो, ए बेटा छुट्टू होते आओ।
1: हाँ आओ, तुम एक काम करो, तीन ठेंगे भपका ले आओ।
0: अब साहब तीन भपके मंगवाए गए, वो मिट्टी के तेल के होते हैं, और उनको जलवाया गया कैंडल पे धर के। पटे जो खवासन है उनने पटेलन के यहाँ जलवाया। लेस वन है, लेस दो। अच्छा लड़का बच्चा जितने हैं सब पीछे आ जाएं। हाँ, और अब ये तो बताओ कि जैसे ही सब जन केक कटे, और सबको चिल्लाने हैप्पी बर्थडे टू यू गुड। अरे एक काम तो हम रह गई, पहले जैसे ही समझ लो कि हम तुमसे कहें गुड्डा, तुम पहले केक फूकियो, का बेभप कनखो। हाओ पहले एक काम और करो। अब कहा तुम ये काम करके काम बढ़ा जा रहे हैं, जल्दी कर रहे तुम बिल्कुल, नहीं तो डेढ़ घंटा हो गया। भाई पहले फुआ ऐसी आ, तुम ऐसे बाजू में खड़े हो जा, पहले केक की निछावर ऐसी गजा बता रहे हैं, केक की निछावर आज तक देखो जो गांव काम है, केक की निछावर करो, जल्दी करो। उन्होंने भी केक की निछावर हमने आज तक सुनी नहीं, खुटिया के पैसे 2 रुपये दे दीजिए, अब दो दो में काम न चल है, 10 को निकाल लूट है, केक की निछावर है ऐसे कम ना ले हम, वहाँ केक की निछावर करो। केक की निछावर साफ हो गई, और केक की निछावर के बाद 10 रुपये ने, हाँ एक माहौर कटोरी ला, माहौर राहौर लगाया गुड्डा को, बाकायदा माहौर टिपकी की लगाई, और उसके बाद में केक का कटने का आइटम शुरू हो रहा है, उसके पहले उन्होंने कहा अच्छा एक बात और, अब कहा है गो एक बात और, एक बात और देखो, ये मैं नेंग के तुमने 10 रुपये निछावर के दे, निशानी भी तो दो। काहे की निशानी? भाई देखो अब गुड्डा को जन्मदिन हम याद रखें हैं, तो एक ठैया जो सूट गुड्डा को सलवार हो तुमने छोटे होगा हमारे टुकड़ा को दे दो। कहने लगे फिर का चलो दे दे, और 5 कुरे गेहूँ दे, हमने 5 कुरे गेहूँ दे। और बोलो अब गुड्डा तुम एक काम करो, पहले जो भपकन को फूको, तो गुड्डा ने जैसी भपकों को फूका, बेटा गुड्डा ऐसे नहीं,

0: अच्छे से। अरे फूंक बे कह रहा है, थूको नहीं है, बस सब खाचे ला हम बुझा दे रहे उन्हें लय खबासन ने भपका बुझाए अलग करे। देखो बुझ गए। आप गुड्डा एक काम करो, चक्कू से चक्कू तो लाओ। ए बेटा ऐसे हाँ तुम, तुम्हारा को नाम
1: लपका।
0: अरे लपका ते लपक के जरा चक्कू लिया।
1: बाऊ नहीं मिल।
0: अरे तो बाजू में देख
1: बाऊ, उन कहाँ भी नहीं है।
0: पड़ोस में देख ले,
1: मुझे जीत लो तुम्हारे थे चक्कू नहीं, उन कहाँ भी नहीं मिलो।
0: एक काम करो तुम तो हंसिया ले आओ। गांव का परिवेश हंसिया मंगवा लिया गया साहब, और हंसिए से केक कट रहा है, एक नई बात है। और जैसे ही केक कटे तो उन्होंने कह दिया खवासा ने कि सबको चिल्लाने हैप्पी बर्थडे टू यू गुड्डा, और नया चिल्ला तो फिर रखिए।

0: लो तुम्हारे तो चाकू नहीं, उन कहाँ भी नहीं मिले।
1: एक काम करो तुम तो हंसिया ले आओ। गांव का परिवेश हंसिया मंगवा लिया गया साहब, और हंसिया से केक कट रहा है, एक नई बात है। और जैसे ही केक कटे तो उन्होंने कह दिया खवासा ने कि सबको चिल्लाने हैप्पी बर्थडे टू यू गुड्डा, और न चिल्ला तो फिर केक न मिले, जो समझ लो हाँ टाफियाँ बांटे बिना मिले। तो साहब जैसे ही केक के लिए उसने गड्ढा ने हंसिया उठाया और बुआ ने पकड़ा, साथ में उनके मम्मी पापा पटेल साहब पटेलन पकड़े हैं, और उनने बोले हाँ चिल्लाओ।

0: को कीमा बना डाल ने तुम चटनी निकाल डालो अलग करो अलग करो बस हंसिया खो अरे राम पूरा केक
1: बाबू हमें हंसिया
0: का करो तुम हंसिया
1: नहीं हमें केक लागो है
0: का करो केक को हम वो चाट जी कट जाए हंसिया चाट हो तुम अलग करो
1: नहीं गुड़ तो दे
0: गुड़ की हंसिया बात अलग है जो केक को हंसिया है गरे फंस गया है
1: खैर साहब अब वो हंसिया अलग किया गया अच्छा एक काम करो केक डिस्ट्रीब्यूट करो
0: का करो
1: डिस्ट्रीब्यूट
0: अरे यार डिस्ट्रीब्यूट अंग्रेजी मत बोलो अंग्रेज चले गए तुम केक बांटो सबको
1: एक परात में केक धरा गया और परात में केक धर के सबको बांटा जा रहा है और छिवला के पत्ता में धर धर के दिया जा रहा है
0: अजी कौन का लड़का दो दो बार ले दो दो बार अब झापड़ मत दो दो बार नहीं दो बार ज्यादा खेल उल्टी
1: एक एक बात तो हो गया ना
0: अच्छा एक दे दो जी बाजू वाले सरपंच को लड़का को दो दे दो तो कोई दिक्कत नहीं है अब साहब जैसे ही केक सबको बढ़ गया और उसके बाद केक बढ़ने के बाद क्या बात आई
2: अरे कैसो केक बनाए यार पटेल साहब
0: अरे राम कैसो केक बनाए बोलो खराब केक बनो है अरे राम
3: कैसी स्मेल आ रही ना मम्मी कितना गंदा केक है भाई भाई कितना गंदा केक दीदी कितना बेकार बना ना कितना पैसा स्वाद लग रहा
0: पटेल साहब ने बोले इधर लाओ पटेल तुम केक लाओ हम खा के देखे क्या ना उसमें कोई दिक्कत तुम बड़ा हम केक बना लेते हो रेसिपी हो जी वो लगा तुमको जैसे ही पटेल साहब ने केक खासन कहा होगा पटेल अरे तुम्हारी तुमने जे केक में नाश करवा दो सब केक इतने बढ़िया हमारे मतलब पटेला ने बनाओ केक इतने जतन से तुमने पूरा सत्यानाश करवा दो भक्का धर दे मट्टी के तेल में करो अरे करो

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम संग्रहालय से। इसके अंतर्गत आपने सुना हंसना मना है धारावाहिक का चौथा एपिसोड। ये आकाशवाणी बाल केंद्र है। हमारा अगला कार्यक्रम बस कुछ ही देर में होगा। ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। मीडियम वेव 188.32 मीटर्स यानी 1593 किलोहर्ट्ज़ के साथ ही डीटीएच के ऑडियो चैनल और न्यूज़ ऑन एआईआर एप्लीकेशन पर। शाम के 5 बजने वाले हैं। अब मीडियम वेव पर हमारी सांध्यकालीन सभा आरंभ होती है। कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए। नमस्कार, ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें।
1: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज शिवपुरी में अदानी समूह के लगभग 2500 करोड़ रुपए की लागत वाले अत्याधुनिक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का शिलान्यास किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी उपस्थित रहे। इस परियोजना के माध्यम से क्षेत्र के छोटे एवं मध्यम उद्योगों को रक्षा उत्पादन की सप्लाई चेन से जुड़ने का अवसर मिलेगा। इंडोनेशिया में भारतीय राजदूत संदीप चक्रवर्ती ने कहा कि 6 से 8 जुलाई तक होने वाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया यात्रा दोनों देशों के बीच मौजूदा संबंधों को मजबूती प्रदान करेगी और सहयोग के नए क्षेत्रों के द्वार खोलेगी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने मध्य प्रदेश प्रवास के दौरान ज्योतिर्लिंग भगवान ओंकारेश्वर ममलेश्वर के दर्शन किए। उन्होंने बताया कि साल 2003 में देश के सभी 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने का संकल्प लिया था,

0: लगभग 23 वर्षों की यह आध्यात्मिक यात्रा ओंकारेश्वर में पूर्ण हुई। उत्तराखंड के तनकपुर से आज कैलाश मानसरोवर यात्रा 2026 का पहला जत्था रवाना हुआ। इस जत्थे में एक डॉक्टर सहित 49 तीर्थयात्री हैं, इनमें 34 पुरुष और 15 महिलाएं शामिल हैं। मौसम विभाग ने आज 9 जिलों में अति भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं उज्जैन, इंदौर सहित 20 जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई है। और ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में आज शाम लॉर्ड्स में इंग्लैंड का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। दोनों टीमें श्रृंखला में बिना कोई मैच हारे हुए फाइनल में पहुंची है। ऑस्ट्रेलिया ने सेमीफाइनल में वेस्टइंडीज को हराया और इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब प्रस्तुत है युवाओं का मनपसंद कार्यक्रम युववाणी। प्रस्तुति आकाशवाणी शिवपुरी की है।

नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके दैनिक कार्यक्रम युववाणी में। मैं हूं आपकी दोस्त शिवानी राठौर। दोस्तों, क्रम आज की बात में हम चर्चा करेंगे वनों का संरक्षण हमारा दायित्व विषय पर। संदर्भ है वन महोत्सव सप्ताह। साथ ही हमारा दूसरा विषय रहेगा शिक्षा है अनमोल रत्न, पढ़ने का सब करो जतन। दोस्तों, क्रम वार्ता में हम आपको वार्ता सुनवाएंगे विषय जल है तो कल है पर। वार्ताकार हैं शिवांगी तोमर। साथ ही क्रम जीवन आलोक में हम चर्चा करेंगे अपने गुरुजनों का सम्मान करें विषय पर, और आपका मनोरंजन कराएंगे कुछ खूबसूरत गीतों के साथ। दोस्तों, क्रम आज की बात में हम चर्चा कर रहे हैं वनों का संरक्षण हमारा दायित्व विषय पर। दोस्तों, वनों का संरक्षण हमारा दायित्व है। वन महोत्सव भारत में प्रतिवर्ष 1 जुलाई से 7 जुलाई तक मनाया जाता है। इसकी शुरुआत सन 1950 में कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी द्वारा की गई थी। इस महोत्सव का मुख्य उद्देश्य वृक्षारोपण को बढ़ावा देना और लोगों में वन संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाना है। दोस्तों, वनों का संरक्षण हमारा दायित्व है। वन प्रकृति की अमूल्य देन है। वे पृथ्वी पर जीवन के आधार स्तंभ हैं। मानव जीवन, पशु पक्षियों का अस्तित्व तथा पर्यावरण संतुलन वनों पर निर्भर करता है। वन हमें शुद्ध वायु, वर्षा, औषधियाँ, ईंधन, लकड़ी और अनेक प्रकार के संसाधन प्रदान करते हैं। इसलिए वनों का संरक्षण केवल सरकार का ही नहीं बल्कि प्रत्येक नागरिक का दायित्व है। दोस्तों, वन पर्यावरण को संतुलित बनाए रखने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करके ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जिससे वायु शुद्ध होती है। वन मिट्टी के कटाव को भी रोकते हैं और जल स्रोतों को सुरक्षित रखते हैं। दोस्तों, वे वर्षा चक्र को भी प्रभावित करते हैं, जिससे कृषि और जल आपूर्ति सुचारू रूप से चलती है। यदि वन नष्ट हो जाए तो पर्यावरणीय असंतुलन उत्पन्न हो जाएगा और मानव जीवन अनेक संकटों से घिर जाएगा। दोस्तों, वर्तमान समय में वनों का संरक्षण आज की महती आवश्यकता है। औद्योगिकरण, शहरीकरण के कारण वनों की अंधाधुंध कटाई हो रही है। नई सड़कों, भवनों, कारखानों और कृषि भूमि के विस्तार के लिए बड़ी संख्या में पेड़ काटे जा रहे हैं, जो आने वाले समय के लिए बहुत हानिकारक है। हमें वनों का संरक्षण करना बेहद जरूरी है। अगर ऐसा नहीं किया गया तो इसका परिणाम जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग, सूखा, बाढ़ और जैव विविधता जैसे विनाश के रूप में सामने आ सकता है। दोस्तों, वन केवल पेड़ों का समूह नहीं बल्कि लाखों जीव जंतुओं, पक्षियों का प्राकृतिक आवास भी हैं। वन नष्ट होने पर अनेक प्रजातियां लुप्त होने की कगार पर पहुंच जाती हैं। इससे प्रकृति का संतुलन बिगड़ता है, खाद्य श्रृंखला प्रभावित होती है। इसलिए हमें वनों का संरक्षण करना अत्यंत आवश्यक है। दोस्तों, सरकार के द्वारा भी वन संरक्षण के लिए कई योजनाएं कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जैसे सामाजिक वानिकी, राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम तथा विभिन्न पर्यावरण संरक्षण अभियान। किंतु इन योजनाओं की सफलता तभी संभव है जब आम

जनता सक्रिय रूप से इसमें भाग ले। समाज के प्रत्येक वर्ग को यह समझना होगा कि वन हमारे भविष्य की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। वन मानव जीवन और प्रकृति के लिए अमूल्य संपदा है। उनका संरक्षण करना हमारा नैतिक और सामाजिक दायित्व है। यदि हम वनों की रक्षा करेंगे तो आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ वातावरण, पर्याप्त जल और स्वस्थ जीवन प्राप्त होगा। दोस्तों, इसीलिए हमें संकल्प लेना चाहिए कि हम पेड़ों की रक्षा करेंगे, अधिक से अधिक वृक्ष लगाएंगे और दूसरों को भी वन संरक्षण के लिए प्रेरित करेंगे। वास्तव में वनों का संरक्षण ही मानव जीवन का संरक्षण है। दोस्तों, आइए चलते हैं अब फिल्म संगीत की दुनिया में और सुनते हैं प्यारा सा गीत।

0: दोस्तों अभी सुन रहे थे आप ये गीत। अब समय हुआ है क्रम आज की बात में। हमारे अगले विषय शिक्षा है अनमोल रतन, पढ़ने का सब करो जतन। दोस्तों शिक्षा मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा धन और अनमोल रत्न है। यह व्यक्ति को ज्ञान, विवेक, संस्कार और आत्मविश्वास प्रदान करती है। शिक्षा के बिना मनुष्य का जीवन अधूरा माना जाता है। शिक्षा केवल पढ़ना लिखना ही नहीं सिखाती बल्कि जीवन जीने की सही दिशा भी दिखाती है। इसलिए कहा गया है शिक्षा है अनमोल रतन, पढ़ने का सब करो जतन। इसका अर्थ है प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। दोस्तों शिक्षा की शुरुआत बचपन से ही होती है। प्रारंभिक शिक्षा बच्चे के व्यक्तित्व की नींव तैयार करती है। इस स्तर पर बच्चों को भाषा, विज्ञान, नैतिक मूल्य, अनुशासन और सामाजिक व्यवहार की जानकारी दी जाती है। बच्चे इसी अवस्था में अच्छी आदतें को ग्रहण करते हैं और उनके मानसिक और बौद्धिक विकास की शुरुआत होती है। यदि प्रारंभिक शिक्षा मजबूत होगी तो भविष्य में विद्यार्थी उच्च शिक्षा आसानी से प्राप्त कर सकता है। दोस्तों माध्यमिक और उच्च शिक्षा का महत्व भी उतना ही है जितना प्रारंभिक शिक्षा का है। माध्यमिक शिक्षा विद्यार्थियों के ज्ञान और कौशल को विकसित करती है। इस स्तर पर विद्यार्थियों को विभिन्न विषयों का गहन अध्ययन कराया जाता है जिससे उनकी रुचियों और क्षमताओं की पहचान होती है। इसके बाद उच्च शिक्षा का चरण आता है। दोस्तों उच्च शिक्षा व्यक्ति को किसी विशेष क्षेत्र में विशेषज्ञता प्रदान करती है। इंजीनियरिंग, चिकित्सा, कानून प्रबंधन, कृषि, विज्ञान, शिक्षा और सूचना प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में उच्च शिक्षा प्राप्त करके विद्यार्थी अपना करियर निर्माण करते हैं। आज के प्रतिस्पर्धा भरे युग में उच्च शिक्षा का महत्व और भी अधिक बढ़ गया है क्योंकि यह व्यक्ति को रोजगार के बेहतर अवसर प्रदान करती है और उसे आत्मनिर्भर बनाती है। दोस्तों महिलाओं की शिक्षा भी अत्यंत आवश्यक है। कहा जाता है कि यदि एक पुरुष शिक्षित होता है तो वह एक व्यक्ति शिक्षित होता है, लेकिन यदि एक महिला शिक्षित होती है तो पूरा परिवार शिक्षित होता है। इसलिए सरकार भी शिक्षा को सुलभ बनाने के लिए अनेक योजनाएं चला रही है। विद्यार्थियों को शिक्षा का महत्व समझते हुए नियमित अध्ययन करना चाहिए, समय का सदुपयोग करना, अनुशासन का पालन करना, शिक्षकों का सम्मान करना और कठिन परिश्रम करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करना विद्यार्थियों का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। दोस्तों शिक्षा वास्तव में जीवन का अनमोल रत्न है। प्रारंभिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक प्रत्येक स्तर तक व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शिक्षा ही व्यक्ति को सफल, जिम्मेदार और आत्मनिर्भर नागरिक बनाती है। इसलिए हम सभी का कर्तव्य है कि स्वयं शिक्षा प्राप्त करें और दूसरों को भी शिक्षित होने के लिए प्रेरित करें। आइए साथियों अब समय हुआ है क्रम वार्ता में हमारे आज के विषय जल है तो कल है पर आपको वार्ता सुनवाने का। वार्ताकार हैं शिवांगी तोमर।
1: जल है तो कल है वरना मुश्किल हर पल है, बचा लो पानी अब भी मौका है वरना आने वाली समस्या बड़ी जटिल है। जल के बिना हम सभी प्राणियों का जीवित रहना असंभव है, इसलिए ऐसा कहा भी गया है कि जल ही जीवन है। हमारी रोजमर्रा की दैनिक जरूरतें जल से ही पूरी होती हैं। हमें नदी, तालाब, कुएं इत्यादि जल स्रोतों से जल प्राप्त होता है जिसका उपयोग हम अपने दैनिक गतिविधियों में करते हैं। पृथ्वी पर दिन प्रतिदिन जनसंख्या बढ़ रही है जिसकी वजह से जगह जगह पानी की किल्लत देखी जा सकती है। जल को बचाना हम सभी की जिम्मेदारी है। अगर जल संरक्षण नहीं किया गया तो आने वाले समय में जल की भीषण समस्या बन जाएगी। जल को बेवजह नहीं बहाना चाहिए। जल के दुरुपयोग पर मनुष्य को निश्चित तौर पर अंकुश लगानी होगी। हमें अपने प्रत्येक दैनिक कार्य के लिए जल की आवश्यकता होती ही है।

सुबह होते ही ब्रश करने से लेकर नहाने से लेकर कपड़े धोने तक जल की ज़रूरत होती है। घरेलू कार्यों में भी, जैसे भोजन पकाने में, बर्तन धोने में, घर की साफ सफाई करने में जल की आवश्यकता होती है। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति को इन कार्यों के लिए संतुलित मात्रा में ही जल का उपयोग करना चाहिए। जल प्रकृति द्वारा दिया गया एक अनमोल प्राकृतिक संसाधन है। इसका सोच समझकर उपयोग करना हमारे हाथ में है। बहुत सारे नागरिकों को आदत है कि जल का उपयोग करने के पश्चात वह नल को खुला ही छोड़ देते हैं। यह गलत है। पानी को बेवजह व्यर्थ नहीं करना चाहिए। हमें अपने भविष्य के बारे में भी सोचना होगा। पृथ्वी पर 3/4 भाग पानी से भरा हुआ है। सबसे बड़ा हिस्सा यानी 97% पानी सागरों और महासागरों में पाया जाता है। यानी पीने योग्य पानी बहुत ही कम है, क्योंकि जो पानी महासागरों में और सागरों में भरा हुआ है वो बहुत ही खारा है, जो कि पीने योग्य नहीं है। सिर्फ 3% पानी ही पीने के काबिल है। उसमें से भी 2% पानी बर्फ यानी ग्लेशियरों में पाया जाता है। सिर्फ 1% पानी ही नदी, नहर, झरने, कुएं तरल रूप में पाए जाते हैं। इसी से हम समझ सकते हैं कि पीने योग्य पानी बहुत कम है। हमें अभी से सचेत हो जाना चाहिए और सभी को इस विषय में जानकारी देनी चाहिए, ताकि सभी पानी जैसे महत्वपूर्ण संसाधन को बचा सकें। ज़्यादातर लोग, तकरीबन 70-75% लोग पानी की परेशानी झेल रहे हैं। गर्मियों में अक्सर जल स्रोत सूख जाते हैं। आने वाले कुछ वर्षों में यह समस्या भयानक रूप धारण कर सकती है। अगर इसी तरह से लोग बिना सोचे समझे पानी का उपयोग करते रहे तो हमें स्वच्छ जल की एक बूंद भी प्राप्त नहीं होगी। हमें पानी का संचय करना ही होगा। वर्षा के जल को बचाकर उसे तालाबों में जमा कर लेना चाहिए। वर्षा के जमा जल को ज़रूरत के समय इस्तेमाल किया जाना चाहिए। और हम सबको पेड़ पौधे भी अधिक से अधिक लगाने चाहिए, क्योंकि जितने अधिक धरती पर पेड़ पौधे होंगे वर्षा उतनी ही ज़्यादा होगी। जल को बचाने के कई सारे उपाय हैं, जैसे कि हर नागरिक को जल संरक्षण हेतु जागरूकता देना, शावर की जगह बाल्टी में पानी भरकर स्नान करना, बर्तन धोते समय भी नल की स्थान पर टब का प्रयोग करना। आपको याद हो तो गांव और शहरों में पहले तालाब हुआ करते थे, जिनमें जल एकत्र रहता था, जो न केवल पानी के स्तर को आसपास बचाए रखता था बल्कि दैनिक उपयोग के लिए भी काम आता था। आज गांव और शहरों में तालाबों को पाट कर घर बना दिए गए हैं। इसलिए ज़रूरी है कि जल संरक्षण हेतु गांव और शहरों में तालाब फिर से खोदे जाएं। पहले से उपयोग किए हुए जल का भी या फिर थोड़े से गंदे जल का भी सिंचाई में उपयोग करके भी जल संरक्षण किया जा सकता है। वर्षा का जल छत पर संरक्षण करके उसका उपयोग करना चाहिए। इसीलिए हमें छतों पर भी पानी की टंकियां बनानी चाहिए, जिससे वर्षा का जो जल आए वो टंकियों में भर जाए और बाद में हम उनका उपयोग कर पाएं। पर्यावरण के प्रति जागरूकता ज़रूरी है, क्योंकि पर्यावरण संतुलन का सकारात्मक प्रभाव जल संरक्षण पर पड़ता है। कटते हुए वृक्षों के कारण भूमि की नमी लगातार कम हो रही है, जिससे भूजल स्तर पर बुरा असर पड़ रहा है। इसलिए ज़रूरी है कि वृक्षारोपण कार्यक्रम हेतु जागरूकता लाई जाए। नदियों के जल में गंदा पानी भी ना छोड़ा जाए, जिससे ज़रूरत पर उस जल का प्रयोग पीने तथा अन्य उपयोगों में किया जा सके। जल संरक्षण विषय को व्यापक अभियान की तरह सरकारी और गैर सरकारी दोनों स्तरों पर प्रचारित की ज़रूरत है, जिससे छोटे बड़े सभी इस विषय की गंभीरता को समझें और इस अभियान को अपनी भूमिका अदा करें। विद्यालयों और महाविद्यालयों में भी निरंतर प्रचार एवं प्रसार की ज़रूरत है, जिससे युवा पीढ़ी समय रहते इसकी गंभीरता को अच्छी तरह से समझ सके। जल संरक्षण हेतु रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक का सहारा लेना चाहिए। यह तकनीक पानी की कमी से निपटने का तरीका भर नहीं है। कई बार तो ऐसा देखने में आया है कि इस तकनीक से इतना जल एकत्र हो जाता है कि दूसरे स्रोत की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, और यहाँ तक कि दूसरे को भी पानी उधार देने में सक्षम हो जाते हैं लोग। तो ये है कुछ हमारे जल को बचाने के उपाय। इन्हें अपनाकर हम निश्चित ही अपना

0: कल सुरक्षित कर सकते हैं। लोगों में पानी के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए 22 मार्च को हम विश्व जल दिवस मनाते हैं, ताकि लोग पानी की कीमत को समझ सकें, विश्व के हर नागरिक को इसके महत्व से अवगत कराने के लिए ही संयुक्त राष्ट्र ने विश्व जल दिवस मनाने की शुरुआत की थी। विश्व जल दिवस पर हर वर्ष एक नई थीम रखी जाती है। इसी तरह इस वर्ष की थीम है वैल्यूइंग वाटर। वैल्यूइंग वाटर का अर्थ है कि पानी का क्या महत्व है, यह कितना कीमती है और हम इस महत्वपूर्ण संसाधन की सुरक्षा कैसे कर सकते हैं, ताकि आने वाली पीढ़ी भी साफ सुथरे पानी का लाभ उठा सके। पानी ही जीवन का आधार है, जिससे कोई इनकार नहीं कर सकता। जिस तरह से अब प्राकृतिक संसाधनों का दोहन हो रहा है, उससे साफ है कि भविष्य में संकट और गहरा हो सकता है। इसलिए जितना हो सके उतना जल बचाएं एवं अधिक से अधिक पेड़ लगाएं और अपनी धरती माँ का अभिनंदन करें।
1: दोस्तों, अभी सुन रही थी आप वार्ता, विषय जल है तो कल है पर। वार्ताकार थी शिवांगी तोमर। अब समय हुआ है फिल्म संगीत की दुनिया में जाने का। आइए सुनते हैं एक और प्यारा सा ये गीत।

0: दोस्तों अभी सुन रहे थे आप ये गीत। अब समय हुआ है क्रम जीवनालोक में हमारे आज के विषय अपने गुरुजनों का सम्मान करें पर चर्चा करने का। दोस्तों भारतीय संस्कृति में गुरु का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, अर्थात गुरु को ईश्वर के समान माना गया है। माता पिता हमें जन्म देते हैं लेकिन गुरु हमें ज्ञान देकर जीवन का सही मार्ग दिखाते हैं। वे हमें एक अच्छा और जिम्मेदार नागरिक बनने की शिक्षा देते हैं। हमारी प्रथम गुरु हमारी माँ होती है। दोस्तों गुरु केवल पाठ्य पुस्तकों का ज्ञान ही नहीं देते बल्कि अच्छे संस्कार अनुशासन नैतिकता और जीवन के मूल्यों की भी शिक्षा देते हैं। वे विद्यार्थियों की प्रतिभा को पहचान कर उसे निखारने का कार्य करते हैं। गुरु हमें सही और गलत में अंतर समझाते हैं और कठिन परिस्थितियों में सही निर्णय लेने की प्रेरणा देते हैं। दोस्तों एक अच्छा गुरु अपने विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य के लिए निरंतर मेहनत करता है। वह चाहता है कि उसका विद्यार्थी जीवन में सफल हो और समाज तथा देश का नाम रोशन करे। इसलिए गुरु का योगदान अमूल्य होता है। विद्यार्थी गुरुकुल में रहकर शिक्षा प्राप्त करते थे और अपने गुरु की सेवा करते थे। आज के आधुनिक युग में शिक्षा के साधन बदल गए हैं लेकिन गुरु का महत्व आज भी उतना ही है। विद्यालय महाविद्यालय और विश्वविद्यालयों में शिक्षक विद्यार्थियों को ज्ञान प्रदान कर उनके भविष्य का निर्माण करते हैं। दोस्तों गुरुजनों का सम्मान केवल शब्दों से नहीं बल्कि अपने व्यवहार से करना चाहिए। हमें उनका सम्मान करना चाहिए। दोस्तों विद्यालय में गुरुजनों का आदर पूर्वक अभिवादन करना चाहिए। हमें उनकी बातों को ध्यान से सुनना चाहिए। समय पर गृह कार्य और पढ़ाई पूरी करना चाहिए। अनुशासन का पालन करना चाहिए और अपने गुरुओं से हमेशा विनम्रता से बात करनी चाहिए। दोस्तों गुरु हमारे भविष्य के निर्माता हैं। जो विद्यार्थी अपने गुरुजनों का सम्मान करते हैं वे जीवन में सफलता ज्ञान और अच्छे संस्कार प्राप्त करते हैं। हमें सदैव यह याद रखना चाहिए कि गुरु का सम्मान करना केवल एक परंपरा नहीं बल्कि हमारा नैतिक दायित्व भी है। गुरुजनों के प्रति आदर विनम्रता और कृतज्ञता का भाव ही हमें एक अच्छा इंसान बनाता है। सच ही कहा गया है गुरु के बिना ज्ञान अधूरा है और गुरु का सम्मान ही सच्चे विद्यार्थी की पहचान है। दोस्तों घड़ी की सुइयां अब इशारा कर रही हैं आपसे विदा लेने को। दीजिए आपकी दोस्त शिवानी राठौर को अनुमति। नमस्कार।
1: अभी युवाओं के लिए युववाणी कार्यक्रम का प्रसारण किया जा रहा था। प्रस्तुति आकाशवाणी शिवपुरी की थी। मीडियम वेव डीटीएच और न्यूज़ ऑन एआईआर एप्लीकेशन पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी मध्य प्रदेश। आपसे मिलते हैं एक छोटे से अंतराल के बाद।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
4: खो गया इंतजाम।
5: किसका?
4: गुड्डी की फीस का।
5: दिखा। 20,000 का लोन तुरंत। पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही ले और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम, पगार एडवांस में भेजिए।
6: आरबीआई कहता है
7: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।

0: नमस्कार, मैं राजीव वर्मा स्वच्छता ही सेवा अभियान से जुड़ा हुआ हूं और आप सभी से गुजारिश करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आप भी इससे जुड़ें और अपने कार्यालय, घर, कॉलोनी, मोहल्लों को स्वच्छ रखें। धन्यवाद। जय हिंद।
1: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
2: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
3: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: न उत्तेजना, न शोर दिन रात, न ही अहंकार, केवल मनोरंजन, ज्ञानवर्धन और सच्चे समाचार। जी हां, यही बिखेरता है आपके जीवन में आकाशवाणी परिवार।
6: मीडियम वेव DTH और न्यूज ऑन AIR एप्लीकेशन पर यह है आकाशवाणी मध्य प्रदेश। अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

फिल्म संगीत का पहला नगमा हमने लिया है दुश्मन फिल्म से। इस गीत को गाया है लता मंगेशकर और कुमार सानू ने। आनंद बख्शी के बोल हैं और धुन बनाई है उत्तम सिंह ने।

अभी आप सुन रहे थे फना फिल्म का गीत सोनू निगम और सुनिधि चौहान की आवाज़ में। गीत के बोल लिखे थे प्रसून जोशी ने और संगीत बनाया था जतिन ललित ने। आइए अब आपको सुनवाते हैं दुश्मन फिल्म का गीत लता मंगेशकर और कुमार सानू की आवाज़ में। इसके बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने और धुन बनाई है उत्तम सिंह ने।

श्रोताओं, आप आनंद ले रहे हैं फिल्म संगीत का और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी मध्य प्रदेश। सुनते हैं कार्यक्रम का गीत अगला, जिसे गाया है साधना सरगम और उदित नारायण ने। जावेद अख्तर के बोल हैं और संगीत है शंकर एहसान लॉय का। फिल्म का नाम है क्यों हो गया ना।

अभी आप सुन रहे थे जब प्यार किसी से होता है, फिल्म का गीत लता मंगेशकर और कुमार सानू की आवाज़ में। आनंद बख्शी के बोल थे और संगीत था जतिन ललित का। अब आपको सुनवा रहे हैं लाल सिंह चड्ढा फिल्म से अरिजीत सिंह और शिल्पा राव की आवाज़ में सॉन्ग, जिसे लिखा है अमिताभ भट्टाचार्य ने और संगीत बद्ध किया है प्रीतम ने।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब पेश है इस घंटे की खास खबरें।
1: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज शिवपुरी में अदानी समूह के लगभग 2500 करोड़ रुपए की लागत वाले अत्याधुनिक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का शिलान्यास किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी उपस्थित रहे। इस परियोजना के माध्यम से क्षेत्र के छोटे एवं मध्यम उद्योगों को रक्षा उत्पादन की सप्लाई चेन से जुड़ने का अवसर मिलेगा। इंडोनेशिया में भारतीय राजदूत संदीप चक्रवर्ती ने कहा कि 6 से 8 जुलाई तक होने वाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया यात्रा दोनों देशों के बीच मौजूदा संबंधों को मजबूती प्रदान करेगी और सहयोग के नए क्षेत्रों के द्वार खोलेगी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने मध्य प्रदेश प्रवास के दौरान ज्योतिर्लिंग भगवान ओंकारेश्वर व ममलेश्वर के दर्शन किए। उन्होंने बताया कि साल 2003 में देश के सभी 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने का संकल्प लिया था। लगभग 23 वर्षों की यह आध्यात्मिक यात्रा ओंकारेश्वर में पूर्ण हुई। उत्तराखंड के टनकपुर से आज कैलाश मानसरोवर यात्रा 2026 का पहला जत्था रवाना हुआ। इस जत्थे में एक डॉक्टर सहित 49 तीर्थयात्री हैं। इनमें 34 पुरुष और 15 महिलाएँ शामिल हैं। मौसम विभाग ने आज 9 जिलों में अति भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं उज्जैन इंदौर सहित 20 जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई है। और ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में आज शाम लॉर्ड्स में इंग्लैंड का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। दोनों टीमें श्रृंखला में बिना कोई मैच हारे हुए फाइनल में पहुंची हैं। ऑस्ट्रेलिया ने सेमीफाइनल में वेस्टइंडीज को हराया और इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: श्रोताओं, आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें। मीडियम वेव DTH और न्यूज ऑन AIR एप्लीकेशन पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी मध्य प्रदेश। अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

अभी जो आप गीत सुन रहे थे वो हमने लिया था लोफर फिल्म से, जिसे गाया था मोहम्मद रफ़ी ने। आनंद बख्शी के बोल थे और धुन थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के। और उसके पहले आपने सुना था पाकीज़ा फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में, जिसके बोल लिखे थे कमल आरोही ने और संगीत था गुलाम मोहम्मद का। अब हम आपको सुनवा रहे हैं सातवां आसमान फिल्म का गीत लता मंगेशकर और उदित नारायण की आवाज़ में। सूरज नईम का गीत है और संगीत निर्देशन है राम लक्ष्मण का।

दो बदन, अभी आप सुन रहे थे इस फिल्म का गीत आशा भोसले की आवाज़ में। शकील बदायूं का लिखा गीत था और संगीत निर्देशन था रवि का। अब सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज़ में खामोशी फिल्म का गीत, जिसे लिखा है गुलजार ने और संगीत से सवारा है हेमंत कुमार ने।

श्रोताओ, तो आप आनंद ले रहे हैं फिल्म संगीत का और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी मध्य प्रदेश। हम आपको सुनवा रहे हैं कार्यक्रम का अगला नगमा, जिसे हमने लिया है शिकारी फिल्म से। इस गीत को गाया है लता मंगेशकर और उषा मंगेशकर ने। फारूक कैसर का यह गीत है और संगीत से सवारा है जी एस कोहली ने।

अभी आप सुन रहे थे महेंद्र कपूर और सलमा आगा को फिल्म निकाह में। हसन कमाल का गीत था और संगीत था रवि का। आइए अब सुनते हैं दीदार यार फिल्म में लता मंगेशकर को। साहिर का लिखा हुआ गीत है और संगीत से सवारा है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

अभी आप सुना थे लता मंगेशकर का गीत दीदारी फिल्म यार से। साहिर का गीत था और संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। अब सुनवाते हैं आपको अनुभव फिल्म का गीत गीता दत्त की आवाज़ में, जिसे लिखा है गुलजार ने और धुन बनाई है कनू राव ने।

अभी आप सुन रहे थे अनुभव फिल्म का गीत, गीता दत्त की आवाज़ में गुलजार का गीत था और धुन बनाई थी कनू राव ने। आइए सुनते हैं रुदाली फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में। इस गीत को लिखा है गुलजार ने और संगीत से संवारा है भूपेन हजारिका ने।

श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे शंकर हुसैन फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में। जानेसार ने इस गीत को लिखा था और संगीत से सवारा था खयाम ने। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत या कार्यक्रम का आखिरी गीत जिसे हमने लिया है स्वामी फिल्म से। इस गीत को गाया है लता मंगेशकर ने, गीत के बोल लिखे अमित खन्ना ने और धुन बनाई है राजेश रोशन ने।

0: श्रोताओ, अभी आप आनंद ले रहे थे फिल्म संगीत का। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब आपसे मिलते हैं एक छोटे से अंतराल के बाद।
1: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूँ। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
2: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह है।

0: स्वयं ही घट पड़े। भारतीय सेना।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। थोड़ी ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से समाचार रिले किए जाएंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं करिश्मा राय। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण 2025 के 1 जुलाई से सफलतापूर्वक लागू होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। केंद्रीय मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मिशन के अंतर्गत राज्यों के लिए 25,000 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी की। उन्होंने कहा कि मनरेगा को लागू होने में 3 साल से अधिक का समय लगा था, जबकि विकसित भारत जी राम जी को पूरे देश में सिर्फ 1 दिन में लागू कर दिया गया। सरकार ने तरल प्राकृतिक गैस LNG की आपूर्ति से आपातकालीन पाबंदियां हटा ली हैं। यह निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष में युद्ध विराम के बाद हॉर्मुज जल डमरू मध्य से प्राकृतिक गैस की आपूर्ति फिर से शुरू करने के बाद किया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि प्राकृतिक गैस आपूर्ति नियमन आदेश 2026 में संशोधन किया गया है। इसी बीच पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक प्लस ने वैश्विक तेल बाजार की स्थितियों की समीक्षा के लिए आयोजित वर्चुअल बैठक के बाद इस वर्ष अगस्त से प्रतिदिन 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। आज हुई बैठक के बाद जारी बयान में तेल उत्पादक समूह ने कहा कि यह निर्णय बाजार स्थिरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लिया गया है। सरकार ने सोशल मीडिया साइट इंस्टाग्राम पर शुल्क वाले विज्ञापनों में बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार सामग्री के प्रसार को लेकर मेटा को कड़ी चेतावनी जारी की है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार सरकार ने इंस्टाग्राम को ऐसे विषय वस्तु को बढ़ावा देने और इसकी पहुंच को सुगम बनाने वाले सभी विज्ञापनों और सामग्री को बंद करने का आदेश दिया है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मेटा से 7 दिनों के भीतर विस्तृत स्पष्टीकरण मांगा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री सुबियांतो के

0: साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की इंडोनेशिया यात्रा दोनों देशों के बीच मौजूदा संबंधों को मजबूती प्रदान करेगी और सहयोग के नए क्षेत्रों के द्वार खोलेगी। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने विनाशकारी भूकंप के बाद सहायता के लिए भारत का आभार व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में सुश्री रोड्रिगेज ने कहा कि ब्रिटेन, कतर, फ्रांस, भारत, बारबाडोस, ब्राजील और अर्जेंटीना के बचाव कर्मियों को उनके अमूल्य योगदान और संकट की इस घड़ी में एकजुटता प्रयासों के प्रति वेनेजुएला सम्मान व्यक्त करता है। भारतीय नौसेना के पूर्वी बेड़े के उदयगिरी शक्ति और कवरत्ती युद्धपोत ने सिंगापुर के चांगी नौसैनिक अड्डे का दौरा पूरा कर लिया है। यह दौरा भारतीय नौसेना की परिचालन तैनाती का हिस्सा था। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि यह दौरा भारत और सिंगापुर के बीच बढ़ती समुद्री साझेदारी में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि है। ग्रामीण विकास मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों का एक दल आज से 11 जुलाई तक कर्नाटक के दौरे पर है। इसका उद्देश्य राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठकें करना और प्रमुख योजनाओं के प्रगति और कार्यान्वयन का आकलन करना है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर कुछ व्यक्तियों द्वारा व्यापार, प्रवासन और अन्य नीतिगत मामलों पर मंत्रालय को सलाह देने संबंधी दावों का खंडन किया है। विदेश मंत्रालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि ये सोशल मीडिया हैंडल मंत्रालय के साथ काम करने के तरीकों पर सशुल्क सलाह के साथ साथ सत्र भी आयोजित कर रहे हैं। इकाई ने स्पष्ट किया कि इन व्यक्तियों का विदेश मंत्रालय से कोई संबंध नहीं है। महाराष्ट्र में तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित है। अधिकारियों ने लोगों को मॉनसून के दौरान नदियों, जलप्रपातों और अन्य जल निकायों से दूर रहने की सलाह दी है। मौसम विभाग ने मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़ और रत्नागिरी सहित कोंकण जिलों में अगले 24 घंटों के दौरान मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। और फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में आज ब्राजील का सामना नॉर्वे से होगा। यह मैच भारतीय समय अनुसार रात डेढ़ बजे से न्यूजर्सी में खेला जाएगा। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। शाम के 7:05 हुए हैं। वक्त है कार्यक्रम विवरण का। शाम सबसे पहले आइए श्रोताओं, आपको आज शाम के सभा के शेष कार्यक्रम बता दें। शाम 7:10 पर होंगे प्रादेशिक समाचार। शाम 7:21 पर आनंद लीजिएगा लोक संगीत का। शाम 7:30 से सुनिए आईसीसी महिला T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 के अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के मध्य लंदन में खेले जा रहे T20 क्रिकेट वर्ल्ड क्रिकेट का फाइनल मैच का आंखों देखा हाल। मैच के समाप्त होने तक ये कार्यक्रम जारी रहेगा। श्रोताओं, ये तो थी जानकारी हमारी आज शाम की सभा के शेष कार्यक्रमों की। आइए अब आपको कल की तीनों सभाओं में प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में बता दें। भीने भीने मौसम में आपकी चाय की चुस्कियों में रस घोलने, आपको तरोताज़ा करने हम लेकर आते हैं हमारा दैनिक सूचना परक कार्यक्रम नमस्कार भोपाल, जिसे आप सुन सकेंगे कल सुबह 7:20 पर। सुबह 8:30 पर सुनिए फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम सुरमई सवेरा। लोक संगीत में बुंदेली लोकगीतों का आनंद आप ले सकेंगे सुबह 9:15 पर। कल इसमें कलाकार होंगे चंदा श्रीवास और साथी। उर्दू कार्यक्रम आईना सुनिएगा सुबह 9:30 पर। जिले की चिट्ठी का वक्त होगा सुबह 10:00 और 10:05 पर सुनिए कार्यक्रम गीत सागर। शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम रागमाला सुनिएगा कल सुबह 10:30 पर। इसके अंतर्गत कल आप सुनेंगे राग भटियार उस्ताद हुसैन खां साहब से। श्रोताओं, ये तो थे आकाशवाणी भोपाल के कार्यक्रम। अब आपको बता दें आकाशवाणी मध्य प्रदेश के कार्यक्रम।

कल सुबह 11 बजे आनंद लीजिएगा फिल्म संगीत का। आपकी फरमाइश ये कार्यक्रम होगा दिन में 12 बजे। दिन में 12:30 पर सुनिए कार्यक्रम संग्रहालय से। इसके अंतर्गत आप सुनेंगे हंसना मना है धारावाहिक का 5वां एपिसोड। स्वास्थ्य दर्पण ये कार्यक्रम होगा दिन में 1 बजे। इसके अंतर्गत विशेष होगी भेंटवार्ता डॉक्टर आयुष दुबे से। कल का विषय होगा पार्किंसन रोग कारण लक्षण और उपचार। लोक संगीत का आनंद आप ले सकेंगे दिन में 1:30 पर, और 1:45 पर होगा सुगम संगीत। फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा दिन में 2 बजे, और 2:30 पर कार्यक्रम होगा आपकी फरमाइश। शाम 5:02 पर सुनिए युवा धड़कनों को तरंगित करने वाला कार्यक्रम युववाणी। प्रस्तुति आकाशवाणी भोपाल की होगी। फिल्म संगीत का आनंद आप ले सकेंगे शाम 5:33 पर। शाम 6 बजे सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम। 6:30 पर आनंद लीजिएगा फिल्म संगीत का आजकल। ये कार्यक्रम होगा शाम 6:40 पर, और शाम 6:45 पर सुनिए प्रादेशिक समाचार दर्शन। प्रादेशिक समाचार होंगे शाम 7:10 पर। आकाशवाणी भोपाल से ग्रामीण श्रोताओं के लिए कार्यक्रम ग्राम सभा का प्रसारण किया जाएगा शाम 7:21 पर। रात्रि 8 बजे होगा कार्यक्रम सुर्खियों में, और फिल्म संगीत का आनंद आप ले सकेंगे रात्रि 8:15 पर। आकाशवाणी दिल्ली से पब्लिक स्पीक कार्यक्रम सुनिए रात्रि 9:30 पर, और रात्रि 10 बजे सुनिए अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा। कार्यक्रम विवरण संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।

0: इससे बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: दीदी नौकरी लग गई।
3: अरे वाह बधाई हो।
4: तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग।
2: हाँ दी नया मोबाइल।
4: अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे।
2: इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है।
4: पहले बजट बनाना सीखो फिर खर्च करो।
2: पर दीप
4: देखो कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम।
2: हाँ दी पार्टी मेरी बजट तुम्हारा।
4: अच्छा
5: RBI कहता है
6: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
7: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं नवनीत चौबे। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शिवपुरी में डिफेंस प्लांट का शिलान्यास किया। VBG रामजी अधिनियम के तहत राज्यों के लिए 25,000 करोड़ की राशि जारी की गई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कल भोपाल के सतगढ़ी में स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क का भूमि पूजन करेंगे। और प्रदेश भर में मॉनसून हुआ सक्रिय, आज कई जिलों में भारी बारिश की संभावना। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज शिवपुरी में अदानी समूह के लगभग 2,500 करोड़ रुपए की लागत वाले अत्याधुनिक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का शिलान्यास किया। यह परियोजना औद्योगिक विकास के विजन को नई गति प्रदान करेगी। परियोजना के माध्यम से क्षेत्र के छोटे एवं मध्यम उद्योगों को रक्षा उत्पादन की सप्लाई चेन से जुड़ने का अवसर मिलेगा। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश में निवेश का एक नया मार्ग खुला है।
8: आज ग्वालियर अंचल में हमारा डिफेंस कॉरिडोर का पहला प्रोजेक्ट लगभग 2,500 करोड़ से 3,000 करोड़ का, जहां मिसाइलें बनेगी, यहां पर रोजगार भी मिलेगा और मिसाइल भी 1,000

0: किलोमीटर लंबी वाली, जिस प्रकार से उन्नत प्रकार की जो चीजें हो सकती है वो सब होकर के साथ साथ 211 करोड़ के अलग अलग विकास कार्यों का लोकार्पण भूमि पूजन भी यही संपन्न हुआ, जिसमें 6 से 8 सांदीपनी विद्यालय जो बनकर तैयार हो गए और नए 2 पुल सड़क अलग अलग प्रकार के निर्माण कर, इसी के साथ साथ यहाँ भविष्य की आवश्यकताओं के लिए कि यहाँ हमारा अंदर का 4 लेन बने जो 14 किलोमीटर का 120 करोड़ का, उसको बनाने की घोषणा की।
1: कार्यक्रम में केंद्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में आज यह शुभ शुरुआत हुई है। उन्होंने कहा कि विश्व के सबसे आधुनिक शस्त्र शिवपुरी में बनाए जाएंगे।
2: आज ये शुभ शुरुआत संभव हो पाई, 1,500 से 2,000 करोड़ रूपये का निवेश गुना में अडानी सीमेंट प्लांट का, 2,500 से 3,000 करोड़ का निवेश शिवपुरी में। यहाँ केवल मिसाइल का प्रोपेलेंट नहीं लेकिन बारूद का, मिसाइल की असेंबली, समस्त रूप से सबसे विश्व की आधुनिक शस्त्र शिवपुरी में उत्पादित की जाएगी। कि ये दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा, भारत का नहीं संपूर्ण दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा निवेश निजी क्षेत्र की कोई कंपनी का है जो आज शिवपुरी में संभव हो पाया है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल से शुरू होने वाली इंडोनेशिया यात्रा दोनों देशों के बीच मौजूदा संबंधों को मजबूती प्रदान करेगी और सहयोग के नए क्षेत्रों के द्वार खोलेगी। आज जकार्ता में आकाशवाणी को दिए एक साक्षात्कार में इंडोनेशिया में भारतीय राजदूत संदीप चक्रवर्ती ने कहा कि 6 से 8 जुलाई तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया यात्रा के दौरान भारत और इंडोनेशिया के बीच सहयोग के कई नए क्षेत्र खुलेंगे और इन दोनों देशों के बीच संबंधों में मजबूती और आर्थिक जुड़ाव में वृद्धि स्पष्ट रूप से दिखाई देगी। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 1 जुलाई से वीबीजी रामजी अधिनियम 2025 सफलतापूर्वक लागू होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। श्री सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मिशन के अंतर्गत राज्यों के लिए 25,000 करोड़ रुपए की मुख्य सहायता राशि जारी की। श्री चौहान ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्रियों के साथ वीबीजी रामजी योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा भी की। उन्होंने कहा कि आज जारी की गई पहली किस्त का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि राज्यों के पास पर्याप्त धनराशि हो ताकि मजदूरी का भुगतान 15 दिनों के भीतर किया जा सके। उन्होंने कहा कि मनरेगा को लागू होने में 3 साल से ज्यादा का समय लगा था, जबकि विकसित भारत जी रामजी को पूरे देश में सिर्फ 1 दिन में लागू कर दिया गया। अब समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर EIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsoneair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन EIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
1: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कल भोपाल के सदगढ़ी में विकसित किए जा रहे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क का भूमि पूजन एवं शिलान्यास करेंगे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर यह कार्यक्रम होगा। कार्यक्रम में 200 से अधिक प्रमुख उद्योगपति, निवेशक और उद्योग संगठनों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। लगभग 173 एकड़ क्षेत्र में विकसित होने वाला यह पार्क औद्योगिक गतिविधियों के विस्तार का नया आधार बनेगा। परियोजना में आधुनिक औद्योगिक अधोसंरचना, उत्कृष्ट सड़क एवं परिवहन संपर्क, IT एवं AI आधारित सुविधाएं, लॉजिस्टिक एवं वेयरहाउसिंग कॉम्प्लेक्स तथा भविष्य की औद्योगिक आवश्यकताओं के अनुरूप स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जाएगा, जिससे निवेशकों को विश्व स्तरीय औद्योगिक वातावरण उपलब्ध हो सके। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि मध्य प्रदेश ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR एवं मतदाता सूची के परिशोधन का कार्य अत्यंत पारदर्शी, सुलभ और व्यवस्थित तरीके से संपन्न किया है। आज इंदौर में मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने संवाद के दौरान कहा कि भारत की चुनावी प्रक्रिया विश्व की सबसे पारदर्शी और विश्वसनीय प्रक्रियाओं में से एक है। इसी पारदर्शिता और दक्षता के कारण भारत आज विश्व के 35 प्रमुख लोकतांत्रिक देशों के संगठन इंटरनेशनल आइडिया की अध्यक्षता कर रहा है। उन्होंने देशवासियों से आह्वान किया कि वे राष्ट्र की उन्नति, समाज के विकास और मानवीय मूल्यों को सशक्त बनाने के लिए समर्पित भाव से कार्य करें। सरकार ने तरल प्राकृतिक गैस LNG की आपूर्ति से आपातकालीन पाबंदियां हटा ली है। यह निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष में युद्ध विराम के बाद हॉर्मुज जल डमरू मध्य से प्राकृतिक गैस की आपूर्ति फिर शुरू होने के बाद लिया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि प्राकृतिक गैस आपूर्ति नियमन आदेश 2026 में संशोधन किया गया है। सरकार ने सोशल नेटवर्किंग साइट इंस्टाग्राम पर सशुल्क विज्ञापनों में

बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार सामग्री के प्रसार को लेकर मेटा को कड़ी चेतावनी जारी की है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार सरकार ने इंस्टाग्राम को ऐसी विषय वस्तु को बढ़ावा देने और इसकी पहुंच को सुगम बनाने वाले सभी विज्ञापनों और सामग्री को बंद करने का आदेश दिया है। मुख्यमंत्री दिव्यांगजन शिक्षा प्रोत्साहन योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 31 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। सामाजिक न्याय दिव्यांगजन कल्याण मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा ने कहा कि प्रदेश सरकार दिव्यांगजनों को शिक्षा, तकनीकी और गतिशीलता से जोड़ने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने पात्र विद्यार्थियों से समय सीमा के भीतर आवेदन करने तथा जिला अधिकारियों को योजना का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। अब बात मौसम की। प्रदेश में मॉनसून पूरी तरह सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के कई हिस्सों में भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। भोपाल, इंदौर, उज्जैन और नर्मदापुरम संभाग में वर्षा का सबसे अधिक असर रहने का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार 9 जिलों में अति भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं उज्जैन, इंदौर सहित 20 जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप का फाइनल मुकाबला अब से कुछ देर बाद लॉर्ड्स में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच होगा। इंदौर शहर को पीएम ई बस सेवा योजना के अंतर्गत कुल 150 अत्याधुनिक इलेक्ट्रिक बसें उपलब्ध कराई गई हैं। इनमें से पहले चरण में 10 बसों का संचालन ट्रायल के रूप में शुरू किया गया है। धार में खेल युवा कल्याण विभाग द्वारा मध्य प्रदेश राज्य तीरंदाजी अकादमी में प्रवेश हेतु तीरंदाजी के खिलाड़ियों का ट्रायल लिया गया। इसमें 23 खिलाड़ियों ने भाग लिया। आगरमालवा जिला मुख्यालय स्थित सरकारी गोचर भूमि से लगभग 100 से अधिक झोपड़ियां, कच्चे मकान तथा गुमटियों को बुलडोजर के माध्यम से हटाने की कार्रवाई की गई। नर्मदापुरम में कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिले के सभी स्कूलों और महाविद्यालयों में विशेष नशा विरोधी जागरूकता अभियान चलाया जाए। इंदौर में जिला रोजगार कार्यालय द्वारा कल एक दिवसीय युवा संगम रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। मेले में प्रतिष्ठित कंपनियों द्वारा 250 से अधिक रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी। जबलपुर शहर में ऑपरेशन सेफ क्लिक 2.0 के तहत आज सिविल लाइन थाना पुलिस ने साइबर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए कल सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

0: तीनों कॉलेज में।
1: डोंट वरी।
0: फीस तो देखो।
2: क्या हाल है? क्या हुआ?
1: फीस की टेंशन।
2: राहुल का बैंक अकाउंट तो है ही।
3: रास्ता क्लियर। बैंक से जरूरत भर के हिसाब से स्टूडेंट एजुकेशन लोन इजीली मिलेगा और उसमें भी 4 लाख रुपए तक, नो कोलैटरल। वो कहाँ है? मिठाई।
4: आरबीआई कहता है
5: तरो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
6: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। मीडिया वेव 188.32 मीटर, साथ ही डीटीएच के ऑडियो चैनल और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन पर ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब पेश है लोक संगीत का कार्यक्रम। सबसे पहले इसके अंतर्गत हम आपको सुनवा रहे हैं उर्मला पांडे से वर्षा गीत।

अभी आप उर्मिला पांडे जी से सुन रहे थे वर्षा लोकगीत, और अब आपको सुनवाते हैं नारायण सिंह कुशवाहा की आवाज़ में एक और वर्षा गीत।

0: श्रोताओ, अभी आप आनंद ले रहे थे लोक संगीत का, जिसके अंतर्गत हमने आपको सुनवाया उर्मिला पांडे और नारायण सिंह कुशवाहा का गाया हुआ गीत। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, थोड़ी ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से रिले होगा आईसीसी महिला T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 के अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के मध्य लंदन में खेले जा रहे T20 क्रिकेट का फाइनल मैच का आंखों देखा हाल। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: सम्मानित असिस्टेंट कमांडेंट रामकृष्ण वाधवा की शौर्य गाथा। कार्यक्रम का बाकी हिस्सा आप सुनेंगे एक छोटे से अंतराल के बाद।

फौजी साथियों, विशेष जयमाला कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं महावीर चक्र से सम्मानित असिस्टेंट कमांडेंट रामकृष्ण वाधवा की शौर्य गाथा। बिना वक्त गवाए वाधवा अपनी दो प्लेटून्स के साथ मोर्चे पर रवाना हो गए। सरहदी इलाकों की ये चौकी अपने रूखे मौसम और सुनसान वादियों के लिए जानी जाती है, जहां कांटेदार बाड़ के इर्द गिर्द सीमा सुरक्षा बल की चुनौतियां ज्यादा ही हैं। लिहाजा कहां बंकर हैं, कहां खाई यानी ट्रेंचेस, कहां बारूदी सुरंगें बिछाई गईं, कहां मोर्टार्स, कहां कितने असलाहे, कितनी तरफ से हैवी शेलिंग हो सकती है, कहना मुश्किल था। और फिर उतना ही मुश्किल कि दुश्मन सैनिकों की तादाद क्या है। इन सभी खतरों को चुनौतियां देते, अपनी चौकी को अपने कब्जे में करने, दुश्मनों को धूल चटाने और उन्हें मौत की नींद सुलाने का दृढ़ निश्चय कर कमांडेंट वाधवा आगे बढ़ने लगे। राजा मोहतम चेक पोस्ट की ये चौकी कुछ ऊंचाइयों पर बनाई गई थी, जिससे शत्रु की निगरानी आसानी से की जा सके। ये पोस्ट जिसमें अब ऊपर की तरफ और नीचे खाई में

शत्रुओं ने डेरा डाल रखा था। कमांडेंट वाधवा ने अपनी सैनिक टुकड़ी को दो तरफ से कवर देने की ताकीद की और मोर्चे पर डट गए। भारतीय सेना की इस टुकड़ी के आने की सुगबुगाहट होते ही शत्रुओं ने ऊपर की तरफ से कमांडेंट वाधवा और उनके साथियों पर मशीन गन से ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू की। इस फायरिंग से खुद को बचाते हुए खाई की दीवारों की आड़ लेते हुए भारतीय सेना की इस टुकड़ी को सतर्कता से वाधवा ने चौकी के ऊपर की ओर पोजीशन लेने का रास्ता सुझाया। चंद सैनिकों को निगरानी और दुश्मनों को रोकने को लेकर निचले इलाके पर तैनात होने को कहा और स्वयं आगे बढ़ते रहे। इससे पहले कि दुश्मन कुछ समझ पाता, कमांडेंट रामकृष्ण वाधवा और उनके साथियों ने अपनी मशीन गन का मुंह खोल दिया और एक के बाद एक हथगोले दागते गए। आपसी गुत्थम गुत्था में वाधवा और उनके साथियों ने कई दुश्मन सैनिकों को अपनी संगीन का भी निशाना बनाया और एक को जिंदा पकड़ लिया। अपने असलाहों का जखीरा वहीं छोड़ दुश्मन जान बचाकर भाग खड़ा हुआ। अब तक इस चौकी पर वाधवा और उनके सैनिकों का कब्जा हो चुका था।

0: भारतीय सेना की इस पोस्ट पर कब्जा करने का बेइलाज सपना लिए शत्रु धीरे धीरे इसी चौकी की तरफ फिर रेंगने लगा। 10 दिसंबर की आधी रात का सन्नाटा था कि अचानक फिर वीराने में गोलियों की गड़गड़ाहट गूंजने लगी। वाधवा ने समझ लिया कि वो शत्रु बाज क्यों कर आएगा, इनके इरादों को एक बार फिर नाकाम करने की सौगंध उठाए। कमांडेंट रामकृष्ण वाधवा ने अपने लक्ष्य पर निशाना साधते हुए बेहिसाब फायरिंग के बीच अपने जख्मों की परवाह किए बिना दुश्मनों पर सिंह की तरह टूट पड़े। हैंड ग्रेनेड और ऑटोमेटिक मशीन गन से निकलती गोलियों को दुश्मनों पर फुर्ती से दागना शुरू किया। इधर बारूदी माइंस के फटने से और दुश्मनों की फायरिंग में कुछ भारतीय सैनिक साथियों की भी शहादत हुई।
1: है लिए हथियार दुश्मन ताक में बैठा उधर, और हम तैयार हैं सीना लिए अपना इधर। खून से खेलेंगे होली कर वतन मुश्किल में है, सरफरोशी की

कमांडेंट रामकृष्ण वाधवा ने दुश्मन की बलोच रेजिमेंट के 9 और सैनिकों को मौत की नींद सुला दिया और बाकी बचे अपने सैनिकों को हिफाजत से लेते हुए लगभग पूरी चौकी पर पुनः कब्जा कर लिया। इस बात की तसल्ली की कि अब मंजिले मकसूद को हासिल किया जा चुका है। दुश्मन राजा मोहतम चौकी से भागने की अफरा तफरी में हलाक होता रहा और कुछ बचे दुश्मनों ने मौत पक्की समझ बची चंद गोलियों को खंगाला और हमला करते रहे। वाधवा खाई के एक किनारे से दूसरे किनारे अपने साथियों के साथ वहीं डटे रहे कि कोई शत्रु अब भी मौके की ताक में शायद कहीं घात लगाकर बैठा हो। जिस्म लहूलुहान, आंखों में फतेह का तिरंगा लहराता था। मातृभूमि की माटी को तन में लपेटे इस अजीम शान वतन को महफूज रखने की वो कसम जो एक बार फिर पूरी हुई। कुछ ऐसा ही नजारा था, कुछ ऐसा ही सपना फिर एक बार सच होता नजर आया। ये सोचते हुए एक फौजी के फर्ज पर आगे बढ़ते रहे कि तभी खाई में बिछाई गई बारूदी सुरंग में एक जोरदार धमाका हुआ और आर के वाधवा के जिस्म को लहूलुहान कर गया। मां भारती के इस शेर दिल सिपाही ने अपनी सांसों को थाम मादरे वतन की इस मिट्टी को सिजदा किया। आंखों में जीत का तिरंगा लहराता रहा, होठों पर फिर एक बार मुस्कुराहट बिखर गई। साथ ही सैनिकों ने अपने जांबाज अफसर को तुरंत सहारा दिया, उन्हें फरीदकोट दाखिल करवाया गया जहां भारतीय सीमा सुरक्षा बल के जांबाज कमांडेंट रामकृष्ण वाधवा ने 11 दिसंबर को आखिरी सांसें ली और मातृभूमि की रक्षा में जीत का परचम लहराते हुए देश के लिए शहीद हो गए।

एक और ऐतिहासिक जंग भारत के नाम रही। फौजी साथियों, सन 1971 की जंग में फिरोजपुर की राजा मोहतम चौकी पर पुनः कब्जा करने, इस इलाके में फतह हासिल करने, कुशल नेतृत्व, दृढ़ संकल्प, अद्वितीय रणकौशल, अदम्य साहस और अतुलनीय बलिदान के लिए सीमा सुरक्षा बल के जांबाज अफसर असिस्टेंट कमांडेंट रामकृष्ण वाधवा को महावीर

फौजी साथियों, आज के विशेष जयमाला कार्यक्रम की शौर्य गाथा की इस कड़ी में आपने सुनी महावीर चक्र से सम्मानित बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जांबाज सिपाही असिस्टेंट कमांडेंट रामकृष्ण वाधवा की शौर्य गाथा। शोध आलेख और स्वर था संगीता श्रीवास्तव का। इस कार्यक्रम के संपादक और प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले। अब दीजिए इजाजत। जय हिंद।

0: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
1: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।
0: करोड़ों हिंदुस्तानियों की भावना को शब्दों में ढालते हुए ही तो बंकिम बाबू ने कहा था, सुजलाम सुफलाम।

ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए अब सुनते हैं इंद्रधनुष में साज और आवाज। इसमें आज आप सुनेंगे प्रतिज्ञा सेन और सुमित भौमिक की पियानो और वायलिन पर बजाई फिल्मी धुनें। आज की फिल्में हैं सिलसिला और मुकद्दर का सिकंदर।

0: आज के हवा महल में प्रस्तुत है हरि मेहरा की लिखी नाटिका बहादुर की शादी, निर्देशक गंगा प्रसाद माथुर।
1: बहादुर, अबे वो बहादुर के बच्चे।
2: आया साहब।
3: जी साहब, गुड मॉर्निंग साहब।
1: अबे गुड मॉर्निंग के लगते अलार्म बंद कर, ये आज अलार्म क्यों लगाया है? आज इतवार है और तुझे मालूम है छुट्टी के दिन मैं इतनी जल्दी नहीं उठता।
3: वो तो मालूम है साहब, पर आज शाम को भी तो जल्दी तैयार होना है।
1: वो किस खुशी में?
3: साहब खुशी की तो बात है ही, हमने आपको कितने दिन पहले से बताया था साहब, आज लड़की वाले आपसे मिलने आएंगे।
1: लड़की वाले? किसकी लड़की? कैसी लड़की? मुझे किसी लड़की वड़की से नहीं मिलना।
3: लड़की से नहीं साहब, लड़की के बाप से।
1: किसका बाप? लगता है रात ज्यादा चढ़ा ली जो नाप शनाप बके चला जा रहा है। चल दवा हो जाए यहाँ से और सोने दे मुझे।
3: क्या है साहब, आप भी हमारी बेइज्जती खराब करना चाहते हैं साहब? हमारी इज्जत का सवाल है साहब, वो लोग ठीक 10 बजे आ जाएंगे और अभी हमें आपको नाश्ता देकर हजामत बनवाने जाना है साहब, स्नान भी करना है और तैयार भी होना है।
1: वही बक बक बक बक बक बक कर रहे हो। ओफो, किस जंगली से पाला पड़ा है। कहा ना मुझे अभी नाश्ता नहीं करना, तुम जाओ अपनी हजामत कराओ और मुझे सोने दो।
3: पर साहब आपको भी तो टाइम पर रेडी होना है साहब, और वो लोग आपको मिलने आते हैं साहब।
1: कौन लोग? मुझे कोई नहीं मिलने आ रहा।
3: साहब जी आप सब कुछ भूल गया। साहब वो लोग हमारी शादी के वास्ते आपसे बात नहीं करेंगे तो किससे करेंगे साहब? हमारा और कौन है साहब इधर? आप ही तो है हमारा माई बाप साहब, भाई बंधु आप ही तो है, और 10 बरस से आपके साथ हैं हम साहब।
1: ठीक है, देखो अभी सिर्फ 7 ही बजे हैं, बहुत वक्त है। हाँ, मैं वक्त पर तैयार हो जाऊंगा। तुम दफा हो जाओ यहाँ से, जाओ
3: गेट आउट। साहब जी
1: हा? तुम अभी तक यहीं हो?
3: साहब
1: क्या है?
3: साहब वो रीटा मैम साहब आज भी आएंगी।
1: हाँ, पर ये बेहुदा सवाल किस लिए?
3: नहीं साहब, आप उनको फोन कर दो साहब, आज वो थोड़ा देर से आएंगी।
1: क्यों?
3: वो साहब इसलिए कि हमने लड़की वालों को बोला है कि हमारे साहब का अभी शादी नहीं बना।
1: ठीक ही तो बोला।

0: ओहो, ये ही तो गड़बड़ है साहब। अगर वो लोग रीटा मेम साहब को यहाँ देखेंगे तो क्या समझेंगे?
1: तो उनके समझने ना समझने से क्या होता है?
0: सब कुछ होता है साहब, सब कुछ होता है। हम आपको कितनी बार बोला है साहब कि तुम लोग अपनी शादी बना लो, अब हमारी मुसीबत हो जाएगी साहब।
1: हमारी शादी हो या ना हो, उससे तुम्हारी कैसे मुसीबत हो जाएगी?
0: वो लोग ठहरे सीधे साधे पहाड़ी आदमी साहब, वो बड़े लोगों की बात नहीं समझते। हमारे मुल्क में शादी के बिना लड़की किसी के घर में नहीं जाती। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ साहब, तुम साहब उनको मेम साहब को फोन कर दो।
1: वो बकवास बंद करो, सोने दो मुझे, गेट आउट।
0: हाँ साहब, हम तो गेट आउट होता है साहब, पर आप जरा सोने से पहले हमारी बात कुछ जरा थोड़ा गौर करो साहब, जरा सोने।
2: बहादुर, अरे भाई बहादुर, दरवाजा खोलो यार।
1: लगता है कोई लंबी चौड़ी हजामत कराने गया है।
2: क्या मुसीबत है?
1: अरे रीटा, तुम क्या बचा है?
3: डार्लिंग, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना?
1: हाँ बिल्कुल, लेकिन अचानक ये सवाल क्यों? और फिर तुम, मेरा मतलब मैं तो तुम्हें 10 बजे से पहले एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था।
3: थैंक गॉड, मैं तो डर गई थी। बहादुर ने फोन किया, शाबाश देर से उठेगा, सो मेम साहब तुम भी देर से आना। मैंने पूछा क्या बात है, तो बोला साहब की तबीयत रात को जरा ठीक नहीं थी, इसलिए देर से आंख लगी है। कहाँ है बहादुर? मुझे तो डरा दिया उसने।
1: क्या बजा? 9:30। अरे वो लोग 10 बजे आएंगे।
3: कौन लोग? तुम्हें मालूम था डार्लिंग, आज हमारा सारा दिन बाहर रहने का प्रोग्राम है, फिर तुमने 10 बजे का अपॉइंटमेंट किसे दे दिया?
1: भाई मैंने नहीं, बहादुर ने।
3: बहादुर ने? ये बहादुर आज को मिस्टीरियस फिगर बन रहा है। देखो अनिल डार्लिंग, अब ज्यादा परेशान ना करो, हमारा संडे सब स्पॉइल हो जाएगा। तुम जल्दी से नहाकर तैयार हो जाओ, मैं चाय लाती हूँ, और 10 बजे से पहले ही रखो चाय।
1: नहीं नहीं, अरे अरे भाई सुनो तो, ऐसा नहीं हो सकता, किसी की इज्जत का सवाल है, तुम नहीं जानती।
3: मैं सब जानती हूँ, यू गेट रेडी एंड नो मोर एक्सक्यूजेस, ओके? खूब तमाशा है, देखा मैं कब से कह रही हूँ लेट्स गेट मैरिड, लेट्स गेट मैरिड। लेकिन जनाब को तो पहले प्रमोशन चाहिए, फिर बड़ा फ्लैट चाहिए, स्कूटर के बजाय कार चाहिए, और मेरे ख्याल से होने वाले बच्चे के लिए किसी स्कूल में जगह का बंदोबस्त भी पहले से ही हो जाना चाहिए। हुँ? क्यों?
1: अरे भाई इसमें हंसने की क्या बात है? दिस इज कॉल्ड प्री प्लानिंग। हमारी शादी और बहादुर की शादी में बहुत फर्क है। बहादुर आ गया लगता है।
3: हाँ।
1: बहादुर, बहादुर।
0: आया साहब, आया साहब। ओ मेम साहब, आप भी आ गया।
3: वाह बहादुर, तुम तो आज बड़े टिप टॉप हो, क्या बात है?
0: हम साहब वो आज।
3: घबराने की कोई बात नहीं बहादुर, मुझे साहब ने सब कुछ बता दिया है।
0: सब कुछ बता दिया?
3: हाँ हाँ, डरो नहीं, मैं कबाब में हड्डी नहीं बनूंगी। जैसे ही वो लोग आएंगे मैं दूसरे कमरे में चली जाऊंगी, तुम बिल्कुल फिक्र ना करो।
0: नहीं नहीं मेम साहब, ऐसे कैसे हो सकता है, तुम इधर ही बैठना, हम सब कुछ संभाल लेगा। साहब वो लोग आ गए साहब, हम हाथ जोड़ता है साहब, आप हमारा इज्जत का ख्याल रखना साहब।
1: आइए आइए, तशरीफ लाइए।
4: सलाम साहब जी, सलाम साहब जी।
1: सलाम सलाम, बैठिए। अरे अरे नीचे नहीं,
4: नहीं साहब,
1: यहाँ यहाँ कुर्सी पर बैठिए।
4: अरे नहीं साहब, हम लोग नीचे ही ठीक है साहब।
1: ये कैसे हो सकता है, आप हमारे मेहमान हैं।
4: अच्छा लक्ष्मी, तुम इसी कुर्सी पे बैठ जाओ साहब जी, ये हमारा घर वाली है साहब, हमारा लड़की की माँ है साहब, ये बहुत शर्माता है साहब, बहुत शर्माता है। अरे मैं शर्माती रहोगी या साहब को सलाम भी करोगी? सलाम करो।
5: सलाम साहब।
1: सलाम।
5: सलाम मैम साहब।
6: सलाम।
5: बहादुर, ये तुम्हारी मालकिन है, तुम तो बोला था कि तुम्हारे साहब ने भी शादी नहीं बनाया।
1: ये ठीक ही कहा था बहादुर ने आपसे, हमारी अभी शादी नहीं हुई पर एंगेजमेंट, मेरा मतलब है सगाई हो चुकी है।
4: मेम साहब शादी से पहले ही इसी घर में रहती हैं?
3: जी नहीं, मैं हॉस्टल में रहती हूँ।
4: होटल में साहब?
3: होटल नहीं, हॉस्टल, जहाँ सिर्फ लड़कियाँ रहती हैं। शादी के बाद मैं इसी घर में रहूंगी। नहीं नहीं नहीं, इस घर में नहीं साहब, इससे भी बड़ा घर लेंगे तब।
1: ये सब बातें इनसे करने की क्या जरूरत है? ये लोग बहादुर के रिश्ते के लिए आए हैं, हमारी शादी तय करने के लिए नहीं। बहादुर भाई, इन लोगों के लिए कुछ खाने पीने के लिए तो लाओ।
0: मैं अभी लाता हूँ साहब।
3: ठहरो बहादुर, मैं भी तुम्हारी मदद करती हूँ।
1: आप लोग ठंडा लेंगे या गरम?
4: नहीं साहब नहीं, हम बिल्कुल नहीं साहब, हम लड़की वाले हैं साहब, हम आपका पानी तो क्या उसमें नहा भी नहीं सकते साहब।
1: अरे भाई ये सब पुरानी बातें हैं, ये घर बहादुर

0: बहादुर के माँ बाप का तो है नहीं, आप यहाँ कुछ भी खा पी सकते हैं।
1: ए जी, बहादुर तो बोलता था कि शाबिश के माई बाप सब कुछ है, पर शाब तो कुछ और ही बोलते हैं।
0: नहीं नहीं नहीं, आप लोग गलत ना समझिए, मेरा मतलब था कि अभी हमारी शादी थोड़ी हुई है। रीटा,
2: हाँ तो आप लोग ठंडा लेंगे या गरम?
3: अच्छा शाब, आप बहुत मजबूर करता है तो दोनों ले लेंगे शाब, दोनों ले लेंगे।
1: चलो आप शाब से शाब शाब बात कर लो।
0: हैं, क्या बात करना चाहते हैं आप लोग? अगर बहादुर के बारे में आप जानना चाहते हैं तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि लड़का नहायत शरीफ, मेहनती और अच्छे घर का है। मेरे पास पिछले 10-12 बरस से है। इसका बाप मेरे बाप के पास काम करता था और हो सकता है कि इसका दादा मेरे दादा के पास रहा हो। और कुछ जानना चाहते हैं तो पूछिए।
3: नहीं शाम, नहीं, बहादुर के बारे में तो हम शाब शाब को जानते हैं, सब कुछ जानते हैं। उसका बाप हमारे गांव का है शाब।
0: तो फिर रुकावट किस बात की है? फौरन शादी कर डालिए। और हाँ, बाय द वे, आपकी लड़की को बहादुर ने देखा तो है ना?
1: राम राम राम राम राम राम, क्या बोलते हैं शाब, शादी से पहले हम अपनी पार्वती को गैर मर्द को कैसे दिखाएंगे?
0: लेकिन लड़के लड़के को तो एक दूसरे को देख लेना चाहिए।
1: ना, ना, ना,
0: इसमें हर्ज ही क्या है? शादी तो उन दोनों को करनी है ना।
3: अरे क्या बोलता है शाब, हमने भी अपनी लक्ष्मी को शादी के बाद ही देखा था शाह।
0: वो तो नजर आ ही रहा।
3: क्या मतलब शाह?
0: नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं। मेरा मतलब वो नहीं था। मेरा मतलब ये था कि अब जमाना बदल गया है।
3: कुछ अदला बदला नहीं शाह, कुछ अदला बदला नहीं। दरअसल आदमी लोग बहुत बेशरम हो गया है शाह। हमारी पार्वती बहुत सुंदर है शाह। हाँ। कोई नुकश नहीं। हाँ, घर का सब काम का जानती है, खेती में काम करती है शाह, घर का चूल्हा चक्की।
0: खुशी की बात है ये तो। अब ये बताइए, शादी कब करना चाहते हैं आप लोग?
3: शादी की बात भी हो जाएगा शाह, पहले एक बात का फैसला हो जाना चाहिए शाह।
0: हाँ हाँ, क्या बात है?
3: तुम्हारी बात का शाह।
0: भाई मुझे कोई एतराज नहीं, बहादुर को रिश्ता पसंद है तो मैं कौन होता हूँ मना करने वाला।
3: नहीं शाह, नहीं, बात ये शाह के, बात ये कि
1: मैं... तो बोलते क्यों नहीं, इसमें संकोच की क्या बात है? अजी पार्वती की जिंदगी का सवाल है, बोल दो शाह को, साफ साफ साफ बात कर दो।
3: चल तू ही बोल दे साफ साफ।
0: देखिए अगर कुछ लेने देने की या दान दहेज की बात है तो वो आप लोग बहादुर से ही फैसला कर लीजिए।
3: नहीं शाह, नहीं, दान दहेज लेने देने पर हम तो थू फूक दे शाब। हाँ, ये फैसला तो आपको करना है शाब।
0: मुझको?
3: जी
0: बोलिए बोलिए, क्या फैसला करना चाहते हैं
1: शाब? आप शादी कब करेंगे?
0: भाई मैंने तो आपको पहले ही से कह दिया था, ये सारी बातें आप बहादुर से ही करें।
3: तुम्हारी शादी का बहादुर थोड़ी फैसला करेगा शाब।
0: मेरी शादी? क्या मतलब?
3: मतलब ये शाह कि तुम अपना शादी कब करोगे, उसके माफी की हम बहादुर और पार्वती की शादी का दिन निकालेंगे।
0: देखिए आप लोग हद से बढ़ रहे हैं। मैं शादी कब करूंगा, कैसे करूंगा, कहां करूंगा, ये सब पूछने वाले आप कौन होते हैं?
1: चलो जी अब बस बहुत हो गया, हमने तुमको पहले ही बोला था कि बहादुर को शाह बोल दो, शाह का शादी होगा तो पार्वती की शादी करेंगे। अपनी छोकरी को ऐसे घर में कैसे छोड़ दे, अपना भी कोई धर्म है।
3: ठीक कहती है तू, बिल्कुल ठीक कहती है। अच्छा शाह, माफी देना शाह, हमने आपको बहुत टाइम खराब किया शाह। चल लक्ष्मी।
4: क्या बात है शाह, ये लोग इतना गुस्सा में क्यों है साहब?
0: बहादुर तुम्हें पहले से इन लोगों से सब फैसला कर लेना था और फिर मेरे पास लाना था।
2: क्या फैसला करना है, मैं भी तो सुनूं।
3: बात ये मेम साहब के मेरा
1: तो पीछे हटो, मेम साहब से हम बात करेंगे। हाँ तो मेम साहब, शादी के बाद हमारा छोकरी बहादुर के पास नहीं रहेगा तो कहाँ रहेगा? ठीक, फिर तुम्हें बोलो, तुम्हारा और साहब का शादी अभी नहीं बना है, साहब अकेला है। मेम साहब, हम पार्वती को ऐसे कैसे इधर रहने को छोड़ देगा? हाँ
2: बिल्कुल ठीक।
0: रीटा तुम भी क्या इनके हाँ में हाँ मिलाती जा रही हो? किस्सा मुख्तसर ये है कि ये चाहते हैं हम दोनों शादी कर ले पहले, फिर बहादुर की शादी हो।
2: ये भी ठीक।
0: अरे व्हाट नॉनसेंस, हम अभी 10 बरस शादी नहीं करेंगे तो क्या बहादुर भी कुंवारा रहेगा?
2: कभी नहीं हो सकता।
0: क्या नहीं हो सकता?
2: यही कि बहादुर कुंवारा रहे, इसीलिए ये जरूरी है कि पहले हम दोनों शादी कर ले।
0: ये कोई जबरदस्ती है?
3: चलो लक्ष्मी। सलाम मैम साहब। सलाम साहब।
0: क्या मुसीबत है, दिस इज स्टेट ब्लैकमेल। ठहरिए ठहरिए आप लोग, आप लोग बहादुर की शादी की तैयारी करें, हम भी अपनी शादी का इंतजाम करते हैं।
5: ओह डार्लिंग, दैट्स द स्पिरिट।
3: थैंक यू साहब, थैंक यू। अब हम शांति से जा सकते हैं साहब। अच्छा बहादुर, शादी जब साहब का हो जाए तो हमको खबर देना।
2: अच्छा खबर नहीं, बल्कि आप सब लोगों को हमारी शादी में आना होगा।
3: जरूर आएंगे मैम साहब, जरूर आएंगे। अच्छा सलाम साहब। सलाम मैम साहब।
2: सलाम
3: साहब।
2: सलाम
3: मैम साहब।
0: बहादुर इन लोगों को लिफ्ट तक छोड़ो।
4: हाँ साहब, जाते हैं साहब।
2: Oh, darling, I'm so happy. Let's celebrate in a grand style. चलो, तुम भी तैयार हो जाओ और मैं भी.
0: Good idea.

0: हाँ मैं बस गया और आया।
1: विम छाप जी, छाप किधर गया?
2: अंदर कमरे में तैयार होने।
1: अच्छा,
2: वाह बहादुर, तुमने तो आज कमाल कर दिया।
1: ये सब तो मैंने आपके लिए किया मैम साहब। हाँ, हम साहब को रोज रोज समझाता था, साहब शादी कर लो, साहब शादी कर लो, पर अपनी कभी सुनता ही नहीं था साहब, तो इसलिए ये ड्रामा हमने सोचा। ठीक था ना मैम साहब?
2: अरे ठीक नहीं था बहादुर। अच्छा बहादुर, तुम इन दोनों को कहाँ से पकड़ लाए?
1: ये दोनों हमारे सास ससुर है मेम साहब। हाँ, अपने मुल्क से बुलाया इनको।
2: ओ, तुम्हारे होने वाले सास ससुर?
1: ओ नहीं नहीं नहीं मेम साहब, हमारा शादी तो बचपन में ही हो गया था।
2: हाँ,
1: हाँ हम 10 बरस का था तब। अब तो हमारा गौना होने वाला मेम साहब। हाँ, तब हम अपनी पार्वती को इधर बुलाएंगे।
2: क्या बात है, वाह बहादुर वाह, मैं तो तुम्हें बिल्कुल बुद्धू समझती थी, पर तुमने तो आज कमाल ही कर दिया। इसी बात पर आज तुम्हें सारे दिन की छुट्टी और ये लो इनाम, और तुम भी मौज करो। हाँ
1: थैंक यू मेम साहब, थैंक।

बहादुर की शादी, हरी मेहरा की लिखी नाटिका अभी आपने सुनी। निर्देशक गंगा प्रसाद माथुर। विविध भारती की इस प्रस्तुति के साथ ही आज का हवा महल कार्यक्रम समाप्त होता है।

चित्रलोक कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज कार्यक्रम में आपके साथ है आपकी दोस्त प्रीति शर्मा। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करते हैं। पहला गाना हमने लिया है फिल्म फटा पोस्टर निकला हीरो से। इसे गाया है अरिजीत सिंह ने, गीत अमिताभ भट्टाचार्य का है, संगीत प्रीतम का।

आइए अब सुनते हैं नीरज श्रीधर और सुजैन टमैलो की आवाज़ में अजब प्रेम की गजब कहानी फिल्म का ये गाना। गीत इशात कामिल का है, संगीत प्रीतम का।

कार्यक्रम का अगला गीत बैड बॉय फिल्म से है। इसे गाया है अरिजीत सिंह और ज्योतिका तांगरी ने। गीत सोनिया कपूर रेशमिया का, संगीत हिमेश रेशमिया का।

0: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: चित्रलोक का शेष भाग अंतराल के उस पार।

अंतराल के बाद चित्रलोक में आपका फिर से स्वागत है। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म लज्जा से। इसे गाया है के ने, गीत समीर का है, संगीत अनु मलिक का।

0: भागती दौड़ती जिंदगी में अपनी सेहत से हर कोई जूझ रहा है। पीसीओडी यानी पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज की समस्या के बारे में लोग आज भी बहुत कम सजग हैं। क्या है पीसीओडी, जानिए गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर आशा लता देवलीकर से।
1: जब पेशेंट आता है एकदम से तो उसको लेप्रोस्कोपी IVF या IUI एडवाइस हम लोग नहीं कर सकते हैं, हम नेचुरल वे से करते हैं। पहले उसका डाइट थोड़ा ठीक ठाक करेंगे, एक्सरसाइज ठीक ठाक करेंगे और उसको प्रेगनेंसी के लिए, कंसीव के लिए वो जो मेडिसिन है जिसे पुराने जमाने में हम क्लोमिफेन देते थे, अभी लेट्रोस देते हैं, लेट्रोजॉल और मल्टीविटामिन, विटामिन D3, ओमेगा 3, और क्या कम है दिख जाता है पेशेंट में, कुछ डिफेंसियस सीएनसी है, B12 हो, ये सब देकर।
0: सुनिए 6 जुलाई सेहतनामा शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आइए अब सुनते हैं हाफ गर्लफ्रेंड फिल्म का गाना। ऐश किंग और शशा त्रिपाठी की आवाजों में, गीत राफत महमूद और तनिष्क बागची का है, संगीत दिया है तनिष्क बागची ने।

0: नमस्कार नमस्कार आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। भारत में दक्षिण पश्चिम मॉनसून और तेज, मुंबई के लिए रेड अलर्ट जारी, कई राज्यों में तेज वर्षा की चेतावनी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शिवपुरी में 2500 करोड़ रुपए की लागत वाले रक्षा विनिर्माण संयंत्र की आधारशिला रखी। विदेश मंत्री एस जयशंकर पश्चिम एशिया की 6 दिवसीय यात्रा पर, दोहा में कतर के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जासिम अस्सानी से मुलाकात की। ओपेक प्लस ने बाजार स्थिरता में सहयोग के लिए अगले महीने से प्रतिदिन 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में आज रात नॉर्वे का सामना ब्राजील से, और टी20 क्रिकेट विश्व कप में लॉर्ड्स में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच निर्णायक मुकाबला जारी। अब समाचार विस्तार से। देश में दक्षिण पश्चिम मॉनसून और तेज हो गया है, कई राज्यों में तेज वर्षा की चेतावनी दी गई है, मुंबई के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने कल छत्तीसगढ़, गुजरात, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र, पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, माहे और मध्य प्रदेश में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। दिल्ली के कुछ हिस्सों, हरियाणा, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उड़ीसा, सौराष्ट्र, कच्छ, उत्तराखंड और उत्तर पूर्वी राज्यों में भी हल्की से तेज बारिश की संभावना है। महाराष्ट्र में तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित है। मौसम विभाग ने मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़ और रत्नागिरी सहित कोंकण जिलों में अगले 24 घंटों के दौरान कई स्थानों पर मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: मुंबई में आज मूसलाधार बारिश के कारण छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लगभग 1 घंटे के लिए रनवे संचालन अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा, जिससे उड़ान सेवाएं प्रभावित हुई। बृहन्मुंबई महानगर पालिका यानी BMC के अनुसार दिन भर में पेड़ गिरने की 64 घटनाएं तथा दीवार या मकान के कुछ हिस्से गिरने की 8 घटनाएं दर्ज की गई। शहर में पेड़ गिरने की 2 अलग-अलग घटनाओं में 63 वर्षीय एक व्यक्ति और 18 वर्षीय एक युवक की मौत हो गई। भारी बारिश के कारण ठाणे और पालघर जिलों में भी व्यापक नुकसान हुआ। लगातार हो रही बारिश के कारण महाराष्ट्र की कई नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। इसके चलते कई सड़कें बंद कर दी गई है, बिजली आपूर्ति बाधित।

0: हुई है और गढ़चिरी, कोल्हापुर, रायगढ़ और रत्नागिरी सहित कई जिलों में यातायात प्रभावित हुआ है। इस बीच रायगढ़ जिले के खोपोली स्थित आदोशी जलप्रपात में भारी बारिश के कारण अचानक जलस्तर बढ़ जाने से फंसे 10 से 12 पर्यटकों को पुलिस और बचाव दल ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया। शैलजा तिवले, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: गुजरात में अगले 7 दिनों में मूसलाधार बारिश का अनुमान है। डांग, नवसारी, वलसाड़, दमण और दीव, दादरा और नगर हवेली, भावनगर, अमरेली तथा गिर सोमनाथ में कल बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। मछुआरों को अगले 5 दिन तक समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज मध्य प्रदेश के शिवपुरी में रक्षा विनिर्माण संयंत्र की आधारशिला रखी। यह संयंत्र अडानी समूह द्वारा लगभग 2,500 करोड़ रुपए के निवेश से बनाया जाएगा। एक रिपोर्ट।
2: केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि आज शिवपुरी के इतिहास में एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। उन्होंने इसे एक ऐतिहासिक कदम बताया है। श्री सिंधिया ने कहा कि ये परियोजना जिले को औद्योगिक विकास, रक्षा उत्पादन और आत्मनिर्भर भारत के सपने से जोड़ेगी। उन्होंने कहा कि शिवपुरी के मेहनती युवाओं के बनाए हथियार और मिसाइल भारतीय सेना को मजबूत करेंगी। ये कारखाना राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर स्थित पाली गाँव में बनेगा। इसमें गोला बारूद, उच्च तकनीक वाले हथियार और मिसाइल का उत्पादन किया जाएगा। अडानी समूह के निदेशक जीत अडानी ने कहा कि समूह वर्ष 2030 तक मध्य प्रदेश में 1,20,000 रोजगार सृजित करेगा। भोपाल से अभिनव गोयल की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान सहित पश्चिम एशिया की अपनी आधिकारिक यात्रा शुरू की। यात्रा के पहले चरण में डॉ. जयशंकर दोहा पहुंचे, जहां उन्होंने कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जासिम अस्सानी से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं, विशेष रूप से ऊर्जा, व्यापार, निवेश, संपर्क, सुरक्षा और जनसंबंधों की समीक्षा की। सोशल मीडिया पोस्ट में विदेश मंत्री ने कहा कि उन्होंने रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करने के नए अवसरों पर विचार विमर्श किया। डॉ. जयशंकर ने भारतीय समुदाय की सुरक्षा तथा कल्याण सुनिश्चित करने के लिए कतर के प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया और पश्चिम एशिया संघर्ष तथा उसके प्रभाव पर उनके आकलन की साझा करने की सराहना की। डॉ. जयशंकर इस महीने की 13 तारीख को अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर की यात्रा करेंगे, जहां वे 2028-29 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कार्यकाल के लिए भारत के आधिकारिक अभियान का शुभारंभ करेंगे। इंडोनेशिया गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की वहां की ऐतिहासिक यात्रा की शताब्दी मनाएगा। इसके लिए वर्ष 2026 और 2027 के दौरान 15 महीने का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इंडोनेशिया में भारत के राजदूत संदीप चक्रवर्ती ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल से शुरू होने वाली इंडोनेशिया यात्रा के दौरान इन कार्यक्रमों का शुभारंभ किया जाएगा। शताब्दी समारोहों में प्रदर्शनियां और पूरे वर्ष चलने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
3: With Prime Minister's arrival in Indonesia,
4: प्रधानमंत्री के इंडोनेशिया आगमन के साथ ही हम वर्ष 2026 और 2027 को टैगोर दिवंतारा सांस्कृतिक और शैक्षिक आदान प्रदान वर्ष के रूप में मनाएंगे। इस अवसर पर एक विशेष प्रदर्शनी आयोजित की गई है। हमने इंडोनेशिया में टैगोर विषय पर एक पुस्तक भी तैयार की है, जिसे माननीय प्रधानमंत्री को भेंट किया जाएगा। इसके अलावा रविन्द्रनाथ टैगोर की इंडोनेशिया यात्रा की स्मृति में पूरे विभिन्न सांस्कृतिक और शैक्षिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
3: राउंड द ईयर कमेमोरेटिंग टैगोर्स विजिट टू इंडोनेशिया।
1: पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक प्लस ने वैश्विक तेल बाजार की स्थितियों की समीक्षा के लिए आयोजित वर्चुअल बैठक के बाद इस वर्ष अगस्त से प्रतिदिन 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। आज हुई बैठक के बाद जारी बयान में तेल उत्पादक समूह ने कहा कि यह निर्णय बाजार स्थिरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लिया गया है। समूह ने कहा कि वह वैश्विक तेल बाजार पर नजर रखना जारी रखेगा और सहमति वाले उत्पादन लक्ष्यों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा। भाग लेने वाले देशों की अगली बैठक 2 अगस्त को निर्धारित है। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार के लिए आज

0: ईरान में राजनीतिक, सैन्य और धार्मिक नेतृत्व ने सामूहिक प्रार्थना में भाग लिया। 9 जुलाई को मशहद में आयतुल्ला अली खामेनेई का अंतिम संस्कार किया जाएगा। इसके बाद 40 दिनों तक सार्वजनिक शोक मनाया जाएगा। ब्रिटेन की सेना ने बताया कि लाल सागर में यमन के तट पर आज एक मालवाहक जहाज पर हमला हुआ। ब्रिटेन के यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस UKMTO ने बताया कि यह हमला होदेइदा के पास हुआ, जो ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों के नियंत्रण वाले क्षेत्र में है। वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने विनाशकारी भूकंप के बाद सहायता के लिए भारत का आभार व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में सुश्री रोड्रिगेज ने कहा कि ब्रिटेन, कतर, फ्रांस, भारत, बारबाडोस, ब्राजील और अर्जेंटीना के बचाव कर्मियों को उनके अमूल्य योगदान और संकट की इस घड़ी में एकजुटता प्रयासों के प्रति वेनेजुएला सम्मान व्यक्त करता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। सहकारिता मंत्री अमित शाह कल नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। मंत्रालय ने बताया कि यह समारोह सहकार से समृद्धि की परिकल्पना के अनुरूप आयोजित किया जाएगा। श्री शाह कई परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे और कई महत्वपूर्ण पहलुओं का उद्घाटन करेंगे। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण 2025 के 1 जुलाई से सफलतापूर्वक लागू होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। केंद्रीय मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मिशन के अंतर्गत राज्यों के लिए 25,000 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी की। उन्होंने कहा कि विकसित भारत जी राम जी को पूरे देश में सिर्फ एक दिन में लागू कर दिया गया।
1: मनरेगा को पूरे देश में लागू करने में 3 साल लगे थे, लेकिन मुझे आप सब पर गर्व है, 1 साल 2 साल नहीं, पहले दिन ही विकसित भारत जी राम जी योजना एक साथ पूरे देश में लागू हो गई। 100 दिन नहीं, अब 125 दिन रोजगार, 5 साल में 7.5 लाख करोड़ से ज्यादा की राशि 2,86,000 पंचायतों में ठीक से लग गई, तो गांव संपूर्ण विकसित हो जाएंगे, समृद्ध और विकसित गाँव का निर्माण हो जाएगा।
0: ग्रामीण विकास मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों का एक दल आज से 11 जुलाई तक कर्नाटक के दौरे पर है। इसका उद्देश्य राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठकें करना और प्रमुख योजनाओं की प्रगति और कार्यान्वयन का आकलन करना है। छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति को विश्व पटल पर विशिष्ट पहचान दिलाने वाली विश्व विख्यात पंडवानी गायिका और पद्म विभूषण से सम्मानित डॉक्टर तीजन भाई को आज शाम दुर्ग जिले में स्थित उनके पैतृक गांव गनियारी में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। इस अवसर पर जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों, कलाकारों, साहित्यकारों सहित हजारों प्रशंसकों ने नम आंखों से लोक कला की इस महान विभूति को अंतिम प्रणाम किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया पर कहा कि भारत की सांस्कृतिक विरासत के प्रसार के प्रति तीजन बाई का योगदान अविस्मरणीय रहेगा। उपराष्ट्रपति ने कहा कि तीजन बाई ने भारत की समृद्ध लोक सांस्कृतिक परंपराओं की कालजयी कहानियों को लोगों तक पहुंचाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनका निधन कला और संस्कृति जगत के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। प्रधानमंत्री मोदी ने वयोवृद्ध जनजातीय नेता और गुजरात के पूर्व वन मंत्री मोहन सिंह राठवा के निधन पर भी शोक व्यक्त किया है। जम्मू कश्मीर में वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा में भारी जनभागीदारी दर्ज की गई है। तीर्थयात्रा के पहले 3 दिनों में 56,000 से अधिक तीर्थयात्रियों ने पवित्र गुफा मंदिर में दर्शन किए। आज रिकॉर्ड 24,648 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज कैलाश मानसरोवर यात्रा 2026 के पहले जत्थे को चंपावत जिले के तनकपुर से रवाना किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कैलाश मानसरोवर यात्रा केवल एक धार्मिक यात्रा नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक जागरूकता, सांस्कृतिक एकता और राष्ट्रीय सद्भाव का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि यह तीर्थयात्रा सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास, पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा देती है। युवा मामले और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज सुबह नई दिल्ली में आयोजित फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल पहल के 80वें संस्करण में भाग लिया। श्री सत्य साई बाबा की 100वीं जयंती के उपलक्ष्य में श्री सत्य साई सेवा संगठन के सहयोग से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। डॉक्टर मांडविया ने मीडिया से बातचीत में प्रतिदिन कम से कम एक घंटे

0: टा मोबाइल स्क्रीन से दूर रहने का आग्रह किया।
1: साइकिलिंग हार्ट को ठीक रखता है और बॉडी को भी फिट रखता है, सोल को भी ठीक रखने का काम करता है। एक साइकिलिंग से पोल्यूशन का सोल्यूशन होता है, अपने स्वयं को फिट रखती है। साइकिलिंग ही ट्रैफिक का भी समाधान है, क्यों न हम साइकिलिंग करके अपने स्वयं को फिट रखें और फ्यूल की बचत करें।
0: फीफा फुटबॉल विश्व कप के प्री क्वार्टर फाइनल में आज नॉर्वे का सामना ब्राजील से होगा। यह मैच भारतीय समयानुसार रात 1:30 बजे से न्यू जर्सी में खेला जाएगा। वहीं कल सुबह 5:30 बजे इंग्लैंड का मुकाबला मैक्सिको से होगा। उधर महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में लंदन के लॉर्ड्स में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड के खिलाफ मैच में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक इंग्लैंड ने 11वें ओवर में 3 विकेट पर 70 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून और तेज, मुंबई के लिए रेड अलर्ट जारी, कई राज्यों में तेज वर्षा की चेतावनी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शिवपुरी में 2500 करोड़ रुपए की लागत वाली

तक इंग्लैंड ने 11वें ओवर में 3 विकेट पर 70 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून और तेज, मुंबई के लिए रेड अलर्ट जारी, कई राज्यों में तेज वर्षा की चेतावनी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शिवपुरी में 2500 करोड़ रुपए की लागत वाले रक्षा विनिर्माण संयंत्र की आधारशिला रखी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर पश्चिम एशिया की 6 दिवसीय यात्रा पर दोहा में कतर के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जासिम अस्सानी से मुलाकात की। ओपेक प्लस ने बाजार स्थिरता में सहयोग के लिए अगले महीने से प्रतिदिन 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। T20 क्रिकेट विश्व कप में लॉर्ड्स में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच निर्णायक मुकाबला जारी और फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में आज रात नॉर्वे का सामना ब्राजील से। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: 2026 from Tanakpur in Champawat district for the next leg of the pilgrimage. The first batch comprises 49 pilgrims. On the occasion, the Chief Minister said the Kailash Mansarovar Yatra is not just a religious journey, but a symbol of spiritual awareness, cultural unity and national harmony. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Southwest monsoon intensified across India. Red alert issued for Mumbai. Warning of heavy rain in several states. Union Minister Jyotiraditya Sindhya and MP Chief Minister Dr. Mohan Yadav lay foundation stone of 2,500 crore rupee defense manufacturing plant in Shivpuri. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar begins his six-day visit to West Asia, meets Qatari Prime Minister Mohammed bin Abdul Rahman bin Jassim Al Thani in Doha. OPEC Plus agrees to increase oil production by 188,000 barrels per day from next month to support market stability. In T20 Cricket World Cup summit clash underway between hosts England and Australia at the Lords. And in FIFA World Cup, Brazil to take on Norway in the round of 16 at New Jersey tonight. And that is all in the news at 9. Good night.
1: Adab, ye Aakashvani hai. खबरों के साथ मैं असलम बेग। पूरे भारत में जुनूब मगरबी मानसून में तेजी आ गई है। मुंबई के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है और बहुत सी रियासतों में मूसलाधार बारिश से खबरदार किया गया है। मरकजी वजीर ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश के वजीर आला डॉक्टर मोहन यादव ने शिवपुरी में दिफाई साजो सामान की तैयारी करने वाले प्लांट का संग बुनियाद रखा है, जिसकी लागत 2500 करोड़ रुपए है। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने मगरबी एशिया का अपना 6 रोजा दौरा शुरू कर दिया है। उन्होंने दोहा में कतर के वजीर आजम मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जसीम अस्सानी से मुलाकात की। ओपेक प्लस ने मार्केट इस्तेहकाम में मदद देने के लिए अगले महीने से तेल की पैदावार में यौमिया 188,000 बैरल्स इजाफे से इत्तेफाक किया है। फीफा आलमी कप में आज रात न्यूजर्सी में क्वार्टर फाइनल में ब्राजील का मुकाबला नॉर्वे से होगा और T20 क्रिकेट आलमी कप में लॉर्ड्स में मेजबान इंग्लैंड का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। अब खबरें तफसील से। मुल्क के ज्यादातर हिस्सों में जुनूब मगरबी मानसून में तेजी आ गई है, जिसके तहत बड़े पैमाने पर बारिश, गरज चमक के साथ छींटे, बिजली चमकने और तेज हवाओं का सिलसिला शुरू हो गया है। भारत के महकमे मौसमियात ने कहा है कि अगले 4 दिन में मानसून के गुजरात के कुछ मजीद इलाकों, हरियाणा, पंजाब के बकिया इलाकों और राजस्थान के कुछ मजीद इलाकों में आगे बढ़ने के इम्कान हैं। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, उत्तराखंड में दिन के दौरान शदीद से ज्यादा शदीद बारिश की पेशगोई है, जबकि दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब और चंडीगढ़ में अगले 2 से 3 दिन के दौरान अलग अलग जगहों पर बारिश का इम्कान है। महाराष्ट्र में आज मानसून की शदीद बारिश से बहुत से इलाके मुतासिर हुए हैं। बारिश की वजह से कुछ हादसात पेश आए, जहां बचाव कार्रवाई शुरू कर दी गई है। रायगढ़ जिले में पुलिस ने 10 से 12 सयाहों को खपोली के नजदीक अदूषी आबशार से बचाया, क्योंकि यहां पानी की सतह में अचानक इजाफा हो गया था। हुक्काम ने लोगों को मशवरा दिया है कि वो मानसून के दौरान दरियाओं, आबशारों और पानी के दीगर जखायर से दूर रहें। मुंबई में आज दोपहर मूसलाधार बारिश के दौरान कुर्ला में एक दुकान पर एक दरख्त गिर जाने से एक 63 साल शख्स हलाक हो गया। बीएमसी ने बताया कि शहर में दरख्त गिरने के 64 और दीवार और जुजवी तौर पर मकान गिरने के 8 हादसात की खबर मिली है। मूसलाधार बारिश और तेज हवाओं की वजह से परवाजों के आने जाने में भी काफी रुकावट आई है। भारत के महकमे मौसमियात ने मुंबई, थाने, पालघर, रायगढ़ और रत्नगिरी समेत कोंकण जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। गुजरात में डांग, नवसारी, वलसाड़, भावनगर, अमरेली, गीर सोमनाथ और दमन व दीव और दादर व नगर हवेली में कल इंतहाई शदीद बारिश की पेशगोई है। आईएमडी अहमदाबाद में साइंसदान प्रदीप शर्मा ने हमारे नामानिगार को बताया कि इन जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है और माही गीरों को मशवरा दिया गया है कि वो अगले 5 दिन समंदर में न जाएं। इसी दौरान दिल्ली एनसीआर के बहुत से इलाकों में आज दोपहर औसत दर्जे की बारिश हुई, जिसकी वजह से मौसम में यकसर तब्दीली आई और लोगों को नमी वाले मौसम से कुछ राहत मिली। पार्लियामेंट का मानसून इजलास इस माह की 20 तारीख से शुरू होगा, जो 13 अगस्त तक जारी रहेगा। पार्लियामानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने बताया कि सदर जमहूरिया द्रौपदी

0: मुर्मू ने पार्लियामेंट के मानसून इजलास को 20 जुलाई से शुरू करने के लिए हुकूमत की तजवीज को मंजूरी दे दी है। मरकजी वजीर ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश के वजीर आला डॉक्टर मोहन यादव ने आज शिवपुरी में दिफाई साजो सामान की मैन्युफैक्चरिंग के प्लांट का संगे बुनियाद रखा। इस प्लांट की तामीर तकरीबन 25,000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी के साथ अडानी ग्रुप करेगा। इस मौके पर खिताब करते हुए मरकजी वजीर सिंधिया ने कहा कि शिवपुरी की तारीख में आज एक नया बाब रकम किया जा रहा है। उन्होंने इसे एक तारीखी कदम करार दिया। उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट से ये जिला सनती तरक्की, दिफाई साजो सामान की तैयारी और एक खुद कफील भारत के तसव्वुर से वाबस्ता हो जाएगा। जनाब सिंधिया ने यह भी कहा कि शिवपुरी के मेहनती नौजवानों के जरिए बनाए गए हथियार और मिसाइल भारतीय फौज को मुस्तहकम करेंगे। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने मगरबी एशिया का अपना दौरा शुरू कर दिया है। वो इस दौरे में कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान जाएंगे। अपने दौरे के पहले मरहले में डॉक्टर जयशंकर दोहा पहुंचे, जहां उन्होंने कतर के वजीर आजम और वजीर खारजा मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जस्सीम अस्सानी से मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने बाहमी तआवुन के मुख्तलिफ पहलुओं का जायजा लिया, जिसमें बिलखसूस तवानाई, तिजारत, सरमायाकारी, कनेक्टिविटी, सिक्योरिटी और अवाम का अवाम से राबता शामिल है। सोशल मीडिया पर जारी एक पोस्ट में वजीर खारजा ने बताया कि दोनों रहनुमाओं ने कलीदी शराकत दारी को मजीद बढ़ाने की गरज से नए मौकों की जस्तजू की। डॉक्टर जयशंकर ने भारतीय बिरादरी के तहफ़ और खुशहाली को यकीनी बनाने के लिए उनका शुक्रिया अदा किया और मगरबी एशिया तनाज़े और उसके असरात के ताल्लुक से अपने जायजों से वाकिफ कराने के लिए उनकी तारीफ की। डॉक्टर जयशंकर इस माह की 13 तारीख को अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क का दौरा करेंगे, जहां वो अक़वामे मुत्तहिदा सलामती कौंसिल की 2028-29 की मुद्दत के लिए भारत की सरकारी मुहिम का आगाज करेंगे। डॉक्टर जयशंकर इसके बाद तीसरी भारत यूरोपीय यूनियन तिजारत और टेक्नोलॉजी काउंसिल की मीटिंग में हिस्सा लेंगे और इस माह की 14 और 15 तारीख को ब्रसल्स में यूरोपीय यूनियन और बेल्जियम के अपने हमसबों से बातचीत करेंगे। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही है। पेट्रोलियम बरामद करने वाले मुल्कों की तंजीम ओपेक प्लस ने तेल की पैदावार में इस साल अगस्त से 188,000 बैरल रोजाना का इजाफा करने से इत्तेफाक किया है। ये फैसला तेल मार्केट की आलमी सूरत हाल का जायजा लेने के लिए वर्चुअल वसीले से मुनाकदा एक मीटिंग के बाद किया गया। आज इस मीटिंग के बाद जारी किए गए बयान में 7 ओपेक प्लस रुकन मुल्कों ने, जिसमें सऊदी अरब, रूस, इराक, कुवैत, कजाकिस्तान, अल्जीरिया और ओमान शामिल हैं, कहा है कि इस फैसले का मकसद मार्केट के इस्तेहकाम में मदद करना है। उन्होंने एक मोहतात और लचकदार तरीक़ेकार के तहीं अपने अज़्म को दोहराया, जिसमें मार्केट के हालात पर इनेसार करते हुए तेल की पैदावार में इजाफे, इसे रोक देने या इसे कम कर देने के मुतबादिल भी शामिल हैं। तेल की पैदावार वाले इस ग्रुप ने कहा कि वो आलमी तेल मार्केट पर करीबी नज़र रखता रहेगा। ग्रुप ने पैदावार के उन निशानों को भी पूरा करने की यकीन दहानी कराई जिन पर रजामंदी की गई है। ज़िराअत और देही तरक्यात के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने आज विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन की गारंटी ग्रामीण के तहत रियासतों को 25,000 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी की। जनाब चौहान ने तमाम रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के साथ इस स्कीम पर अमलावरी का जायजा भी लिया। उन्होंने कहा कि आज जारी की गई पहली किस्त का मकसद इस बात को यकीनी बनाना है कि रियासतों के पास खातिरखाह फंड्स मौजूद हों, ताकि उजरतें 15 दिन के अंदर अंदर अदा की जा सके। जनाब चौहान ने यह भी कहा कि इस एक्ट के तहत 2,86,000 पंचायतों में 7.5 लाख करोड़ रुपए के अगले 5 बरस में सरमायाकारी की जाएगी, ताकि विकसित भारत के तस्वुर को तेजी के साथ बढ़ाया जा सके। वजीर मौसूफ ने कहा कि VBG रामजी एक्ट ने कामयाबी के साथ महात्मा गांधी कौमी देही रोजगार गारंटी स्कीम की कायापलट कर दी है।
1: मनरेगा को पूरे देश में लागू करने में 3 साल लगे थे, लेकिन मुझे आप सब पर गर्व है, 1 साल 2 साल नहीं, पहले दिन ही विकसित भारत जी राम जी योजना एक साथ पूरे देश में लागू हो गई। 100 दिन नहीं, अब 125 दिन रोजगार, 5 साल में 7.5 लाख करोड़ से ज्यादा की राशि 2,86,000 पंचायतों में ठीक से लग गई तो गांव संपूर्ण विकसित हो जाएंगे, समृद्ध और विकसित गांव का निर्माण हो जाएगा।
0: हुकूमत ने सोशल नेटवर्किंग साइट इंस्टाग्राम पर अदायगी के बाद पेश किए जाने वाले इश्तहारों में बच्चों के जिंसी एतबार से इस्तेहसाल और नाजेबा सलूक से मुतालिक मटीरियल CSEAM पेश किए जाने के मामले में मेटा को सख्त नोटिस जारी किया है।

हुकूमत ने इंस्टाग्राम को हुक्म दिया है कि वो इस तरह के मटेरियल तक रसाई की सहूलत बहम पहुंचाने वाले और इस मवाद को फरोग देने वाले तमाम इश्तहारात को रोक दे। इलेक्ट्रॉनिक्स और इत्तलाआती टेक्नोलॉजी की वजारत ने इस सिलसिले में मेटा से 7 दिन के अंदर तफसीली वजाहत तलब की है। हुकूमत इस बात का जायजा ले रही है कि प्लेटफॉर्म ने भारत की सालिसी के तहफुजाती रहनुमा खतूत पर अमल किया है या नहीं। उरियां फिल्में और बच्चों के जिंसी इस्तेहसाल से मुतालिक वीडियोस की तशहीर डिजिटल कवानीन के तहत भारत में एक मुजरमाना खिलाफ वर्जी है। इससे पहले वजारत ने इन रिपोर्टों की बिना पर कि इंस्टाग्राम कुछ ऐसे काबिल एतराज वीडियो दिखाता है जिससे बच्चों के साथ जिंसी इस्तेहसाल की तशहीर होती है, अपने तौर पर कार्रवाई करते हुए अफसरान को हिदायत जारी की थी कि वो इस सिलसिले में मेटा से जवाब तलब करें। हुकूमत ने आबनाए हुरमुज के रास्ते LNG लाने ले जाने के अमल की बहाली के बाद कुदरती गैस सप्लाई पर आयद हंगामी बंदिशें खत्म कर दी हैं। ये बहाली मगरबी एशिया तनाज़े में जंगबंदी के बाद हुई है। इस सिलसिले में हंगामी अहकाम लाजमी अशिया के कानून के तहत इस साल मार्च में जारी किए गए थे, जब आबनाए हुरमुज के रास्ते LNG लाने ले जाने वाले जहाज़ों की आमदोरफ्त में रुकावट आ गई थी। भारतीय बहरिया का तरबियती जहाज INS सुदर्शनी न्यूयॉर्क की बंदरगाह पर लंगरअंदाज हो गया। वो अमरीका के बैन अलाक्वामी नेवल रिव्यू 2250 और सेल 14-250 तकरीबात में भारत की नुमाइंदगी करेगा। हडसन दरिया में कल कश्तियों की परेड के दौरान मशहूर जमाना 3 मस्तूल वाली कश्ती ने बड़े फखरी अंदाज में भारतीय तिरंगा लहराया, जो भारत की फरामा समंदरी सरहद की सकाफत और सदियों पुराने समंदरों के सफर की रिवायत का जश्न था। उत्तराखंड के वजीर आला पुष्कर सिंह धामी ने आज 2026 की कैलाश मानसरोवर यात्रा के पहले जत्थे को झंडी दिखाकर रवाना किया। ये जत्था यात्रा के अगले मरहले के लिए चंपावत जिले के टनकपुर इलाके से रवाना होगा। पहला जत्था 49 यात्रियों पर मुश्तमिल है, जिनमें एक डॉक्टर, 34 मर्द और 15 खवातीन शामिल हैं। दुनिया भर में मारूफ पांडों की दास्तान बयान करने वाली पद्म विभूषण एजाज याफ्ता डॉक्टर तीजन बाई की आज शाम दुर्ग जिले के उनके आबाई गांव गनियारी में सरकारी तौर पर आखिरी रसूम अदा कर दी गई। उन्होंने छत्तीसगढ़ की लोक सकाफत को आलमगीर मकबूलियत अदा की। इस मौके पर अवामी नुमाइंदों, इंतजामिया के अहलकारों, फनकारों, अदीबों और हजारों सोगवारों ने आर्ट की इस शोरा आफाक शख्सियत को नम आंखों से खिराज अकीदत पेश किया। पाकिस्तान के जेरे कब्जा कश्मीर में कशीदगी के उस वक्त बढ़ गई जब पाकिस्तान रेंजर्स की जानिब से मुबैना तौर पर मुजाहिरीन पर गोली चलाए जाने के वाकये में एक शख्स हलाक और दीगर मुतअद्दिद जख्मी हो गए। ये वाकया बुनियादी हुकूक, माशी राहत और सियासी आज़ादी पर जारी एहतजाज मुजाहरों के दौरान पेश आया। मीडिया की खबरों के मुताबिक इस्लामाबाद के खिलाफ मुजाहरों के बाद खत्ते में 600 से ज्यादा सिविल हुकूक के कारकुनों को गिरफ्तार किया गया है। इस दौरान इंग्लैंड में मुकीम कश्मीरी बाशिंदों ने मुजाहरीन के साथ यकजहती का इजहार करते हुए एहतजाज किया। दूसरी तरफ पाकिस्तान के कराची शहर में अब्बासी शहीद अस्पताल के डॉक्टरों के एहतजाज ने भी शिद्दत इख्तियार कर ली है, जिसमें जूनियर डॉक्टर्स बकाया वजीफों की अदायगी, बेहतर सिक्योरिटी और अस्पताल में अच्छी सहूलतों का मुतालबा कर रहे हैं। डॉक्टरों ने मुतनब्बे किया है कि अगर उनके मुतालबात न माने गए तो वो खिदमात मुअत्तल कर देंगे। ईरान के सियासी, मिलिट्री और मजहबी कायदीन ने आज तेहरान में साबिक अजीम रहनुमा मरहूम आयतुल्लाह खामेनेई की नमाज जनाजा में शिरकत की। सरकारी टेलीविजन की खबरों के मुताबिक अजीम रहनुमा के तीनों बेटों मसूद, मेसम और मुस्तफा ने तेहरान के मुसल्ले आजम में जनाजे की क़यादत की। इस मौके पर सदर मसूद पेजिशकियां, पार्लियामानी स्पीकर मोहम्मद बाकर कालीबाफ और आला कमांडर भी मौजूद थे। इंडोनेशिया गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के उनके मुल्क के तारीखी दौरे के 100 साल पूरे होने के मौके पर 2026 और 27 के दौरान 15 महीने तक जारी रहने वाले प्रोग्राम के जरिए इसकी याद बनाएगा। आकाशवाणी के खबरों के शोबे में खसूसी बातचीत करते हुए इंडोनेशिया के लिए भारत के सफीर संदीप चक्रवर्ती ने कहा कि यादगारी तकरीबात का इफ्तिताह कल से शुरू होने वाले वजीर आजम नरेंद्र मोदी के इंडोनेशिया के दौरे में होगा। आलमी कप के प्री क्वार्टर फाइनल में आज रात न्यू जर्सी में ब्राजील का मुकाबला नॉर्वे से होगा, जो भारतीय वक्त के मुताबिक 1:30 पर खेला जाएगा। दूसरे प्री क्वार्टर फाइनल में मेक्सिको सिटी में कल सुबह 5:30 पर इंग्लैंड का मुकाबला मेक्सिको से होगा। आज सुबह फिलाडेल्फिया में खेले गए प्री क्वार्टर फाइनल के एक मुकाबले में फ्रांस ने पैराग्वे पर 0 के मुकाबले

0: एक गोल से जीत हासिल करके क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। फ्रांस के कप्तान ने वार की तरफ से मिलने वाली स्पॉट किक पेनल्टी पर मैच के 70वें मिनट में वाहिद गोल किया। आईसीसी खवातीन के टी20 आलमी कप फाइनल में अब से कुछ देर पहले तक इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 17 ओवर्स में 4 विकेट पर 122 रन बना लिए थे। ये मैच लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में खेला जा रहा है। और आखिर में इस बुलेटिन की खास खास खबरें एक बार फिर। पूरे भारत में जुनूब मगरबी मानसून में तेजी आ गई है। मुंबई के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है और बहुत सी रियासतों में मूसलाधार बारिश से खबरदार किया गया है। मरकजी वजीर ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश के वजीर आला डॉक्टर मोहन यादव ने शिवपुरी में दिफाई साजो सामान की तैयारी करने वाले प्लांट का संग बुनियाद रखा है, जिसकी लागत 2500 करोड़ रुपये है। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने मगरबी एशिया का अपना 6 रोजा दौरा शुरू कर दिया है। उन्होंने दोहा में कतर के वजीर आजम मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान बिन जसीम अस्सानी से मुलाकात की। ओपेक प्लस ने मार्केट इस्तेकाम में मदद देने के लिए अगले महीने से तेल की पैदावार में यौमिया 188,000 बैरल इजाफे से इत्तेफाक किया है। खबरें खत्म हुई।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब आपको ले चलते हैं आकाशवाणी दिल्ली की ओर। वहाँ से आप देखेंगे आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 के अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के मध्य लंदन में खेले जा रहे महिला टी20 क्रिकेट का फाइनल मैच का आंखों देखा हाल। ये कार्यक्रम मैच के समापन तक जारी रहेगा। अब अगला कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली से, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: एक जमाना था 1951 या 50 में, बाबूलाल चतुर्वेदी एक यहाँ प्रोग्राम इंचार्ज दिल्ली से आए थे।
0: संगीतकार रवि,
1: उन्होंने एक दिन फोन किया, कहने लगे यहाँ हम डोरियां रिकॉर्ड करना चाहते, बना रिकॉर्ड कर दो। तो मेरी माँ अक्सर गाना गा के नहीं, एक लाइन सुना करती, दो लाइन, चंदा मामा दूर के पुए पकाए दूर के। मैंने उसकी ट्यून बना ली, चंदा मामा दूर के पुए पकाए दूर के।
2: आप खाए थाली में, हमने कोधे प्याली में।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।
3: आज के फनकार।

फिल्म शहनाई का ये गाना सुनकर आपने अंदाजा लगाना शुरू कर दिया होगा कि आज के फनकार कार्यक्रम आज किस प्रतिभा पर केंद्रित है। लेकिन दरअसल इस गाने के जरिए अगर आप अंदाजा लगाएंगे तो शायद आपका अंदाजा बहुत गलत होगा, क्योंकि आज के फनकार कार्यक्रम आज जिस हस्ती पर केंद्रित है उसका ताल्लुक इस गाने को लिखने वाले गीतकार से है, जो निर्देशक भी रहे, यानी कि पीएल संतोषी। लेकिन आज हम पीएल संतोषी की बात नहीं कर रहे, बल्कि उनके सुपुत्र राजकुमार संतोषी की बातें आज के फनकार कार्यक्रम में।

निर्माता, निर्देशक और गीतकार पीएल संतोषी के बेटे होने के बावजूद राजकुमार संतोषी का फिल्मों में सफर आसान नहीं रहा। उन्होंने बहुत बुनियादी शुरुआत की गोविंद निहलानी की फिल्म अर्धसत्य के साथ। ये फिल्म सन 1982 में आई थी और राजकुमार संतोषी इस फिल्म में असिस्टेंट डायरेक्टर थे। जरा सोचिए कि बतौर स्वतंत्र निर्देशक अपना करियर शुरू करने में राजकुमार संतोषी को पूरे 8 साल लग गए। सन 1990 फिल्म आई घायल। सनी देओल की मुख्य भूमिका वाली ये फिल्म एक गुस्सैल नौजवान की कहानी है जो व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष करता है। राजकुमार संतोषी ने इस संवेदनशील कहानी का ताना बाना काफी चतुराई से बुना और उन्हें अपनी इस पहली ही निर्देशित फिल्म में काफी प्रशंसा मिली। सन 1990 में राजकुमार संतोषी को फिल्म घायल के लिए मिला सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का फिल्म फेयर पुरस्कार।

फिल्म घायल बेहद कामयाब रही। राजकुमार संतोषी के लिए बड़ा आसान था कि वो अपनी दूसरी फिल्म में इसी तरह के किसी विषय को दोहराएं, लेकिन एक अच्छे निर्देशक की पहचान ये होती है कि वो अलग अलग विषयों में अपनी परीक्षा लेता है, अपने आप को आजमाता है। राजकुमार संतोषी ने अपनी दूसरी फिल्म घायल से बिल्कुल अलग विषय पर बनाई। ये फिल्म थी सन 1993 में आई दामिनी।

0: दामिनी के बाद राजकुमार संतोषी अगले ही बरस एक चौंका देने वाली फिल्म लेकर आए, क्योंकि उनसे उम्मीद नहीं की जा रही थी कि वो इस बार बनाएंगे एक कॉमेडी फिल्म। ये फिल्म थी अंदाज अपना अपना। ये वो दुर्लभ मौका था जबकि सलमान खान और आमिर खान एक साथ रजत पट पर नजर आए। अंदाज अपना अपना को आज भी एक बेहतरीन कॉमेडी फिल्म माना जाता है। इसके बाद राजकुमार संतोषी ने बनाई फिल्म बरसात। इस फिल्म को कोई खास सफलता नहीं मिली, लेकिन फिल्म बरसात के जरिए बॉबी देओल ने फिल्मों की दुनिया में अपना पहला कदम रखा।
1: हमको सिर्फ तुमसे प्यार है, हमको सिर्फ तुमसे प्यार है।
0: साल 1996 में घायल से मिलते जुलते विषय को लेकर उन्होंने बनाई फिल्म घातक। साल 1998

राजकुमार संतोषी की खासियत ये है कि वो हर बार एक अलग विषय लेकर आते हैं। एक निर्देशक के तौर पर वो हर बार अपनी परीक्षा लेते हैं, अपने आप को आजमाते हैं और अक्सर बॉक्स ऑफिस पर कामयाब साबित होते हैं। साल 2000 में उनकी फिल्म पुकार को चारों तरफ बड़ी प्रशंसा मिली।

फिल्म पुकार के बाद साल 2001 में वो लेकर आए महिलाओं से जुड़े विषय पर एक बड़ी ही प्रखर फिल्म लज्जा।

इसके अगले ही साल राजकुमार संतोषी ने अपने करियर की एक बहुत महत्वपूर्ण फिल्म बनाई। इसका नाम था द लेजेंड ऑफ भगत सिंह। अजय देवगन इस फिल्म में शीर्ष

फिल्म द लेजेंड ऑफ भगत सिंह के लिए राजकुमार संतोषी को नेशनल फिल्म अवार्ड मिला और फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। इसके बाद साल 2004 में उन्होंने बनाई फिल्म खाकी।

ये वो पहला मौका था जब अमिताभ बच्चन राजकुमार संतोषी के निर्देशन में पर्दे पर नजर आए। इसके बाद तो अमिताभ बच्चन को उन्होंने दोहराया अपनी अगली फिल्म फैमिली में। ये फिल्म साल 2006 में आई। साल 2008 में अजय देवगन की मुख्य भूमिका वाली फिल्म आई हल्ला बोल।

शुरू की। एक बिल्कुल अलग किस्म की कॉमेडी रोमांटिक फिल्म वो लेकर आए जिसका नाम था अजब प्रेम की गजब कहानी। रणबीर कपूर और कैटरीना कैफ के अभिनय वाली ये फिल्म इस साल की बेहद कामयाब फिल्मों में गिनी गई। संगीतकार थे प्रीतम।

0: संतोषी पर। शोध, आलेख और स्वर यूनुस खान। प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

छाया गीत के सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। बारिश के साथ जैसे छा गई है उदासी की धुंध, आसमान जैसे बरस रहा है और दुनिया के जितने उदास लोग हैं यह आसमान उनका साथ दे रहा है, यह आसमान उनकी जबान में कह रहा है अपनी बातें। ये बारिश नहीं है, ये कुदरत का दुख है।

ये दुनिया, ये खंजर वाली दुनिया, ये पीठ फेरते ही हमला करने वाली दुनिया, उफ ये दुनिया, उफ इस दुनिया के धोखे।

0: कभी कभी यूं लगता है जैसे हम इस दुनिया का हिस्सा नहीं हैं, जैसे अनगिनत अनजान चेहरों वाली इस भीड़ भरी दुनिया में हम एक अजनबी हैं, एक अजनबी जिसे हर कोई धक्का मार रहा है, एक अजनबी जो इस संगदिल दुनिया में तलाश रहा है अपना ठौर।
1: कभी

कभी कभी तेज हवाएं चलती हैं और ये तेज हवाएं अपने साथ कुछ चीजें उड़ा कर ले जाती हैं, वो चीजें जिन्हें आप दिलो जान से चाहते हैं। तेज हवाएं खतरनाक हो सकती हैं, कभी कभी तेज हवाएं चलती हैं।

कहते हैं कि इंसान का चेहरा सब कुछ बयान करता है। कितने इंच की है सामने वाले की मुस्कान, वो आईना बन जाती है उसके दिल का। मुस्कान ही नहीं, आंसू भी बयां करते हैं दिल की हालत का।

शाम के सुरमई आसमान पर तुम्हारा ख्याल जैसे डूबता हुआ सूरज। इस ख्याल को भी सूरज की तरह डूब जाना है। शाम के इस सुरमई आसमान पर आखिरकार अंधेरा छा जाना है। शाम का ये सुरमई आसमान अंधेरे में डूबा हमारा दिल है।

0: आज के छाया गीत में थे मोहम्मद रफी के चंद उदास नगमे, फिल्मों के नाम।
1: आपके पहलू में आकर रो दिए आपके।
0: मेरा साया, राजा मेहंदी अली खां, मदन मोहन।

0: दो बदन, शकील बदायूनी, रवि।
1: ये आंसू मेरे दिल की जुबान है।
0: हमराही, हसरत जयपुरी, शंकर जयकिशन। मेरी हमदम मेरे दोस्त, आनंद बख्शी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। आज का छाया गीत इतना ही। इजाजत दीजिए यूनुस खान को। नमस्कार।

0: सुनिए एक खुशखबरी,
1: कहिए ना।
0: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखिया फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर।
2: शुक्रिया, शुक्रिया।
0: रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष मिश्र। देश में दक्षिण पश्चिम मानसून और तेज हो गया है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष मिश्र। देश में दक्षिण पश्चिम मानसून और तेज हो गया है। कई राज्यों में तेज वर्षा की चेतावनी दी गई है। मुंबई के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग में कल छत्तीसगढ़, गुजरात, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र, पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, माहे और मध्य प्रदेश में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। दिल्ली के कुछ हिस्सों, हरियाणा, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ओडिशा, सौराष्ट्र, कच्छ, उत्तराखंड और उत्तरी पूर्वी राज्यों में भी हल्की से तेज बारिश की संभावना है। गुजरात में अगले 7 दिनों में मूसलाधार बारिश का अनुमान है। डांग, नवसारी, वलसाड, दमन और दीव, दादरा और नगर हवेली, भावनगर, अमरेली और गीर सोमनाथ में कल बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। मछुआरों को अगले 5 दिन तक समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। महाराष्ट्र में तेज वर्षा से जनजीवन प्रभावित है। मौसम विभाग ने मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़ और रत्नागिरी सहित कोंकण जिलों में अगले 24 घंटों के दौरान कई स्थानों पर मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। मुंबई में आज मूसलाधार बारिश के कारण छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लगभग 1 घंटे के लिए रनवे संचालन अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा, जिससे उड़ान सेवाएं प्रभावित हुईं। बृहन मुंबई नगर महानगर पालिका के अनुसार दिन भर में पेड़ गिरने की 64 घटनाएं तथा दीवार या मकान के कुछ हिस्से गिरने की 8 घटनाएं दर्ज की गईं। भारी बारिश के कारण ठाणे और पालघर जिलों में भी व्यापक नुकसान हुआ। लगातार हो रही भारी बारिश के कारण महाराष्ट्र की कई नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज मध्य प्रदेश के शिवपुरी में रक्षा विनिर्माण संयंत्र की आधारशिला रखी। यह संयंत्र अडानी समूह द्वारा लगभग 2500 करोड़ रुपए के निवेश से बनाया जाएगा। एक रिपोर्ट।
1: केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि आज शिवपुरी के इतिहास में एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। उन्होंने इसे एक ऐतिहासिक कदम बताया है। श्री सिंधिया ने कहा कि ये परियोजना जिले को औद्योगिक विकास, रक्षा उत्पादन और आत्मनिर्भर भारत के सपने से जोड़ेगी। उन्होंने कहा कि शिवपुरी के मेहनती युवाओं के बनाए हथियार और मिसाइल भारतीय सेना को मजबूत करेंगी। ये कारखाना राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर स्थित पाली गाँव में बनेगा। इसमें गोला बारूद, उच्च तकनीक वाले हथियार और मिसाइल का उत्पादन किया जाएगा। अडानी समूह के निदेशक जीत अडानी ने कहा कि समूह वर्ष 2030 तक मध्य प्रदेश में 1,20,000 रोजगार सृजित करेगा। भोपाल से अभिनव गोयल की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
0: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण 2025 के 1 जुलाई से सफलतापूर्वक लागू होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। केंद्रीय मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मिशन के अंतर्गत राज्यों के लिए 25,000 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी की। सहकारिता मंत्री अमित शाह कल नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। मंत्रालय ने बताया कि यह समारोह सहकार से समृद्धि की परिकल्पना के अनुरूप आयोजित किया जाएगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान सहित पश्चिम एशिया की अपनी आधिकारिक यात्रा शुरू की। यात्रा के पहले चरण में डॉक्टर जयशंकर दोहा पहुंचे, जहां उन्होंने कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जासिम अस्सानी से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं, विशेष रूप से ऊर्जा, व्यापार, निवेश, संपर्क, सुरक्षा और जनसंबंधों की समीक्षा की। जम्मू कश्मीर में वार्षिक श्री अमरनाथ जी यात्रा में भारी जन भागीदारी दर्ज की गई है। तीर्थयात्रा के पहले 3 दिनों में 56,000 से अधिक तीर्थयात्रियों ने पवित्र गुफा मंदिर में दर्शन किया। आज रिकॉर्ड 24,648 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। फीफा फुटबॉल विश्व कप के प्री क्वार्टर फाइनल में आज नॉर्वे का सामना ब्राजील से होगा। यह मैच भारतीय समयानुसार रात 1:30 बजे से न्यूजर्सी में खेला जाएगा। वहीं कल सुबह 5:30 बजे इंग्लैंड का मुकाबला मैक्सिको से होगा। महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में लंदन के लॉर्ड्स में इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को 151 रन का लक्ष्य दिया है। ऑस्ट्रेलिया ने ताजा समाचार मिलने तक 15वें ओवर में 2 विकेट पर 138 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब हम दिल्ली से रिले कर रहे हैं आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 के अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के मध्य लंदन में खेले जा रहे टी20 क्रिकेट का फाइनल मैच का आंखों देखा हाल। समापन तक ये कार्यक्रम जारी रहेगा।
1: नर्क बनी हुई है,

श्रोताओं, भी आकाशवाणी दिल्ली से आईसीसी महिला T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 के अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के मध्य लंदन में खेले जा रहे महिला T20 क्रिकेट का फाइनल मैच का सीधा प्रसारण किया जा रहा था। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। रात्रि के 11:27 हुए हैं। अब हमारी आज की सभा यहीं संपन्न होती है। कल सुबह 5:55 पर तीनों सभाओं के कार्यक्रमों के साथ हम आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। शुभ रात्रि। जय हिंद।